किसी काम को अगर बगैर मुकम्मल मंसूबा बंदी और हिकमत अमली के करते हैं तो इन कोशिशों का नतीजा ज़्यादातर नाकामी या मायूसी होती है। अगर किसी काम को करने का सही तरीका मालूम न हो और तीर तुक्के लगाकर या हिट एंड ट्रायल मेथड से मसला हल करने की कोशिश की जाए तो इस अमल को उर्दू में टामक टोइयां मारना कहा जाता है, या फिर कह लें इधर उधर हाथ चलाना, अटकल पच्चू या अंदाजे से कोई काम करना, उल्टे सीधे कदम उठाना। अरबी जबान की कदीम बहरी कहावत है इस्नादह अत्तैर। इस कहावत का लफ्जी मतलब है यानी जिसकी दलील तैर नामी सितारा हो। अत्तैर एक सितारा है जो खलीज अरब और खलीज ओमान के दरमियान दिखता है। अगर कोई अत्तैर नामी सितारे का फॉलो करे तो सीधा बहर हिंद की तरफ चले जाएगा जो समंदर के खुले हिस्से में है और यहाँ कोई बंदरगाह या पनाहगाह नहीं होती थी। तो माजी में जहाजों के कप्तान

0: इस रास्ते से बचते थे, क्योंकि ये खुले समंदर की तरफ जाता था जहां किसी किस्म की मदद या पनाह नहीं थी। ये कहावत उस शख्स के लिए कही जाती है जो बगैर सोचे समझे या गैर मोहताज अंदाज में खतरनाक रास्ते पर चल पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स तैर सितारा को अपनी दलील बनाए तो वो जरूर मुश्किल हालात का सामना करेगा। इसलिए सामीन, हमें चाहिए हम अपने फैसले सोच समझ कर करें। ऐसे रास्ते या ऐसे लोगों पर एतमाद नहीं करना चाहिए जो मुश्किल हालात में हमारी मदद नहीं कर सकते।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Listeners, agar subah ka aagaaz acha ho to pura din khushgawar guzarta hai. आप खुश रहते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है और सुबह को खुशगवार बनाने का सबसे आसान तरीका है हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। अक्सर अफराद समझते हैं कि वर्जिश का मतलब है जिम जाना या घंटों आप रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की जो हल्की सी स्ट्रेचिंग है या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है या फिर ये है कि लाइट वॉक है, वो भी आपके जिस्म को एक्टिव बना सकती है और आपका मूड खुशगवार कर सकती है। सुबह के वक्त ताज़ा हवा में चलने से ऑक्सीजन जिस्म में ज्यादा मिकदार में दाखिल होती है, जिससे हमारा दिमाग तरोताज़ा रहता है और ज्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। जो आप काम करना चाहते हैं उसमें ज्यादा बेहतरी आती है। रिसर्चेस की जाती हैं और रिसर्च के मुताबिक सुबह की वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर बनाती है, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करती है और ब्लड प्रेशर जो है उसको मतवाजन रखती है। इसी तरह हमारा जो ब्लड शुगर है उसको भी काबू में रखने में मददगार है। सबसे अहम बात यह है कि वर्जिश हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत असरअंदाज होती है, हमारा जो जहनी दबाव है उसको कम करती है और मूड खुशगवार बनाती है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि एक बुज़ुर्ग, वो जो मैं देख रही हूँ कि पिछले 20 साल से रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट वॉक करते हैं। उनकी उम्र 70 साल है, मगर आज भी वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और खुशबाश हैं और बहुत सारे जो सेहत के मसाइल हैं जो कि आम इस उम्र में हो जाते हैं, उनसे भी वो दूर हैं। उनसे जब उनकी अच्छी सेहत और खुशगवार जिंदगी का राज पूछा गया तो मुस्करा दिए और मुस्करा कर कहा कि सेहतमंद जिंदगी का नुस्खा है कि रोज़ाना की एक्सरसाइज। तो लिसनर्स, अगर आप और हम चाहते हैं कि दिन भर चाको चौबंद रहें और तो फिर सुबह की जो वर्जिश है, जो एक्सरसाइज है, उसको मामूल बना लीजिए। कल से नहीं, आज से ही आगाज करेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.
3: Qatar ka pehla Desi Radio Station, FM 107, Dil Se Desi.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: एक घने जंगल में एक बड़ा हाथी रहता था। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करता था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। हाथी हमेशा ये सोचता था कि उसके जैसे बड़े और भारी जानवर के लिए दोस्त बनाना कितना मुश्किल होगा। एक दिन हाथी ने फैसला किया कि वो जंगल में दोस्त बनाने के लिए जाएगा। उसने सबसे पहले बंदर को देखा, जो दरख्तों में उछल कूद कर रहा था। हाथी इसके पास गया और कहा, हेलो बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने तो पहले उसे गौर से देखा और फिर हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरे भाई, तुम बहुत बड़े हो, जिसकी वजह से तुम दरख्तों में झूला नहीं झूल सकते। मैं कैसा दोस्त चाहता हूँ जो दरख्तों में मेरे साथ उछल कूद करे। बंदर की बात सुन के हाथी थोड़ा सा गमगीन हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से बात करता हूँ, क्या पता मेरा कोई और दोस्त बन जाए। फिर उसने खरगोश को देखा, जो जमीन में अपना बिल खोद रहा था। हाथी खुशी खुशी उसके पास गया और कहा, अरे खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने हाथी को देखा और फौरन डर के मारे कहा, मेरे भाई तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे बिल में कैसे समा सकते हो? तुम्हारी जगह बहुत बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता। हाथी खरगोश की बात सुनकर एक दफा फिर अफसरदा हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा दोस्तों। फिर उसने मेंढक के पास जाने का फैसला किया। मेंढक को देखकर जो तालाब में उछल रहा था, हाथी ने कहा, मेंढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मेंढक ने कहका मारते हुए कहा, तुम इतने बड़े हो कि तुम तो छलांग भी नहीं मार सकते, और मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे साथ उछल कूद ना कर सके। हाथी की आंखों में गम था, लेकिन दोस्तों उसका दिल फिर भी साफ था, और वो ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं उसके लिए एक दोस्त तो जरूर होगा। उस दिन उसने सब जानवरों से दोस्ती की कोशिश की, मगर हर जानवर ने कुछ ना कुछ बहाना करके उसे इनकार कर दिया। अगले दिन जंगल में हलचल मच गई। हाथी ने देखा तो सब जानवर खौफ के मारे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। हाथी ने जल्दी से एक रीछ को पकड़ा और पूछा, अरे भाई क्या हो रहा है, ये तुम सब क्यों दौड़ भाग रहे हो? खैर तो है, और इतने डरे हुए क्यों हो? रीछ की सांस फूली हुई थी और वो एकदम से बोला, हम सब जंगल में भाग रहे हैं क्योंकि शेर हम पर हमला कर रहा है। वो बहुत गुस्से में है और बहुत भूखा है और हमें तंग कर रहा है। ये बात सुनकर हाथी ने फैसला किया कि वो शेर से बात करेगा। वो शेर के पास गया और कहने लगा, शेर भाई, इस जंगल के जानवरों को तंग करना बंद कर दो, वो तुमसे डरते हैं समझे, वो बेचारे खौफ खा रहे हैं। शेर बड़ा गुस्से में था, वो फौरन गुर्रा कर बोला, तुम कौन होते हो जो मुझसे आकर बात कर रहे हो? मैं जो चाहूं करूं, और तुम सबको अपना रास्ता नाप लेना चाहिए, तुम्हें भी मुझसे डरना चाहिए, समझे? शेर की ये बात सुनके हाथी को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने शेर को अपने पांव से धकेला और कहा, तुम सबको डरा कर इस जंगल पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे दोस्तों को तंग किया तो याद रखना, मैं यही मौजूद हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हाथी ने शेर को एक जोरदार लात मारी, जिससे शेर खौफ के मारे भाग गया। जंगल के सारे जानवर छुप छुप कर ये मंजर देख रहे थे और हाथी की जुर्रत को सराह रहे थे। वो सब बहुत खुश हुए और हाथी के पास आए। खरगोश ने हाथी को कहा, मेरे भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी भी दोस्त की नजर से नहीं देखा था। हाथी भाई, लेकिन तुम तो कितने बहादुर हो। बंदर ने हाथी को कहा, तुम तो वाकई में हमारे लिए बहुत जरूरी हो हाथी भाई, तुम्हारी ताकत और दिल की सफाई तो हमें बहुत जरूरी है। मेंढक ने भी आगे से जवाब दिया, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे बड़े जानवर का इतना बड़ा दिल होगा कि तुम हमारे लिए शेर से लड़ जाओगे। अब सब जानवरों ने हाथी को अपना दोस्त मान लिया था। हाथी ने ये सोचा था कि शायद उसका बड़ा जिस्म और मुख्तलिफ सलाहियतें उसके लिए मुश्किल बन जाएंगी, मगर आज उसने साबित कर दिया कि वो किसी भी शक्ल या साइज में अपने दोस्तों के लिए जरूरी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, दोस्त किसी भी शक्ल या साइज के हो सकते हैं। असल बात ये है कि दिल साफ होना चाहिए और हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है, किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुताल्लिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: दोस्तों, आज बात करेंगे इकोनॉमिक टर्म फिस्कल पॉलिसी की। ये नाम पहले आपने सुना है? हाँ, शायद। तो चलिए आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी क्या है। देखो, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो फिस्कल पॉलिसी के लिए ये कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट का पैसा है और पैसे को जो मैनेज करने का तरीका है, वो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी है, जो बजट, टैक्स और खर्चों के जरिए होता है। देखो, गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है टैक्स बैलेंस पॉलिसी के जरिए भी। जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, और अगर टैक्स कम करेगी तो लोग ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। वहीं अगर गवर्नमेंट रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाएगी तो इकोनॉमी में पैसा ज्यादा चलेगा, और अगर खर्चा कम करेगी तो इकोनॉमी स्लो हो सकती है, यानी गुड बैलेंस। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का पैसा मैनेज करने का तरीका, ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। Well, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्लाह।
0: आप सुन रहे हैं एफएम 107।
3: एफएम 107, दिल से देसी।
4: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युतिअ الرسول فقد اطاع الله, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है, और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामिन किराम, कुरान ने अंबिया के किसस हमें महज तारीखी वाकयात के तौर पर नहीं, बल्कि नमूना अमल के तौर पर बयान किए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र, इस्तिक़ामत और इज़्ज़त नफ्स का आयनादार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके सब्र और वक़ार की तारीफ़ फरमाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उतनी मुद्दत तक क़ैद में रहता जितनी देर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहें, तो मैं बादशाह के बुलाने वाले की फ़ौरन दावत कबूल कर लेता। वैसे इस जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात की निस्बत तवाज़ु के तौर पर फरमाया है। यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फजीलत اور صبر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے قید کی طویل سختیوں کے بعد بھی جلدی سے باہر آنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی برات اور عزت کی بحالی کے لیے اطمینان اور وقار کے ساتھ مطالبہ کیا کہ حقیقت سب پر واضح ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقتی راحت پر نہ جھپٹیں، عزت اور وقار کے ساتھ حق کو ظاہر کریں، صبر اور حکمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کریں۔ تو یہ تھی صبر اور وقار کی سنت، جس کی تعریف بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ آئیے ہم بھی مشکلات میں جلد بازی کے بجائے صبر، حکمت اور عزت کو ترجیح دیں۔
5: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں۔ اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گی دفتر کی نہیں دل کی باتیں آپ سے اور ہم سے۔
6: سنیے ایمبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

क्रिकेट की तारीख में जैसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इमरान खान, इंडिया के लिए कपिल देव, वैसे ही श्रीलंकन क्रिकेट में अर्जुना रनतुंगा की लीडरशिप क्वालिटीज ने सबका दिल जीता है। 17 मार्च 1996 में लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम की उस शाम की वर्ल्ड कप जीत के पीछे बतौर कप्तान रनतुंगा की एनालिटिकल सोच और कॉन्फिडेंस शामिल था। 1996 के वर्ल्ड कप की फतेह के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम को एक एहसास की जरूरत थी कि वो दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में शामिल हो सके, और वो एहसास जिन खिलाड़ी ने दिलाया था वो थे उनके कप्तान रनतुंगा। रनतुंगा ने दुनिया को कप्तानी और लीडरशिप क्वालिटीज का फन दिखाया। यकीनी तौर पर रनतुंगा अपने दौर में सबसे मुतासिर कुन कप्तानों में से एक थे। 1996 से पहले श्रीलंकन क्रिकेट महज एक कमजोर टीम थी। सिर्फ यही नहीं, श्रीलंका के लिए बतौर एसोसिएट मेंबर एसोसिएशन 1975 और 1979 वर्ल्ड कप से लेकर चैंपियन बनने तक का सफर काफी लंबा और मुश्किल था। अगर आप इंडिविजुअल टैलेंट देखें तो 80 की दहाई में ऐसे तो कई मारूफ खिलाड़ी श्रीलंकन टीम में मौजूद थे। रॉय डायस, सिद्धार्थ वेटिमुनी, दिलीप मेंडिस, अरविंदा डिसिल्वा, असंत डिमल, रवि रत्नायके, रोशन महानामा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इक्का दुक्का इधर उधर जीत तो मिली, लेकिन श्रीलंकन टीम की कंसिस्टेंसी पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता था। लेकिन अरविंद डिसिल्वा के बाद जब अर्जुना रनतुंगा को कप्तान बनाया गया था 1992 से 1996 तक, रनतुंगा ने ना सिर्फ टीम की कप्तानी को संभाला बल्कि उन्होंने टीम में भरपूर कॉन्फिडेंस इंजेक्ट किया। एक एहसास दिलवाया कि श्रीलंकन टीम किसी से कम नहीं है। 1996 के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम 2007 और 2011 के एडिशन में मुसलसल दो मरतबा फाइनल्स में जगह बनाई। हालांकि जीतने में नाकामयाब रही टीम, फिर भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस था। एंड दैट परफॉर्मेंस शोड दैट व्हाट रनतुंगा डिड इन 1996 वाज एक्चुअली द हार्ड वर्क दैट मेड श्रीलंकन क्रिकेट अ बिग फोर्स इन एशियन एंड वर्ल्ड क्रिकेट टुडे।

0: मॉर्निंग बिन, यस, यानी कि अब बिल्कुल सच सच बताना कि जब भी आपकी आंख खुलती है, सुबह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सुबह सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हो, बताओ बताओ. आई नो आप कहोगे सबसे पहले मैं अपना फोन देखता हूँ या फोन देखती हूँ. ऑफकोर्स, क्योंकि आपको मैसेजेस देखने होते हैं, कोई कॉल मिस हो गई या कोई ईमेल्स या फिर सोशल मीडिया, ये सबसे पहले आजकल आप करते हो, राइट. बस यही पे ना हमें फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि 5 मिनट्स रूल ये कहता है कि सिंपली आपको सुबह उठना है, 5 मिनट अपने आप को देना, यानी कि फोन को भूल जाना है, आराम से उठ के स्ट्रेच करना है, एक ग्लास पानी पीना है, बालकनी या विंडो के पास जाकर थोड़ा सा दोहा की जो सुबह है ना उसका स्वाद चखना है. आई नो इट्स समर्स, लेकिन फिर भी सुबह बड़ी प्यारी होती है, एंड आई बिलीव ऐसा करने से पूरा दिन आपका मूड सेट हो जाता है, एक अजीब सा सुकून, एक शांति, एक कामनेस रहती है, और वो फोन एकदम देखने से नहीं आती. सो यस, इसे जरूर ट्राई करो और प्रॉमिस करो कि अपने आप को 5 मिनट एवरी डे दोगे और गुड मॉर्निंग खुद को बोलोगे. और इसी के साथ हैक नंबर 2 इज कि हमारे अक्सर मुंह से ये निकलता है कि यार कपड़े तो बहुत हैं लेकिन कपड़े नहीं है. तो चलो एक हैंगर ट्रिक आपके साथ आजमाते हैं. तो सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने वार्डरोब को जब भी खोलते हो पूरी अलमारी कपड़ों से ना ठुसी होती है, भरी होती है, और ऐसा लगता है कि यार कपड़े तो बहुत हैं लेकिन जब भी कपड़ों की जरूरत होती है तो कपड़े नहीं मिलते. तो इसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल सा जुगाड़ करना है कि आप अपने क्लोजेट के सारे हैंगर्स को एक ही दिशा में यानी कि एक ही साइड में लगा के रखो, और जैसे ही कोई भी ड्रेस, कोई भी कपड़ा आप यूज करो उसे पहनो और फिर उल्टी दिशा में उसे धो के रख दो. तो 6 महीने के अंदर आई एम वेरी सर्टेन आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कपड़े हैं जो आप आगे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, डेफिनेटली वो आप डोनेट कर सकते हैं. वेली बहुत ही सिंपल जुगाड़ है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, सिंपल लाइफ हैक्स है जो कि आपकी लाइफ में जरूर काम आएंगे. सो डू ट्राई इट और हमें जरूर बताइए. फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

0: 닥쳐가요 얼추 보고요 왜 닥쳐가요 얼추 보고요 왜 닥쳐가요 얼추 보고요 왜 닥쳐가요 얼추
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में

0: हर रोज एक नई बात एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड आज हम अपने घर में ग्रीन स्पेस बनाने के तरीके डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने घर को नेचुरली फ्रेश और हेल्दी बना सकते हैं इंडोर प्लांट्स जैसे एलोवेरा स्नेक प्लांट्स और पीस लिलीज घर को फ्रेश और ऑक्सीजन रिच बनाते हैं अपने घर में स्मॉल हर्ब गार्डन लगा सकते हैं जिसमें बेसिल मिंट और कोरिएंडर जैसे हर्ब्स हों अपने घर में नेचुरल लाइट को अलाउ करने के लिए विंडोज को क्लीन और ओपन रखें वुडन फर्नीचर और इको फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज करें जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं ग्रीन स्पेस आपको पीसफुल और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देता है जो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो लिसनर्स ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक याद रखिए हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है बड़ा पॉजिटिव चेंज खुद भी बदलें औरों को भी इंस्पायर करें अल्लाह हाफिज
1: बस बहुत हो गया रूटीन नीड एन एस्केप एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ क्योंकि आ गया है एस्केप रूम The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं ट्रिकी वर्ड प्ले है बोरिंग मीटिंग्स नहीं ब्रेन टीजिंग रिडल्स है जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107, Dil Se, Desi.

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम एक ऐसे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है, और ये एक ऐसा मौजू है जिसके दरवाज़े पर अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल, ताकतवर व कमज़ोर सब बराबर खड़े होते हैं, और वो मौजू है दुआ। कुरान करीम दुआ के बारे में क्या कहता है? अल्लाह ताला अपने बंदों को दुआ की तरफ क्यों बुलाता है? और दुआ सिर्फ मांगने का नाम है या इससे कहीं बढ़कर कोई हकीकत है? तो चलें जानते हैं कुरान मजीद में दुआ के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले जो बात सामने आती है सामने के नाम

मरियम जवाब देती हैं, हुआ मिन अंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया है। आगे आयत का दूसरा हिस्सा है, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। सामने कराम, ये जुमला सुनकर ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद की एक नई शमा रोशन हो गई। कुरान कहता है, हुनालिका दअ ज़करिया रब्बह, वहीं ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। सबक क्या है इसमें कि बाज़ औक़ात किसी और पर अल्लाह की नेमत देखकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, और ये नेचुरल है, तबीयी है। कभी किसी की तौबा देखकर, कभी किसी की कामयाबी देखकर, कभी किसी की कबूलियत देखकर हम भी कहते हैं, या अल्लाह जिस रब ने उसे दिया वही रब मुझे भी दे सकता है ना, मुझे भी नेक आमाल में आगे बढ़ने की तौफीक दे। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा। तो ज़ुर्रियतन तय्यिबा मांगी, यानी पाकीज़ा नेक औलाद, नेक साले पाकीज़ा और बाकिरदार औलाद, नेमत के साथ बरकत भी मांगना, यही मोमिन की सोच होती है। दुआ के आखिर में वो अल्लाह के एक नाम को पुकारते हैं, इन्नके समीउद दुआ, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। समझ कर हम, ये भी दुआ का एक अहम अदब है, अल्लाह के आसमान हुसना के ज़रिए दुआ करना, या गफूर मुझे बख्श दे, या रहीम मुझ पर रहम फरमा, या रज़ाक मुझे रिज़्क़ अता फरमा, या तवाब मेरी तौबा कबूल फरमा। फिर क्या हुआ, कुरान कहता है, फनादतुल मलाइका, फरिश्तों ने ज़करिया को खुशखबरी सुनाई। लेकिन गौर कीजिए, ये खुशखबरी कब आई, जब वो बाजार में नहीं थे, जब वो गफलत में नहीं थे, बल्कि वह वक़ाइम यसल्ली फिल महराब, वो महराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। वह दुआ के साथ इबादत खुशू और ताल्लुक बिल्ला भी शामिल था। सामने कराम, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ना उम्मीदी कभी नहीं करनी, असबाब कमज़ोर हो तब भी दुआ करनी है, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करनी है, अपनी हाजत खुल कर बयान करनी है, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के साथ दुआ करनी है, और यकीन रखना है कि अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह ताला हमें दुआ की हकीकत समझने, अंबिया के तरीक़े पर दुआ करने और अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामने कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में अब ज़रा हम एक दूसरे रुख की तरफ मुतवज्जे होंगे। इस रुख का ताल्लुक़ एक अलग सवाल से है, वो सवाल ये है कि बाज़ जो ये कहते हैं कि पहले कुरान पढ़ने का शौक़ था, अब क्यों कम हो गया है, मेरे साथ क्या हो गया है, पहले जैसा जज्बा क्यों नहीं रहा। इसी कैफियत को उलमा ने फतूर कहा है। फतूर का मतलब ये नहीं कि इंसान इल्म का रास्ता छोड़ दे, कुरान के मुताले का रास्ता छोड़ दे, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान चल तो रहा होता है लेकिन अंदर से थक चुका होता है। सामने कराम, जब हम फतूर का लफ्ज़ सुनते हैं तो फौरन हमारे जहन में एक तस्वीर आती है। एक शख्स पहले बहुत मुतहर्रिक था, फिर अचानक सब कुछ छोड़ बैठा। लेकिन हकीकत तो ये है कि फतूर की सिर्फ यही एक शक्ल नहीं, बाज़ एक अवकात एक तालिबे इल्म रोज़ाना मुताला करता है, लेक्चर भी सुनता है, किताबें ख़रीदता है, मगर उसके बावजूद वो फतूर का शिकार होता है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल से मकसद कमज़ोर हो चुका होता है, इल्म बाकी रह जाता है, इल्म बाकी रहने के बावजूद नीयत कमज़ोर हो जाती है, किताब बाकी रह जाती है लेकिन मिशन ख़त्म हो जाता है, मालूमात बाकी रह जाती है लेकिन इखलास कम हो जाता है, और यही फतूर की सबसे ख़तरनाक किस्म है। समझ कराम, कभी इंसान इल्म इसलिए हासिल करता है कि अल्लाह राज़ी हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ मालूमात जमा करने लग जाता है। तो हमें ख्याल रखना है कि इल्म इबादत से बढ़कर प्रोजेक्ट ना बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ शोहरत के लिए काम करने लग जाना, सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ना, ये सब ख़तरनाक बातें होती हैं, क्योंकि बाहर से सब कुछ दुरुस्त नज़र आता है लेकिन अंदर से मकसद कमज़ोर हो चुका होता है। तो अब फतूर की सबसे बड़ी वजह क्या है, सवाल तो बनता है। उसका जवाब ये है कि नीयत का कमज़ोर हो जाना, इखलास का धुंधला जाना। इंसान जब किसी काम का आगाज़ करता है तो उसके अंदर एक जज्बा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नीयत की तजदीद ज़रूरी होती है। इसलिए कुरान बार बार तज़कीर करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु

0: आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: एफएम 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: Assalamualaikum and good morning. जी समर मॉर्निंग में आप लोगों को कहेंगे हम खुश आमदेद वेलकम और आप आ गए एक दफ़ा फिर मैं भी आ गई हूँ। 6:00 हो रहे हैं, 2 मिनट मेरा और आपका साथ रहना है 9 बजे तक और क्या क्या कुछ होगा ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अपना हाल अहवाल बताएं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, सब कुछ ठीक एकदम से, उम्मीद है कि सब सेट होगा, आप लोग खुशबाश होंगे, अच्छी सी सुबह का आगाज हो गया होगा और सब कुछ हसब मामूल। और हमारे कॉलर आते हैं ना वो कहते हैं हसब मामूल हसब जायका, तो वो वाली शुरुआत आपकी हो गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा क्या सीन है, मेरा सीन थोड़ा सा आज ऑफ है। वो हुआ ये है कि बच्चों की हो गई हैं समर वेकेशंस और ये हमारे बच्चों की भी हुई गई हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रही। जो मेरा जो सीन ऑफ हुआ है उसके पीछे कुछ और बच्चों की मतलब जो ना वो है क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन। और बेसिकली बच्चों की जो समर ब्रेक्स हुई हैं तो अभी इस वक्त बच्चे ना बहुत ही कुछ सुपर एक्साइटेड चल रहे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ओवरवेल्म हुए हैं। तो यही कुछ सीन हमारे नेबरहुड में भी रहा, रात भर जो है ना वो बच्चों ने वो तबाहियाँ मचाई हुई थी कि मुसलसल चीखो पुकार भागना दौड़ना, लिटरली मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि कोई चुड़ैले उड़ैले आ गई है, मुसलसल हंसे जा रही हैं और इधर उधर भाग रही हैं, मतलब बंदा नींद से उठ के ना थोड़ी थोड़ी देर में तो वो यही फील करेगा भाई मतलब कोई हो गया, सेब का साया हो गया, कुछ इस वाला सीन है। तो खैर मतलब वो चलता रहा और नॉन स्टॉप चला लिटरली पूरी मतलब जो ना जब से मैं सोने के लिए लेटी हूँ, एक तो सोने में भी थोड़ी सी देरी हो गई थी, कुछ काम शाम थे तो वो हुआ, फिर उसके बाद भाई मतलब 1 घंटा नहीं हुआ होगा सोते हुए कि उसके बाद मतलब

तब अजीब सा कुछ तूफान बर्पा हो गया ना. मैंने कहा यार ये समर ब्रेक हो गई, अगर यही वाले हालात चलते रहे ना तो मैं 4 बजे कैसे उठूंगी रोजाना. तो ये वाला जो है ना अभी आज मामला चल रहा है. खैर भाई, मतलब जिनके भी बच्चों की अब सभी की समर ब्रेक्स हो गई हैं और अगर इसी किस्म का कुछ माहौल है कि पूरी रात जागना है बच्चों ने, तो खुदा के लिए उनको बोलें कि ज़रा थोड़ा सा आराम से आहिस्ता, दूसरों को कम अज़ कम तकलीफ ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों ने उठना होता है 3 बजे उठना होता है, सना से होता है. तो आज खैर मतलब मेरा, मुझे सुबह में तो मतलब एकदम से उठा ही नहीं जा रहा था, समझ में ही नहीं आ रही थी कि मैं पूरे दिन अभी प्रोसेस कैसे करूँगी, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम आपने गुजारना होता है ना. मतलब कोई अभी 2 बजे तक तो कहीं नहीं जाता कि 2 बजे तक तो हैं काम है, उसके बाद अगर चलो वीकेंड है, सोने की कोशिश की तो की, लेकिन 2 बजे तक का टाइम ये गुजरेगा कैसे, ये वाली बड़ी जो है ना एक अच्छा मतलब ना मुश्किल बनी हुई है. अच्छा होता है क्या कि हमारी ना मतलब वो दीवार मिली हुई है और उसमें कुछ दीवार पता नहीं कुछ ऐसी मटेरियल की बनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आवाज़ें आती हैं, क्रॉस होती हैं. ये पहले ताज्जुब इस बात पे हुआ था कि हम लोग आराम से नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे होते हैं घर में, तो वहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के वक्त में भी हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ मतलब ड्यूटी इधर उधर होना, तो वो उधर से दीवार बजती थी. अच्छा जैसे ही दीवार बजती है तो हम समझ जाते हैं कि यार हम लाउड हुए हैं, आई थिंक मतलब टीवी या तो लाउड है या हम लाउड हैं, तो हम खामोश हो जाते थे फ़ौरन, विस्पर में बात करना शुरू कर देते थे एक दूसरे से कि भाई चलो इस कमरे से निकल जाओ, यहाँ पे मतलब वो सो रहे होंगे. कल मुझे भी ये ख्याल आया, मैंने कहा यार मतलब ये सुन ही नहीं रहे तो समझ ही नहीं रहे कि कोई सो रहा होगा, कि चलो मैं भी ना मतलब एक आध दफ़ा दीवारों के ऊपर नॉक करके देखती हूँ. तो मैंने उठाई एक बॉटल, जो यूजुअली हम ना मतलब सांस वांस नहीं आ रहा होता जब लगाते हैं, वो बॉटल करीब रखी हुई थी, वो मैंने उठाई, मैंने दीवार पर थोड़ी सी ना मतलब नॉक किया, उससे उल्टा हुआ, हम चुप हो जाते हैं. लेकिन वहाँ से सिलसिला ये हुआ कि वहाँ से पूरे वक्त उन्होंने 1 घंटे तक नॉक किया, बदला लिया इस बात का कि हमने नॉक क्यों किया है, 1 घंटे तक नॉक करते रहे. मैंने कहा या अल्लाह, अगर इस वक्त मेरी थोड़ी सी हिम्मत होती ना इनके घर जाके बात करने की, तो मैं बात करके ज़रूर आती कि भाई हो क्या गया, आज क्या खा लिया है खाने में, कितना ज़्यादा मसला बना हुआ है. फिर जी तो उम्मीद ये कि भाई कि मतलब आप लोग अपने अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेंगे और आपके बच्चे ऐसे होंगे ही नहीं कि इस तरह के मसाइल जो है ना दूसरों के लिए बर्पा हो और वो परेशान हो जाएं. बिल्कुल ही मेरा तो आज बिल्कुल, मुझे हंसी भी आ रही है सुबह से, कह रही है मतलब हो क्या गया, समर वेकेशन शुरू हुई है ना, ये याजूज माजूज छूट गए हैं, क्या हुआ है. खैर जी तो ये है सिलसिला आज अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह तो हाँ कहना चाहिए हर बात पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज बस मेरा 2 बजे तक का वक्त गुजर जाए किसी तरीके से, इंशाल्लाह फिर मैं जो पढ़ के सोने वाली हूँ ना फिर मैं सोऊंगी. आज तो सोना है, पक्का सोना है, क्योंकि आज वीकेंड भी है, तो कल इतना कोई फिक्र भी नहीं है कि अभी सो गए तो फिर कल का क्या होगा, सुबह कैसे उठेंगे, तो भाई सोना ही सोना है, बस ये है. अब वो लोग भी सोते रहे तो मैं भी सो जाऊंगी. खैर जी आज की जो तहरीर है वो है क्या, आज हम बात करेंगे आपसे आपके बारे में कि क्या आप अपनी ज़ात के कैदी हैं. और हम सब डेफिनेटली देखा जाए तो एक ही खुदा के पैदा करदा हैं, और तो दूसरा शख्स हमसे कम कैसे हो सकता है. आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है ना, हम अगर अपनी बात करें तो कुछ जगहों पे, कुछ मौाक़ों पर, कुछ वक्तों में ऐसा हो जाता है कि हम कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं ना, तो वहाँ पर हम दूसरे लोगों को कम भी समझने लगते हैं. तो जब एक ही खुदा ने आप सबको रूह अता की है तो दूसरे की रूह आपसे कम तर कैसे हो सकती है. ज़ाहरी फ़र्क को नज़रअंदाज कीजिए और इस हकीकत की तरफ देखिए जो आप दोनों की है. जब आप हकीकत की तरफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी इंसान जो फितरत पे कायम है वो आपसे कम नहीं हो सकता. लिहाजा अपने अंदर से उस मैं को ख़त्म कीजिए जिसके आप कह रही हैं. ये मैं आपको खुदा से मोहब्बत करने से रोकती है, जबकि आपका खुदा तो आपकी मतलब एक तरह से आप अपनी खुदा की मोहब्बत का अक्स हैं. खुदा की मोहब्बत के सिवा आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, और यही खुदा की मोहब्बत है जो आपको ज़िंदा रखती है. आपको पैदा ही इसीलिए किया गया है ताकि आप मोहब्बत कर सकें, सबसे पहले खुदा से मोहब्बत और फिर उन इंसानों से मोहब्बत जिनसे खुदा मोहब्बत करता है. अगर आप इस मकसद को हासिल ना कर सके तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता. और खुदा की मोहब्बत तब हासिल होती है जब आप अपनी ज़ात से निकलते हैं. अपनी ज़ात से निकलने का मकसद ये है कि अपनी ख्वाहिशात से बाहर निकलिए, उन तमाम ख्वाहिशात को खुदा की मोहब्बत के आगे कुर्बान कर दीजिए जो आपको खुदा से दूर ले जाती है, उन तमाम कामों को तर्क कर दीजिए जो खुदा की मोहब्बत के आगे रुकावट बनते हैं. और जब आप ये जान जाएंगे कि आपकी ज़ात से ज़्यादा अहम खुदा की मोहब्बत है, तब आप हकीकी ज़िंदगी जिएंगे, वो ज़िंदगी जिसमें सुकून और रहमत होगी, वो ज़िंदगी जिसमें मकसद और रूहानियत होगी, और हम सबको इसी बामकसद ज़िंदगी

ये कोशिश करनी चाहिए डेफिनेटली. अच्छा, हम लोगों ने जब हम करते थे डियर जिंदगी तो उसमें हमने काफ़ी इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं मुख्तलिफ इंसान की नेचर और मुख्तलिफ जो पहलू जिसको आप नफसियात कह सकते हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी. तो एक जो बिहेवियर जो ये वाला है ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर होता है और ये कुछ लोगों में तो खैर बहुत ही मतलब एक्सट्रीम पे होता है, लेकिन अगर देखा जाए ना ये खुद से मोहब्बत वाला कॉन्सेप्ट तो ये काफ़ी हद तक होता है और काफ़ी हद तक हमारे अंदर इंडोर्स भी किया जाता है माशरे की तरफ से. मतलब ये जो एक सेल्फ केयर करनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के और बहुत ज़्यादा इस तरह से बयान किया जाता है बाज़ औक़ात कि वो भी डेफिनेटली मतलब आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप ही पूरी दुनिया का मरकज़ हैं. आपको ख़ुद को ऐसे लगने लगता है. बहुत अरसे तक तो मैं भी इसी गलत फहमी में रही थी, शायद दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूमती है, मतलब पूरी जो दुनिया है वो उसका मकसद ही है, ये पैदा इसीलिए की गए क्योंकि मैं पैदा जो हो गई हूँ, तो ये वाला सीन था. लेकिन ये होता है, मुझे कहीं ना कहीं बंदा ना अपने आप को बहुत ही कोई मतलब समझने लगता है. ये सब की मुझे लगता है कि होता होगा, शायद मेरे साथ ही हुआ था, मुझे नहीं पता. लेकिन खैर, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ एक्सपीरियंस की वाकई कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, तो फिर मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी एक तरह से जी रही होती थी. तो जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाती है ना बात कि आपकी वो वाली कोई ऐसा जो आप समझ रहे हो बहुत कोई वर्थ है, तो वर्थ तो वही जो सभी हमने कुछ पिछले दिनों बात की थी, मैंने एक तहरीर शेयर की थी कि वर्थ हमारी वो है जो अल्लाह ताला की नज़र में है, उसके अलावा हमारी कोई औकात है ही नहीं. और ये हमें जब रियलाइज़ हम कर लेते हैं तो फिर ये सेल्फ प्रेज, सेल्फ केयर और ये जो सारी चीज़ें ना ये बड़ी सानवी सेकेंडरी हो जाती हैं. उसके बाद फिर हमें इनमें से किसी चीज़ की इतनी कोई गर्ज नहीं होती. हमें असल चीज़ यही होती है कि जो इसमें कहा गया कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हो, आपको ये फिक्र होती है कि आपसे अल्लाह मोहब्बत करता रहे. और अल्लाह ताला आपसे जब मोहब्बत करेगा, जब आप उसके रास्ते पे चल रहे होंगे, उसकी मखलूक के साथ रहम मोहब्बत का सलूक कर रहे होंगे, तो फिर आप जब ये रियलाइज़ करते हो तो फिर आप थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हो. वरना तो फिर मतलब हर बंदा फिरौन बन सकता है अगर वो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रहे. खैर जी, ये था सिलसिला. उम्मीद है कि मतलब बात आपको समझ में आई होगी. और अभी हम मूव करते हैं अज़कार की जानिब. अज़कार सुनते हैं, वापस आते हैं, सुनते रहें FM 107, दिल से देसी, साथ रहिएगा.

एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशाद खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

Alrighty, right, to welcome back. आप सुन रहे हैं FM 107. Show है Summer Morning और मैं आपके साथ आपकी RJ महावश. अच्छा जी, और होने क्या वाला है? आज 25 जून है, तो 25 जून के मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या क्या कुछ होता है दुनिया भर में, और इसके साथ ही ये भी मैं देख लूँ कि आज का सवाल क्या है, फिर मैं आपको सवाल भी बता दूंगी थोड़ी देर में. और आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ 6622107 पे आप हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं. आज बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा मैसेज का, तो आप ईजिली अभी से जो है वो सेंड करना शुरू कर दीजिए और हम आपके मैसेजेस जो है शामिल करते हैं शो में. अच्छा, सवाल आज का है कि अगर होता खुशियों का कोई फॉर्मूला, ठीक है, अगर खुशियां बनाने का आपको कोई फॉर्मूला मिल जाता, तो कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स होते जो कि ज़रूरी होते आपकी खुशियों में, ठीक है? तो ये आपने बताना है कि अगर आपको मतलब मिल जाए फॉर्मूला खुशियां बनाने का, तो कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स आप लाजमी यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है? तो ये आप मुझे बताइए, जिससे आप खुशहाल रह सकें. बेसिकली मतलब आपकी खुशियों का दारोमदार किन तीन चीज़ों पे है, अगर आसान लफ्ज़ों पे मैं आपको बताऊं तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए 6622107, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे. चाहे तो अभी से कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी देर के बाद कर लीजिएगा, जैसे आपका मूड हो, जिस तरह से आपको सहूलत हो. फिर जी आ जाते हैं वेदर.

की तरफ तो वेदर के कुछ हालचाल यूं हैं इस वक्त कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है इस वक्त का वेदर, मतलब इस वक्त का टेम्परेचर, और आज कम से कम इतना ही रहना है, तो उतना ही अभी सुबह से ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 44 तक जाना है। लेकिन मुझे लग पता नहीं ऐसा रहा है कि ये होता तो मैं आपको थोड़ा सा कम ही बता रही होती हूँ, 42 कभी 40 इस तरह से, लेकिन वो फील्स लाइक 50 से ज़्यादा हो रहा है। और कल और परसों दोनों दिन मतलब मेरे ना गर्मी की वजह से सर में दर्द रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, जबकि मैं पी भी रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे तो खैर मुझे मैं कुछ हूँ सेंसिटिव हूँ, मतलब सूरज से सेंसिटिव हूँ, जब ज़्यादा सूरज आ जाता है तो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद सर में दर्द होता शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की आपके साथ भी कुछ मामला है, मतलब इतने ज़्यादा आप सेंसिटिव हैं, तो फिर आपको ज़रा और डार्क वाले जो शेड्स हैं ना उसके सनग्लासेस यूज़ करने चाहिए, मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ। खैर जी, तो ये वाला सिलसिला है, मतलब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, और साथ में आपको ये भी बताते चले कि यूवी इंडेक्स जो है वो भी आज स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें भी आपने ख्याल रखना है। एयर क्वालिटी मॉडरेट है 154, जबकि ह्यूमिडिटी 33% है, और ये थोड़ी सी कम है क्योंकि कल ज़रा ज़्यादा थी तो वो फील भी हो रहा था आपको। अच्छा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ड्राइनेस वो ख़त्म होती है, लेकिन एक आपने नोट किया होगा ना कि फिज़ा जो है ना एक हैवी हैवी सी लगना शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ है, वो बादल नीचे आए हैं, कुछ ऐसा वाला फील होने लगता है। फिर तो ये है वेदर हमारा, मतलब जो एक्सपेक्टेड है वही है, गर्मी है, और गर्मी है तो फिर आपने ख्याल भी करना है, आपने जो है अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और आपने अपनी और चीज़ों का सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, बाहर निकल रहे हैं तो ज़्यादा देर तक धूप में जाना ही नहीं है, बल्कि कोशिश कीजिए कि जाएं ही नहीं, अगर मतलब नहीं है कोई ज़रूरी काम तो फिर गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलें ही नहीं, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। अच्छा, यूजली हम लोगों के जहन में ये होता है कि हमने जो ना कम अज़ कम 2-3 लीटर पानी पीना है, लेकिन आजकल जितनी गर्मी है मुझे लग रहा है कि ये बात कुछ 5 लीटर तक जा रही है, मतलब इतना पानी पीना पड़ेगा आपको, तो फिर कहीं जाके ना मतलब थोड़ा सा सही रहेगा मामला। या फिर वही जैसे हम कल बात कर रहे थे कि एक तो तरीका ये है कि आप पानी बेतहाशा पिए, दूसरा तरीका ये है कि आप खाने पीने की जो अपनी आदत है ना उनको थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए कि आप मतलब होता ये भी ना कि हम लोग बहुत मुर्गन खाने खाएं और बहुत इस तरह का हो तो फिर हमें और ज़्यादा अंदर से भी ज़रूरत होती है कि डिटॉक्स करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा पिएं, ये करें। तो अगर कुछ सब्ज़ियाँ कुछ फल ही इस तरह के खा लिए जाएं जिसके अंदर ऑलरेडी एक तो पानी मौजूद हो, और फिर मिर्चों वर्चों का इस्तेमाल कम किया जाए, जो कि मतलब किया करना चाहिए, लेकिन यह है कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि हम तो मिर्चों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी मिर्चें कम हो जाएं तो हमसे खाना नहीं खाया जाता, लेकिन खैर मतलब करना चाहिए कि मिर्चों का इस्तेमाल ज़रा मतलब थोड़ा सा कम हो, और ज़्यादा अच्छी अच्छी वाली चीज़ें जो हेल्दी वाली होती हैं, ज़रा आपको फ्रेश रखती हैं, वो हमें जो है ना ज़्यादा आजकल के दिनों में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा ये तरबूज खरबूजे वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, खीरे का इस्तेमाल करें। कल भाई बता रहे थे 1 किलो खीरा रोज़ाना खा रहे हैं वो तो इसी तरीके से आप भी कम से कम 1/2 किलो खीरा तो खाइए, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर आज 25 जून को दुनिया भर में होता है क्या? तो 25 जून को सबसे पहला जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है वो है ये कि आज सी फेरर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये शिप वर्कर्स और सेलर्स को अप्रिशिएट किया जाता है बेसिकली इस दिन में, जो समुद्री सफ़र के ज़रिए ग्लोबल ट्रेड को चलाते हैं। तो इस दिन का मकसद ये याद दिलाना होता है कि दुनिया का बहुत सा जो माल और सामान है ऑयल फूड और ट्रेड शिपिंग के थ्रू मूव होता है। अब ये तो बात हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ गए करंट सिनेरियो में, है ना, ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि जो चीज़ें हैं उनकी जो शिपिंग वगैरह होती है वो ज़्यादातर समंदर के थ्रू ही होती है, और उसमें जो लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो डेफिनेटली उनकी बहुत मेहनत होती है, उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये दिन बेसिकली इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMU से लिंक्ड है और UN ऑब्जर्वेंस के तौर पर भी पहचाना जाता है। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और वाकई मतलब ना मतलब काफ़ी आप देखो तो एक जान जोखों पे डाल के जो लोग होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं जो समंदरी रस्तों के थ्रू, कितने खतरात भी हो सकते हैं। फिर वो जो एक चीज़ होती है बहरी कजाक, वो आज भी होते ही होंगे, है ना, तो वो भी डेफिनेटली वो भी एक ख़तरा होता होगा। इस तरह के और भी सारे मसाइल होते होंगे, तो बात ना मुश्किल काम है, और समंदर में इतने इतने दिनों तक रहना आसान नहीं है अक्सर।

लोग तो बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज़ को, लेकिन खैर फिर भी वो बेचारे मतलब इतने अरसे तक रह रहे हैं दुनिया से बिल्कुल कट के और सब कुछ, तो डेफिनेटली बनता है ट्रिब्यूट उनको और ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा है आज जो दिन, जो अहम दिन बताती हूँ मैं आपको कि अहम जो दूसरा दिन मुझे जो नज़र आ रहा है वो है बेसिकली आज, हाँ कई लोग जो है 25 जून को ग्लोबल बीटल्स डे मनाते हैं। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क किया जाता है, और ये ऑफिशियली यूएन हॉलिडे जैसा नहीं है, लेकिन म्यूज़िक फैंस और बीटल लवर्स जो हैं उनके लिए ये एक यादगार दिन है। इसका लिंक अक्सर जो ना 1967 में जो इनका गाना रिलीज़ हुआ था, बल्कि एक हाँ गाना ही था, आर वर्ल्ड लाइफ ग्लोबल ब्रॉडकास्ट से जोड़ा जाता है, जहाँ द बीटल्स ने ऑल यू नीड इज़ लव ये परफॉर्म किया था। तो उस दिन की याद में ये जो म्यूज़िक कम्युनिटी है और ख़ास तौर पे बीटल्स लवर ये दिन मनाते हैं उनके लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये गाना यूज़ होता है, तो ये वाला सीन है। तो ये बेसिकली दिन मनाया जाता है। तो मुझे दो ही दिन लगे, बाकी जो है वो कुछ मुल्कों की इंडिपेंडेंस डे है, और जैसे क्रोएशिया है वो अपना जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और कुछ उनकी हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेंस है इस दिन के हवाले से, तो ये वाला सीन है जी।

0: जी ट्रैफिक के हालात भी कुछ देख लेते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं आपको ट्रैफिक के हवाले से भी बताती हूँ कि क्या चल रहा है इस वक्त दोहा की ट्रैफिक में, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, समर ब्रेक्स हो चुकी हैं, तो आपको इस वक्त जो है जो रश आवर्स होते हैं यानी सुबह के वक्त का खासतौर पर और दोपहर के वक्त का वो जो 1-2 बजे तक का वक्त है, तो उस वक्त में अब आपको ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ मिलेगा, काफ़ी हल्का फुल्का मिलेगा, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं मोस्टली, तकरीबन तमाम ही स्कूल्स की हो गई हैं, तो आपको इस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा जो यूजुअली आप देख रहे होते हैं। तो अगर आप निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा आराम से निकल भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर मतलब जैसे अगर आप देखें कि कहाँ पे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा जो है वो नज़र आ सकता है, तो आज भी जो कॉर्निश का एरिया है इधर जो है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिल सकता है निस्बतन बाकी जगहों के। इसके साथ ही सीरिंग रोड वाला रोड भी काफ़ी मसरूफ़ रहता है, वो भी होता है, तो थोड़ा सा इन दोनों जगहों पे आपको थोड़ा मामूल से हटकर जैसे शहर में बाकी जगहों पे देखें तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो कोई किसी किस्म का डाइवर्जन और ये सब कुछ नहीं है, स्मूथ है, आराम से अब अपने घरों से निकल के आराम से जो ना मतलब झटपट पहुंच सकते हैं, जितनी अगर 20 मिनट में पहुंचते हैं तो 20 मिनट ही लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जी इसके साथ ही हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और आपने मुझे आज बताना है क्या, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर खुशियों का होता कोई फॉर्मूला तो आप इसमें 3 कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते, कौन सी 3 चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं, 3 अज्जा, सही है, जैसे हम समझे लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च वगैरह डालते हैं ना, तो इस तरह के कोई 3 अज्जा जो आपकी खुशियों को भरपूर बना दें वो कौन से होंगे, ये आपने हमसे शेयर करना है 6666221107, इसके साथ ही 4434377। तो आप हमें कॉल भी कीजिएगा, मैसेज भी कीजिएगा, इस वक्त चलते हैं ब्रेक की तरफ।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.
2: दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि सबको अपने रास्ते

0: चलने की सहूलत मिलती है। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो न सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेव एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें, तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान।

Radio Right, welcome back. आप सुन रही हैं Summer Morning with RJ Mavishkan. और एक दफा फिर मैं आ गई हूँ और मुझे याद है कि अपनी मतलब गमों में मुझे ये तो याद ही नहीं रहा, मतलब याद तो है लेकिन फिर भी कहना भूल गई. आप सब लोगों को हैप्पी हैप्पी हैप्पी वीकेंड और उम्मीद है कि कुछ अच्छे से प्लान्स आपने बनाए होंगे. आज भी कुछ वीकेंड के हवाले से सोचा होगा, कुछ ना कुछ करना होगा. तो क्या प्लान है आप ज़रूर बताइएगा, हमसे शेयर कीजिएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है. गर्मी वैसे काफ़ी ज़्यादा है तो घर पे रह के गुजारना है या फिर आपने कहीं जाने का इरादा किया है तो बताइएगा. अच्छा जी, सलाम मैम, हाउ आर यू टुडे? आई हैव नो बैलेंस, प्लीज़ कॉल मी. अच्छा चलिए जी, बिल्कुल मैं आपको कॉल करती हूँ, इसमें मसला ही क्या है.

हम जब तक कॉल लेते हैं उससे पहले जो है वो क्या करते हैं, हाँ तो मैं आपको भी बताती चलूँ भाई, आप भी कॉल कर सकते हैं 4433477 पे, और इसके साथ ही 6622107 पे आप हमें कर सकते हैं मैसेज और बता सकते हैं वीकेंड के क्या प्लान है। साथ ही मैंने आपसे सवाल किया है आज का कि आपने मुझे ये बताना है कि भाई मतलब

आपके पास अगर होता कोई खुशियों का फार्मूला, मतलब आपको मिल जाए, तो उनमें कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप ज़रूर डालेंगे और वो आपकी खुशियों के फार्मूले में मस्ट होंगे? तो ये इसका जवाब देना है आपने, मुझे लिख के भेजिए 6662107 पे, या साथ साथ आप कॉल कीजिए 4434377 पे, और हमें ज़रूर बताइए कि क्या होगा वो फार्मूला। अभी तक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी तक दिमाग ने प्रोसेस करना शुरू किया है कि नहीं। अरे ये भी होता है ना, मतलब सुबह सुबह तो बंदे का इतना दिमाग ही नहीं चल रहा होता कि वही समझ पाए कि क्या बताना है, तो ये भी सीन है।

0: राइट, तो कॉल मिल गई हमारी, कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जी खलील भाई, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इत्तेफाक से मेरा क्रेडिट खत्म हो गया।
0: मैंने कहा मैं कैसे बात करूं? आप बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बता दिया करें तो हम आपको बिल्कुल कॉल कर लेंगे। बस आपका हाजिर होना और आपका मौजूद होना जरूरी है, फिर कॉल का कोई मसला नहीं है।
1: नहीं नहीं, आपका प्रोग्राम कैसे रह जाए ऐसे मुमकिन नहीं है ना।
0: चले जी, गुड, जबरदस्त, आप सुन रहे होते हैं रोजाना। ये बताएं भाई, सुबह का कैसे आगाज हुआ? आज आपकी नींद पूरी हुई भी है? मेरे वाले हालात तो नहीं है।
1: नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नींद तो हो जाती है पूरी।
0: सही सही,
1: पर ये कि सुबह फजर की नमाज के बाद फिर नींद कहाँ आती है।
0: सही, तो उसके बाद फिर आप नहीं सोते? आप उनमें से नहीं है जो एक दफा उठ जाएं फिर आप नहीं सोते, उन लोगों में?
1: नहीं नहीं, फजर की नमाज अगर निकल जाए तो फिर अफसोस होता है।
0: सही सही सही, चलें गुड, जबरदस्त, तो ये अच्छी बात है। तो फिर अच्छा, नॉन स्टॉप रात में ही सोते हैं फिर एक दफा, या बीच में कुछ दोपहर में कैलूला वैलूला हो जाता है?
1: जी हाँ, बस थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, कैलूला बैठे बैठे भी सो ही जाता है बंदा।
0: हाँ ये हो जाता है, सही है। चले थी गुड, और बताएं भाई और क्या हुआ आज? अभी नाश्ता वाश्ता हो गया आपका या अभी करेंगे बाद में?
1: नहीं, प्रोग्राम देखूंगा 9 बजे तक, उसके बाद ही नाश्ता करूंगा।
0: अच्छा, उसके बाद ही होगा नाश्ता? सही है सही है, सही सही जी। तो अगर भाई आपके पास होता, खुशियों का फार्मूला आपको मिल जाए, उनमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे अपनी खुशियों के लिए?
1: भाई सबका मौजूद होना भी जरूरी है, और नाराज भी होते हैं बस लोग फैमिली के, उनको मना लेना भी जरूरी होता है, और बस यही सारी चीजें हैं, क्योंकि खुशियों के लम्हे जिंदगी में बहुत कम आते हैं और आजकल तो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इस वजह से सबको खुशियों में शरीक करो, और जो अगर नाराज है उन्हें भी मना लो। अगर कुछ किसी से यानी लेना भी है छोड़ दो उसको यार, अल्लाह देगा और देगा इंशाल्लाह। क्योंकि बाज़ दफा ये होता है कि ज्यादती उसने की हुई होती है, आपने नहीं, पर आप खुद से चल के चले जाओ तो शायद अल्लाह, बल्कि कंफर्म है कि अल्लाह ताला भी आप भी खुश हो जाएंगे और वो भी आपकी खुशी में शरीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वक्त तो सबका गुजर जाता है, अच्छा और बुरा जो है ना, वक्त तो सबका गुजर जाता है, पर ये है कि उसको नहीं शरीक किया तो फिर आपकी दावत पे हर आदमी पूछता है वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, तो ये बड़ा वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जवाब देना।
0: सही सही, बिल्कुल सही। तो मतलब 3 चीजें जो हैं उनमें से पहली चीज ये है कि लोगों ने चाहिए अपने, है ना, दूसरा नाराजगियां खत्म कर दो, तीसरा ये कि पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, असल चीज है कि लोग रखते हैं तो फिर पैसों को जरा पसे पुश्ती रखो।
1: जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल।
0: अच्छा, कुछ लोगों की खुशियों के मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से एक जो पैसा भी हो सकता है, कि अगर बहुत सारे पैसे हो तो हमेशा खुश रहेंगे, है ना?
1: नहीं, पैसा तो आ ही जाता है वो जिंदगी में जो है ना, पैसा जिंदगी का वो नहीं है, पर पैसा तो वक्त के साथ इंसान को मिल ही जाता है, पर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है ना, टाइम पे आप अगर हर काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा आप कामयाब होंगे। बहुत पैसे की बात नहीं, बहुत से मैंने पैसे वाले देखे कि वो अनमैरिड है, वो पैसे की लालच में उन्होंने शादी नहीं की, अब वो शादी के काबिल ही नहीं रहे, पैसा तो आ गया उनके पास। तो ये चीज है कि पैसा तो उम्र के साथ आ ही जाता है, ये कोई वो नहीं है अपना रॉकेट साइंस नहीं है, वक्त के साथ ऐसा आ जाता है। पर हर काम का वक्त जो है ना वो मुकर्रर है, क्योंकि आपकी लाइफ का टाइम जो है ना बहुत कम हो गया है।
0: ऐसा है,
1: ठीक है ना, आप आज भी हॉस्पिटल्स में जाएं 40 इयर्स में लोग हार्ट पेशेंट बैठे हुए हैं।
0: ऐसे ही,
1: तो वक्त को कदर दें, वक्त की अहमियत को समझें, वक्त के ऊपर इम्पोर्टेंस जो है ना, वक्त की इम्पोर्टेंस का समझें आपको। आप काम वक्त के हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, तो बिल्कुल जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि अक्सर लोगों के दिमाग में बात होती है और बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती जैसे वो दिमाग में होती है। आपके लिए असल जो चीज़ है ना वो आपके रिश्ते, आपके जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी, वो रिश्तों से ही आती हैं। वो अगर नहीं है तो फिर मतलब खुशियाँ वाकई नहीं पूरी हो सकती कभी भी।
1: नहीं, खानदान का मिल जुल कर शिरकत करना खुशी में बहुत अहमियत रखता है।
0: और जैसे आप ईद पे बता रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी मतलब फैमिली भी यहाँ पे रहती है सारी, तो आना जाना मिलना मिलाना माशाल्लाह।
1: मैं तो अपनी फैमिली के लिए नौकरी छोड़ दी मैंने।
0: हाँ
1: देख ले, मैं कोई छोड़ता है अपनी सीट और वो भी पाकिस्तान में इतने अच्छे ओहदे पे।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: मैंने कहा नहीं भाई, नहीं मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और मैंने जाना है।
0: सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपकी फैमिली आपके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी फैमिली के थ्रू ही आपकी खुशियां होती हैं सारी। आपकी फैमिली है तो फिर खुशी,
1: फैमिली है तो सब कुछ है।
0: सही बात है, बिल्कुल जी, बिल्कुल जबरदस्त। और खलील भाई का क्या आज इरादे हैं, वीकेंड पे क्या मतलब सिलसिला है?
1: बस एज यूजुअल उठते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बस नाश्ता भी खुद का बार दफा बना लेता हूँ, बार दफा अपना मेड बना के दे देती है। बहरहाल ये के
0: गार्डन तो आज कहीं जाने वाने का इरादा है रात में?
1: हाँ देखें इंशाल्लाह, वो बच्चों पे है, बच्चा आ जाए वो फिर वो ही ले जाता है कहीं डिनर वगैरह के लिए।
0: सही सही, चलें जी, गुड, जबरदस्त, अच्छे से अपना वीकेंड सेलिब्रेट कीजिएगा, अच्छे से अपना दिन गुजारिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कह दिया कि मुझे कॉल कर लें। ठीक है, ख्याल रखिए।
1: बहुत शुक्रिया, मेरा क्रेडिट खत्म हो गया था।
0: नहीं कोई मसला नहीं, आप मुझे जब भी हुआ करें ना बोल दिया करें, उससे हट कर भी बोल दिया करें, मैं आपको कॉल मिला लूंगी। ठीक है, चलें जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी तो हमारे साथ थे हमारे ज़बरदस्त से कॉलर खलील भाई, और इनका इरादा जो आज ये है कि कहीं ना कहीं तो जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं किया है कि कहाँ जाएंगे, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी खुशियों के इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए। आप भी मतलब आइडिया मिल गया होगा कि आपने क्या कहना है, तो आप भी अब हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम आरजे माबिश खान, ग्रेट शो, और मैं लोगों को सॉन्ग सुना सुना के खुश करता हूँ। ओके जावेद बाजवा, तो बिल्कुल जी, आज वीकेंड है, आज आप हमें भी सॉन्ग सुना सकते हैं, सॉन्ग सुनाने के लिए कॉल कर लीजिए। और इसके जावेद बाजवा के मैसेज के अलावा मेरे पास है और किसका मैसेज, पहले तो चलें कॉल ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैसेज पे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जी क्या हाल चाल है? बिल्कुल क्या हाल चाल है? हैप्पी वीकेंड।
2: हैप्पी वीकेंड सेम टू योर्स, पूरे ऑल ऑफ कतर और एफएम 107 की पूरी टीम को भी हैप्पी वीकेंड।
0: सबकी तरफ से आपको भी
2: बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मैसेज पढ़ा साथ ही मैंने कॉल कर दी, जैसे जिस तरह वो खुल जा सेम सेम होता है ना, कार्टून भी आते थे।
0: जी बिल्कुल। अच्छा अभी ना पता है क्या, वो हम लोग जो गेम खिलवा रहे हैं वैसे तो उसमें आपका जिक्र हो रहा होता है कि आपका टैलेंट देखना चाहते हैं लोग, अभी कल परसों ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा हो सकता है कि 8 बजे के बाद फिर आप ऑफिस में मसरूफ होते हैं तो ना सुन पाते हो।
2: अच्छा पहले कल हुआ क्या है कि जिस वक्त आपने मुझे कहा कि ये शायद आप ऑफिस पहुंच के, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था।
0: जी जी जी।
2: तो विद इन 10 to 15 minutes जब मैं वापस आके मैंने रेडियो ऑन किया दोबारा, तो मैं एक भाई मुझे सुनने को मिला कि वो जावेद साहब वो पता नहीं खुल के सामने नहीं आ रहे, तो मतलब हमने टैलेंट देखना है। कल की बात
0: है। कल की।
2: अच्छा तो बेसिकली वो क्या मतलब वहाँ पर उसका क्राइटेरिया क्या है उसका?
0: बेसिकली कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, गेम्स होते हैं, तो वो उसमें ये कहना चाह रहे थे कि हम उनका भी टैलेंट जरा सुनना चाहते हैं तो उनको भी आना चाहिए, तो उसमें कभी कोई होता है, कभी डायलॉग डिलीवरी वाला होता है, कभी कोई गाना गाने के हवाले से होता है, इस तरह से होता है, मुख्तलिफ होते हैं।
2: मतलब टैलेंट वहाँ

0: याद आ रही है मुझे.
1: जबरदस्त, गुड.
0: सुबह बखैर. अच्छा जी, मौजू क्या है? मैं तो
1: मौजू आज ये है कि अगर खुशियों का फॉर्मूला बना सकें आप, तो उसमें कौन से तीन जो है ना इंग्रेडिएंट्स, तीन अज्जा आप डालेंगे जो आपकी खुशियों का एक फॉर्मूला बन जाएगा.
0: खुशियों का, खुशियों के लिए तो मेरे ख्याल में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए.
1: गुड.
0: अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी परेशानी आई, तो मैं कहता हूँ कि परेशानी हमेशा वक्ती तौर पे होती है. और खुशी जो है वो हमेशा रहती है. अगर आप एक मामूली बात को दिल पे ले ले, तो वो जिंदगी भर के लिए परेशानी बनती है. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात ये कि हमेशा अगर कोई बंदा, सामने वाला बंदा एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार भी वो कुछ गलत करे, आपके साथ ज्यादती करे, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए बस. लेकिन उसके बाद नहीं, दिल पे वो बात नहीं लेनी चाहिए कि इसने मेरे साथ पड़ा वक्त में ये किया, उसने ये किया, वो किया. ये बातें छोड़नी चाहिए बिल्कुल. अगर वो दिल पे रहे वो बातें, तो अपनी जिंदगी जो है वो परेशानी ही परेशानी रहती है. तो ये दो. और तीसरा ये कि जब भी आप किसी से मिलते हो, तो एक ऐसा मैं कहता हूं कि इतना अच्छा वक्त उसके साथ गुजारो कि आप रहो या ना रहो, लेकिन वो आपको याद करे. ये सबसे बड़ी खुशी होती है.
1: हाँ बेशक बेशक, ऐसा ही है. और वो देखिए, तो याद करे अच्छे अल्फाज में करे, तो आपके लिए मतलब ना सदका जारिया भी है, है ना?
0: अच्छे अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में. मैं वही बात कर रहा हूँ कि इतना अच्छा करना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए कि वो कल आप अगर ना भी रहे, तो कम अज कम वो आपको किसी महफिल में याद रखे, याद करें कि वो आदमी, वो बंदा, ये सब. बहरहाल शायद मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन
1: नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. मैं उसी बात पे कह रही थी कि बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप देखो कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे से रहते हो, तो आप हो ना हो, लेकिन वो आपके लिए अगर वो तारीफ ना भी करें ना खादिम भाई, तो फिर भी सदका जा रही है, क्योंकि आपने उनको नफा पहुंचाया कहीं ना कहीं.
0: मैं 18 साल यू ही मेरा, और मैंने 16 साल एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह पे काम किया था. और जब मैं उधर से पाकिस्तान जा रहा था कैंसिल होके, तो वो जितने भी उधर हमारे जो कुलीग थे, जो लोग थे, जो साथी थे, वो सब रो रहे थे. ये झूठ नहीं, अल्लाह गवाह इस बात.
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो वो हमारे जो वालिद साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनको पता चला कि ऐसे ये साथी जो है वो. तो जब भी मैं इधर कतर में आ रहा था, पहले उसने मुझे मना किया, और फिर लास्ट में उसने मुझे ये बात कि इस शर्त पे छोड़ूंगा आपको कि एक अगर आप नाराज यानी परेशान हो जिस दिन, तो अगले दिन ही आपने वापस आना है. एक बात. दूसरी बात ये कि आप ऐसे एक ऐसा ताल्लुक बनाओ कि जैसे यूएई में लोग आपके पीछे रो रहे थे, आपके लिए रो रहे थे, तो उससे ज्यादा परेशान हो आपको, और आपको याद रखे बस. मतलब ये नहीं कि लोग रोए, मतलब ये कि लोग याद रखे, आप
1: याद रखें. बेशक बेशक.
0: हाँ,
1: सही बात.
0: ताल्लुक ऐसे बनाओ.
1: सही.
0: और हमारी फैमिली में, हमारे पूरे घराने में मैं सबसे ज्यादा इस बात के लिए मशहूर कि ये ताल्लुक बनाता भी और निभाता भी है.
1: हाँ. ये होता है कुछ अच्छा. ये क्वालिटी ना बड़े कम लोगों में होती है कि वो मतलब ना ताल्लुक को निभा सके. एक तो बनाना भी मुश्किल काम है, और फिर निभाना तो उससे मुश्किल काम है.
0: हाँ, और मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, और बच्चों से हमेशा एक बात मैं कहता आ रहा हूँ कि यानी हमारे बाबा, उनके दादा जो है वो मुझे, मेरे बच्चे मुझे बाबा कहते हैं और उनको बाबा जी कहते हैं.
1: अच्छा.
0: तो मैं उनसे ये हमेशा कहता आ रहा हूँ कि बाबा जी ने जो ताल्लुक बनाया था, वो हमने आगे ले, हम लोग ले आगे लेकर के आए. अभी अभी आप लोगों का काम है कि इसको आप लोग कैसे आगे लेकर के जाते हो. वो वही ताल्लुक. तो उसमें ये होता है कि वो दोस्त भी बढ़ जाते हैं, रिश्तेदारी भी बढ़ जाती है, ताल्लुक सब. और ये अच्छा होता है.
1: बिल्कुल सही बात.
0: अपने बुजुर्गों के जो दोस्त, जो दोस्त है या उनके साथी जो हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे रिश्ता या दोस्ती निभाना, ये बहुत अच्छा, अच्छी रिवायत है ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, सही बात.
0: बहरहाल बहुत शुक्रिया, टाइम ज्यादा ले लिया मेरा.
1: बहुत शुक्रिया. नहीं बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की. तो सबको ये होता है कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है. अच्छी बातें जब करता है बंदा, अगर टाइम ज्यादा ले भी ले तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. तो बहुत बहुत शुक्रिया.

0: मेरे मेरे में एक आदत है कि मैं कोई भी होता हो, कोई हाँ, भी बंदा हो,
1: हाँ,
0: कि जो भी सामने आता है मैं उसके साथ सलाम पहले करता हूँ और उसके साथ दूसरी बाजी के हाथ मिलाता हूँ उसके साथ जरूर।
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ. अगर एक बंदा काम कर रहा है और वो बोलते कि नहीं हाथ गंदे, मैं बोलता नहीं,
1: हाँ,
0: आज ये हाथ अगर मेरे साथ है, कल हो सकते मेरे हाथ जैसे गंदे हो, हाँ, मिट्टी लगी हो या कुछ और काम कर रहा हूँ मैं, शायद हाँ, दूसरा बंदा मुझसे हाथ ना मिलाए,
1: हाँ,
0: तो इससे एक तो ये है कि तकब्बुर
1: हाँ,
0: वो खत्म हो जाती है दिल से,
1: हाँ, सही।
0: और दूसरी बात ये कि वो बंदा जो है अपने आप को भी ऐसे उसी लेवल के बराबर समझता है अपने आप, ये ना वो जो तकब्बुर है वो नहीं आता दिल में, लेकिन वो दूसरा बंदा भी खुश हो जाता है।
1: सही बात है, बेशक, जबरदस्त,
0: हाँ,
1: बहुत।
0: और ओके, बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत शुक्रिया खातिम भाई, हैप्पी वीकेंड, अच्छे से गुजारिएगा वीकेंड, इंशाल्लाह फिर संडे को बात होती है, ठीक है, ख्याल
0: रखिएगा,
1: थैंक यू जी, अल्लाह
0: हाफिज़,
1: वालेकुम सलाम। रही जी, तो हमारे साथ हमारे जबरदस्त कॉलर और जिंगल ब्रेक की तरफ चलते हैं।

0: FM 107. Time check.
1: आपके मैसेजेस की तरफ पहले और मैं देख लेती हूँ अच्छे खासे मैसेजेस मुझे नजर आ रहे हैं, तो आपके मैसेज क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कैसी हो? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आरिफ अंसारी का मैसेज है ये, और इसके साथ ही साथ है मेरे पास एक और मैसेज, और ये है अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, उम्मीद है आप खैरियत से हों गी, और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आपका हर लम्हा खुशियों, सुकून, कामयाबियों से भरा हो, आपके दिन की शुरुआत खूबसूरत हो और पूरा दिन मुस्कुराहटों के साथ गुजरे। अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशियों और अपनी रहमतों से नवाजे। आपके लिए मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक एक मजबूत और देरपा रिश्ते की बुनियाद तीन चीज़ों पर कायम होती है, मोहब्बत, एतमाद और सब्र। मोहब्बत रिश्ते में कुर्बत और अपनाइत पैदा करती है, एतमाद दिलों को जोड़ कर रखती है, और सब्र मुश्किल हालात में रिश्ते को टूटने से बचाता है। जब मोहब्बत और एतमाद साथ हों तो रिश्ता मजबूत होता है, और जब सब्र भी शामिल हो जाए तो रिश्ता वक्त की हर आजमाइश का मुकाबला कर लेता है। तो वाकई मोहब्बत बगैर एतमाद के कमज़ोर पड़ जाती है, एतमाद बगैर मोहब्बत के खुश्क महसूस होता है, और सब्र के बगैर दोनों को कायम रखना मुश्किल हो जाता है। यही तीनों मिलकर एक मजबूत और खुशगवार रिश्ते की बुनियाद बनते हैं, और ये है मोहम्मद ईसा। ओए होए ज़बरदस्त, ग्रेट। मोहम्मद ईसा चेक कॉल को होल्ड करवाया था, तो आप जल्दी चले गए, जल्दी से आ जाइए वापस, तो फिर मैं आपकी कॉल ले लेती हूँ, वरना मैं एक न्यूज़ शामिल करके फिर हम एक म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं अगर कॉल आ जाती है तो फिर हम जल्दी से ले लेते हैं। अच्छा जी, तो पहली जो खबर है आ गई, लेकिन ये दूसरे हैं, वो जो थे वो चले गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रईस भाई, क्या हाल है?
2: आपको भी, सारे हमारे दोस्तों को भी, सुनने वालों को भी।
1: गुड।
2: और आपसे एक पूछना चाहूंगा, बस रेडियो रेडियो वाला जो ये चलता है उसमें आपका आवाज है ना?
1: कौन सा वाला?
2: ये जो रेडियो 107 का चलता
1: नहीं, नहीं, नहीं, मेरी आवाज नहीं है उसमें।
2: मुझे लग रहा है कि जैसे आपका

0: अच्छा
1: नहीं नहीं मेरी आवाज नहीं है उसमें, मेरी नहीं है जी।
0: चलो आज के हवाले से बताएं, मैं तो थोड़ा सा दूसरे तरफ का काउंट।
1: अच्छा अच्छा मैं बताती हूँ आपको, अगर आज आपने बनाना है खुशियों का फॉर्मूला और उसमें तीन चीजें डालनी है, तीन अज्जा जिससे खुशियों का फॉर्मूला आपका बन जाएगा।
0: आज तो हमने किसी को सुना भी नहीं, थोड़ा सा
1: अभी देखिए मतलब कुछ लोगों के खुश रहने के लिए उनको चाहिए होते हैं, उनको कहना उनका होता है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सारी खुशियां खरीद लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कुछ लोगों को रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिश्तों के साथ खुश होते हैं। कुछ लोगों के लिए जो है कुछ और चीज हो सकती है। तो तीन चीजें ऐसे अपनी बतानी है जो आपकी खुशी के लिए जरूरी है।
0: हमारे हिसाब से रिश्तों को भी मस्त है, वो भी जरूरी है कि भाई रिश्ता भी अगर तो पैसे होने के बाद भी अगर आदमी समझ लो कि अधूरा महसूस होता है, और पैसा भी होना आज के माहौल में मेरे ख्याल से पैसा भी अगर नहीं है आपके पास तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। कल मैंने एक ऐसे शॉर्ट वीडियो देखा कि एक बंदा साइकिल से आया और सलाम कर रहा है तो उसको ये चार लोग खड़े हैं, एक बंदा बड़े नागवारी से उससे मुसाफा किया, फिर दूसरी बार वो कार में आया, कार में आया तो फिर वो सारे लोग खड़े मतलब खड़े हो गए उससे सलाम मतलब कर रहे हैं, तीसरी बार जब आप खुद की अच्छी गाड़ी से आए तो सारे लोग उठ के खुद उससे आके सलाम कर रहे हैं। तो ये भी एक दुनिया का आजकल का माहौल है कि पैसा भी हमारी जरूरत के लिए, अगर आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए अल्लाह ताला उसमें ये किया, अगर आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करोगे तो हमें जरूरत है पैसे का, किसी का मदद करना हुआ किसी का ये, तो ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना या पैसे को बचा के सेव करके रखना हुआ हमारे लिए ये समझ लो कि मुश्किल का ये बनता है, ऐसा नहीं है। हमें उस कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं कि अच्छे से यूज कर रहे हैं, वो उसके ऊपर हमें ख्याल करके रखना पड़ेगा, बस ये बात है।
1: सही। फिर तीसरी चीज
0: रिश्तों को भी, तीसरे के ऊपर आपने क्या फरमाया था कि जैसे मसलन दो चीजें तो ये हो गई और आपने एक इशारा थोड़ा सा किया था उसके ऊपर थोड़ा सा तो जैसे आपने कहा था इसी तरह क्या
1: जैसे कुछ लोगों ने कहा सेहत होनी चाहिए आपके पास तो आप खुशियों को महसूस कर सकते हैं ना।
0: जी जी सेहत भी सबसे बड़ी जरूरत की चीज है हमारे अपने लिए। अगर सेहत याब आदमी नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी मतलब ये के अगर सोचे हैं तो यहाँ पे अगर आदमी प्रदेश में खास कर रहे कि अगर उसके सेहत से थोड़ा तकलीफ होता है तो उसके लिए सारी चीजें अधूरी समझ सोचता यार फायदा नहीं है, इससे अच्छा अगर अपने फैमिली में होते ये होते, पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाती है, बिल्कुल कोई अहमियत रही नहीं जाती है पैसे की, खासकर माल की कोई मतलब उसके जहन से बिल्कुल निकल जाता है। तो ये चीजें जरूरी है सारी चीजें मतलब ये तीनों चीजों को मतलब अगर आज तक वही है कि हर चीज को अपने उसमें उससे बाहर ना हो, अगर हमें अल्लाह ताला वक्त पे सेहत दिया है तो हम उसको मिस यूज ना करें, माल दिया है तो उसको मिस यूज ना करें, और खासकर माल के बाद में आदमी के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आने के बाद में वो थोड़ा सा लोगों को एकारत के नजर से और लोगों को ये चीजें थोड़ा सा ये सबसे बड़ी चीज है कि आदमी गाफिल हो जाता है। तो इस चीज को भी ख्याल करना चाहिए, अपने मतलब माजी को नहीं भूलना चाहिए बंदे को। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ये वक्त हमारे साथ में बाकी रहेगा, तो ये भी ख्याल करना चाहिए लोगों से, कोई सामने वाले की थोड़ा सा कोई गलती हो कोई ये तो उसे मतलब आपको उधर गुजर करके और हमें तो उसके साथ में रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए। हाँ हर बंदे के अंदर कमी और ये तो होता है, ऐसा नहीं है कि कोई हर इंसान मतलब फरिश्ता तो नहीं बन जाएगा, कहीं जबानी कहीं आपके हिसाब से जो आप उससे मतलब ये कर रहे थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ वो हमारी मदद करेगा ऐसा उस वक्त पे, और वो सामने वाला अगर नहीं पहुंच पाया तो उसको अपने दिल में पूंजी बना के न रखें बल्कि उसको छोड़े कि वो हमारे तकदीर का एक हिस्सा था, हमें थोड़ा सा परेशानी हमारे सामने आना था, पे अगर हम सब्र करें तो शायद वो रिश्ता भी बरकरार रहेगा और हमें ख्याल करना चाहिए।
1: चालें जी गुड हो गया रईस भाई। तो ये चीजें हैं जो आपकी जो है ना खुशियों में जरूरी होनी चाहिए। और ये बताएं वीकेंड का क्या प्लान है, कुछ किया है आपने प्लान?
0: वीकेंड का प्लानिंग खास नहीं है, खासकर हमारा यही वीकेंड का हर प्लानिंग होता है कि जुम्मे के दिन हम मतलब अपने समझ लो कि अपने जरूरियात से जो कपड़े मपड़े रहते हैं सबसे फारिग हो के खाना पाना, एक नमाज पढ़ने के

0: बाद में हम निकलते हैं अक्सर 3-4 बजे के बाद में गाड़ी
1: अच्छा,
0: लेके
1: अच्छा, अच्छा, सही
0: छोटी गाड़ी हम चलाते हैं, असल में बड़ी गाड़ी लेकिन शाम के टाइम हम छोटी गाड़ी लेके निकलते हैं, तो 4 बजे के बाद में फिर दोस्तों से थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा मॉल वॉल में कुछ जरूरत का सामान रहेगा तो घूमते हैं थोड़ा सा, ये जरूरी है हमें एक दिन समझ लो लाजिम निकलना, हमें ऐसा लगता है कि मतलब वो हमारा वीकेंड मतलब पूरा ही नहीं हुआ अगर हम थोड़ा दोस्तों से ना मिले और थोड़ा सा मॉल वॉल में ना घूम के थोड़ा सा थोड़ा मोड़ा जो जरूरत का है खरीदारी नहीं किए तो अधूरा लगता है।
1: यानी कुछ ना कुछ आप करते हैं, ये अच्छी बात है।
0: जी, कुछ ना कुछ करते हैं, थोड़ा सा कुछ अच्छा से खाए मिलाए सारे दोस्तों से मिले,
1: जबरदस्त। चले तो फिर जरूर इंजॉय कीजिएगा वीकेंड, आपको एक दफा फिर से हैप्पी वीकेंड और इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे, हो सकता है गेम में मुलाकात हो जाए, ठीक है?
0: चले जी, थैंक यू जी, कोशिश करेंगे। हाँ
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल, ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रई जी तो हमारे साथ है रईस भाई, और इसके साथ ही बढ़ते हैं हम एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं और आपकी कॉल्स भी लेते हैं, आपके मैसेजेस भी काफ़ी सारे जमा हुए हैं वो भी शामिल करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी. हेलो ऑल मूवी बफ्स, अटेंशन, आप सुन रहे हैं FM 107 और मैं हूँ आपकी अमिता, आपकी अपनी फिल्मी गाइड. फिल्मी गाइड जहाँ मैं आपको लेकर चलूंगी हर हफ्ते सिनेमा की दुनिया के एक रोमांचक सफर में. नई रिलीज का जलवा हो या पुरानी फिल्मों का जादू, हम देंगे आपको हर फिल्म का पूरा रिव्यू.
1: रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 एब्सोल्यूट सिनेमा. आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे महविश खान।

0: अगर अभी आपने सुनना शुरू किया है तो हम आपको सवाल भी बता दें और भी चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले सवाल कि अगर खुशियाँ को हो कोई फार्मूला और आपको दिया जाए तो कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे। हमारे साथ हैं कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: हेलो।
0: ओके जी सलाउद्दीन साहब, क्या हाल चाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र है।

0: क्या वीकेंड का क्या प्लान है, पहले तो ये पूछ लेती हूँ आपसे।
1: वीकेंड तो कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं अभी तक,
1: काम बन जाएगा।
0: हाँ ये तो है, कहीं ना कहीं का तो कुछ बन ही जाएगा।
1: अभी गर्मी हालत ऐसी खराब है, गर्मी गर्मी गर्मी
0: है ना, बाहर जाने का तो मूड नहीं हो रहा।
1: किनारे जाएगा अभी, पानी से निकलो गर्मी लगना शुरू हो जाती है।
0: हाँ ये तो है बिल्कुल, बाहर का इतना ज्यादा मूड वाकई नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन रात में
1: उमस हो रही है।
0: हाँ रात का क्या सीन है, मतलब कल कोई रात में निकला तो एक्सपीरियंस पता चलेगा ना।
1: हाँ बस यही, थोड़ा रात में घूमेंगे, वो भी फिर ज्यादा रहता, कल तो छुट्टी रहेगी तो घूमेंगे थोड़ा बहुत, बस गाड़ी की गाड़ी में घूमेंगे, कहीं जाने का प्लान नहीं,
0: गाड़ी गाड़ी में। सही है, भी ठीक है ठीक है, चले जो भी हो, घूमेगा फिरेगा जैसे भी हो, या फिर कुछ टीवी देखिएगा घर पे, कुछ भी हो तो वो जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो फिर ये बताएं खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स आपके लिए क्या है, खुशियों का फॉर्मूला।
1: ऑप्शन तो बहुत कम है, तीन बस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स
0: है, ये डाले वगैरह ये करे, तो आप डाल लें, देखते हैं क्या क्या डालते हैं।
1: नहीं फिलहाल तो जैसे कि आपने तीन ही बोले ना, हाँ। बोला तीन अगर डालना है तो बहुत सोचने के बाद आया रिजल्ट, पैसा, एक अच्छा हम सफर, समझदार
0: है कि नहीं है, अभी है कि आना है, अच्छा है, अच्छा है, ओके गुड,
1: अंडरस्टैंडिंग हम सफर
0: और
1: सेहत,
0: सेहत, ओके ओके, सेहत सेहत, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। और इसके अलावा,
1: इसके अलावा क्या, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन मतलब ले ना।
0: अच्छा यही पे बस हो गई है। अच्छा तो फिर बस सेहत बोला आपने, अच्छा हम सफर, दो हो गए ना, तीसरा नहीं बताया ना,
1: और पैसा, पैसा,
0: पैसा, ओके, तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है ठीक है,
1: पैसा नहीं हो तो कुछ नहीं है फिर।
0: हाँ होना तो चाहिए, किसी हद तक तो होना चाहिए।
1: कुछ बोलते ना, अरे पैसा पैसा क्या करता है, पैसे से ही सब कुछ है आजकल। जरूरी नहीं है, मतलब आदमी पैसे से एजुकेशन में सब मिल रही है, अच्छा अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हो, अच्छे से रख पा रहे हो, जरूरत पूरी कर पा रहे हो, जरूरी इम्पोर्टेंट है पैसा, और इसके साथ पैसा हो और अच्छा हम सफर हो, अंडरस्टैंडिंग, जिंदगी इतनी अच्छी, लोग इतनी अच्छी हो जाती है, कुछ तो कोई वही नहीं।
0: हाँ ये तो है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही सीन है, ऐसे ही है।
1: टेंशन में भी होना, अरे जाने तो कोई बात नहीं, अरे जाने तो ठीक है कोई बात नहीं।
0: ये सही बात है बिल्कुल। तो भाई मतलब ये तीन चीजें आपको मिल गई तो आपका तो फॉर्मूला कम्प्लीट, राइट,
1: कम्प्लीट,
0: जबरदस्त जबरदस्त। और बताएं भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप, और कोई सीन है, क्या चल रहा है लाइफ में?
1: लाइफ में अभी सोच, अभी क्या चल रहा है, छुट्टी जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं।
0: छुट्टी पे जाना
1: है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वाले हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा वो पता नहीं है, अगर अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा। नहीं रिन्यू होगा
0: सही,
1: फिर सफर सफर की तैयारी, और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ
0: मतलब उधर ये चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, ये वाला सिलसिला,
1: कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए और आ जाए, क्योंकि पैसा कमाना ना वो खत्म नहीं होता, जितना कमाओ उतना कम लगता है, और थोड़ा सी और थोड़ा सी।
0: सही हो गया, ये तो है बिल्कुल,
1: कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, वहाँ दुआ चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो।
0: हाँ
1: ये 30 तारीख तक है ये कॉन्ट्रैक्ट।
0: तो आप क्या काम क्या करते हैं?
1: मैं हाउस ड्राइविंग में।
0: अच्छा अच्छा सही सही ठीक है,
1: मैं जैसे रेंटल होता है ना, रेंटल वाला हूँ।
0: अच्छा अच्छा सही सही,
1: कभी इस घर कभी उस घर कभी इस घर कभी उस घर।
0: अच्छा अच्छा ये सिलसिला है, तो चले भाई मतलब खैर हमारी दुआ आपके लिए है कि जो आपके हक में बेहतर हो इंशाल्लाह ताला वो ही हो,
1: आमीना,
0: जैसे भी आमीना, हो वो आपके हक में बेहतर हो इंशाल्लाह ताला। तो आमीना, बाकी तो सब खैर है, अल्लाह ताला से खैर मांगनी चाहिए इंशाल्लाह ताला, तो फिर वो ही है। अक्सर क्या होता है ना कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चल रहे होते हैं, हमें वाकई मतलब अपनी चीज़ें जो है ना अल्लाह के सुपुर्द करके फिर बेफिक्र रहना चाहिए कि अब जो होगा वो अपने तौर पे पूरा मतलब कोशिश करो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की भी आप बात करें ना, आपको क्या चाहिए, आप अपने तौर पे पूरी कोशिश करें कि हो जाए रिन्यू, फिर नहीं होता अल्लाह की मर्जी है ना,
1: फिक्स नहीं कर पा रहा ना।
0: हाँ

0: वहाँ भी दिल अटका हुआ है, यहाँ भी दिल अटका हुआ है।
1: सही बात है ये तो।
0: अभी कैसा है ना मुंबई में, अभी अगर अभी छुट्टी मिलती है तो ऐसा है कि मुंबई में बहुत जोर से बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं पाएंगे।
1: हाँ ये भी है,
0: घूम फिर नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में ना आदमी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, इतनी बारिश है कहीं जाना नहीं, ये तो मजा नहीं आता। फिर इससे अच्छा वहीं रह लेते हैं।
1: ये तो है,
0: मुंबई की बारिश तो पता ही आपको।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा होती है ना,
0: बहुत ज्यादा। स्टार्ट हो गई है।
1: अच्छा अच्छा हो चुकी है, ग्रेट गुड यार, ये अच्छी बात है। वैसे बारिश का सुन के लगता अच्छा है, लेकिन ये वो बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वहाँ पे और फिर हमारे
0: हफ्ते हफ्ते होती है।
1: हाँ सही सही,
0: कंटिन्यू हफ्ते हफ्ते बारिश होती रहती है, हफ्ते दो हफ्ते कंटिन्यू रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम। तो यहाँ से निकल कर वहाँ जाने में ना चिड़चिड़ाहट होती है, अगर आप वहाँ रहो तो मजा आएगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद यहाँ भी गर्मी लग रही है, यहाँ एसी है, यहाँ साउंड नहीं आ रहा है, कोई चीज की पीप आपू नहीं आती है। हाँ। वहाँ जाने के बाद चिड़चिड़ाहट होती है।
1: ये भी है बंदा था यहाँ पे रहते हुए वो चीजें मिस भी करता है। आप देख रहे हो ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि बारिश हो रही है, मौसम बड़ा जबरदस्त है ना, मतलब पकौड़े जलेबियाँ ये सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है सीन। लेकिन जब आप जाके रहना शुरू कर दो, लोड शेडिंग होती है आप लोगों की तरफ या नहीं होती, ये बताएं।
0: नहीं,
1: फिर बचे हुए भाई, वरना हमारी तरफ तो ये होता है कि गई मतलब बारिश हुई इधर और उधर लोड शेडिंग, अब गई लाइट लंबी गई लंबी गई, तो ये एक और चिड़चिड़ाहट हो जाती है।
0: नहीं वहाँ अल्लाह का शुक्र है लाइट तो नहीं जाती।
1: अच्छा अच्छा,
0: बस ये है कि बस बारिश बारिश बारिश बारिश, कहीं जाओ कहीं जाना, जाने का मूड नहीं होता, फिर मन नहीं होता।
1: सही सही, चले जी सलाउद्दीन साहब, अच्छा लगा।
0: स्कूल कॉलेज लाइफ,
1: हाँ जी जी, आप बोलें।
0: स्कूल कॉलेज लाइफ तो बारिश में बिना छाते के निकाली है, उसमें मजा आता था।
1: अभी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता, और वैसे भी मतलब थोड़े से हाँ यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी मतलब वो वाली लाइफ हो जाती है ना, थोड़े मतलब हम वैसे वाले सेंसिटिव हो जाते हैं, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। चले जी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा हसबे मामूल आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे से कॉलर और हमारे साथ थे, और इसके साथ ही मैं आपको एक न्यूज भी आपसे शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर आपकी कॉल्स वगैरह लेते हैं हम। अच्छा जी, तो कतर ने 2026-27 जो एकेडमिक ईयर है उसके लिए अपनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लान के अंडर ऑफिशियली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और फॉरवर्ड लुकिंग कदम समझा जा रहा है, क्योंकि इसका मॉडल स्कॉलरशिप एंडिंग विद एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड है, यानी कि जो स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंडर डिजिटल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स में पढ़ेंगे उनके लिए डिग्री के फौरन बाद नेशनल एजेंसीज में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो ये इनिशिएटिव मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके साथ सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो। इस प्रोग्राम के जो मेन मकसद है वो ये है कि कतर में होम ग्राउंड जो टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स तैयार करना है, ताकि मुल्क को फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी के लिए स्किल्ड लोकल प्रोफेशनल्स मिल सकें, और इसके ज़रिए स्टूडेंट्स को उन फील्ड्स में स्कॉलरशिप दी जाएगी जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, स्मार्ट सिटीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, प्रोग्राम में फाइनेंशियली भी काफ़ी मतलब ये देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग है, और स्टूडेंट्स को अट्रैक्टिव सपोर्ट भी दी जा रही है, मतलब इसमें काफ़ी कुछ है, काफ़ी इसकी डिटेल है, बड़े मज़े का है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूँ कि कौन एलिजिबल होगा, तो सेकेंडरी स्कूल एवरेज मिनिमम इन्होंने रखा है 80%, और साइंस और टेक्नोलॉजी ट्रैक से जो बैकग्राउंड होगा जिन लोगों का, उन लोगों को मतलब यहाँ पे मौका मिल सकेगा। आखिरी जो तारीख है वो है 15 नवंबर, और उससे पहले मतलब जो है आप 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा सिलसिला, और 15 अगस्त के दरमियान करवाएंगे आप जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जहां पब्लिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लिए 15 नवंबर से 30 दिसंबर होगी। तो ये है भाई खबर जो कि बड़ी अच्छी है और मैंने आपसे शेयर कर दी, और इसके साथ ही हम करते हैं आपके मैसेज शामिल। गुड मॉर्निंग और हैप्पी वीकेंड, और ये कहते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली प्लस इबादत प्लस पैसा इज इक्वल टू खुशी। ओके,

0: ये कौन है? ये है हमारे साथ कैस. ओके जी, कैस का मैसेज है ये. कैस ने हमें मैसेज किया था ना अभी एक दो दिन पहले, कॉल किया था, वही है ये, अगर मैं गलत नहीं समझ रही, वही वाले कैसे ना. अच्छा जी, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम मावजी, कैसी हैं आप? और अली हम सब बात कर रहा हूँ अलसद से. आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई, सुबह सहरी के लिए उठा, रोज़ा रखा. हाँ, अगली जो खबर है ना मेरे पास वो इसी हवाले से है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आप लोगों को भी याद कराती चलूँ कि अच्छी बात है कि जिन लोगों ने आज रोज़ा रखा है, वरना आपके पास कल और परसों का ऑप्शन है 10 और 11, तो रोज़ा ज़रूर रखना है. उसके हवाले से खबर भी मेरे पास है, थोड़ी देर में शामिल करती हूँ. तो आज के सवाल की तरफ आएँ तो खुशी आपको खुद से मिल सकती है, बस टॉक्सिक लोगों से दूर रहें. ओके, और मैंने बहुत किया लोगों का, पर लोग अब आपके नहीं बनते, आपके नहीं बनते. उन्हें जब तक आपकी ज़रूरत होती है ना, तब तक उनका काम नहीं निकल जाता. आप बेशक उनसे कितना ही प्यार करो, सच्चे दिल से लॉयल रहो, मगर उन्होंने तो अपनी सोच और अपनी समझ के मुताबिक करना होता है. बाकी आपका शो बहुत ग्रेट है. मैं बेसिकली कहाँ हूँ, दूर हूँ बट, अच्छा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ. ओके, मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ बट लाइसेंस अभी नहीं मिला है कतर में, इसलिए अभी ड्राइविंग स्टार्ट कर दी. चले, अल्लाह करे आपको जल्द अज जल्द मिल जाए और आपका जो प्रोफेशन है आप उसी हिसाब से अपना काम करें इंशाल्लाह ताला. जी, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अच्छा,
0: सुनील, राइट,
1: समीर,
0: समीर, समीर. जी समीर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है.
2: जी अब आपको सही आ रही है?
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक आ रही है.
2: क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह समीर, क्या हाल है आपके?
2: यस अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त.
2: रिगार्डिंग दैट यू नो, आपका जो क्वेश्चन है कि खुशी के तीन पहलू, तो मैं कहना चाहूंगा इसमें अल्लाह पे तवक्कल, जो भी चीज आपको मिल जाए उस पर बस खुश हो जाए, और नेक औलाद, मुखलिस दोस्त और नेक जीवन साथी.
0: सही, आपके जरा ज्यादा हो गया. अल्लाह पे तवक्कुल, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज पे, नेक औलाद, नेक अच्छा हम सफर और मुखलिस दोस्त, तो चार तो हो गए ये. गुड,
2: ये जरूरी है बहुत, मिनिमम.
0: हाँ, ये तो होने चाहिए
2: कोई चीज,
0: मतलब कम से कम एक तो मुखलिस दोस्त हो जिंदगी में, है ना?
2: जी जी जी.
0: सही.
2: प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है,
0: बहुत शुक्रिया. मुल्तान पाकिस्तान से पहली दफा बात हो रही है, इससे पहले बात हो चुकी है मेरी आपसे?
2: एक कॉल पहले हुई थी कुछ दिन पहले.
0: कुछ दिन पहले हुई थी. अच्छा अच्छा, सही है सही है. गुड जबरदस्त. तो हाँ, मुझे लग रहा है मुल्तान से तो एक कॉलर की हमारी बिल्कुल बात हुई थी, तो गुड जबरदस्त. अच्छा, वीकेंड का क्या प्लान है आज? कुछ प्लान किया अभी तक?
2: वीकेंड का कोई खास नहीं है, एक फैमिली फ्रेंड के घर बस डिनर है, बाकी हमारा प्लान बच्चों के साथ होता है, जो बच्चे प्लान करेंगे वही मेरा प्लान है.
0: सही है, चले गुड जबरदस्त, हैप्पी वीकेंड. और कुछ और कहना चाहें समीर तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम.
2: बस मैं छुट्टियों के टाइम में लोग जा रहे हैं, सब खैरियत से जाएं.
0: आपका इरादा है?
2: जी जी, मैं भी नेक्स्ट वीक ट्रैवल कर रहा हूँ.
0: अच्छा गुड जबरदस्त, तो पाकिस्तान जा रहे हैं, कहीं इरादा किया है कहीं और भी निकलने का? वैसे पता है क्या क्या होता है, निकलेंगे प्लान है
2: नॉर्दर्न इंडिया जाना है और प्लस कुछ टाइम मुल्तान स्टे करना है.
0: गुड जबरदस्त, तो देखभाल के जाइएगा क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा कुछ हुआ था ना, मतलब वो फिर शुरू हो जाता है काफी तूफान और ये सब कुछ, तो बस देखभाल के इंशाल्लाह. हाँ, लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, काफी मसला हो गया था, तो बस देखभाल के जाइएगा. अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से लेके जाए, खैर खैरियत से आप वापस आए इंशाल्लाह ताला. तो आपको आपके लिए दुआएं भी और हैप्पी वीकेंड. थैंक यू जी, थैंक यू समीर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. रही जी, तो हमारे साथ हमारे कॉलर समीर, और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने तो चार ऑप्शंस दे दिए, तो आप लोग भी बिल्कुल बता सकते हैं कि आपकी खुशियों के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे. थोड़ी देर के बाद कॉल कीजिएगा और अभी हम इंजॉय करते हैं म्यूजिकल ट्रैक की तरफ, हम चलेंगे अच्छा सा गाना सुनकर आते हैं. वीकेंड है तो आपके वीकेंड को वीकेंड बनाते हैं. इंजॉय कीजिए ये ज़बरदस्त ट्रैक और वापस आते हैं, फिर आपसे मज़ीद बात करते हैं.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप.
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: बस बहुत हो गया रूटीन. नीड एन एस्केप. एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है. बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है. जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
0: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.

0: Ready, right? Welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mahavish. Happy weekend to all of you. आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे अभी कुछ एक घंटा 12 मिनट और. तो खैर जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में. उन्होंने कहा कि मुझे कॉल कीजिए, तो फिर मैंने कॉल कर ली. और शहजादा सलीम थोड़ी देर के बाद आपको भी मिलने वाली है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन बात कर रहे हैं? फिर से बताइएगा.
1: अली हमजा.
0: ओके अली हमजा. आपका ही तो मेरे नाम सुन के ना मुझे हमेशा नूरी बैंड याद आ जाता है. कैसे हैं? ठीक ठाक हैं.
1: नूरी बैंड क्यों याद आ जाता है आपको?
0: अली हमजा है ना उसमें. दो भाई अली नूर एंड अली हमजा, तो मुझे हमेशा नूरी बैंड याद आता है आपके नाम से जी. अभी मैं गाना भी चलाती हूँ थोड़ी देर में. हाँ अच्छा. नहीं हाँ, मैंने देखा तो था, बिल्कुल पढ़ा भी था, लेकिन अभी जब मैंने ये देखा ना कि मुझे कॉल कीजिए, तो मैंने उस वक्त मैसेज खोल के नहीं देखा ना, ऊपर से देखा. मैंने कहा चलो ये कह रहे हैं तो इनको कॉल कर देते.
1: गाइस आ रहा था तो ये है कि यहाँ पे जाना फिर चलती नहीं है कॉल दूसरे मोबाइल पे.
0: हाँ
1: फिर मैंने बोला कि आप कॉल कर.
0: बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, कोई मसला नहीं है. ये बताएं भाई अली, क्या इरादे हैं आज के? पहले तो ये बताएं.
1: फिलहाल तो काम पे निकले हैं अभी.
0: अच्छा.
1: ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि

0: फिर पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
1: बिल्कुल ऐसे ही, और वाकई कोई होता भी नहीं है. आप देखें मतलब जो है ना टैक्सी हो गई है और मतलब गाड़ी चला के सब बहुत मोतबर पेशे हैं और सबसे मतलब अपना इंसान घर चलाता है, इतने इतने लोगों का उससे एक वो जुड़ा हुआ होता है ना, जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं, रिस्क जुड़ा हुआ होता है, तो काम कैसे कोई छोटा बड़ा हो सकता है. और हम लोगों को वाकई बड़ी अच्छी आपने बात की कि देखिए हमें अपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल मिलती है कि जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी सब उनको रोक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो सबसे आगे आ गए थे. अपने जूते खुद वो मुरम्मत करते थे, अपने कपड़े बनाते थे. हजरत अली के हमें पता चलते हैं कि मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने मुख्तलिफ काम किए, तो किसी काम में कोई कबाहत नहीं है.

0: में ये करेंगे तो हमारी जो है वो तस्वीर होगी या फिर हम लोग छोटे महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता,
1: ऐसा नहीं होता। और सॉरी टू से अली हफ्सा, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, आप भी पाकिस्तान से, ये हमारी सोच जरा ज्यादा है। मैं देखती हूँ कि हम लोग ना अपने आप को खुद ही हमने अपनी नजरों में पता नहीं क्या बहुत बड़ा कर लिया है, है ना, ऐसे ही। तो हम लोगों को ये चाहिए कि एक डाउन टू अर्थ रहना, जितना इंसान अपनी ज़मीन से अपनी अपनी जड़ से जुड़ा रहता है ना, उतना वो एक फ्लॉरिश करता है, दुनिया में कामयाबी हासिल करता है। और आप देखें, हाँ, और देखें दुनिया में आप जाएं, आप मतलब जो ना बाहर अमेरिकन यूरोपियन, वो लोग ज़्यादातर मतलब वो लोग जो प्रोफेशन होते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं होते सारे, कोई प्लम्बिंग का काम कर रहा होता है, कोई कारपेंटर होता है, तो वो किसी चीज़ को बुरा नहीं समझते और कबाहत नहीं महसूस करते। तो सब पूरा मुल्क के जो है ना तरक्की कर रहा होता है,
0: इसी तरह तो तरक्की होती है। हम लोग मोस्टली, मैं बताऊंगा, है तो हम भी पाकिस्तानी, लेकिन कतर में जो मुख्य मैंने देखे हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ पे ड्राइवर हजरात है या फिर वैसे हैं, वो लोग अपना जो हमारा कौमी लिबास है उसको पहनने में यहाँ पे सिवेंटी महसूस करते हैं, तो लोग हमें देख के क्या कहेंगे। लेकिन हमें प्राउड करना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमारा एक नाम है, हमारा एक मैार है, तो हमें अपना जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है
1: बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले ना हमें अली बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम से दुनिया ना किसी कौम को मानती है। बाकी हमारे लिबास और ये चीजें तो आती हैं, लेकिन बाद में आती हैं, पहले आपने अपने आप को अपने काम से मनवाना होता है।
0: बिल्कुल सही बोला आपने।
1: तो अली
0: ये चीजें भी जो है ना साथ साथ देखनी चाहिए कि नहीं, हमें इन चीजों को जो है ना प्रेफर करना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो अली ये बताएं कि खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स आपके क्या होंगे?
0: मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इंसान खुद है, अपने लिए सबसे बड़ा जरिया वो खुद है। अगर वो चीजें जगह मैनिपुलेट नहीं करता, लॉयल्टी नहीं देखता, अपनी फैमिली में रहता है, उनको पसंद करता है, उनके साथ खुश रहता है, अपने दोस्तों में रहता है, तो अगर उन चीजों से बातें अच्छाई जो है जगह पे होती है, फैमिली में भी हो रही होती है, बातें चल रही होती हैं, दोस्तों में भी चल रही होती हैं, अगर हम उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं कि यही है तो सारा कुछ किया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, तो ये कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग उसी चीज में स्टक होकर रह जाते हैं। उन चीजों को थोड़ा सा हट के हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपने आप में सुधरें। ठीक है, उसने कह दिया ये उसका फेल है, ये उसकी हरकत है, ये उसने किया, लेकिन हम तो अपने अपने वे में अपने हिस्से में ठीक है ना, अपनी जगह काम बेहतर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल सबसे बेस्ट चीज है ना वो इंसान खुद है। अगर खुद अच्छे, खुद अच्छाई अपने आप में तलाश कर जाए, उसके लिए मेरे ख्याल से जो है ना हर चीज जो है वो अच्छी है, किसी का बात नहीं।
1: जबरदस्त जबरदस्त। सबसे पहले
0: लाइफ में पैसा भी जरूरी है, होना चाहिए। हर चीज जो है वो बगैर पैसे के नहीं मिलती, किसी से कुछ नहीं मिलता, ना ही खाली ऐसे बातों से जो है आपका पेट भरेगा। पैसा भी लाजमी है आपकी लाइफ में, लेकिन इंसान को जो है ना वो खुद को जो है ना अपने आप पे काम करना चाहिए, खुद में बेहतरी लानी चाहिए।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अपना इंसान का ना कॉम्पिटिशन अपने आप से ही होना चाहिए, और वो भी अपनी आदत के हिसाब से होना चाहिए। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत जबरदस्त।
0: किसी को इस तरह दर्द करते हैं कि नहीं इसने, मैंने भी इसके साथ इतना अच्छा मतलब बर्ताव किया और उसने मेरे साथ ऐसे गलत काम कर दिया या मेरे साथ इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो वो उसका फेल है, वो उसने जो है ना आपके साथ किया। आप तो आप उसके साथ अच्छा चल रहे हैं ना, आपको जो है इनर पीस फील होगा कि आपने जो है ना उसके साथ अच्छा बर्ताव किया।
1: आपका दिल मुतमईन रहना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबरदस्त अली हमजा, तो ग्रेट भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और इंशाल्लाह फिर जरूर कॉल कभी भी हो बता दीजिएगा मुझे, मैं कर लूंगी। ठीक है,
0: बहुत अच्छा लगता
1: है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली हमसा, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। रोही जी, तो हमारे साथ थे अली हमजा, और ज़बरदस्ती इन्होंने बातें की कि सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को बेहतर करो तो चीज़ें जो है ना खुद ब खुद बेहतर भी होती हैं, और आप खुश रहते हो क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, तो हर चीज़ सेट हो जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो ऑफ प्लीज, हम हैं आपके साथ, क्या हाल है? हैप्पी वीकेंड जी जी शहजादा सलीम, हैप्पी वीकेंड आपको, और बताएं भाई कि क्या जवाब देंगे आज के सवाल का।

0: मेरे तो सही जवाब यही है अपना, मतलब यही कि अपना खुश खुश रहना वाला इंसान
1: जी जी, खुश रहने के तीन इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं?
0: हाँ, ये सबसे ज्यादा मेरे को खुशी देती है।
1: हवा क्यों आ रही है शहजादा सलीम? थोड़ा सा फोन कुछ इधर उधर करें। हाँ, क्योंकि आपकी बात समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ
0: जी, अभी आ रही है?
1: अब आ रही है, अब फर्स्ट क्लास।
0: एक तो ये है कि जो ये चरिंदे परिंदे जितने भी है ना, इनको मैं जो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना, जो वेस्टेज जो खाना होता है ना, ये भी बड़ा मुझे बहुत मतलब इसमें मतमईन बहुत बहुत
1: गुड
0: नाइस। मैं कहीं पर भी देखता हूँ ना, जब मेरे पास कुछ अगर खाना गाड़ी में है, पार्सल में खाया और दादा हो गया जी बच गया ना, तो उसके बजाय डस्टबिन में डालने के मैं सोचता हूँ कहीं ऐसी जगह झाड़ो उसके वगैरह डाल दू ना, ताकि कोई परिंदे वगैरह आके उसको खा ले। तो वो सुनने में तो बड़ा ये होता है। और मेरे पास जो हो ना फूड ज्यादा हो ना, तो मेरे साथ अगर कोई हो तो मैं उसके साथ है ना शेयरिंग करूँ, या मैं कुछ नहीं कर रहा और उसके पास वो चीज नहीं है तो मैं ना उसके पास शेयरिंग करूँ। अभी जैसे अभी मुहर्रम के रोजे है ना, इंशाल्लाह मेरा कोई नौवा है दसवा है, तो मेरे रूम में आज दो बंदे रोजे में नहीं रख पाए, लेकिन मैंने पूरा अफ्तार है जब सेटअप किया ना, तो फिर मैं बोला यार आज साथ में ना अफ्तार करते हैं, तो वो भी सवाब किया था, तो उन लोगों ने भी मतलब साथ दिया। ये बड़ी मतलब बड़ी खुशी होती है एकदम
1: बांटने से,
0: बांटने से। हाँ, बांटने की मतलब मुझे ना मेरे बहुत आदत, बहुत काफी टाइम से आदत है, इंडिया में भी रहता हूँ, मैं जाता हूँ अपना हमारे मोहल्ले में जो मदरसे होते हैं ना, तो जो बच्चे पढ़ने आते हैं ना, अरबी पढ़ने आते हैं, तो कल कितने बच्चे होते हैं 5 साल 7 साल 10 साल है ना उसे, तो फिर मैं कुछ ना वहाँ भी जा देता हूँ, बिस्किट वगैरह के पैकेट है खाने पीने की चीजें, ताकि वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, वो बड़े खुश होते हैं ना, मतलब एकदम अचानक से चीज आ गई सामने, तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
1: सही जी।
0: और जब सैलरी आती है ना, तो जल्दी से घर पे पैसे मतलब अराइव हो जाते हैं ना, तो ये जब चिंता है घर पे पैसे पहुंच गए सैलरी पहुंच गई ना, तो बड़ा मतलब मतलब इत्मीनान मिलता है कि चलो ये इनकी जो फरमाइश जो आगे ऐसे लिख के आती है व्हाट्सएप पे,
1: जबरदस्त, बहुत आला भाई, बहुत जबरदस्त चीजें आपने बताई और बहुत ही अच्छी चीजें। अच्छा, हमारे जब मैं उधर होती थी कराची में, तो रेडियो करती थी, तो वहाँ पे हमारे एक बॉस होते थे, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनका नाम था इकबाल फरीदी। तो वो लंच के दौरान अक्सर हम लोग होते थे, मतलब साथ ही लंच वगैरह कर रहे होते थे, तो उनकी ना मैंने एक आदत हमेशा देखी थी कि वो अपने खाने में से, अपनी रोटी में से आधी रोटी ना लाजमी बचाते थे, और फिर उसके बाद बैठ के ना बहुत देर तक बिल्कुल बारीक बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करते रहते थे उसके, और फिर वो परिंदों को डाला करते थे। तो वो मुझे बड़ा मतलब, मैं कहती थी देखो, एक तो इन्होंने अपनी रोटी बचाई है, इन्होंने मतलब नहीं खाया, फिर दूसरा उन्होंने इतनी देर तक आधे घंटे की कोई एफर्ट किए, छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े उसके किए, तो अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगता होगा कि मतलब देखो ये बंदा कितनी एफर्ट कर रहा है।
0: अरे उसका बहुत बड़ा असर है मालूम, इतना बड़ा असर है ना, और ये मछलियों को भी खाना देना ना, सलाद वगैरह ना, ब्रेड डाल देना, ये डाल देना ना, ये बड़े है ना, मैं इस चीज में ना बड़ा मैं ना मतलब ढूंढते रहता हूँ ऐसे मौके ना।
1: और खासतौर पे यहाँ पे जो अपना मीना डिस्ट्रिक्ट वाला जो पोर्ट है, उधर आप जाओ तो इतना मजा आता है, आप कुछ लेके जाओ, एक तो वो बगले आ रहे होते हैं सीगल्स वगैरह ना, और साथ में हम नीचे डालो तो मछलियां भी सारी जमा हो जाती हैं, इतना मजा आता है देख के।
0: फिर एक तो डालो ना सब आते हैं, चार पांच तो बच जाते हैं ना, ऐसी भी चिड़ियां भी ऐसी है।
1: सही बात है,
0: जो टाइम होता है ना फजर की नमाज के बाद का, तो आप है ना दाल दो, देखो एक दो चुड़िया आई ना तो सब लोग आएंगे, फिर आप अगर वो बना लो ना तो ऑटोमेटिकली ना लोग वेट करते फिर आ जाते हैं।
1: ये भी बड़ा एक अच्छी सी फील है वाकई, मतलब बर्ड्स वाली मुझे भी बड़ी अच्छी फील लगती है कि बर्ड्स सारी की सारी जमा हो जाए, बिल्लियां जमा हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन बर्ड्स जमा हो जाए तो बड़ा मजा आता है देख के। चले जी सलीम, थैंक्स।

0: लॉट, हमें बस जिंगल ब्रेक की तरफ चलना है।
1: जी जी अजर है ना, बहुत बड़ा इसका अजर है ना।
0: और
1: जहाँ पे बारिश की बात हो रही थी ना, मुंबई की बारिश है ना बहुत मुतासिर करती थी, क्योंकि मैं वहाँ पैदा ही हुआ हूँ ना, तो बहुत मुतासिर करती थी।
0: हाँ यही बता रहे थे वो। चले हम जिंगल ब्रेक की तरफ चलते हैं। शहर सलीम थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का, ठीक है, थैंक यू जी, बाय बाय। रे जी तो इसके साथ ही

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: राइट, 8 बज के हो गए हैं 3 मिनट। मैं आपके साथ आ गई हूँ दोबारा से और आप सुन रहे हैं FM 107। और एक न्यूज़ आपसे शेयर करनी थी, खबर थी जो कि बहुत ज़रूरी है, तो वो शेयर कर देती हूँ मैं आपसे। आपको मैं बता दी चलूँ कि यहाँ पे जो औकाफ है उन्होंने ऑफिशियली तमाम मुसलमानों को ये याद दिहानी कराई है कि डे ऑफ अशूरा का रोज़ा जो है वो रखा जाए। और इस साल जो है 10 मुहर्रम अशूरा थर्सडे नहीं, मतलब ये कल होगी, आज 9 मुहर्रम है। तो आप जो है ये ज़रूर, ये एक रिमाइंडर के तौर पर सब लोगों को बताया गया है कि इसकी सुन्ना फास्टिंग है, इसको ज़रूर ज़रूर ज़रूर ये रोज़ा रखें। और मिनिस्ट्री ने बार बार एम्फसाइज़ किया है कि इसकी बहुत ही एक अजर सवाब है, तो ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, या तो 9-10 का रोज़ा रखा जाता है या फिर 10-11 का रखा जाता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बिल्कुल कि आप जो है रोज़ा मतलब किस तरह से रखते हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मैं कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रही कहीं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास 9 आ रहा है मुहर्रम लिखा हुआ। तो आप बताइएगा, क्योंकि हो सकता है ये खबर के मुताबिक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 मुहर्रम, लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ा बताइएगा आप लोग मुझे। अच्छा जी, देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर हैं तो वो बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आहा, कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए, कॉल आती है तो फिर हम लेते हैं और जब तक आपके मैसेजेस देखते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
2: जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, क्या हाल चाल है आपके?
3: हाल तो ठीक है, चाल का पता नहीं।
2: चाल का पता कीजिए, क्यों नहीं पता किया अभी तक आपने? जी, नसीम है, नसीम है।
3: जी,
2: क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: गुड, जबरदस्त। जी नसीम, तो फिर क्या इरादा है भाई, खुशियों के इंग्रेडिएंट्स आपने अभी तक इकट्ठे किए कि नहीं?
3: समझाई नहीं।
2: या अल्लाह, मतलब हद हो गई कोई, क्यों नहीं समझे आप?
3: इंग्लिश मेरी वीक है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं बता देती हूँ, खुशियाँ होती हैं वो तो पता ही है ना। अब जैसे हम खाने में डालते हैं, हम लाल मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, है ना, तो इन चीज़ों से मिलके बनता है खाने का मसाला, बनता है ना, है ना। तो खुशियों के लिए कौन सी ऐसी 3 चीज़ें अज्जा लेंगे जिससे आपकी खुशियां बन जाए, आपको खुशी मिल जाए?
3: मुझे बांटने में बहुत खुशी होती है।
2: बांटने में खुशी होती है, सही सही।

0: Apoi cam că am două chela, o mustahel, pe care n-am
1: mărit să-l mărit. Sahi. और कुछ आ? और बताएं, मैं तो और भी इंतजार कर रही हूँ ना, दो चीजें और बतानी है, तीन थी,
0: तीन हो गया ना,
1: तीन ही हो गया, बांट दिया, तीन लोगों में बांट दिया ये सही है जी नसीम, तो चलें जी, गुड, जबरदस्त भाई, तो तीन लोगों में आपने बांट दिया और तीन लोगों का हो गया, सही है और कुछ कहना है नसीम?
0: मुहर्रम
1: है, हाँ आज 10 मुहर्रम है, मैं मिस कर गई हूँ, मुझे ऐसा पता है, पक्का लग रहा था, नहीं एक भाई ने और बोला है, और वो जब मैंने औकाफ अली खबर पढ़ी तो मुझे उससे आइडिया हुआ, मैंने कहा नहीं ये कह रहे हैं तो 10 ही होगा, लेकिन मैं आज 9 समझ रही थी, और मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि 10 और 11 यानी जुमे हफ्ते का रोज़ा रखेंगे, छुट्टी भी होगी, अब मैं ये दिमाग मेरा भी उधर ही लगा हुआ है, ये क्या हुआ यार,
0: कंफर्म नहीं बता,
1: नहीं कंफर्म है, एक भाई ने और बोला उनको कंफर्म ही होगा, औकाफ की जो खबर थी तो वो तो डेफिनेटली सही होगी, मैंने अपने तौर पे मैंने कहा नहीं आज तो 9 है, लेकिन नहीं भाई 10 ही है, तो ये वाला सीन हो गया है ये अजीब हो गया, मैं पता नहीं किस दुनिया में चल रही हूँ, मेरे पास 9 लिखा हुआ आ रहा है, जो ऐप मैं यूज करती हूँ उसमें जो है ना 9 लिखा हुआ आ रहा है, ये हो गई कन्फ्यूजन, हाँ ये हो गया है मेरे साथ मसला, खैर जी क्या कर सकते हैं, हम तो यही पक्का समझ रहे थे कि 9 है आज, सही है जी, तो नसीम भाई आप बताएं क्या इरादा है आपका, वीकेंड का कुछ इरादा है, कुछ आज कहीं जाना आना है, कुछ करना है?
0: मैं तो हमेशा 12 से 14 घंटे तो घूमता ही रहता हूँ,
1: घूमते ही रहते हैं, कहाँ कहाँ घूम लेते हैं आप गोल गोल तो नहीं घूमते सही है, मेरे सामने लोग बच्चे आ रहे हैं ना, पूरे दिन गोल गोल गोल गोल घूमते रहते हैं
0: इधर तो वहां से लेकर के दुकान तक,
1: हाँ हाँ सही, लॉन्ग ड्राइव चलती है रोजाना, राइट?
0: नहीं ठीक से नहीं, कब किधर से कहाँ
1: कुछ फिक्स नहीं है, सही हो गया ठीक है, लेकिन घूम लेते हैं, फिर आपका छुट्टी वाले दिन या मतलब थर्सडे वर्सडे को कोई अलग से घूमने का दिल नहीं चाहता?
0: गर्मी में छुट्टी नहीं है,
1: हाँ हाँ वो मैं समझ गई थी, जब भी मैंने कहा आज के दिन मुझे पता था जी और बताएं
0: बाकी छुट्टी में अगर मौका मिला तो इधर उधर चले जाते हैं,
1: अच्छा सही हो गया,
0: छुट्टी मिलती है तो थोड़ा
1: आराम
0: अपने आप को दे देते
1: हैं, सही
0: वो भी जरूरी है,
1: हाँ वो भी जरूरी है, ठीक हो गया, चलें जी नसीम, बिल्कुल आपको जब भी छुट्टी मिले आराम करें, रेस्ट करें, और आपने अपनी खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स तीन लोगों में बांट दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी आपकी कॉल का, ठीक है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, राइट जी, तो हमारे साथ नसीम थे और इसके साथ ही एक कॉलर और हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ तो बहुत ही कम आ रही भाई, रेडियो ऑफ कर दीजिए,
2: रेडियो बंद है,
1: मेरी आवाज़ मुझे रिपीट क्यों हो रही है, ब्लूटूथ तो नहीं लगाया हुआ?
2: हाँ गाड़ी में हो तो ब्लूटूथ लगा हुआ है,
1: हाँ ये इशू है ना, इसी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है मुझे,
2: अभी सही हो गया
1: जी, बताएं कौन बात कर रहे हैं?
2: जी मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ,
1: मुदस्सिर क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सुनाइए आपका हाल?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या इरादा है आज का?
2: आज का तो अभी तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो बस आपको कॉल लगाया, बस लग गई
1: सही, अच्छा खुशियों के बताएं आपके तीन इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे?
2: फर्स्ट तो है सच में जो बांटने में मजा है और किसी में भी नहीं है, और दूसरी चीज है बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना, और तीसरा है कि दोस्तों के साथ गपशप करना या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना,
1: सही, बच्चे बांटना और दोस्त, राइट सही, तो इसमें आपको खुशी मिलती है?
2: जी
1: वेरी नाइस,
2: फैमिली के साथ भी है, ऑफ कोर्स फैमिली के साथ तो रहते हैं, मगर कभी कभी दोस्तों के साथ भी निकालना चाहिए वक्त, अभी एज में आने के बाद क्या है कि फैमिली तो फैमिली, अभी फैमिली है तो फैमिली के साथ ही है,

0: और कभी कभी वीकेंड में या तो वीकेंड में कभी कभी फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहिए।
1: हाँ जाना तो चाहिए, बिल्कुल सही है। आपने बड़ा इसका वो तमहीद बांध के ही जवाब दिया है।
0: जी
1: सही है, सही है, बिल्कुल जी, दोस्तों के साथ भी जाना चाहिए। और दोस्तों के साथ वो चाय का होटल तो पक्का होता है ना, कि वहाँ पे बैठ के चाय शाय पीनी है वीकेंड पे।
0: सही है, पहले जो बैचलर थे तो फ्रेंड सर्कल बहुत था, फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादातर वक्त तो गुजरता था। मगर जब फैमिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो फैमिली के साथ ज्यादा हो गया, तो फ्रेंड्स के साथ बहुत कम हो गया अभी।
1: हाँ सही सही सही, और फिर दूसरी चीज ये भी है ना कि फैमिली के साथ के बाद फिर दोस्त कोई आपको चाहिए होता है जिससे जरा खुल के अपने आप दिल की बात कर सको।
0: जी जी
1: जबरदस्त मुदस्सर, तो मतलब ये तीन चीजें आपकी हैं।
0: जी
1: और
0: एक चीज है जो आप बताए थे, आप मुहर्रम का आज
1: हाँ, तारीख है जी।
0: तो एक्चुअली ये तो हमको पहले ही मालूम हो जाता, क्योंकि ये तो मैंने तो तारीख
1: अच्छा
0: है ना,
1: हाँ, तो क्योंकि हाँ वो पहले दिन से
0: ही मालूम हो जाता है।
1: मेरा ऐसा हमारा रूटीन चल रहा होता है ना कि हमें दिन की कोई गिनती समझ में नहीं आ रही होती, तो पता नहीं क्यों अपने तौर पे मैंने यही लगाया हुआ था हिसाब के यही होगा।
0: और ये तो है, और एक तरफ से इंडिया की तरफ से भी हम लोग को कॉल्स आते रहती है, ये दिन रोजा रखना है आप लोगों को, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे तरफ तो एक दिन आगे रहेगा, आप लोगों की तरफ पहले रहेगा, वो रिमाइंड चलते रहता है।
1: सही सही, बस मेरा मिस हो गया इस दफा, तो ये हो गया। खैर जी क्या कर सकते हैं, मुझे अफसोस ही हो रहा है इस बात का। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच हमारे साथ, एक कॉलर और, ठीक है, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा। राइट जी, तो हमारे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: कहां हैं भाई, कहां हैं आप?
2: भाई पहले मैं माफी चाहता हूं, माजरत।
1: जी जी कहां हैं, गायब कहां हैं?
2: कॉल नहीं करता बहुत दिन से, इधर ही हूं। एक्चुअली आपके जैसा हमारे भी टाइमिंग शिफ्ट हो गए, ये समर टाइमिंग ब्रेक।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो किस वक्त होती है इस वक्त?
2: जी ये रीजन है।
1: कहां किस वक्त ड्यूटी चल रही है?
2: एक्चुअली 9:30 to 3:30 ब्रेक है, 9:30 to 12:30 ब्रेक है, तो वो उस टाइम में क्या है ना, मतलब समर में बाहर काम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज रहता, तो हमारे टाइमिंग ऐसे चेंज हो गए ना, और काम इस तरीके से हो गया कि बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर सकता। मैं बोला पता नहीं है कब मिलेगा फोन, अच्छा बात भी करो तो सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बोला मैडम यहाँ समझे पता नहीं आप 10 का एकदम, मैं सुना तो मैं बोला कैसा भी
1: बात कर लूँ
2: आपसे, टाइम निकाल गया। बोला
1: वही ना,
2: आप कैसे?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं भाई, आप मतलब आपको मिस कर रहे हैं हम, इतना अरसा हो गया आपसे बात ही नहीं हुई थी।
2: मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बात नहीं कर सक रहा, एक जमाना हो गया, किसी से भी नहीं, आप बात ही नहीं हुई रेडियो, तो आपके टाइमिंग चेंज हो गए, मुझे पता भी नहीं था, मैं 4:00 पर वेट करूँ, 4:00 में होगा, 4:00 में होगा, 4:00 में नहीं आ रहा
1: है। जी जी फजील आ रहे हैं ना आजकल, जी जी फजील कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने कहा चले आज तो आपसे बनता है कि आपसे बात हो, कोई मसला नहीं है, ड्यूटी वगैरह का चलता रहता है, लेकिन ये कि जो रेगुलर होते हैं ना उनको फिर ये होता है कि यार थोड़े दिनों के बाद ही चलो बात तो हो उनसे।
2: और फिर उसमें भी बिजी तरह फैमिली आई थी आपको पता है शुरू में।
1: हाँ हाँ आपने बताया था।
2: जी गए वो लोग वापस, एग्जाम था बच्ची का।
1: अच्छा
2: चले गए।
1: अच्छा
2: अभी वो देखिए नीट का एग्जाम हुआ है, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम आपको।
1: हाँ हाँ मैंने देखा था। जी जी बिल्कुल मैंने देखा था, बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं सवाल सुना है आज आपने कि खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स।
2: आई थिंक एक शुक्रगुजारी
1: है, वेरी नाइस,
2: मतलब जी क्योंकि जब सेटिस्फेक्शन में रहता है, शुक्रगुजारी रहती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें मिल जाता है वो। और दूसरा शुक्रगुजारी है, और अपने से कम नीचे वालों को लोगे देखो हदीस।
1: हाँ
2: ये दूसरा दिल ले ले आओ,
1: बिल्कुल जी जबरदस्त,
2: अगर करेंगे तो ही फिर जब अपने में सेटिस्फेक्शन आ गया अपन रियलाइज करेंगे भाई वो नियामत तो है अपने पास जो दूसरों के पास नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही, गुड।

0: जबरदस्त,
1: बहुत तीसरा और फिर से
0: तीन इंग्रेडिएंट्स खुशियों के, तीसरा बता दे, बच्चे होंगे, बीवी होगी। सही हो गया, सही हो गया। चलें जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलें जी सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बात कर लेने का, और मुझे लग रहा है आप बिजी भी हैं।
1: नहीं जजाकल्ला खैर, मैं क्या है बोलता हूँ, एक्चुअली रेडियो पे बात करने की आदत छूट गई है मेरे को, मेरा प्रीवियस वाला टोन भी नहीं आ रहा, मैं महसूस कर रहा
0: हूँ इतनी जल्दी, इतनी जल्दी क्या हो गया,
1: पता नहीं क्या हो गया मेरे को भाई, मैं सही हो गया, मैं अपने आप से पूछूं कहीं,
0: हां ये तो मालूम करे,
1: लेवल डाउन हो गया,
0: हां नहीं नहीं वो बेसिकली आपका ड्यूटी चेंज हुई है ना,
1: नहीं वो भी है ना, फिर आपकी भाभी लोग चले गए ना, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है।
0: हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, मिस भी कर रहे होंगे ना अभी फैमिली को। हाँ ये भी है, सही बात है, कोई मसला नहीं है सईद भाई, इंशाल्लाह फिर बात होगी एनर्जी के साथ। हाँ लग नहीं रहे, लोग तो समझे भी नहीं होंगे है कौन, ऐसे ही है। चलो जी कोई मसला नहीं है,
1: उम्मीद करता हूं कि आप घर पे आपके सब खैरियत है ना।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल, और आप भी जब घर पे बात हो तो सब लोगों को मेरी तरफ से जो है पूछिएगा, सलाम कहिएगा, हैप्पी वीकेंड भी कहिएगा, ठीक है, और बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हुई, और ये परेशान वरेशान ना हो, अभी ड्यूटी थोड़ी सी चेंज हुई है ना, इसलिए थोड़ी सी वो फॉर्म में नहीं है, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे तो इंशाल्लाह फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है
1: जी। जजाकल्ला खैर, मैं सलाम बोल दूंगा इंशाल्लाह ताला, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके घर वालों को सब सलाम हमारी तरफ से, सबको सलाम,
0: बिल्कुल जी, बहुत
1: और
0: बहुत शुक्रिया,
1: अल्हम्दुलिल्लाह, और अप्रिशिएट भी करूंगा आपको एक बात रखने से पहले कि माशाल्लाह अभी आप 3 आवर्स का शो सोलो लेके चल रहे हैं, सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह सुभान अल्लाह आपको बहुत अजर दे और एनर्जी दे।
0: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी, जी बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है आपको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत, थैंक यू जी, थैंक यू लाफिज रही जी। तो हमारे साथ थे भाई सैयद भाई काफी अरसे के बाद, और वही होता है कि कोई इतने अरसे से ना आ रहा हो ना तो आप उसको मिस कर रहे होते हैं, आपका दिल चाह रहा होता है भाई खैर खैरियत तो पूछे, तो चले अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भाई से बात हो गई, और अभी इस वक्त चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक पे, वापस आते हैं और फिर और चीजें शेयर करते हैं। नूरी की आवाज़ में मैंने गाना लगा दिया अली हमजा के लिए खास तौर पे। इंजॉय कीजिए।

0: मनवर रे जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया. नूरी बैंड की आवाज में एक वक्त था मेरा इतना फेवरेट बैंड था ना, ये अब भी है. जब भी मुझे अली हमजा के नाम पे हमेशा नूरी याद आ जाता है. खैर जी, इसके साथ ही क्या है सीन, मेरे पास मैसेजेस हैं और काफी देर से मैंने आपके मैसेज पढ़े नहीं है, तो फिर मैं आ जाती हूँ. पहले तो मैसेज शामिल कर लूँ क्योंकि काफी देर हो गई है. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मेरा नाम समीरा है. आई थिंक आई विल नीड थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, शुक्र करना, रिस्पेक्ट करना और बच्चों वाली मासूमियत. हाय समीरा अजीज, समीरा मैंने आज आपका मैसेज देर से पढ़ा है फिर से. बस वो चीज़ें पता है क्या, न्यूज़ भी चल रही होती है, फिर ये दूसरे घंटे के बाद ये होता है, पहले घंटे में बिल्कुल गाने नहीं लगे, तो कुछ तो गाने लगने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मिला के ना फिर कॉल्स भी आ जाती हैं, तो इस वजह से फिर नहीं हो पा रहा होता कि मैसेज बीच में शामिल करूं. बस ये वाला सीन है, नाराज़ नहीं हुईगा, ठीक है. अच्छा जी, इसके साथ शुएब और कहते हैं, मेरे ख्याल में खुश रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों की खुशी में खुश हों, उनकी कामयाबी पर हसद के बजाय दिल से मुबारकबाद दें, और जो मुश्किल में हो उनके साथ खड़े रहें, लोगों की मदद करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें. यकीन करें ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून और खुशी देती है. बिल्कुल परफेक्ट जवाब. अगर आपने खुश रहना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने दूसरों की खुशी में खुश रहना आपको आना चाहिए. जो लोग मतलब जो ना हसद नहीं करते ना, वो तो हमेशा खुश रहते हैं, उनको कोई मसला ही नहीं होता. खैर, और इसके अलावा हमारे साथ वो विद नो नेम वाला जो मैसेज होता है रोज़ाना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, डे ऑफ अशूरा, 10th मुहर्रम और फास्टिंग द डे ऑफ अशूरा, आई होप फ्रॉम अल्लाह. और काफ़ी सा लंबा मैसेज है लेकिन नाम नहीं लिखते तो मुझे पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता. नाम तो लिखा करें, पता तो चले हमें क्या आप हैं कौन. खैर जी, मावश खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, फ्रॉम अल वक्रा, क्या हाल है मोहम्मद तौफीक भाई. और पहले कॉल ले लेते हैं फिर बाकी मैसेजेस फटाफट पढ़ती हूँ आपके. जी अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम मैडम
0: जी, क्या हाल है अली रजा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैडम,
0: ठीक ठाक, सब सेट है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त जबरदस्त. तो आपका तो वीकेंड हो गया होगा अली रजा?
1: ना, अब हमारा वीकेंड 7:30 में होता है.
0: ओए होए होए, क्या बात है, फिर तो हैप्पी वीकेंड. जबरदस्त जबरदस्त, वाह ताला भाई, चले रहिए, अच्छा हो गया.
1: देखो इस बार ये ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने कल सोना
0: है ना, मुझे भी इतनी खुशी हो रही है, आप यकीन नहीं कर सकते. मैं तो आज 2 बजे सो जाऊंगी, मेरा तो पक्का इरादा है 2 बजे सोऊंगी. फिर उसके बाद अभी अच्छी चीज क्या चल रही है ना कि अच्छा खासा टाइम आपको नमाजों में भी मिल जाता है, फिर उठ के भी आप नमाज पढ़ लोगे, तो ये वाला सीन भी है.
1: ये तो है मैडम.
0: अच्छा जी जी, बोले
1: सर, मगरिब इशा टाइम नहीं मिल पाता.
0: टाइम नहीं कर क्या पा क्या कर नहीं पाते
1: टाइम नहीं मिल पाता मैं उस टाइम में कजा हो जाती
0: है. अच्छा अच्छा, काम चल रहा होता है मुसलसल. सही चले. खैर मतलब वो ये मजबूरी है तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन जब जैसे ही टाइम मिला करे बस उस वक्त पढ़ लिया करें.
1: कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, जैसे आज वीकेंड है ना, मतलब स्टार्ट हो गया, समझे वीकेंड स्टार्ट हो गया लोगों का. हमारा तो मेरा 11 बजे के बाद हुआ, लेकिन आज मिल जाता, आज इतना सुकून है, आज थोड़ा
0: आज सुकून है. सही, मेरे साथ अपना गम चल रहा है, मेरा दिमाग ये लगा हुआ है मैं आज 9 मुहर्रम समझ रही थी. और पता नहीं क्या हो गया, मतलब दिन
1: 10 पे चल रहा हूँ.
0: आप 10 पे ही है तो आप सही चल रहे हैं, मैं एक दिन पीछे चल रही, मेरा वक्त पीछे चल रहा था. मुझे मुसलसल ये हैरत हो रही है, मैं पक्का मतलब हम लोगों ने प्लान किया हुआ 10-11, मतलब जुमा हफ्ता आएगा रिलैक्स आराम से चले. खैर हो जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं
1: मैडम, पाकिस्तान से बाहर निकले थोड़ा दूसरी जगह फर्क होता है, थोड़ा बाहर आए पाकिस्तान.
0: हाँ मेरे पास जो ऐप है ना वो सही बात है, लोकेशन या तो शायद पता नहीं कुछ दगा दे गई है, इस दफा कुछ हुआ है, उसने मुझे पाकिस्तान का दिखा रहा है मुसलसल, मैं वही देख देख के समझ रही हूँ कि ओके जी ये सीन है. चले खैर क्या किया जा सकता है, मैं अफसोस ही कर सकती हूँ, इसके अलावा और कुछ और है हो नहीं सकता. खैर 2 दिन ही तो 1 दिन सही, क्या कर सकते हैं,
1: कोई बात नहीं मैडम.
0: और बताएं भाई,
1: चीजें वक्त में कुछ चीजें ना वक्त से पहले निकल जाती हैं.
0: हाँ.
1: आप भी छोड़ दो.
0: सही, खुशियों के 3 इंग्रेडिएंट्स अली रजा, क्या सीख

0: सीखे जिंदगी से आपने?
1: मैडम पहला पहला मैंने सीखा जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनसे बात करके बड़ी खुशी होती है।
0: हाँ।
1: उनके बड़े बड़े नए नए थॉट्स होते हैं और वो बड़े अच्छे सवाल करते हैं।
0: हाँ, बेशक
1: उनके साथ मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है।
0: हाँ।
1: चाहे मेरे घर के बच्चे हो चाहे बाहर के बच्चे हो,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि बच्चों को तो आप बात ना भी करें ना अली, अगर आप कितने ही उदास हो, परेशान हो, कुछ भी हो, किसी बच्चे को आप हंसते हुए देख लेना, आपको खुद ब खुद खुशी मिल जाती है।
1: हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नए नए,
0: न्यू
1: उनको दिखे ना, होना
0: खुशी होती है, बिल्कुल आपका दिल अंदर तक से खुश हो जाता है आपको, मतलब ना एकदम से। आप देखो किसी और का बच्चा भी आप देखो ना चलते फिरते, और वो मतलब छोटा सा हो, कुछ अपनी हरकतें कर रहा हो, तो आपको एकदम से मतलब जो ना आपका आपको बड़ी खुशी, अजीब सी खुशी मिलती है देख के बच्चे को।
1: ऐसे ही मैडम, आजकल तो वीडियो भी मेरे पास बच्चे बच्चों वाली आती
0: क्या गलती की?
1: बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन बस होने चाहिए।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आपकी उम्र ही क्या ली? अब तो अभी 23 साल के तो है।
1: मैं?
0: हाँ।
1: नहीं मैडम, अभी 23 का, अभी 27 का हो गया, बड़ा हो गया मैं।
0: अच्छा, ये अचानक से छह मतलब 3 महीने में कितनी कैसे उम्र बढ़ गई? मेरे जन में क्यों आ रहे 23 के आप?
1: नहीं नहीं मैडम, मैं वैसे 15 साल का हूँ, लेकिन उम्र असल मेरी उम्र 27 साल हो
0: गई। अल्लाह, ओके, ये वाला सीन है।
1: मैं
0: बड़े नहीं होने देते। गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं खुद अभी बहुत छोटी चल रही हूँ इंटरनली।
1: थोड़ा चले मैडम, चलना जरूरी है, नहीं चलेंगे तो फिर मतलब होता है बोल।
0: हाँ नहीं, वैसे पता है क्या, मैंने अभी मैं कल परसों ये बात सुन रही थी कि हम ना मतलब हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है, हमारी स्किन टेक्सचर चेंज हो रहा होता है, सब कुछ चेंज हो रहा होता है, लेकिन हर इंसान को लगता है कि अभी उसका बचपन अभी तो गुजरा है, या फिर मतलब गुजरा ही नहीं है, उसके अंदर कहीं मौजूद है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी रूह की कोई एज नहीं है, हमारी रूह जो है ना स्टिल वही रहती है, यंग की यंग रहती है, छोटी रहती है, मासूम रहती है। तो इसलिए हर इंसान अपने आप को ना यही फर्ज कर रहा होता है कि उसकी तो उम्र बड़ी ही नहीं है, वक्त तो अभी यहीं के यहीं है, क्योंकि रूह तो वही है।
1: मैडम मेरी रूह तो बच्ची है अभी तक, मैं बोलता हूँ तुम बड़े होने की जरूरत है क्या आपको, आप क्या टेंशन?
0: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, बंदा खुश रहता है इससे। है ना,
1: खुश तो मैडम वक्त के साथ होता है, जब बंदे का वक्त अच्छा होता है बंदा खुश रह लेता है, वैसे ही
0: आप खुश रहना शुरू करें, वक्त अच्छा हो जाता है। अली रजा, मेरा थोड़ा सा अलग मानना है।
1: मैं खुश हो गया।
0: अच्छा, चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले बहुत अच्छी बात है, मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी खुशियों के लिए लिटरली मैं हमेशा ना दिल से दुआ करती हूँ। मेरी पता नहीं क्यों आपसे जब से बात हो रही है तो एक होता है कि अल्लाह ताला जो भी सीन है, कोई भी चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला आपके सारे मामला ठीक कर दे, आपको इतनी खुशियाँ दे, और ये इसलिए होता है, मेरा दिल चाहता है आपका और ज़्यादा अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाए, और ये होता है। हम जैसे जैसे ज़िंदगी में अपने मामला हल होते देखते हैं ना, हमें अल्लाह ताला से और ज़्यादा मोहब्बत होती चली जाती है, हमें और ज़्यादा तवक्कुल होता जाता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ आपके लिए, इंशाल्लाह ताला।
1: इंशाल्लाह मैडम, जितना बुरा वक्त मैंने देखा है ना, मैं लेकिन तवक्कुल मेरा बढ़ गया, सब्र मेरा बढ़ गया। अब मतलब मुझे चाहिए था कि मुझे ख्वाहिश थी ना, वो मतलब जैसा होता है ना बंदे को, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो नहीं रहा,
0: अल्लाह ताला पता है हमसे चाहता यही है, अल्लाह हमसे चाहता यही है, इसलिए तो ये चीजें आती हैं हमारी जिंदगी में। अल्लाह हमें यही देखना चाहता है, इतना ही मजबूत देखना चाहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उस जगह पे आप आ गए ना, अब आप देखिएगा हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला,
1: इंशाल्लाह।
0: चलें अली रजा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हैप्पी वीकेंड, आज बोलते हुए भी अच्छा लग रहा है आपको कि आपका भी वीकेंड है।
1: आपको भी
0: बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होती है, जब मौका मिले जरूर कॉल करें, मैं अगर नहीं हो मैसेज करें, मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है?
1: इंशाल्लाह,
0: ख्याल रखिएगा। चले रही, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो अली रजा हमारे साथ थे, और उसके साथ एक कॉलर और हैं, फिर हम सॉन्ग ब्रेक की तरफ चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी है बहन?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। हैप्पी वीकेंड।
2: हैप्पी वीकेंड आपको भी, हैप्पी वीकेंड, कैसी हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: उम्मीद है कि खैरियत से होंगी इंशाल्लाह।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी अल्लाह का शुक्र है नींद उड़ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: वो सुबह वो करारत वाला वाकया सुना मैंने, सुबह
0: ही पता नहीं मतलब क्या हो गया था हमारे बराबर वाले बच्चों को, बराबर कह लें, पीछे की तरफ अपार्टमेंट है, लेकिन मतलब आज तो उन्होंने जो

0: मतलब उनकी छुट्टियां शुरू हुई, उन्होंने कहा कि अब हम सबको मतलब छुट्टी करने में मजबूर कर देंगे।
1: यही थी रहे। अल्लाह करे आज खामोश हो, आप लोगों को सोने दें।
0: हाँ आज सोने दें, वरना फिर मेरा तो कल भी दिल चाह रहा था कि मैं उठूं जाके बोलूं भाई क्या हो गया, मतलब कौन सी खुशियों की सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं थी।
1: जी अली रजा भाई अच्छा हुआ इनकी आवाज सुनी, मैं भी काफी सोच रहा था। आपने एक बार कहा था कि बीमार हैं, तो मैंने हाँ। मैसेज भी किया था कि ये पता नहीं कहाँ गए, शुक्र आ गए हैं।
0: हाँ,
1: और इसी बात से मुझे ना वो डॉक्टर सफियान साहब की एक बात याद आ गई ना, ये हाँ। जो कह रहे हैं कि मैं 15 साल छोटा चल रहा हूँ, तो मुझे यही लगा कि शायद ये टाइम ट्रेवल कर रहे हैं।
0: सही, तो
1: अच्छे इंसान है माशाल्लाह, अल्लाह इनको खुश रखे।
0: आमीन।
1: तो बाहर के टॉपिक पे आते हैं जी आज के।
0: जी जी,
1: टॉपिक पे मैं एक नहीं बल्कि तीन इंग्रेडिएंट्स बताया, वो पूछना चाह रही है ना।
0: जी जी जी,
1: तो मैं बेसिकली चार बताना चाहूंगा।
0: हाय, चार हैं आपके पास?
1: जी
0: okay.
1: जी
0: गुड।
1: तो मैंने ये कुछ सा पहले मैंने एक एक, एक वीडियो देखी थी, उसमें एक मोटिवेशनल वीडियो थी, मैं उसके कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि अमरीका में ना एक आदमी है ब्रायन डायसन, ठीक है, तो ये एक मशहूर मशरूब बनाने वाली कंपनी के जो है वो
0: नाम सुना है मैंने,
1: एनएचसीओ से। जी, और ये मतलब अर्जेंटाइन में पैदा हुए थे और 1959 में जो है ये इस कंपनी से वाबस्ता हुए थे, ठीक है, और 1978 में वो इस कंपनी के सदर बने थे।
0: अच्छा।
1: और 1986 में फिर जाके ये ग्लोबल जो है ग्लोबल लेवल पे उस कंपनी के सीईओ बने थे, जाहिर है नाम मैं नहीं लूंगा। अच्छा, तो इस ओहदे पे ना वो 5 साल रहे।
0: अच्छा,
1: तो उस बंदे ने ना अपनी रिटायरमेंट से कुछ अरसा पहले मतलब 6 सितंबर 1991 में उन्होंने एक खिताब किया था, ठीक है, अपने उस कंपनी के जो वर्कर्स थे और टॉप के जो सीईओ थे उनके साथ उनकी एक तकरीब थी। तो उन्होंने सिर्फ ना 30 सेकंड जो है वो तकरीर की थी, सिर्फ 30 सेकंड, और उस तकरीर को जो है वो पिछली सदी की दूसरी सबसे कामयाब तरीन और मशहूर तरीन तकरीर कहा गया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फर्ज करें, ब्रायन डायसन ने कहा अपनी तकरीर में, कि फर्ज करें आपके हाथ में 5 गेंदे हैं, ठीक है, आप ये गेंदे हवा में उछाल रहे हैं, ठीक है, और आप इन्हें जमीन पे नहीं गिरने दे रहे, आप बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, हम इन गेंदों को मतलब मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, इन 5 गेंदों को मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, इनमें से एक गेंद जॉब की गेंद है, काम की गेंद, दूसरी गेंद हमारी फैमिली है, तीसरी हमारी दोस्तों की गेंद है, और चौथी हमारी सेहत की गेंद है, और 5वीं गेंद आपकी स्पिरिट, आपकी फेथ या आपकी रूह की गेंद है, ठीक है। आप ये गेंदे उछाल रहे हैं और पकड़ रहे हैं, तो हवा में जो वो एक खेल आपने देखा होगा, हवा में गेंदे उछालते हैं लोग, तो आप गेंदे उछाल रहे हैं और फिर पकड़ रहे हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं है कि इन इन में से सिर्फ एक गेंद रबड़ की है, बाकी चारों गेंदे शीशे की है, ठीक है। रबड़ की गेंद जब भी गिरेंगी तो ये उछल कर दोबारा आपकी आपके हाथ में आ जाएगी, बाकी चारों गेंदे जब भी गिरेंगी तो ये वापस नहीं आएंगी, ठीक है, ये टूट कर बिखर जाएंगी, इनमें खराश आ जाएगी, या फिर ये लुढ़क कर आपसे दूर हो जाएगी। डायसन का कहना था कि रबर की गेंद जॉब की गेंद है, और गेंदे उछालने और कैच करने के इस खेल में अगर किसी वक्त भी रबर की ये गेंद गिर जाए तो इसे गिरने दें, क्योंकि उछलकर दोबारा आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि आपकी फैमिली, दोस्तों, सेहत और रूह की गेंद को कभी नीचे ना गिरने दें।
0: सही,
1: क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी गेंद गिर गई तो ये कभी वापस नहीं आती।
0: सही,
1: ये बिखर कर टूट जाएगी,
0: बिखर के टूट।
1: तो ये चार चीजें मेरे हिसाब से, फैमिली, दोस्त, सेहत और आपकी रूह, इन चार चीजों पे फोकस करें। जॉब जरूरी है हमारी लाइफ में, हमें बिल्कुल करनी है, लेकिन अगर तो हमें इन पांच चीजों में

0: कोई एक चीज, चारों चीजों में से एक चीज को स्किप करना है तो वो आपने जॉब को करना है, बाकी चार चारों चीजों को अपने साथ लेके रखना है। तो ये चार पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने थे, बाकी आपने गेम शुरू करना होगा। जज़ाकअल्लाह, आपने मुझे
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू इस्मत अफरीदी आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। बिल्कुल गेम भी शुरू करना है, लेकिन अब उससे पहले जो है ना मैसेज पढ़ने हैं मैंने। अच्छा, आज मैं आपको एक सिंगर का नाम दूंगी और उस पर आपने गाना गाना है। अब देखते हैं कौन आता है, क्योंकि गेम का सिलसिला मुझे लग रहा है कि लोग मेरे साथ खेलते हुए कोई इंजॉय नहीं कर पा रहे वाला सीन है, मुझे अंदाजा हो रहा है। तो खैर, चलें आप कॉल कीजिए, कॉल कर सकते हैं तो कॉल ज़रूर कीजिए। हम आपको एक सिंगर का नाम देंगे और उसके हिसाब से आपने गाना गाना। सिंगर इजी इजी बताऊंगी, मुझे खुद ज़्यादा सिंगर्स के नाम नहीं पता, तो जो फेमस हैं वही मुझे पता है, वही बताऊंगी आपको, ठीक है। सलाम मही मैम, हैप्पी वीकेंड, वेरी नाइस योर शो। मैम वीकेंड पे तो मैं ओनली रेस्ट करूंगा, और मैम मेरा तो मनी, हेल्थ और नेकी की राह। सुरजीत, क्या बात है भाई, सुरजीत का मैसेज है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक आलम। फारूक आलम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? फारूक मेरे कज़न का नाम भी है। अच्छा जी, माशाल्लाह मैडम, यू टॉक अबाउट अल्लाह के मखलूक है। अच्छा, कैट, हाँ अल्लाह की मखलूक है, बस मुझे डर बहुत लगता है, तो ये वाली बात है। बाकी तो अच्छी है, सबको खाना देना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन वो एक होता है ना झमघटा बना के खड़ी हो जाती है, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। खैर जी, गुड मॉर्निंग रविंदर सिंह सिद्धू, यूएई में, यूएई से इन्होंने मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह, क्या हाल चाल है, हैप्पी वीकेंड टू यू। और इंडिया में कल 10, ओके, गुड मॉर्निंग माही मैम, नाइस आवाज़ जावेद भाई की, हैप्पी वीकेंड ऑल फ्रेंड्स फैमिली। माही मैम, जुल्कनंद भाई की आवाज़ कम सुनाई दे रही है, क्या बात है, ओके, आजकल कम सुनाई दे रहे हैं, हाँ ये तो है, हो सकता है मसरूफ़ हों। और हाय कहते हैं जावेद खान, हाय हाय, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। इसके साथ ही जी, मैंने इस गर्मी में, आज 10 है, मैंने इस गर्मी में हिम्मत करके रोज़ा रखा, आपने डरा दिया, ओके। नहीं, शहजादा सलीम भी कह रहे थे ना, कह रहे मैंने जब अफ्तारी की, मैंने कह रहे थे कैसे कर ली, मतलब अभी से कैसे कर ली इन्होंने अफ्तारी, आज तो 9 है, तो मैं ये सोच रही थी उनकी बात के दौरान भी, देखें मतलब क्या चल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, गुड मॉर्निंग मामा जी, कैसे हैं आप, होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। मामा जी, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इंसान को खुश होने के लिए, इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। फॉर मी द फर्स्ट वुड बी अल्लाह की इबादत, जबरदस्त। सेकंड, अपनी बेटी की बातें लगातार सुनते रहना, और दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना, क्या बात है मोहम्मद यूसुफ, और आज ही है, हाँ बिल्कुल जी। और आपकी ऐप में शायद इंडिया पाकिस्तान, अब मुझे लग रहा है वही वाला सीन है। और जनाब सैयद भाई की कॉल सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों बाद आए हैं, तो शायद सब भी भूल गए, फीलिंग लो एज़ वेल, अल्लाह सब खैर करे, हम वही अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं ना, ये वाला सीन है। और इसके साथ ही जसविंदर सिंह सिद्धू कहते हैं, क्या कहते हैं, जसविंदर सिंह नहीं, ये जसविंदर सिंह काला कहते हैं, ये कहते गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू जी। और इसके साथ काला डोरिया, मेरे ख्याल से नहीं, कुड़िया लौड़ दिया, ओके ये सुनना चाहते हैं आप। चले मैं आपके लिए लगाती हूँ, क्या याद करेंगे, वीकेंड है ना आज, तो वीकेंड पे वैसे भी भाई आप कभी कभी ही किसी और की रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपने किसी और की रिक्वेस्ट की है तो फिर तो चलाना बनता ही है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल ये वाला गाना लाइन अप कर देती हूँ, अभी चला देंगे, ठीक है। और जी इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास है, दिस इज मकसूद अली, हैप्पी वीकेंड मैडम जी, हैप्पी वीकेंड आपको भी मकसूद अली। और इसी के साथ बढ़ते हैं भाई इस गाने की तरफ, गाना सुनते हैं, वापस आते हैं, गेम खेलना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कीजिएगा।

0: अच्छा उन्होंने मेंशन किया था कि कुड़ियां लॉर्ड या सुनना है लेकिन अब्रार की आवाज में, तो फिर मैं आपके लिए वही वाला लगाऊंगी. ठीक है मैं अभी बस ढूंढती हूं आपके लिए फिर वो वाला गाना लगाती हूं, क्योंकि जब वो सुनना है तो वही सुनना है और मैंने भी सुनना है बेसिकली साथ में, तो इसलिए वो वाला गाना ढूंढ लेते हैं कुड़ियां लॉर्ड दिया और फिर वो आपके लिए चलाते हैं. खैर जी कॉल आ जाती है तो मैं कॉल भी ले लेती हूं, साथ साथ गेम खिलाते हैं आपको, फिर उसके बाद ये गाना भी लाइन अप में साथ साथ कर दूंगी. चलिए जी हमारे साथ आ गई कॉल. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. मैं वश में, आज क्या नाराज हैं आप?
0: नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, कौन बात कर रहा है, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ?
1: नदीम नजाकत.
0: नदीम नजाकत क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है?
1: मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मैसेज भी किया.
0: अरे नहीं वो पता है क्या, मैसेजेस बहुत सारे हैं आज, अभी तक तो मैं पूरे पढ़ भी नहीं सकी हूँ, तो आपका भी रह गया होगा बेसिकली. हाँ तो वो मैं उधर तक आने ही वाली हूँ थोड़ी देर में, तो वो भी शामिल कर दूंगी. चले आप अच्छे वक्त पे आ गए, तो मैं आपको एक सिंगर का नाम दूंगी और आपने ना गाना गाना है. ठीक है दो तीन इस तरह से सिंगर्स के नाम दूंगी, अगर आपकी
1: मैं तो बहुत बेसुरा हूँ.
0: कोई बात नहीं हम सुन लेंगे.

0: कोई मसला नहीं है, बेसुरों को सुनने में और मजा आता है, गेम को एंजॉय करेंगे वो।
1: कल तो मेरी उनसे बात सरवर भाई से बात हुई थी, और मैंने कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूंगा। हाँ। मैं अभी यही हूँ फिलहाल, आपके आसपास ही हूँ। हाँ। तो मैंने सोचा था पता नहीं सरवर भाई होंगे या नहीं होंगे। हाँ। मुलाकात होगी नहीं होगी आज। हाँ। तो मैं काफी टाइम आपको कॉल कर रहा हूँ लेकिन बिजी, लेकिन मैंने कहा पता नहीं आज क्या बात है। खैर इत्तेफाक से अब लग गया।
0: हाँ, लग गया आप तो फिर कोई गाना सुना ही दे, मुझे लग रहा है बस इस वक्त मिलिए ना तो ये वक्त था कि हम आपकी आवाज सुन सके आज, आप अपनी आवाज का जादू बिखेर सकें बेसिकली दोहा की फिजाओं में। कौन पसंद है आपको?
1: हाँ। मुझे तो सब लोग पसंद है।
0: अच्छा।
1: और बस मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है, मेरी सुना दे। लेकिन लेकिन मैं कभी भी थोड़ा बहुत भी गुनगुनाता हूँ तो बस यही गुनगुनाता हूँ कि उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहली।
0: अच्छा, समझ। लेकिन ये गाया कहाँ है आपने? आप ऐसे ही गुनगुनाते?
1: बस आप अकेले
0: बैठ के आप ऐसे ही गुनगुनाते, ये
1: उंगली पकड़ के तुमने चलने सिखाया था ना दहलीज ऊंची है पारी करा दे।
0: वेरी नाइस।
1: इससे ज्यादा नहीं होगा
0: नदीम भाई, अच्छी खासी आवाज है आपकी, बुरी नहीं, इतने बेसुरे नहीं है आप। चले जी, गुड गुड, जबरदस्त, हैप्पी वीकेंड आपको, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हमारा तो रोजाना हैप्पी वीकेंड से मैं।
0: अच्छा, रोजाना हैप्पी वीकेंड चल रहा है?
1: कोई छुट्टी नहीं होती है, लेकिन हम इनके साथ घूमने निकल जाते हैं, कभी लुटेल तो कभी कहीं कभी कहीं, बस यही हमारा रोज का एंजॉयमेंट है। यानी
0: सही,
1: हम तो काम को भी एंजॉयमेंट के हिसाब से ही करते हैं।
0: अच्छी बात है, नहीं करना भी चाहिए, काम को एंजॉय करना चाहिए आपको, ये बहुत जरूरी है।
1: और मैं आपसे ये पूछा तो सरोज भाई कहाँ हैं अभी, ऑफिस में या नहीं?
0: हाँ, पक्का होंगे, पक्का।
1: तो ये बताइए उनसे मिलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा मुझे?
0: उनसे मिलने के लिए बस सरवर भाई बोलना पड़ेगा, आप आके नहीं, यहाँ पे जो गार्ड होते हैं ना तो उनसे पूछेंगे ना तो वो बता देंगे आपको।
1: ठीक है मैम, मैं तो 2 मिनट में पूछता हूँ।
0: चले ठीक है, आप जरूर मिलने आए। ठीक है, चले जी, थैंक यू भाई।
1: इत्तेफाक से हो सकता है आपसे ही मुलाकात हो सकती है? नहीं
0: अभी, आज थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आज मुझे फॉरन से किसी जगह पे भागना है, तो मैं आपसे वैसे नहीं मिलना चाहती हूँ, यूं के इंशाल्लाह मिलेंगे।
1: ओके, ओके।
0: लेकिन ये कि आज कहीं इमरजेंसी में जाना है।
1: ठीक है सरवर भाई है ना?
0: सरवर भाई होंगे, ऑफिस में होंगे, आप आए इधर मालूम करें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। तो हमारे साथ हमारे कॉलर थे नदीम नजाकत, और उसके साथ ही देखते हैं कि कौन है। जी, हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: आरिफ अंसारी
0: कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: ठीक है।
2: आप बताइए।
0: हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, मेरे साथ कोई गेम क्यों नहीं खेल रहा?
2: अब मैं कैसे बताऊं?
0: कोई जवाब है किसी के पास?
2: मैं क्या बताऊं, सबका अपना अपना मर्जी होगा, सबका अपना गेम प्लान का तरीका आ रहा हूँ।
0: हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, उनको लग रहा है गेम के लिए नहीं बनी है। अच्छा, मुझे पता है, सीरियसली मतलब पहले जब मैं खिलवाया करती थी ना तो उस वक्त मेरा मिजाज अलग होता था, अभी मुझे खुद भी मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार होती हूँ, तो इसलिए भी मेरा ख्याल है लोग इस कन्फ्यूजन समझ गए मेरी, तो वो कह रहे नहीं आपके साथ गेम नहीं खेलना। यही सीन है, तो आप बताएं भाई कोई गाना शाना गाएंगे?
2: गाना तो सुनना
0: पसंद नहीं करते, वही वाले हैं आप। अच्छा, सही है, ऐसा सीन है। चलें फिर, मैं आपसे बोलूंगी ना बोलूं?
2: मैं तो बोलूंगा ना ही बोले
0: ना ही बोलूं। चलें आरिफ, आपने कॉल किया, हैप्पी वीकेंड टू यू। एक और कॉलर आ गए, क्या पता वो गाना चाहते हो, उनसे गवा लेते हैं। ठीक है,
2: मेरा वाला वीकेंड भी आपको ही मुबारक, हम लोग का तो काम है।
0: हाँ, नहीं, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको फ्राइडे मुबारक, हैप्पी फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू। चले जी, हमारे साथ थे आरिफ, और उसके साथ देखते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मोहम्मद रियाजुद्दीन
0: क्या हाल है आपके?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं?
3: मैम, जो आप गेम चला रही हो रैपिड फायर के जैसा चलाइए, फिल्म का नाम बोलते जाइए।
0: हाँ।
3: आदमी इसका

0: का नाम बताएगा।
1: बस वो जो है ना कुछ बन नहीं पा रहा है मेरा, और वो बन इसलिए भी नहीं पा रहा क्योंकि कॉलर्स भी नहीं आ रहे, ये भी एक चक्कर है। तो कॉलर्स आने शुरू हो जाएं तो फिर ज़रूर हम मतलब ना वैसे गेम भी खिलवा लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है लोग गेम में तब इंटरेस्ट नहीं ले रहे मेरे शो में। अच्छा तो फिर आप बताएं क्या कहना चाहेंगे।
0: अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें।
1: बहुत शुक्रिया, अमीन सुमा अमीन जी। और जी। कुछ और कुछ
0: जी? नहीं
1: नहीं बस इतना ही
0: जी।
1: अच्छा चलिए खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स ही पूछ लेती हूँ आपसे, क्योंकि अब तो टाइम इतना बचा ही नहीं है, अब अगर खिलवाना भी शुरू करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। तो बताएं कि खुशियों के तीन इंग्रेडिएंट्स।
0: खुशियाँ, अपने आप से मोहब्बत करो सबसे ज्यादा खुशी होगी।
1: हाँ सही है,
0: इसलिए खुद के लिए इंसान के पास वक्त नहीं रहा मैम। मैं आदमी बचपन से लेके हमेशा दूसरों के लिए जिया है।
1: हाँ।
0: आखिर में अपने आप से मोहब्बत नहीं करे तो फिर फायदा का है?
1: ये तो है, मतलब ख्याल रखें अपना ना
0: जी।
1: सही हो गया। चलें जी रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया, बस हम मैसेजेस पढ़ते हैं फिर, बस अभी टाइम जाने का हो गया है, और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू जी, अल्लाह
0: हाफिज़,
1: हैप्पी वीकेंड। रोहित जी, वीकेंड से ना मुझे हमेशा कोई ना कोई ड्रामा जरूर याद आता है। जंजीरा बहुत अच्छा चल रहा है, कल की तो एपिसोड बहुत ही कमाल थी, जिन लोगों ने देखा है आप नेक्स्ट वीक इसके हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, और थैंक यू जी, मेरे पास ये सैयद का मैसेज है, इसके साथ ही जल्दी जल्दी आ जाती हूँ मैं, मैसेज शामिल कर लेती हूँ। तो आपके मैसेज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, आपने मेरा मैसेज पढ़ा। दूसरी बात ये कि मैं तो आपको काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रही है, नदीम नज़ाकत वाला मैसेज है ये। और अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कतर रहने वाले सभी भाइयों का मन की बात सुनते हैं। लोग तो इंडिया से मन की बात सुनते हैं, आप यहाँ से सुनते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। आज आप लोगों से मिलने को दिल चाह रहे हैं सरवर भाई से, बिल्कुल अल्लाह करे आपकी मुलाकात हो जाए नदीम भाई। और इसके साथ ही सैयद हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं, कादिम हुसैन है भाई, और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, माबिश खान ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, नया हम फोन मुबारक, आपको कैसे पता चला ये अंदर की बात आपको कैसे पता चली। और इसके साथ असमत अफरीदी भाई, जब भी आते हैं तो जरूर कुछ काम की बातें लेकर आते हैं, बहुत खूब। कि फोन का कैसे पता चल गया आपको, ये बताएं ये कहां से खबर लीक हो गई है। और खुशी की सबसे बड़ी वफादार जो है ना, सबसे बड़ी वफादार बीवी, खुशी की सबसे बड़ी बात जो है वो वफादार बीवी है रईस के लिए। रमेश यादव ने कहा है क्या, गुड मॉर्निंग मामा जी, और दोस्ताना मूवी का बने चाहे दुश्मन ये वाला गाना चला दें। आखिर में बोला भाई आपने, अगर आखिर में ना बोला होता ना पहले में चला देती, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा ना बिल्कुल भी, क्या करूं मैं। और इसके साथ गुड मॉर्निंग माही जी, हैप्पी वीकेंड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। किसका मैसेज था, नाम मैंने नहीं पढ़ा इनका, राज, राज थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और इसके साथ मैं एक गाने का खोज करके आपको बताऊंगा संडे को, चलें जी बिल्कुल बिल्कुल। और खुशियों की रेसिपी जो है आरिफ की, वो ये है कि फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली के हिसाब से सब रिलेटिव सारे रिश्ते और मेरे फ्रेंड्स, सेकेंड अच्छा सभी सभी हो गए फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरों को हेल्प करना, हेल्प कैसी भी हो, बड़ा या छोटा जैसा भी, लेकिन जितना हो उतना। और थर्ड पैसा, पैसे को जितना भी इग्नोर करो, पैसा बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, आरिफ का कहना है ये। एमल खान हंस रहे हैं किसी बात पे, अस्सलाम वालेकुम आपी फजील भाई से, फ़ोन का उनसे पता चला है मेरा ख्याल है ओके ठीक है, हाँ जी नया फ़ोन आ गया हमारा। और माही मैम, अभी जो है रवेस पहुंचा हूँ, एंड ऑफ कतर रेडियो बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा शहजादा सलीम वहाँ पहुँच गए तो कतर रेडियो उनको सुनाई नहीं दे रहा। न्यू चेयर भी मुबारक हो, या अल्लाह खान का मैसेज यार, तुम सारी खबरें फजील तुम सबकी सब लीक करके चले गए हो, नई कुर्सियाँ, नई जो है ना नया मोबाइल आके है, सब कुछ पता है लोगों को। अच्छा जी, ऐसा नहीं है भाई, आप बहुत अच्छे गेम खिला रही हैं, शायद जो कॉलर्स यूजली पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों की शिफ्ट चेंज हो गई होगी, पता नहीं क्या सीन है। मतलब मुझे तो कुछ ना, मतलब वो वाला

दिला दे, तो ये इसी वजह से आया है। तो ये वाली जो है ना क्रेडिट मुझे जाता है फजीन, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। अस्सलाम वालेकुम आवाज में है ना, मुझे पता है आपके साथ लोग गेम क्यों नहीं खेलना चाहते, बताएं मुझे कमालुद्दीन शेख हिरास की बात बता दें ताकि मुझे पता चल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ इस पे। और सैयद खादिम भाई ने अपनी जो है तस्वीर भेज दी है, बहुत शुक्रिया खादिम भाई। चले जी इसके साथ ही मेरा वक्त हो गया है जाने का, इंशाल्लाह ताला संडे को आपसे मुलाकात होगी। कुड़ियां लौट दियां ओरिजिनल वाला मैं आपके लिए चलाने जा रही हूं, तो ये इंजॉय कीजिएगा। साथ ही इंशाल्लाह ताला आपसे संडे को मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। सीरियसली सुबह जब मैं आई थी ना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा दिन कैसे गुजरेगा, बिल्कुल मैं मरा हुआ फील कर रही थी अपने आप को फ़ोन की तरह पुराने वाले। लेकिन ये होता है कि यहाँ पाओ माइक खुलता है, थोड़ी देर के बाद ना एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, और उसके बाद अब मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे 10 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की कॉल्स का, आप लोगों के मैसेजेस का, जिसकी वजह से इतना हौसला बढ़ जाता है, एनर्जी भी आप ही लोगों की वजह से मिलती है, बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए जी हैप्पी वीकेंड, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय, हैप्पी वीकेंड।

0: करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेते हैं लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं और आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हिल्म या बुर्दबारी जिंदगी में सबसे मुश्किल इम्तिहान है गुस्से और इश्तियाल के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखना इस्लाम हमें सिखाता है कि असल ताकत लड़ाई या गुस्से के इजहार में नहीं बल्कि हिल्म और बुर्दबारी में है यही वो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल क़ैस से फरमाया तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है अल हिल्म वल अनात हिल्म और बुर्दबारी दोस्तों हिल्म वो वस्फ है जिसे इंसान जालिम को भी माफ कर देता है और रद्द अमल में जल्दबाजी नहीं करता और अल अनात यानी सोच समझ कर सब्र और सुकून के साथ फैसला करना इसीलिए हमें चाहिए कि गुस्से में फौरी रद्द अमल देने के बजाय सब्र और खामोशी इख्तियार करें दूसरों के कसूर पर माफी और दरगुजर का मामला करें यह अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है इसी तरह हर फैसले में ठहराव और सोच विचार को अपनाएं ताकि पछतावे से बचा जा सके तो समीन ये थी आज की सुन्नत हिल्म और बुर्दबारी आइए हम भी अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं उससे पर काबू माफी का जज्बा और फैसलों में बुर्दबारी यही वो अखलाक हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और बंदे को इज्जत बख्शते हैं समीन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मा सलामा
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out. यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे सो नो फोमो एवर अगेन सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
4: दोस्तों आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं कीप क्रॉसिंग क्लियर ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है ट्रैमवे लुक बोथ वेज ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है ट्रैम ओनली लेन ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी

0: के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे फेलिक्स सैंचेस के बारे में। याद होगा ये नाम फेलिक्स सैंचेस, चार साल पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कई मरतबा आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा भी होगा। फेलिक्स सैंचेस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे कामयाब कोचेज में से एक तस्लीम किए जाते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पैदा होने वाले सैंचेस ने अपना कोचिंग करियर एफसी बार्सिलोना की यूथ एकेडमी ला मासिया से शुरू किया। साल 2006 में वो कतर आए और एस्पायर एकेडमी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जहां उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत पर काम किया। बताता चलूं कि इसी यूथ प्रोग्राम में काम करते वक्त उन्होंने आज के सुपरस्टार खिलाड़ी अलमोइज़ अली, अकरम अफीफ, सुल्तान ब्रेक, तारिक सलमान जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। फेलिक्स सैंचेज़ ने कतर के अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 23 टीमों को कोच किया और 2014 में कतर को एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप जितवाई। दैट वाज द बेसिकली अ गेम चेंजर फॉर कतरी फुटबॉल। इस कामयाबी ने उन्हें सीनियर नेशनल टीम तक पहुंचाया और 2017 में वो कतर के हेड कोच बन गए। उनकी क्यादत में कतर ने 2019 का एएफसी एशियन कप जीती, जो मुल्क की फुटबॉल तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मानी जाती है। कतर ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार फुटबॉल खेला और एशिया की ताकतवर टीम्स को शिकस्त दी। सैंचेस ने कतर को उनके फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप यानी कतर 2022 में भी गाइड किया। अगरचे टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन कतर को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने और एक मुकाबला करने वाली टीम बनाने में उनका किरदार बुनियादी रहा। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस उन्हें कतर फुटबॉल के जदीद दौर का आर्किटेक्ट करार देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे सेहतमंद वजन बरकरार रखने के बारे में। बहुत से अफराद वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान और मुश्किल आदत अपनाकर हम और आप सेहतमंद वजन को बरकरार रख सकते हैं। सेहतमंद वजन सिर्फ अच्छी शख्सियत ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। बैलेंस डाइट अपनाइए, क्योंकि सेहतमंद वजन बरकरार रखने के लिए मतवाजन गिजा बहुत जरूरी है। अपनी रोजाना की खुराक में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और प्रोटीन वाली गिजाएं शामिल कीजिए। बहुत ज्यादा चिकनाई, बहुत ज्यादा नमक और जो चीनी वाली अशियाएं उन्हें कम कीजिए। खाने की मकदार पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा

0: खाना वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। छोटी प्लेट इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बहुत पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए, और इस तरह जो अपना वजन है वो बरकरार रखने में आपको वो मदद दे सकते हैं। जिस्म जितना ज़्यादा एक्टिव होगा इतनी ही कैलोरीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। पानी वो तो ज़रूर पीना है। पानी ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है बल्कि गैर ज़रूरी भूख को भी कम करने में मदद देता है। अच्छी नींद लीजिए। नाकाफ़ी नींद जिस्म के भूख से जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें मुतासिर करती है, जिससे ज़्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेंटल हेल्थ वो बहुत अहम है। इसी तरह से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है बाज़ औक़ात जज्बाती खाने का भी बायस बनते हैं। तो फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन जो है या इबादत जो है वो आप ज़रूर कीजिए, और अपने वज़न पर नज़र रखिए। हफ्ते में एक बार अपना वज़न ज़रूर चेक कीजिए, और अगर बढ़ने लगे तो फौरन अपनी हिसा और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जायज़ा लीजिए। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं कि नाश्ता रोज़ाना ज़रूर कीजिए, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना तरजीह दें, लंबे वक्त तक बैठने से गुरेज कीजिए, रोज़ाना कुछ वक्त वॉक के लिए ज़रूर निकालिए। तो लिसनर्स, सेहतमंद वजन बरकरार रखना किसी मुख्तसर मुद्दत की डाइट का नतीजा नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज ज़िंदगी है। छोटी लेकिन मुस्तकिल मुस्बत आदत आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक सेहतमंद रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल है वो अपना लीजिए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

टूटी चीजें जमा होती रहती हैं, थकन, परेशानी, दबाव, माली मसाइल, घर के इख्तलाफात, एहसास नजरअंदाजी, ये सब इंसान के अंदर खामोशी से जमा होते रहते हैं। फिर एक छोटी सी बात होती है और इंसान फट पड़ता है। इसीलिए कभी कभी मसला सिर्फ वो एक बात नहीं होती जिस पर गुस्सा आया हो, असल मसला वो बोझ होता है जो इंसान अंदर उठाए हुए होता है। इस्लाम इस कैफियत को समझता है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ गुस्सा ना करो नहीं फरमाया, बल्कि गुस्सा कम करने के तरीके भी सिखाए। एक रिवायत में आता है कि जब किसी को गुस्सा आए तो अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, और अगर फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाए। सोचिए ये कितनी खूबसूरत नफसियाती रहनुमाई है। अपने जिस्म की हालत बदल दो ताकि दिल की कैफियत भी बदलने लगे। एक और तालीम ये दी गई कि गुस्से के वक्त वजू कर लिया जाए, क्योंकि गुस्सा आग की तरह है और पानी आग को ठंडा करता है। ये सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जज्बात को संभालने का तरीका भी है। आजकल लोग गुस्से में फौरन जवाब देते हैं, मैसेज आया फौरन आगे से रिप्लाई, कोई बात बुरी लगी फौरन से आवाज को ऊंचा कर लिया, कोई इख्तलाफ हुआ फौरन हमें मिलना ही नहीं है, ताल्लुक खत्म। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें रुकना सिखाती है, रिएक्शन से पहले पॉज लेना सिखाती है, अल्फाज से पहले सोच और गुस्से से पहले अल्लाह को याद करना। अक्सर लोग बाद में यही कहते हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस गुस्से में था, मैंने दिल दुखाने के लिए थोड़ी कहा था। लेकिन अल्फाज कभी वापस नहीं आते, कुछ जुमले इंसान के दिल पर ऐसे निशान छोड़ देते हैं कि वो कभी भी हल्के नहीं होते, खास तौर पे घरों के अंदर, क्योंकि घर वो जगह होनी चाहिए जहां इंसान खुद को महफूज महसूस करे। अगर घर में हर वक्त गुस्सा, चीखना, तंज ये सख्त लहजा हो तो आहिस्ता आहिस्ता घर सिर्फ एक इमारत रह जाता है, सुकून नहीं रहता। बच्चे खास तौर पे गुस्से से बहुत मुतासर होते हैं। अगर बच्चा हर रोज वालिदैन को गुस्से में देखे, चीखते हुए सुने, तो वो यही सीखता है कि मसला हल करने का तरीका गुस्सा है। फिर वही बच्चा स्कूल में दोस्तों के साथ और बाद में अपनी जिंदगी में यही अंदाज अपनाता है। इसी तरह बाज लोग अपने गुस्से को सच बोलने का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं मैं भाई सीधी बात करता हूँ, लेकिन सच अगर सख्ती, बेइज्जती और तकलीफ के साथ बोला जाए तो वो कभी इस्लाह नहीं करता, दिल तोड़ देता है। इस्लाम हमें हक बात के साथ अच्छा अंदाज भी सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बदतमीजी की, सख्त लहजा अपनाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नरमी से जवाब देते। यही वजह है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर बदलने लगते। गुस्सा वक्ती तौर पे इंसान को ताकतवर महसूस करा सकता है, लेकिन उसके बाद अक्सर शर्मिंदगी होती है, कभी खामोश पछतावा, कभी रोना धोना, कभी ताल्लुकात में दूरी, और कभी बरसों की नाराजगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान खुद को बदल सकता है। अगर आज किसी को महसूस होता है कि वो जल्द गुस्सा करता है, आवाज ऊंची हो जाती है या बात करते हुए तकलीफ दे देता है, तो यह एहसास ही तब्दीली की पहली सीढ़ी हो सकती है। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी पहचान ले वो उसे बेहतर भी कर सकता है। और याद रखिए, नरम होना कमजोर होना नहीं, खामोश रह जाना हार जाना नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी एक टूटा हुआ रिश्ता बचा लेती है।

अपने आप से नाराज रहता है और फिर अंदर की यही सख्ती दूसरों के साथ रवैये में भी आ जाती है। इसीलिए गुस्सा कम करने के लिए सिर्फ जबान नहीं, दिल को भी सुकून देना जरूरी है। एक और अहम बात, जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो दिल की बेचैनी बढ़ने लगती है। नमाज में सुकून कम हो जाए, दुआ कम हो जाए, दिल हर वक्त दुनिया की फिक्र में लगा रहे तो इंसान के अंदर सब्र भी कम होने लगता है। जिक्र, दुआ, कुरान और खामोशी के चंद लम्हे इंसान के दिल को नरम करते हैं, क्योंकि सुकून सिर्फ हालात से नहीं, सुकून दिल के ताल्लुक से आता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन ये दुरुस्त नहीं, इंसान बदल सकता है। अगर गुस्सा सीखी हुई आदत बन सकता है तो सब्र भी सीखी हुई आदत बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, पहले इंसान सिर्फ बाद में पछताता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्से के दौरान खुद को पहचानने लगता है, फिर कभी कभी खुद को रोक लेता है और एक वक्त आता है जब वो पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून हो जाता है। ये सफर मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है, और शायद गुस्से को कंट्रोल करने का पहला कदम यही है कि इंसान अपने दिल से पूछे, मैं असल में किस बात से थका हुआ हूं, मुझे किस चीज ने अंदर से बेचैन किया हुआ है, क्या मुझे सिर्फ खामोशी नहीं समझने वाले की भी जरूरत है। क्योंकि बाज़ औक़ात गुस्से के पीछे सिर्फ एक तकलीफ होती है जो कभी अल्फाज में बयान ही नहीं हो पाती। गुस्सा सिर्फ एक जज्बा नहीं, ये एक ऐसी कैफियत है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो इंसान के अल्फाज, रवैये, फैसले और ताल्लुकात सबको मुतासर करती। बाज़ औक़ात इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उसके एक जुमले, एक चीख पुकार और एक सख्त किस्म के रद्द अमल ने सामने वाले के दिल में कितनी गहरी चोट लगा दी। लोग आगे से अक्सर ये कह देते हैं कि मैं तो बस गुस्से में था, लेकिन मसला ये है कि गुस्सा खत्म हो जाता है, अल्फाज नहीं भूले जाते। बाज़ जुमले इंसान के दिल में सालों तक रह जाते हैं, खासतौर पे वो अल्फाज जो अपने लोगों से सुनने को मिले। एक बच्चा अगर बार बार सुने ना कि तुमसे कुछ नहीं होना, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम भाई मेरी जिंदगी का मसला बन गए हो, तो वो सिर्फ उस लम्हे नहीं रोता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने बारे में ये यकीन होने लगता है कि हाँ मैं ऐसे ही हूं। इसी तरह एक बीवी अगर हर इख्तलाफ में सख्त लहजा, तंज या चीख सुनने लगे तो वो खामोश तो हो जाती है मगर अंदर से टूटने लगती है, दूर होने लगती है। एक शौहर अगर हर वक्त तनकीद और गुस्सा महसूस करे तो घर में कम बोलने लगता है। बाज रिश्ते टूटते नहीं है मगर उनमें गर्मजोशी, मोहब्बत और सुकून खत्म हो जाता है, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। कई घरों में लोग साथ रहते हैं मगर दिलों में फासले होते हैं, कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता, हर शख्स डरता है कि कहीं कोई बात नाराजगी का सबब ना बन जाए। ऐसे घर खामोश तो हो जाते हैं लेकिन पुरसुकून नहीं होते। गुस्से का असर सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं रहता, ये घर के माहौल पर भी असर डालता है। अगर एक घर में हर वक्त चीखना, गुस्सा, तल्ख जुमले और सख्त जुमले हों तो बच्चे भी वो ही माहौल अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बस बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, पास चटपोक, पास खामोश और पास खुद गुस्से वाले बन जाते हैं। बच्चा सिर्फ नसीहत से नहीं सीखता, वो माहौल से सीखता है। अगर वो अपने वालदेन को हर मसले पर चीखते हुए देखेगा तो वो यही समझेगा कि गुस्सा नॉर्मल है। फिर वो स्कूल में दोस्तों के साथ, बाद में अपनी

जिंदगी में भी वही अंदाज अपनाने लगेगा। बाज़ औक़ात गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद इंसान को खुद से नुकसान पहुंचाता है। गुस्से के बाद दिल भारी हो जाता है, नींद नहीं आती, पछतावा रहता है और इंसान खुद से भी नाराज रहने लगता है। कई लोग बाद में छुप कर रोते भी हैं, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ज्यादती की, मगर मसला यह है कि आप अल्फाज वापस नहीं आ सकते। कभी कभी एक लम्हे का गुस्सा ऐसा फैसला करवा देता है जिसका असर पूरी जिंदगी पे पड़ता है। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, दोस्तियां टूट जाती हैं, खानदान बिखर जाते हैं और बाद में इंसान सोचता रह जाता है कि अगर उस वक्त में खामोश रह जाता तो शायद सब ठीक रहता। इसीलिए इस्लाम गुस्से के वक्त खामोशी और सब्र की तालीम देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ये नहीं था कि हर बात पर सख्ती की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की गलतियों पर भी हिकमत, नरमी और बर्दाश्त से काम लेते थे, क्योंकि इंसान को बदलने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, मोहब्बत और एहतराम भी जरूरी होते हैं। आजकल एक और मसला ये भी है कि लोग गुस्से को ईमानदारी या सीधी बात का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं, मैं दिल की बात मुंह पर कहता हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं कि खामोश रहूं। लेकिन हर सच हर अंदाज में नहीं बोला जाता। अगर सच किसी को जलील करते तो वो इस्लाह नहीं रहती, तकलीफ बन जाती। इस्लाम अदब सिखाता है, लहजा सिखाता है, वक्त सिखाता है और ये सिखाता है कि बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बेहतर जवाब होती है। बहुत से लोग गुस्से में अपने करीबी लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो अपने हैं, मान जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अपने लोगों के दिल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, उन्हें दूसरों की नहीं अपनों की बात ज्यादा चुभती है। कभी कभी सिर्फ एक नरम जुमला बहुत बड़ी लड़ाई रोक सकता है, जैसे ठीक है हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं अभी गुस्से में हूं, अभी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं लेकिन थोड़ा वक्त। ये जुमले कमजोरी नहीं, समझदारी। और याद रखिए, बाज लोग गुस्सा भूल जाते हैं लेकिन एहसास नहीं भूलते। उन्हें याद रहता है कि उस दिन उन्हें कैसा महसूस करवाया गया था। इसीलिए अगर हम वाकई अपने घरों में सुकून चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने अल्फाज नहीं, अपना लहजा भी बदलना होगा। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत ये भी है कि हम गुस्से के वक्त उसके दिल का कितना ख्याल रखते हैं। अब आ जाते हैं वो वक्त जहाँ पे हमने ये समझना है कि हमने इस हदीस को कैसे अपनी हैबिट बनाना है। तो सबसे पहले तो गुस्से के लम्हे में खुद को संभालना। गुस्सा अक्सर चंद सेकंड में आता है, लेकिन इन्हीं चंद सेकंड में इंसान या तो अपना ताल्लुक बचा लेता है या उसे नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए आपने ये चंद लम्हे खामोश रहना है, अपने अल्फाज को रोक लेना है, फौरन जवाब नहीं देना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को खामोश रहने की तालीम दी, क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर वो बोल देता है जो हकीकत में नहीं कहना चाहिए। इसलिए अब की दफा जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा सुकून से एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए, अपनी जगह बदल लीजिए, वजू कर लें, खड़े हैं कमरे में तो कहीं बाहर चले जाएं, चंद मिनट के लिए गहरी सांस लें और दिल में आहिस्ता से आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लें। ये छोटे अमल इंसान के दिल की रफ्तार को बदल देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें चाहिए कि अगर वो खड़े हुए हैं बैठ जाएं, बैठे हैं लेट जाएं, थोड़ी देर सुकून से कोई बात ना करें, फिर सोचें क्या वो बात वाकई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर इतना गुस्सा बनता भी है। फिर आपको शायद एहसास हो कि जिस बात के ऊपर मैं बहुत ज्यादा एकदम से गुस्से से फटने वाला था, वो बात तो इतनी बड़ी थी ही नहीं कि उसे इतना बढ़ाया जाए। अब वक्त आ गया है इस हफ्ते के चैलेंज का और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस हफ्ते उन बातों पर जिन पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता हो, जैसे आपको गुस्सा

0: महसूस होने लगे अपने माइंड को डाइवर्ट करें, पानी पी लें, घर से बाहर निकल जाएं, ऑफिस में है तो ऑफिस वालों से उस वक्त बात करने से इज्तनाब करें, थोड़ी देर कह दीजिए कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। इस तरह से होगा ये कि आपकी वो बात जो बहस थी या कुछ भी जो एक बहुत बड़ी लड़ाई बन सकती थी, आपके ताल्लुक को खत्म कर सकती थी, वहां आपका ये थोड़ी देर खामोश रहना आपको कमजोर नहीं साबित करेगा बल्कि आपके रिश्ते को बचा लेगा। और याद रखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपको बताई थी, ताकतवर इंसान वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर इंसान तो वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखता है। चलिस्टर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड, में उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आप भी अगर गुस्से में उबतला रहते हैं तो अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश जरूर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस गुस्से की आदत से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे, इंशाल्लाह। आमीन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक एक और अच्छी सी हदीस के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय-बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, feeling of missing out, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 se. Only on FM 107. Dil se, desi.
6: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
7: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
8: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: Hello, hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: की घड़ी में 11:02
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: हाँ जी वेलकम अहलन वसहलन, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो दिन आ गया भाई। यौमुल खमीस आ गया, थर्सडे आ गया और वीकेंड आ गया आप सभी के लिए खुश खबरियां लेकर के। ये मेरी दुआ है, आज खासम खास दिन भी है और उसी दिन के हवाले से दुआएं तो करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं भाई। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ताला अपना दिन अच्छा शुरू किया होगा और अभी तक का सफ़र बहुत खूबसूरत गुजारा होगा और आगे का सफ़र भी इंशाल्लाह ताला अच्छा गुजरे, पूरा जो दिन है अच्छा गुजरे और आगे आप लोग का वीकेंड भी अच्छा चले, यही दुआ है और यही भाई दिल से चाहते भी हैं। तो जनाब सन एंड साउंड में सरवर मिर्जा इस वक्त आपके साथ, जहां सन तो अपने जोरों शोर पर है बट साउंड जो है वो आप लोगों की गूंजती है आपके इस अपने एपिसोड में और अपने शो में। डेली तो एपिसोड हम लेकर आते ही आते हैं, 11 से 1 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है, जहां पर हम बातचीत करेंगे, अपडेट्स शेयर करेंगे और साथों साथ जानेंगे कि क्या है भाई आज और कल खास हमारे करने के लिए। और वो कैसे, वो जब होगा जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे और अपने जितने एहसास हैं मेरे साथ शेयर कीजिए, अपने तासरात मेरे साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल मौजू भी है आज, उस हवाले से भी बात करेंगे, प्लस ये कि आप ट्रैफिक वगैरह के हवाले से भी अपडेट कर सकते हैं। खासम खास दिन आज अगर आपका कोई है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, लेट्स सेलिब्रेट टूगेदर। और हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, बहुत आसान से दो तरीके हैं, आप हमें 666-22-107 पे मैसेज भेज सकते हैं, 666-22-107 पे, और वहीं आप कॉल करके भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 443-443-77। तो जनाब यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, हम वो भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ ये बता दूं कि चलिए शुरुआत कर देते हैं, आज खास दिन क्या है और आज का मौजू खास दिन के हवाले से ही क्या है ये आपको बता देता हूँ मैं।
2: इंटरनेशनल डे टुडे,
0: तो साहब वो भी खासम खास दिन है, आज इंटरनेशनल डे है ऑफ द सी फेयरर, जो हर साल 25 जून को मनाया जाता है। और इस दिन का मकसद ये है कि भाई दुनिया भर के समंदरी मुलाजमीन जो हैं या सी फेयरर जिनको कहा जाता है, इनकी खिदमात को तस्लीम करना है आज के दिन का मकसद और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है, जाहिर बात है। और ये अफराद जो हैं ये ग्लोबल तिजारत, माल की नकलो हमल और समंदरी निज़ाम को चलाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। ये एक ऐसा कहना चाहिए सेक्टर है, एक ऐसी चीज़ है जो हम जो लैंड पे लेने वाले लोग हैं ज़्यादातर उनकी खिदमात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो सही बात नहीं है भाई। अगर ये समंदरी माहौल में काम करने वाले जो लोग हैं ये ना हो तो हमारी जो ग़िज़ा है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो जितनी भी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी हमसे दूर हो जाती हैं। तो जनाब ये खासम खास आज दिन, आज 25 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयरर मनाया जा रहा है और ये दिन उन लाखों समंदरी मुलाजमीन या सी फेयरर या जो काम करने वाले हैं उनके नाम है, जो समंदरों में सफ़र करते हुए दुनिया भर की तिजारत और जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी निज़ाम है उसको कायम करते हैं। सी फेयरर्स न सिर्फ माल की नकलो हमल को कहना चाहिए मुमकिन बनाते हैं, बल्कि दुनिया के मुमालिक को आपस में जोड़ने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। उसके पीछे क्या वजह है वो भी बताता हूँ, क्योंकि भाई देखिए कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है ना। तो जब आप दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं, दूसरी चीज़ें समझते हैं, वो चीज़ें वहाँ से लेकर अपनों तक पहुँचाते हैं, तो ये एक साइकिल बन जाती है, ये एक चेन बन जाती है। तो आज के दिन हम उनकी मेहनत, हिम्मत और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और उनके जितने भी हकूक हैं, तहफ़ और कहना चाहिए जितनी भी अहमियत भरी चीज़ें हैं उसको उजागर करने की कोशिश करी जाती है आज के खासम खास दिन में। तो भाई उन सबको सलाम है पहले तो, और इसी सिलसिले से मैंने सोचा कि आज का मुद्दा जो है, मौजू जो है वो भी रख देते हैं। ज़ाहिर है आज सबकी मशगूलियत अलग होगी, जुमेरात है और सब इंशाल्लाह ताला रोजे से भी होंगे, क्योंकि आज खास मखास दिन हम सभी

0: के लिए है। अगर हम बात करें तो आशूरा की बहुत ही खास दिन है हम सभी के लिए, और जितनी भी आप दुआएं करते हैं आज, जितनी भी इबादत करें उसमें नाचीज को भी याद रखिए, अपनों को याद रखिए, लोगों को माफ कीजिए, सदका व खैरात कीजिए, अच्छे अमल करने की कोशिश कीजिए। यही मेरी दुआ है, गुजारिश भी है, और अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो भाई आज मैंने यही सोचा कि सी फेयर के हवाले से हल्की फुल्की बातचीत हो जाए कि इंटरनेशनल सी डे के दिन क्या आप बताना चाहते हैं कि आपने कभी समुद्री सफर किया है? क्या आपने समंदर से ही नहीं, तालाब से जुड़ी यादें, अपनी लेक से जुड़ी यादें, अपने जितने भी घर के हवाले से या नॉर्मल मोहल्ले के हवाले से या जगह के हवाले से बात करूं तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और क्या आपने कभी फिशिंग वगैरह की है? क्या आपने कभी मछली पकड़ी है, शिकार किया है? तो ये सारी चीजें आज हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, सफर के हवाले से भी, पानी के सफर के हवाले से भी, बीच वगैरह के हवाले से भी, पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज के हवाले से, ये सारी चीजें हम अपने मौजू में आज शेयर कर सकते हैं। और फिशिंग के हवाले से भी, शिकार के हवाले से भी, जैसे मैंने बताया। और क्या आपको सी फूड पसंद है या नहीं, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जिनको भाई घिन आती है, घिनियाते हैं, बट क्यों आई डोंट नो, आई रियली लव सी फूड। खैर अपनी चॉइस है, और जाहिर बात है कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, कुछ खुशबू बास या उनके मुतालिक कहें तो बू उनको आती है मछली से और इससे जुड़ी बाकी चीजों से भी। तो ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको सी फूड पसंद है या नहीं, और पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, फिशिंग से मुतालिक, शिकार से मुतालिक, सी फेयर से मुतालिक, क्या आपने कभी पानी का सफर किया है? तो इसके ऊपर आज हम पानी में रहकर दिन जो है वो गुजारने वाले हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पे मैसेज भेजकर, और वहीं आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पे। तो आइए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपके कुछ मैसेजेस से। और यार नया मोबाइल आ गया असल में हमारे स्टूडियो में, तो हमें बहुत बहुत मुबारक हो, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो ठीक है। खैर आजकल तो सारी चीजें एक सी ही होती हैं। ओके यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं सलाहुद्दीन, और कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ चाहते हैं। तो बिल्कुल सलाउद्दीन भाई, सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आपको इस जुमान में रखे, और जितनी भी कामयाबी है आपको जल्द से जल्द मिले, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो भी आप तक पहुंचे इंशाल्लाह ताला। तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, अलवाकरा से तौफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम तौफीक भाई, कहाँ थे आप अभी तक, और काफी दिनों से आप गायब भी चल रहे हैं। ओके मुबीन भाई यार लॉन्ग टाइम यार, कहाँ थे भाई? और खूब सारे मैसेज आएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पर मैं इंतजार नहीं करना चाहता, कोई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अभी, उनसे भी बात करते हैं। आइए फिर मैसेजेस का सिलसिला तो जारी रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अहलन व सहलन, आज साहब पहली कॉल पे तशरीफ लाए सैयद खादिम हुसैन साहब, अहलन व सहलन, कैसे हैं खादिम भाई और कैसा गुजर रहा है दिन?
1: बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर भाई कैसे हैं आप?
0: मैं भी ठीक हूं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: सबसे पहले तो दिल की अता की गहराइयों से आपको मोबाइल मुबारक।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वैसे ये तो हम सबका मोबाइल है।
0: ये बात सही,
1: लेकिन ये है कि अभी आपके हाथ में है तो अभी आप
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या हुआ, पिछला मोबाइल जो है वो टूट गया और ऐसा क्रैक हुआ कि उसकी स्क्रीन इतनी क्रैक हो गई, तो इसलिए थोड़े मैसेज वगैरह पढ़ने में मुश्किल भी आती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी मैनेजमेंट ने हमारी बात सुनी और उसको रिप्लेस किया, वो भी नए मोबाइल से। ये है मामला आज,
1: ये हमारे ऊपर एहसान किया मैनेजमेंट।
0: भाई वाह।
1: नहीं सच में कभी कभी ऐसा होता है ना जी, कि चार्ज खत्म हो गया वेंटिलेटर पे था, बिल्कुल वो बेचारा आखिरी सांस, बिल्कुल
0: अल्लाह हाफिज।
1: हर वक्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन।
0: खादिम भाई आज खासम खास दिन, आज आशूरा भी है, आज जुमेरात भी है, और जैसा कि मैंने बताया कि आज समंदरी जिंदगी में जितने अफराद हैं उनके लिए भी खास दिन है, तो काफी दिन में कहना चाहिए खुशखबरियां हैं, तो इसके हवाले से क्या कहना है आपका और अपनी

0: बात शेयर करिएगा कि आपको सी फूड पसंद है, क्या आपने समंदरी सफर किया है, और क्या कभी आपने फिशिंग वगैरह की है, मछली का शिकार वगैरह किया है, तो ये सारी चीजें आज बतानी पड़ेंगी आपको।
1: पहले तो ये है कि समंदरी सफर मैंने बिल्कुल नहीं किया, मुझे बहुत डर लगता था और मैं यही मतलब मैं मुझे कई बार भाई ने बोला भी था कि चलो चलते हैं लांच पे ऐसे घुमा के, लेकिन वो अपने जो हमारे जो कफील थे वो उसके साथ घूमते थे, ऐसे घूमने के लिए जाते थे, लेकिन मैं मुझे बहुत डर लगता था। मैं बोला नहीं, मैं तो ऊपर से जहाज से भी देखूं तो भी मुझे डर लगता है।
0: बहरहाल वो ये एक्चुअली एक तरीके का फोबिया होता है, मैं इस पे भी आना चाह रहा था कि एक तरीके का फोबिया होता है, कई फोबिया होते हैं, फोबिया एक टर्म है कि आपको किस चीज से क्या परेशानी होती है। कुछ लोगों को जैसे ऊंचाई का होता है, कुछ लोगों को पानी का होता है, कुछ लोगों को इवन कीड़ों जानवरों से तक होता है, तो ये फोबिया है, इसका भी एक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ कि पानी से जो डर लगता है उसकी एक टर्म है, मैं भूल रहा हूँ, देख के बताऊंगा, तो ये भी एक तरीके का फोबिया है।
1: लेकिन सरोवर भाई इधर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहाने में तैरने में बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता।
0: अच्छा, तो फिर क्या परेशानी है?
1: सी लाइन में जाता हूँ ना, सी लाइन में जाता हूँ मैं बीच में, तो मैं बहुत आगे तक जाता हूँ, लोग अक्सर उधर जो साथी होते हैं वो मना करते हैं, बोलते आगे नहीं जाओ, मैं बोले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर ना आते।
0: वाह वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें बताऊं कि मुझे इसमें डर लगता है, मेरे जहां तक पैर जो है पैर जमीन को महसूस कर रहे हैं वहां तक तो सही है, और जहां वो जमीन चोटी और पानी ऊपर होने लगा मैं वहां से निकल आता हूं। भाई मेरे बस
1: नहीं, नहीं, मैं तो काफी दूर तक जाता हूं उसमें, और अक्सर जो फ्रेंड्स होते हैं या जो दूसरे भाई लोग होते हैं वो मना करते हैं, वो बोलते हैं नहीं आगे नहीं जाओ बस।
0: हाँ,
1: लेकिन उसमें समंदर में नहाने का मजा भी कुछ और होता है ना, वो तो आप ये कि अगर जैसे ये सी लाइन है इधर बहुत अच्छी बीच है, उसमें एक फैमिली के लिए भी उधर
0: बिल्कुल हर किसी के लिए वहां पर माहौल सेट है, और बड़ी ही खूबसूरत जगह है भाई, मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि वही है खूबसूरत, दोहा में तो हमारे बहुत कुछ है, बट वो जितनी खूबसूरत जगहें हैं उनमें से ये ऐसी जगह है कि वाकई जाना चाहिए और देखना चाहिए जगह को, जैसे कादर भाई बता रहे हैं
1: जी, उसमें आप समंदर में उधर नहाओ और इधर वो देखो जो वो क्या हम लोग रमल बोलते हैं, वो रेत जो है उस पे वो
0: बिल्कुल
1: पहाड़ी जो है उसके ऊपर वो गाड़ियां रात को बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है उसमें।
0: सही सही।
1: बहरहाल और फिश जो है वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अरे वाह,
1: लेकिन बहुत ज्यादा, और ये कि मेरे ख्याल में सी फूड जो है वो तो खाना ही चाहिए।
0: क्या बात है, सेहत के लिए अच्छा है। बात तो आपकी सही है, और अपना प्रोमो भी करता चलूं एफएम 107 का साथ ही साथ के सुहाना सफर पे आप देखेंगे, और मेरे ख्याल में सीजन 2 में मैं और कबीर और हिशाम उस टाइम पे हमारे साथ, हाँ उसमें हमने जो मछली बनाई है सैमन बनाई है, सैमन
1: अभी उसको दोहराएंगे नहीं वो बात को, नहीं तो मुंह में पानी
0: और आज रोजा भी है।
1: चलो ठीक है, सही है, ओके, बहुत शुक्रिया, और भी कॉलर होंगे,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई,
1: बहुत शुक्रिया
0: हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ में भाई ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।
1: ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि नया मोबाइल आ गया स्टूडियो में, माशाल्लाह स्टूडियो को भी चार चांद लग गया ना।
0: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है।
1: चलो
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, अल्लाह
0: तो वही थे खादिम भाई हमारे साथ, और जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई ने तो पानी से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हुई है, भाई तो क्या आपने भी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करी हुई है, शिकार किया हुआ है, पसंद है आपको सी का सफ़र करना, पानी का सफ़र करना, शिकार खेलना, सी फूड खाना, तमाम चीज़ें आप इसके अंदर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन द नंबर 4434377। यहाँ पर कोई हमारे साथ जुड़ गया है, आइए बात करते हैं। हेलो,
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कौन है हमारे साथ?
2: कैसे?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा की आवाज चेंज लग रही है यार, आज रोजा लग रहा है क्या?
2: नहीं भाई, बस
0: अल्लाह ताला सेहत याद रखे।
2: कुछ ऐसी हुई, मुझे याद नहीं रहा, कल आपने याद दिलाया, बट कंडीशन कुछ ऐसी भी याद नहीं रहा, बस अल्लाह पाक अपने
0: अल्लाह ताला खैर करे और हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और भाई कोई मसला नहीं है, अल्लाह का हुक्म है सब, और जाहिर है अगर नहीं हो पाया, नहीं रख पाए, तो दुआएं हैं, अच्छे आमाल हैं, अच्छी नियत है, अच्छी सोच है, आज के दिन हम वो सब कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमजा, आज का मौजू ये भी, और शायद आपने सुना भी हो, पानी से रिलेटेड, समंदर से रिलेटेड आज बातचीत हो रही है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है?

0: तैराक हो गया नहीं हो अच्छे?
1: नहीं तैराक तो नहीं, मैंने आपको शायद पहले ही बताया कि आप और मैं तकरीबन सेम सेम ही हैं।
0: अच्छा ऐसा है क्या?
1: ऐसा ही है।
0: तो यार तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हम तो पानी में अपने आप तैरते हैं, हमारे अंदर तो अल्लाह ने इतने अच्छे सेटअप करे हुए
1: हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगे बोले थे ना कि मुझे डर लगता है पानी में आगे जाने से, जहाँ तक पैर लगते हैं।
0: देखो डर तो लगता है वो
1: यार, ये तो इश्यू नहीं है, ये तो कोई इश्यू नहीं है।
0: वो तो देखो जहनी लगता है ना, डर तो अपनी जगह है, बट अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो हम आराम से तैरते हुए चले जाते हैं कोने तक, अपने आप बॉडी ले जाती है।
1: भाई पानी खुद बोलता है, भाई जान जाओ आपकी जरूरत नहीं है, मेहरबानी है आप जा सकते हैं।
0: ओह माय गॉड। तो वाकई स्विमिंग आती है हमसे या नहीं आती?
1: नहीं भाई, बचपन में एक बार सेकंड क्लास में था तो स्विमिंग पूल गया था दोस्तों के साथ, घर से चुप चुपा के, तो वहां पे डूबा था तो जो 10-15 मिनट का मूवमेंट था तो वो उसमें बस समझ लेके सब कुछ याद आ गया था। हाँ। उसके बाद से पानी से इतना जाना वो डर लगा है कि मैं ज्यादा दूर तक नहीं जाता।
0: वैसे एक्चुअली ऐसा होता है कि हाँ बचपने में कुछ इंसिडेंट हो जाए तो मसला हो जाता है। मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा ही है, मैं तुम बताऊँ, ये जो फोबिया है ना, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे में खड़ा हुआ था और अब्बा जो हैं वो फोटो निकाल रहे थे मेरी, तो उसमें मैं कब पीछे गया और उल्टा अंदर गया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बस इतना याद है कि अब्बा ने टांग पकड़ के मुझे ऐसे ही निकाल दिया बाहर मुर्गे की तरीके से, तो मैं इतना छोटा था, तो शायद जब से एक डर बैठ गया या क्या बात हुई। बहरहाल पानी से अपना मामला हाँ ऐसा सेट नहीं। अच्छा हमदा सी फूड वगैरह से क्या कहते हैं? हाँ
1: मैं एक बात सोच रहा था, मतलब आप किसी भी कहानी में से या किसी भी टॉपिक में से माशाल्लाह खाने का जरा जिक्र जरूर निकाल लें
0: यार, जरूरी है यार, लाइफ के साथ रहना चाहिए। लाइफ के साथ रहना चाहिए। नहीं और ये बहुत बड़ा मौजू है यार, मतलब बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई सी फूड के ऊपर कि भाई हम तो सी फूड खाने वाले हैं, लेट से पार्टी है, दावत है, बारबेक्यू है, उसके अंदर रखना है नहीं रखना है, और रख दिया है तो क्यों रख दिया है, जिनको नहीं पसंद है सी फूड वगैरह, ये बड़े बड़े मसले हो जाते हैं यार। बड़े बड़े घर में अगर मछली पक जाए और किसी को पसंद नहीं है तो वो घर छोड़ के भागता भाई, उसको इतनी स्मेल आती है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है सी फूड का हम लोगों के साथ, मतलब जिनको नहीं पसंद है या जिनको पसंद है, तो ये बड़े कंफ्लिक्ट रहते हैं आपस में।

0: हम लोग शौक से खाते हैं।
1: क्या बात है।
0: आप आगे बात कर रहे थे ना कि यार आज का दिन भी जो है वो जरा इसी उस मौजू के ऊपर है कि जो काम करते हैं जरा समुद्रों में और
1: हमारे भाई। जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ टाइम के लिए बंद हुई, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस चीज की कदर हो गई होगी कि भाई अगर ये चीजें स्टॉप हो जाए,
1: अच्छा कनेक्ट किया, हर चीज की अहमियत पता चलती जब है जब मौसूल ना हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है हमदा। तो हमदा ये भी बताइए कि खुद कभी फिशिंग वगैरह करी है, मछली वगैरह पकड़ी है, शिकार किया है?
0: नहीं भाई ऐसा तो कभी मौका नहीं मिला।
1: अरे यार तो मैं अब सुनो मेरी बात, मैं रोकूंगा आपको। आप दुनिया की बेहतरीन जगह में हैं जिसको कहते हैं कतर, और इसमें आपको इतने मौके फराहम होंगे फिशिंग से रिलेटेड और सी फूड के शिकार से रिलेटेड कि आप तो कहीं भी निकल जाइए यार, किसी भी बीच वगैरह में शाम के बाद आप बेहतरीन क्रैब कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज है।
0: आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बट वो कहते ना कुछ जिंदगी के सफर ऐसे होते हैं कि इंसान चाह के भी कुछ काम नहीं कर सकता होता। तो खैर मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहता। अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह खैर के मामला करे सबके साथ।
1: आमीन आमीन या रब्बल आलमीन।
0: आई विश कभी जाएंगे इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह,
0: और ये सारे शौक भी पूरे करेंगे,
1: कभी बैठेंगे पकड़ेंगे बनाएंगे और खाएंगे एक साथ।
0: आपको मजे की बात बताऊं, मैं शुरू से ही बचपन से ही मेरी एक नेचर रही है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे इतना है कि मैं बहुत सारी चीजों से थक चुका हूँ, तो मेरी एक आदत रही है कि मैं समंदर के किनारे पर जाके घंटों बैठ के अपना माइंड रिलैक्स करता।
1: अच्छा मैंने कहा शायद तुम मेरी वाली बात कर रहे हो, मैं जब ऐसा सब होता है तो फिर मैं खाना ज्यादा खाता हूँ। अगर मैं टेंशन में हूँ, प्रेशर में हूँ और कोई काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी, तो फिर खाना मेरा सबसे अच्छा साथी होता है और जो मेरा साथ निभाता है।
0: पाकिस्तान में ना एक मेरे ख्याल से गुजर खान है, गुजरा वाला है,
1: ओके,
0: सही कंफर्म इलाके का नाम याद नहीं है,
1: ओके,
0: तो हमारे वहाँ के भाई जो है ना बहुत ज्यादा खाने के शौकीन है। हमारी बट बिरादरी जो है वो माशाल्लाह उनके बारे में तो स्पेशली कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने एक बसली उनको ज्यादा दी है खाने के लिहाज से।
1: माशाल्लाह अल्लाह ताला से एहतियात रखे भाई सब।
0: आमीन। तो भाई लिटरली ऐसा होता है, अगर आप कमजोर से कमजोर बट भी देखेंगे ना, तो मैं कहता हूँ कि आप भी अगर आप कहते ना कि यार आई विल इज एक्स्ट्रा, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
1: वाह वाह, चलिए भाई ये तो तुमने अच्छी बात बता दी। और अगर इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं बट साहब जितने भी हैं, तो कभी हो जाए जरा मिलके बैठ के कंपटीशन वगैरह हो जाए, बातचीत हो जाए, इसके ऊपर भी देखा जाएगा जैसा भी होगा। बादल भाई क्या बात है हमदा, और क्या शेयर करना चाहते हो और बताओ बताओ। जी जी
0: मैं इसी बता रहा था कि वो जो है हमारे उधर के जरा जो गुजर खान है, गुजरा वाला, आई एम नॉट श्योर के कौन सा इलाका है, बट वहाँ पे एक जना बात ये चलती, भाई कहाँ जा रहे हो खाना खाने, कहाँ से जा रहे हो खाना खा के, क्या कर रहे हो खाना खा रहे हो।
1: यार ये तो मेरी
0: करने जा रहे हो,
1: मेरे,
0: खाने जा रहे हो।
1: मेरे रहने वाली जगह है ये, तो मुझे यहाँ चिपट हो जाना चाहिए।
0: और हकीकत बात है भाई वहाँ पे
1: माशाल्लाह
0: ये चलते हैं पाए
1: माशाल्लाह,
0: और बाकी फूड्स का भी एक जुनून पाया जाता।
1: यार रोदे से हमदा भाई क्यों परेशान कर रहे हो। अल्लाह ताला सबको सेहतियाब रखे, और वाकई भाई बड़ी अच्छी बात और अच्छी चीजें हमेशा सीखने के लिए मिलती हैं, यही मुख्तलिफ कल्चर की पहचान है और हमारे दोहा की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर जब हम लोग मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कल्चर की बात करते हैं तो एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखते भी हैं, समझते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
0: यहाँ पे दोहा में माशाल्लाह ये चीज देखने को बड़ी है कि फूड के ऊपर बहुत बहुत काम किया हुआ, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है दोहा की, इन्होंने फूड के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, एक हाइजीन का बहुत ख्याल रखा हुआ है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि आप तो इस सेक्टर में हैं तो आप और अच्छी तरीके से जानते होंगे। बिल्कुल,
0: मैं ये चीजें बहुत बहुत नोटिस करता हूँ, क्योंकि भाई एक तो खाने पीने का शौक, दूसरा एक बिजनेस माइंड लेके चलते हुए कि देखते हुए चीजें कि यार अगर ये चीज हमारे उधर मुल्क में हो तो वो क्या इफेक्ट करती है, ठीक है, या अगर हम इसको सर्वाइवर में लेकर आए तो हम कैसे इसको चला सकते हैं।
1: सही सही,
0: तो इन चीजों के ऊपर बहुत काम हुआ है दुहा के ऊपर, और ये चीज बहुत अच्छी भी लगती है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और हम सबकी सेहत अच्छी रहने का ये भी बात है।

0: रुपए इसमें कभी मौका मिला बैठने का सफर करने का?
1: जी मिला बिल्कुल।
0: वेरी गुड, उससे तो खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकती यार।
1: हाँ, वो तो हम तो एक बहुत जबरदस्त वहाँ पे भाई इस चीज को एंजॉय करने हमने तो फिर लास्ट में मिला।
0: हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है एक हमारे दोहा का, और उसकी तो खूबसूरती की यार कोई मिसाल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं। क्या बात है भाई मुबशिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, दुआओं में याद रखिए। और कुछ शेयर करना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच। तो साहब ये थे मुबशिर भाई, और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात शेयर करी। अभी तक इनकी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो फिशिंग वगैरह करता हो, आप इनकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई और हमारे साथ, इनसे करते हैं बात और फिर हम चलेंगे ब्रेक की जानिब। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: अहलन व सहलन, वेलकम। कौन है हमारे साथ?
2: रामपुर आप भूल जाते हैं शायद।
0: नदीम भाई
2: जी सर, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ नदीम भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: बहुत अच्छा गुजरा। हम तो आज आपको वो एक गाना नहीं है कि बहुत देर हो गई इंतजार करते करते,
0: अच्छा
2: हुजूर आते आते,
0: अच्छा
2: हमने तो आपका इतना इंतजार करा आप ऑफिस में ही नहीं आए।
0: ओके वो आप थे जो तशरीफ लाए थे। हाँ, नहीं मुझे मैसेज मिला था कि कोई साहब आए थे और मुझे पूछ रहे थे, मगर गालबन वो नाम जो है आपका नहीं याद रख पाए, और घुसते के साथ ही मुझे तीन चार लोगों ने ऑफिस के अंदर तक बार गेट से शुरू होके भाई कोई पूछ रहा था। मैंने कहा भाई नंबर वगैरह ही शेयर कर देते। चलिए खैर, मैं माजरत चाहता हूँ पहले तो कि मैं मुलाकात नहीं कर पाया।
2: मैंने कहा था उनसे जो गेट में वो थी ना, मैंने उनसे कहा था कि भाई से कहना कि नदीम नजाकत आए थे।
0: हाँ, वो नाम आपका मिखाल में। खैर भारत भाई, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकलीफ करी भाई यहाँ तक आए। और
2: मैं तो बिल्कुल दोस्त ही वहाँ, एग्जैक्टली।
0: मगर क्या बात है भाई, इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे और अल्लाह का शुक्र है। आज खासम खास दिन है नदीम साहब, शायद आपने सुना हो, तो पानी की दुनिया के हवाले से बातचीत हम कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपका?
2: मेरा कहना ये है कि हम लोग जहाँ पर हैं चारों तरफ पानी पानी है,
0: बिल्कुल,
2: चाहे कतर में ले लें या चाहे इंडिया में ले लें। एक रामपुर ऐसी जगह है कि उसके चारों तरफ पानी,
0: बिल्कुल
2: है। कहीं
0: बिल्कुल,
2: से आप घूम के आए,
0: बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही।
2: बस आज तक हमने कभी तैराकी नहीं सीखी, पापा हमारे बहुत अच्छे तैराक थे,
0: अच्छा
2: अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
0: आमीन।
2: लेकिन हाँ, खाने में मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है, श्रिंप बहुत पसंद है, ये जिसमें सबसे फेवरेट जो है मेरी वो सलमोन है।
0: वाह,
2: और कनात कनात सलमान और हमूर और शेरी,
0: क्या बात है। देखिए भाई, नाम तक बता दिए हैं यहाँ पर नदीम भाई ने आप लोगों को कि भाई कैसे आज वीकेंड जो है और जो रोजे से हैं वो भी रोजा किस तरीके से इफ्तार सकते हैं, आज सारी चीजें बता दी है नदीम भाई ने। तो
2: मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है सलमान, सबसे बेस्ट है, नंबर वन पे सलमान है, फिर आपका कनात, और थर्ड नंबर पे आपका हामोर, और फोर्थ नंबर पे शेरी। ये बेस्ट मेरी मछलियाँ हैं।
0: क्या बात है यार, क्या बात है, और शौकीन लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी सी फूड ट्राई किया है? मतलब मजीद जैसे लोग परेशान होते हैं श्रिम्स वगैरह या दूसरी चीजें खाने में,
2: जी वो बड़े वाले जो श्रिम्स आते हैं ना, आपने देखा होगा क्रेप्स टाइप के,
0: जी
2: वो मैंने ट्राई किया, बहुत जबरदस्त होता है। एक आध दफा मैंने ऑक्टोपस जो आता है उसको अगर आप अच्छे से बनाएं और खाएं तो बहुत ही टेस्टी होता है, ऐसा लगता है जैसे आप मशरूम खा रहे हैं।
0: क्या बात है भाई, इससे ज्यादा बात करेंगे तो रोजे पे असर पड़ जाएगा खुदा ना खासा। क्या बात है भाई, बहुत खूब। अच्छा, कभी समंदरी सफर करने का भी मौका मिला नदीम साहब?
2: जी जी बिल्कुल, मैं उधर था सऊदी में था, तो उस टाइम मैं खुबर गया था, तो हमारे बहनों वगैरह थे, तो तब उस टाइम हम लोगों ने वहाँ पर यानी घूमने के लिए ऐसे गए थे शिप वगैरह से।
0: Okay.
2: और कतर में मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने भी लोग भाई सुन रहे हैं हम लोगों को, कतर में आके वो कतर की बोट्स में नहीं बैठे तो ये समझ लें उनका सफर अधूरा।
0: एग्जैक्टली, यही आज मेरा मकसद है ये सफर का जिक्र करने का, आज खासम खास दिन, के भाई कम से कम हमारी जो डाउज हैं, जो हमारी क्रूज हैं, उस पे मौका मिले तो और उसमें ऐसा नहीं है भाई, बहुत ही नॉमिनल रेट पे आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट पे, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के लिए।

0: वहाँ पर एंटरटेनमेंट का एक साधन है।
1: तो मैंने किया यहाँ पर सफर, मुझे बहुत मजा आया। और ये यानी के मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो यहाँ कतर में आने के बाद चला गया और उसने ये वाला मजा नहीं लिया, तो ये समझ लिया उसका सफर अधूरा रहा।
0: क्या बात है यार, क्या बात है। बड़ी अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी जल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये थे हमारे साथ नदीम नज़ाकत साहब, जो अपनी बात रख रहे थे और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बताई। और माशाल्लाह पानी के हवाले से आपने कहना चाहिए सभी चीज़ों में अपना हिस्सा जो है वो रखा है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अरिजीत सिंह एंड जॉय, एंजॉय कीजिए ट्रैक राबता। FM 107 पे सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप, सरवर मिर्ज़ा आपके साथ, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
2: Har aadat badalti hai ek achhi niyat se. Aur har achhi niyat ki bunyad hai ek khoobsurat hadith. सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107. एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी. स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम. हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट. दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए.
0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक. ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: हां जी, वेलकम बैक हेलन व सहलन, खुश आमदी, स्वागत है एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी को. बिल्कुल सन एंड साउंड इस वक्त जारी सारी और सरवर मिर्जा आपके साथ, जहां सन तो अपने जोरों शोरों पर है और साउंड जो है आपकी इस वक्त गूंज रही है. यहां पर हमारे साथ हमारे भाई जुड़ रहे हैं. हेलो, सलाम अलैकुम.
5: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई. और कौन है हमारे साथ?
5: जी शोएब
4: भाई. हाँ, क्या बात है भाई, वेलकम शोएब भाई. कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
5: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ स्मूथली जा रहा है.
4: अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए साहब, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे और आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. तो शोएब भाई, आज का मौजू सुना आपने अभी तक?
5: हाँ, आज इसीलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की. अच्छा? जब आपका शो स्टार्ट हुआ है इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मतलब का टॉपिक है. अच्छा? सबको कुछ बोलना भी चाहता हूँ कि जो कतर में है इस वक्त.
4: क्या बात है सर, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम.
5: दो साल से तो मैं कबीर भाई के पीछे पड़ा हूँ इस बात के लिए.
4: अच्छा?
5: हाँ, ये दरअसल क्या है कि देखो, अभी हम लोग कुछ नॉर्थ इंडिया से है, कोई कहीं से है, सब जगह से है. ज्यादातर लोग जो स्पेशली जैसे कि नॉर्थ इंडियन है, हम लोगों को सी फूड के बारे में नहीं पता. जैसे कि सिर्फ कुछ गिनी चुनी मछलियाँ होती है, हम लोगों ने वही ट्राई की होती है.
4: सही.
5: तो उसी के हवाले से मैं सबको बताता हूँ कि सी फूड को सबको ट्राई करना चाहिए.
4: ओके.
5: सच में बहुत अच्छा है. और दूसरी बात सरवर साहब, देखो मैं शायद आपको, मैंने आपको बताया होगा कभी काफी, मैंने यहाँ पे जब से मैं तकरीबन 5 साल से हूँ.
4: ओके.
5: फिशिंग का मुझे बचपन से शौक है.
4: अच्छा,
5: और मैं हर वीकेंड फिशिंग के लिए जाता हूँ, हर वीकेंड.
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है यार. और अब अगला वीकेंड इंशाल्लाह साथ चलेंगे फिर तो.
5: मैं लोगों को इधर ढूंढता हूँ भाई कि कोई मेरे साथ चलो.
4: नहीं, एक्चुअली होता क्या है भाई, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ. वो असल में मछली जब तक पकड़ी नहीं जा रही, अगर 1-1.5 घंटा लग गया तो वो वाला टाइम गुजार लीजिए, और जैसी मछली पकड़ में आ जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे बुला लीजिए.
5: देखो भाई, ये आपने बताया, पहले भी बताया, मैं ये देखो बड़ा सब्र का काम
4: ये है असली चीज.
5: कभी कभी ऐसा होता है सरोज साहब की 1 घंटे में आप

0: इतनी फिशिंग हो, मतलब इतनी मछली आ जाती है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब टाइड जब ऊपर नीचे तीन तीन घंटे, मैंने 12-12 घंटे 18-18 घंटे इधर फिशिंग की है सी लाइन पे बैठ के.
1: तो भाई देखिए, शुएब भाई ये बता रहे हैं कि सब्र का फल जो है वो गोश्त होता है मछली का.
0: देखो देखो, समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अगर आप उसको अच्छे से फील करोगे ना, तो आप सारी परेशानियां सब कुछ भूल जाओगे.
1: क्या बात कह दी यार, कि वाकई एक तो वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है, और जब आप उस वक्त के अंदर उस वक्त गुजारने में अपना शौक ढूंढ लेते हैं तो फिर तो क्या ही कहने. जैसे शुएब भाई हमारे हैं, क्या कहने भाई, फिशिंग भी करते हैं. अच्छा, क्या स्विमिंग वगैरह भी कर लेते हैं?
0: सब कुछ. मैं देखो, मैं बचपन से तकरीबन 7-8 साल की एज से मैं फिशिंग के, मतलब मेरी आज तक सारी हॉबीज जो है वो आती है चली जाती है, सब कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन एक फिशिंग की हॉबी ऐसी है बचपन से आज तक मेरी
1: और जाएगी नहीं. और जाएगी भी नहीं. ये बात यार, ये एक अलग ही मसला होता है, और अलग ही तरीके के लोग होते हैं जो वाकई पानी से मोहब्बत, पानी की गिजा से मोहब्बत, और उसके साथ वक्त गुजारना. अच्छा, कभी सफर भी किया शुएब भाई पानी का?
0: जी मैंने कहा हाँ बिल्कुल किया है. ओके. इधर कतर में भी छोटा मोटा किया है, और बाकी वैसे मेरी ड्रीम है कि मतलब कि मैं एक बड़े से क्रूज में या किसी भी तरह से मतलब कि अलग अलग कंट्री जाऊँ.
1: क्या बात
0: है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन इंशाल्लाह देखो,
1: इंशाल्लाह भाई अल्लाह ताला आसानी करे. और इससे मुतालिक हमारे कतर में माशाल्लाह बहुत कुछ है, और उससे भी आप प्लान कर सकते हैं, व्हाई नॉट. और
0: वो छोटा छोटा मैंने किया है, बोटिंग वगैरह वगैरह.
1: बोटिंग वगैरह
0: मैं बात कर रहा हूँ मिर्जा साहब के लंबे सफर की.
1: नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, मैं उसी के हवाले से कह रहा हूँ, वो भी आप यहाँ रह के प्लान कर सकते हैं माशाल्लाह से. हमारा जो पोर्ट है जहाँ से क्रूज वगैरह आती हैं और जाती हैं, दोहा पोर्ट से, तो वहाँ पे आप देखते हैं क्रूज वगैरह आते जाते रहते हैं, तो उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए, वक्त भी निकले इस चीज़ के लिए, यही दुआ.

0: बैचलर के साथ रहता था अपने रूममेट्स के साथ, तो मैं देखता हूँ कि लोग आए काम से, खाना खाया, मोबाइल हाथ में लिया, लग गए और वो घंटों तक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं उनको बोलता था, मेरे रूममेट्स थे, उनको बोलता भाई थोड़ा बाहर को निकलो, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा समंदर पे जाके बैठते हैं, चल। सच में मैं ढूंढता हूँ लोगों को इधर कि कोई मुझे मिले कि जो मेरे साथ तक चले, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया है आज के टाइम में, लोग जो है ना अपने मोबाइल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते,
1: और जबकि
0: बाहर की दुनिया देखना बंद कर दिया।
1: इतने कहना चाहिए स्पॉट्स हैं, इतनी जगह हैं हमारे कतर में, तो इतना कुछ है एंजॉय करने के लिए कि आप कहना चाहिए कि इस्तेमाल भी करते रहें अपने वक्त को तो वो पूरा नहीं पड़ेगा। आप हर जगह जाने की कोशिश भी करें तो भी कुछ ना कुछ बचेगा, इतनी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और आप
0: ज्यादा से ज्यादा आप सर्वर साहब कुछ मत करो, अगर जैसे भी अगर आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आपके पास गाड़ी है, आप सीधा सीधा अलवकरा बीच या कहीं भी छोटे मोटे बीच पर आप गाड़ी से रोक के आराम से दो चार मिनट उधर बैठ के तसल्ली से अपने मौसम को एंजॉय करो।
1: क्या बात है, देखिए क्या मशवरा दिया जा रहा है भाई, वीकेंड के हवाले से और अपने वक्त को गुजारने के हवाले से, क्या कहने, बड़ा ही जिंदा दिल इंसान है शुभ भाई, आज मुझे पता चला
0: माशाल्लाह।
1: अरे सर, और ये तो बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरीके से अपने आप को हमेशा ताजा तरोताजा रखिए और दूसरों को बताते रहिए कि भाई जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको हर पल एंजॉय किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यार शिव भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जनाब, ध्यान रखिए अपना मेरे भाई।
1: बिल्कुल भाई, अहलन व सहलन, और अगर कबीर भाई से भी बात हो आपकी और शाम में जिस जिस की बात हो तो कहिएगा, सुहाना सफर में सर्वर भाई ने जब मछली बनाई थी तो क्या हुआ था, ये पूछिएगा जरा उनसे, ठीक है?
0: ठीक है, अभी तो मैं कह रहे ऑनलाइन शाम को 8-9 बजे
1: अगर वक्त मिले, और जो उनके साथ जुड़े तो आज ये शोशा जरूर छोड़िएगा कि सुहाना सफर में, और जब तक अगर चाहें तो आप लोग देख भी सकते हैं सुहाना सफर सीजन 2 की बात है शायद ये, जिसमें मैं, कबीर और हिशाम है, और उसमें हमने फिश बारबेक्यू की है, तो वो आप ऑनलाइन जाके अगर डालेंगे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छी बात करने के लिए शुभ भाई, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। क्या बात है भाई, तो ये कुछ चला आज का सिलसिला अभी तक का, फिशिंग के हवाले से, पानी के सफर के हवाले से, सी फूड के हवाले से, सी फेयरर्स के हवाले से, और एक बिल्कुल ही मुख्तलफ कहना चाहिए जिंदगी है ये, जिसमें हम एक साथ जुड़ भी जाते हैं, मजे भी कर सकते हैं, तफरी भी कर सकते हैं, तो भाई आप लोग भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाएं, मैं तो यही कहूँगा। आईवा देवनेगी निकिता गांधी एंड MB, एंजॉय कीजिए साथ समंदर पार किसी अलग स्टाइल में।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: लीजिए साहब, बज गए हम सबके 12 बज के सही 5 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, आरजे सरवर मिर्जा की।

0: जी वेलकम बैक हेलन वसहलन खुश आमदीद स्वागतम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सबको। सन एंड साउंड पे इस वक्त सर मिर्जा आपके साथ जहां पर सन तो अपने जोरों शोरों पर और साउंड गूंज रही है आपकी। आइए अब यहां पर कोई और हमारे साथ कनेक्ट हो गया है, देखते हैं कि क्या है इनका कहना। हेलो सलाम वालेकुम।
1: हां जी जनाब
0: कावा भाई, क्या हाल चाल है कावा भाई, कैसे हैं और कैसा रहा अभी तक का दिन?
1: सरवर भाई अपनी मेहनत के साथ सात समुंदर पार करके ना सेफ लैंडिंग पे जो जोर से नाचने का मजा आता है ना भाई, उसमें घुंघरू टूट भी जाए मेरे भाई, कोई बात नहीं।
0: मेरे भाई ने अभी अभी बना दी है शायरी सिर्फ आप लोगों के लिए, क्या बात है यार गावा भाई। कैसा रहा अभी तक का दिन और कैसा गुजरने वाला है दिन, क्या प्लानिंग है वीकेंड की, पहले तो ये बता दी ताकि मैं भी अकॉर्डिंगली प्लान कर लूं।
1: सरवर भाई यार कभी तो एक वीकेंड का टाइम दीजिए यार हमें।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार गावा भाई, जरूर जरूर ऐसा दिन जल्दी आएगा जब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने आऊंगा। इंशाल्लाह कुछ प्लान करेंगे कभी एक साथ मिलके, सब जितने भी हमारे भाई हैं दोस्त
1: पता
0: हैं।
1: क्या है सरवर भाई, देखिए यार आप लोगों से हर किसी की इच्छा है एज अ लिजनर एज अ कॉलर।
0: अरे ये तो
1: आपको सुनता है डेली, एक आप जी बिल्कुल बिल्कुल एक अटैचमेंट सी हो जाती है सरवर भाई आपके साथ।
0: अरे सर यही मोहब्बत बस कायम रखिए और इस मोहब्बत से हमें नवाजते रहिए, यही बस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम और आप अपनी अपनी मशगूलियत में खो जाते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला ज़रूर जल्दी। आज खासम खास बात चल रही है गावा भाई पानी के दुनिया, पानी की जिंदगी के हवाले से, सी फूड और कहना चाहिए उसमें तैराकी और उसका सफर और बाकी उसका शिकार, क्या कुछ कहना है आपका इन सारी चीजों से मुतालिक। वैसे तो आप शायद वेजिटेरियन है मेरे ख्याल में, तो आप
1: वेजिटेरियन।
0: अच्छा अच्छा क्या बात कर रहे हो यार सरवर भाई, जरा रुको
1: ओके नाजिया जी हैं।
0: हाँ भाई वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो तो है ही है। तो आप क्या अच्छा, कहना चाहते हैं जी?
1: मैं सरवर भाई शुरू करूंगा अपने गांव की नहर से लेके फिर मैं समुंदर तक पहुंचूंगा, ठीक है?
0: वाह वाह वाह यार, कोई तो आया ये बात करने वाला, मैंने कहा शायद मुझे ही यादें ताजा करवानी पड़ेंगी गांव की नहीं, नहर।
1: सरवर भाई मेरा जो घर है ना उससे तकरीबन नहर का डिस्टेंस है जितना आपके स्टूडियो की कुर्सी से लेके बाहर का जो सिग्नल है जो आपके पेट्रोल पंप वाला है।
0: ओके ओके अच्छा नापा
1: अराउंड 1 किलोमीटर।
0: ओके ओके
1: जी, इससे भी कम है।

0: तो ये थोड़ा तो, कम ही होगा,
1: ये तो कमी, ये तो करीब ही हुआ यार, करीब ही
0: 500 मीटर्स टू 1000 मीटर्स के अराउंड।
1: ओके,
0: तो क्या है सरवर भाई, जो हमारे गांव के आज की पीढ़ी को छोड़ दीजिए, उससे पीछे वाले जो बच्चे थे या बड़े या बुजुर्ग हैं, हर किसी को 99.9% बंदों को तैरना आता है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: जी उसका रीजन क्या है सरवर भाई, जैसे अभी तो चलो लाइट नहीं जाती हमारे वहाँ पे, लोड शेडिंग की बिल्कुल समस्या है ही नहीं अभी तो पहले क्या होता था सरवर भाई, ये दोपहर के टाइम जैसे अब के दिन चल रहे हैं गर्मियों के, कोई अपना ट्रैक्टर लेके जा रहा है वहाँ पे, कोई लेडीज अपने घर के कपड़े वहाँ पे वॉश करने के लिए, अपने बच्चों को नहलाने
1: और यार ट्यूबवेल में भी तो हम लोग कूद कूद के नहाया करते थे, उसके चक्कर में भी तो पानी से मोहब्बत हो जाती थी।
0: वो तो परमानेंट है सरोवर भाई।
1: सही।
0: वो तो आप कहीं पे भी रुक सकते हो, पंजाब से अगर आप यूपी तक जाओगे, आपके अलीगढ़ तक, मेरे ख्याल से मोर देन 1000 ट्यूबवेल आपको रास्ते में मिल जाएंगे।
1: सही सही सही।
0: तो सरोवर भाई क्या होता था वहाँ पे, इतना अच्छा माहौल होता था ना, तो बहुत चहल पहल रहती थी वहाँ पे, बहुत ज्यादा बिजी होता था वो सिस्टम हमारे वहाँ पे।
1: सही सही।
0: तो आप यकीन मानिए सरोवर भाई, जब हम लोग वहाँ पे खेलते भी थे, जैसे छुपन छुपाई होता है ना पानी में, छुपन छुपाई,
1: ओए होए क्या बात है, पानी छुपाई।
0: हाँ वो कैसे होता था, जो एक पुल बना होता था ना, आप पुल के नीचे छुप जाते थे, ऊपर बंदा खड़ा रहता था, उसने क्रॉस नहीं करने देना। आप पानी के अंदर होके चले जाओगे तो थोड़े बहुत बबल्स तो रहते हैं ना,
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: छुप के भी जाओगे तो बस यही गेम चलती थी।
1: क्या बात है यार, क्या यादें हैं, क्या यादें हैं
0: यार। और सरवर भाई दूसरी चीज की एक याद और आ गई, जो ट्रक का टायर होता है ना बड़ा सा,
1: उसके अंदर बैठ के
0: ट्यूब होती थी ना, ट्यूब,
1: अच्छा ट्यूब पानी में, मैंने कहा
0: ट्यूब पे सरवर भाई 5-6 जने बैठ के वो किलोमीटर दूर फेंकते थे उसको, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते थे।
1: हाँ वही तो, और बाद में शऊर भी आ गया था, उसमें रस्सी भी बांधना शुरू कर दी थी पकड़ के,
0: वो तो मस्ती करने के लिए।
1: यार क्या बात है यार, क्या क्या यादें हैं वाकई, और ये सारी चीजें क्या अब की जनरेशन एंजॉय कर पाएगी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है आज के दिन। अल्लाह ताला सबको मौका दे तफरी करने का भाई।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो स्विमिंग होती है इंग्लिश स्विमिंग, वो तो बंदे को सीखनी पड़ती है प्रोफेशनली। जो बंदे गांव के तालाब में या नदी में नहाए हैं उनको देसी स्विमिंग भी आती है,
1: अरे भाई
0: पैरों से भी होती है।
1: बिल्कुल। और कहना चाहिए जो गोते लगाते हैं उसके बाद, वो एक ये भी तो गेम चलता था ना, कौन कितनी देर सांस रोक लेगा पानी के अंदर, उसमें बड़े से बड़े रिकॉर्ड भाई कायम कर दिए, बड़े से बड़े रिकॉर्ड कायम कर दिए लोगों ने, और इससे तो काफी स्टडीज भी हुई हैं, आगे लोगों ने सीखा भी है, और ये तो ट्रेनिंग में भी बताई जाती हैं चीजें। बहरहाल ये एक अलग जिंदगी है भाई, और इसके साथ साथ ये तो चीजें हमसे रिलेटेड हैं। आज जो भी लोग पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं उनको सलाम है भाई, एक कैसे कैसे उनको चीजों से गुजरना पड़ता है, 6-6 महीने जब वो क्रूज के ऊपर होते हैं या अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं, तो किन किन चीजों से उनको गुजरना पड़ता है, बड़े बड़े तूफानों से, और फिर तबीयत खुद ऐसी हो जाती है, फिर वो हवा वो मॉइस्चर, किन किन चीज़ों से गुजर के वो हम सब के लिए कहना चाहिए कुर्बानी दे के अपनी ड्यूटीज भी अंजाम देते हैं और अपना काम भी करते हैं।
0: बिल्कुल, आपने एक और टॉपिक छेड़ दिया, एक मेरे को ना बहुत टफ जॉब लगती है हमारे वहाँ पे जो गोताखोर होते हैं ना, आपको पता है सर, बड़ी बड़ी नहरें हैं,
1: जी जी जी वही मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल,
0: बंदे गलत काम भी करके गाड़ियाँ बंदों को फेंक देते हैं, आप समझते हो ना, तो जो वो बंदों की जॉब है ना सर, इतनी मुश्किल जॉब है ना सरवर भाई, मैंने तो देखा है वहाँ पे उनको। आप यकीन मानिए जो बंदा पानी में गुम हो जाए ना, जब उसकी बॉडी 5 या 6 दिन के बाद मिलती है ना सर, हम लोग नॉर्मली देख ही नहीं सकते उसको,
1: अल्लाह ताला
0: सब, तो आप देखिए वो बंदे का क्या जिगरा होगा, जो बंदा उसको अंदर से निकाल रहा है, और वो लोग सेवा करते हैं सरवर भाई।
1: बिल्कुल, अपना फर्ज अदा करते हैं, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत है भाई इंसानियत के लिए, क्या बात है यार। इसी तरीके की बाकी भी सारी ड्यूटीज, जैसे कि मैंने अर्ज किया, जितने भी डेक कैडेट्स वगैरह हैं या जितने भी हमारे नेवी के लोग हैं, माशाल्लाह सभी को सलाम है भाई, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो अंजाम दिया जा रहा है, क्या बात है। अच्छा गाबा भाई, फिशिंग वगैरह के हवाले से भी कुछ कहना है, कभी कुछ हुआ?
0: मैं उधर ही आ रहा हूँ अभी, आप
1: कीजिए। इधर भी है
0: जी, हमारे वहाँ पे ना सरवर भाई बहुत बड़ा डैम है, नंगल डैम बोलते हैं उसको।
1: ओके ओके।
0: और एक दरिया है बहुत बड़े लेवल का, उसको बोलते हैं हरी के।
1: यार आपकी तो माशाल्लाह ज्योग्राफी भी अच्छी है, और खास तौर पे इस तरफ वाली, और मालूमात भी अच्छी है। आपको मालूम है अलीगढ़ के पास कौन सा डैम है?

0: अलीगढ़ के पास सर नहीं पता मेरे को।
1: अरे बिल्कुल आप
0: एक मिनट
1: मैं बोलूंगा आप कहेंगे मुझे पता है।
0: टिहरी तो नहीं है सर, टिहरी तो मगर उत्तराखंड में।
1: ना एन से नाम है उसका, एन से।
0: नहीं पता सर, मैं ऐसे ही टाइम खराब करूँ आपका।
1: अच्छा नरोरा डैम यार।
0: हाँ नरोरा डैम, ओके।
1: ये नरोरा डैम बिल्कुल करीब है अलीगढ़ के और वहाँ जाके भी हमने बहुत बहुत तफरी करी है। बहरहाल आप कुछ अर्ज कर रहे थे।
0: तो सरवर भाई हमारे वहाँ पे जो मच्छी खाने के शौकीन है लोग, तो स्पेशल वो लोग उन्हीं या नंगल डैम पे या वहाँ पे जाते हैं दूसरे डैम
1: पे फिशिंग वगैरह के लिए,
0: क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ना सी एरिया तो है नहीं हमारे वहाँ पे, तो तालाब में जो मच्छी मिलती है वही मिलती है वहाँ पे मोस्टली। सी वाली भी अवेलेबल होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा शौक है स्पेशली सर्दियों में सर।
1: बिल्कुल सर्दियों में ज्यादा कंज्यूम करते हैं जाके, वो खैर अपना अपना मानना है, अपनी अपनी चीजें हैं, बट ये अपने आप में कमाल है यार सारी चीजें। और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं काबा भाई?
0: और अभी समुंदर पे आ जाते हैं सरवर भाई।
1: हाँ हाँ, यहाँ पे सफर किया कभी और या कभी ऐसा मौका लगा?
0: नहीं कतर में किया है सर, मैं ऐसे नहीं किया इंटरनेशनली, लोकली लोकल किया है। जो दो बोट्स चलती है ना यहाँ पे
1: जी
0: जिनमें म्यूजिक भी हो डांस करने का।
1: आज जाऊंगा याद आ गई बात करके।
0: भाई सर्वर भाई कहीं हो किस्ती ना यार नीचे बैठ जाए तो देख के जाना।
1: अरे मैंने आप इससे पहले कोई मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैंने यही अर्ज किया, पता नहीं हमजा थे ये कौन थे, तो बता रहे थे कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ सर्वर भाई। तो मैंने कहा हमें तो अल्लाह ताला ने कुदरत ने मतलब एक अलग क्षमता दी है, हमें किसी टायर की या लाइफ जैकेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पानी में हम हो हम अपने आप तैरने लगते हैं भाई, अपने आप तैरने लगते हैं, ये हमारी खासियत है।
0: मगर सर्वर भाई फिजिक्स पता क्या बोलती है?
1: हाँ क्या बोलती है?
0: दो चीज का वजन पानी से ज्यादा हो जाए ना अकॉर्डिंग टू साइज, तो चीज पानी में डूब जाती है सर्वर भाई।
1: यार क्या बात कर रहे हो, तो पानी से ज्यादा वजन हो जाएगा।
0: मगर एक है सर, बंदा जब उल्टा लेट जाए ना पानी के ऊपर सरवर भाई, ये एक ट्रिक भी है।
1: ओके
0: उल्टा लेट के अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ो,
1: बिल्कुल सही,
0: कभी भी पानी में नहीं
1: बिल्कुल सही। इसको कहते हैं फ्रॉग, मैं भूल गया कुछ मेंढक से रिलेटेड बताते हैं, और वो एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है और बहुत आराम की चीज़ है उसमें। और अगर आप देखें ना छोटे बच्चे जितने होते हैं, मतलब काफ़ी लोग अपने बच्चों को, आप वीडियोस वगैरह देखेंगे आपको ताज्जुब होगा, जो दो दो तीन तीन चार चार छः छः महीने के बच्चे हैं उनको लोग पानी में ले जाते हैं भाई पेरेंट्स जो हैं, और बचपन से ही उनको आदत दिलाते हैं, और माशाल्लाह बच्चा जो है डूबता ही नहीं है पानी के अंदर, और वो इसी पोजीशन पे होता है जो आप बता रहे हैं। कभी देखिएगा इंटरनेट पे अगर किसी ने नहीं देखा।
0: बच्चों के अंदर भी आपने ये बात की है ना, दो या तीन साल तक एक अंदर ही कुदरती तौर पे एबिलिटी छोटी सी बात कर लूँ आपसे, कॉल लंबी हो जाएगी। देखिए सरवर भाई, हम लोग जो दुनिया में सामान यूज करते हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं या बहुत ऐसा सामान है जिनको प्लेन के जरिए हम नहीं लेके जा सकते एक जगह से दूसरी जगह,
1: सही।
0: तो इन चीजों को ले जाने के लिए माल की ढोआ ढोआई के लिए सर ये शिप ही काम आते हैं,
1: शिप ही काम आते हैं, सही।
0: हाँ तो जिस कंट्री के पास सी पोर्ट्स हैं सर वो बहुत लकी हैं वो कंट्रीज, जैसे अपने कतर के पास हो गया, इंडिया के पास हो गया, पाकिस्तान के पास, जो भी कंट्रीज हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल सही,
0: ये एक बहुत अच्छा जरिया है सर ट्रांसपोर्टेशन का।
1: क्या बात है, क्या बात है। गावा भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहते हैं, तीन कदम हो जाए क्या जाते जाते, आप परेशान हो जाते
0: हैं। अरे
1: सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही अरे कोई बात नहीं, तो हमारे तफरी वाली बात है यार, और दूसरों तक तो पहुंच ही जाता है सवाल।
0: जादूगर होते हैं ना सर्वर भाई आप उस तरह के जादूगर हो जो बंदे को बिना रस्सी के साथ बांध लेते हो यार।
1: अरे कुछ नहीं यार, बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है। इंसान के हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं?
0: चार उंगलियां एक अंगूठा सर।
1: वेरी गुड। और ताली जो है वो हाथ से बजाते हैं या पैर से बजाते हैं?
0: ताली हाथ से ही बजती है सर।
1: ताली हाथ से ही बजती है। ओके। हिरन की आवाज को क्या कहते हैं, हिरन जो बोलता है?
0: नहीं पता सरवर भाई, नहीं पता यार, ऐसे ही मैं टाइम खराब करूं आपका।
1: अच्छा किसी और जानवर की पता है, दूसरे का पूछूं?
0: बिल्ली की म्याऊं बस बिल्ली की पता है।
1: अच्छा अच्छा बहुत आसान, जो जिसका काफ़ी मिला जुला हमें जवाब मिला है अभी तक का, और काफ़ी लोगों ने ढूंढने की भी कोशिश करी है, तो वो सवाल आपसे कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसी कौन सी, ये आप बता देंगे आराम से अगर पता है तो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगती तो हरी है निकलती लाल है?

0: लस्सी तो खाने वाली चीज है सर।
1: अब ये तो आपने ढूंढना है।
0: ये वाटरमेलन तो नहीं है सर कहीं?
1: नहीं, मतलब चलिए अगर वो है भी तो दूसरी चीज, क्योंकि काफी जवाब इसका वाटरमेलन आया है।
0: हरी मिर्च तो नहीं है सर? मिर्च
1: नहीं,
0: नहीं बस सर्वर भाई छोड़ो,
1: इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा।
0: नहीं नहीं, मैं भी टाइम नहीं खराब करना चाहता सर्वर भाई।
1: ऑलराइट गावा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट देन, तो चलिए साहब, ये हुई बातचीत अभी तक की, और तीन का दम भी जो है हमने शुरू कर दिया है यहाँ पर। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 443-443-77, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर तो बता दिया, मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 666-22-107। यहाँ पर खूब सारे मैसेजेस हैं भाई माशाल्लाह, तो वो भी अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए पहले इनसे बात करते हैं ताकि एक आध सवाल छोड़ दिया जाए और फिर आगे बढ़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम। फेंको और फेंको करके बोलता हूँ, जोर से फेंको, फेंक रहे हो भैया आप तो, ऐसे सामने वाला पकड़ देते यार, आखिर हो जाता है यार आप तो ऐसे। सिंधबाद
1: अरे भाई,
2: पहले सीरियल आते नहीं तो हम लोग देखते थे बड़े शौक से, छोटे छोटे थे तो वो सब भक्ति सीरियल आते ना, बड़ी जोर से गुर्रा के चिल्लाते थे।
1: ओह माय गॉड यार, ये है देखिए, जिंदा दिल, जिंदा दिल माशाल्लाह, क्या
2: कहीं पे मिनियाने वाली आवाज, कहीं पे चिघाड़ने वाली आवाज, कहीं पे आप क्या क्या आवाज पूछ पूछ के लोगों को तंग कर रहे हो यार आप सर्वर भाई।
1: बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, दो तो आपने बताई दी, अब यही आपने आगे यही बताना है।
2: पहले बता दिए तो आप उसको ले लिए लगता जवाब में।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंखा हवा देता है या पानी?
2: अरे भैया हवा देता, पंखा भी लगा के बैठे हैं एसी में।
1: किताब पढ़ते हैं या खाते हैं?
2: पढ़ते हैं जनाब।
1: चलिए, तो हिरन जो आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं?
2: उसको शायद मिमियाना कुछ ऐसे कहते हैं।
1: मिमियाता तो बकरी का बच्चा है,
2: वो तो बकरी का बच्चा है। मैंने इसे सुना कि वो हिरन की ऐसे मिमियाने के टाइप की बोलता है भाई, वो तो मैंने तो देखा नहीं उसको बोलते, तो मैंने सुना

0: अच्छा
1: गधे गधे की आवाज को क्या कहते हैं? गधे की आवाज को,
0: गधे की आवाज को उसको ओ, उसको चिंगाड़ के न चिंगाड़ना तो उसके हाथी की आवाज को कहते हैं भैया। हाँ गधे, गधे की आवाज के मतलब तो बहुत खतरनाक बुरी आवाज है उसका।
1: उसका एक लफ्ज है, उसका एक लफ्ज है, जैसे आपने बताया बकरी का, हाथी का आपने बता दिया, शेर का आपको पता ही है,
0: चिंगाड़ना कहते हैं उसको, मतलब हाँ दहाड़ना भी कहते हैं, मतलब चिंगाड़ता है शेर। ये सब हाँ दहाड़। अब ये भैया अब आप कहीं तो बोल दोगे कि
1: अच्छा ये बताइए सर भाई, ये अच्छा और आसान कर देता हूँ, बुलबुल की आवाज को क्या कहते हैं?
0: बुलबुल की आवाज आवाज को भैया नाम, उसका क्या नाम क्या
1: किया? वही तो है वही। अच्छा बोलती कैसे है बुलबुल? अल्लाह ताला आपको खुश रखे यार, बड़ा जिंदा दिल आदमी है आप, और इंशाल्लाह दुआओं से
0: बुलबुल की आवाज, हम लोग तो भाई गांव के रहने वाले हैं तो बुलबुल की मतलब और सारी चिड़ियों की आवाज को मतलब तकरीबन सुने हुए हैं, अब भाई बोल ना पाए अपने अपने जबान में तो बात अलग है।
1: अच्छा घोड़ा, घोड़े का पता, घोड़ा क्या करता है?
0: वो तो ही नहीं आता है।
1: वेरी गुड वेरी गुड, चलो यार एक तो बताया जो पता था उसके अलावा। घोड़ा हिनहिनाता है भाई, हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है, अब इसके अलावा वाले पूछूंगा सबसे, और घोड़ा है नहीं।
0: हाँ
1: नहीं बिल्कुल, ये तो सही था, और क्योंकि मैंने कहा थोड़ा तो आसान कर दो।
0: हाँ तैरने वाली बात दोस्त, वो तो यार वो आप बचपन का दिन ये याद दिला दिए, जब हम लोग डुबकी लगा के भागते थे और पकड़ने वाले मतलब इतने सांस बंद करके, इतना तमाशा होता था बचपन में कि वो यार वो दिन चले गए, वो वापस नहीं मिलेंगे अभी। हालांकि नदी तो है भी, मतलब हम लोग डुबकी लगा के इतना दूर तैर के और लोग पकड़ने के उसमें रहता था, उसमें छुआ छुआ ही होता था कि मतलब कोई जो छू लिया वो मतलब ये हो गया, हार हार गया, जो मतलब नहीं पकड़ा गया उसमें बहुत ये होता था इसका ये।
1: मगर एक अच्छा वक्त गुजारा आपने तैराकी में, इसका मतलब ये है
0: आपने नहीं गुजारा है, आप अपना भी बता दो।
1: हाँ, मतलब हमने यार ठीक है।
0: आपने क्यों ना पेट में साली हमको अकेले भैया भाई हमारी आज के ऊपर बस बस घंटे दो घंटे चार घंटे की फर्क है।
1: वाह भाई।

0: जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बात करने के लिए और दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।
1: यार कहीं महवत की तरह आप भी नहीं मतलब फंसा देना उस घोड़े, उस दिन घोड़े की आवाज, वो गधे जो तीन गधों के बारे में आपने पूछा था तो सबसे छोटा वाला गधा, लेकिन मैं यार उसमें चैट जीपीटी भी धोखा खा गया। मैंने उससे पूछा तो उसने भी नौ महीने वाले को, नौ साल वाले को बताया कि सबसे अकलमंद वही है। मैंने उसको बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो बोलता है यार फिर आप मजाहिया कर रहे हो। मैं बोला यार मजाहिया नहीं तो और क्या, आपके साथ में हमको
0: आपसे क्या हमारी रिश्तेदारी है।
1: हाँ उसने भी बोला नौ साल वाला। चलो और ठीक है,
0: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम, हैप्पी वीकेंड, खुश रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच अदर भाई, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, क्या कहने भाई, अल्लाह ताला खुश रखे और सभी लिसनर्स को, और इतने प्यारी प्यारी बातें, इतने अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ। भाई कॉल तो मुझे आ रही है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ मैसेजेस मैं शामिल कर लूँ, वरना ऐसा ना हो कि नाराज़गी का सबब बने ये बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप ऐसे में सोच रहे थे एफएम 107 पर सबसे सुपर शो पहले आपका है फिर आई थी। अरे यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, सभी शो अच्छे हैं इंशाल्लाह ताला। और यहाँ अरबाज खान है मेरे साथ, कहते हैं पाकिस्तान में तो जो मछली मिलती हैं मैं सिर्फ वही उनको सिर्फ वही पसंद हैं और बाकी हमें पता नहीं कि हलाल है हराम है। अच्छा ओके, मतलब दूसरे सी फूड के हवाले से ये एक लंबी बहस है। एनी हाउ ओके, पाकिस्तान में जो मछली हैं इनको बहुत पसंद है अरबाज भाई को। अरबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया और मोहब्बत है यार आपकी, और सभी प्रोग्राम इसीलिए हैं कि इंशाल्लाह आप सब लोगों को एंजॉय करवाया जाए और वक्त गुजारा जाए। कहते हैं रोजे में सी फूड डिस्कस करेंगे, खुदा का खौफ करें। साथ है हमारे साथ मोहम्मद साद बकाली। अरे साद भाई ये तो बस आज का दिन खासम खास था। अच्छा भाई यहाँ पर कोई एक वॉइस नोट है अजमल भाई का, अजमल भाई मैं ज़रूर सुन लूँगा क्योंकि अभी बात करते मैं नहीं सुन सकता। तौफीक भाई ने दोबारा से फोटोज़ वगैरह भेजे और इन्जॉय कर रहे हैं भाई आज का दिन स्विमिंग करते हुए, और यहाँ पर फोटो शेयर करें, क्या बात है भाई माशाल्लाह। खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए, फैमिली के साथ हैं इस वक्त। यूसुफ भाई ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग सरूर भाई, कैसे हैं आप? होप वेल एंड वेलकम टू सन एंड साउंड, दिल से देसी। यूसुफ भाई हमारे साथ कहते हैं हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग सभी को। सरूर भाई मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बस कभी बीच पे जाते हैं तो किनारे बैठ के लहरों को इन्जॉय करता हूँ, और सी फूड में बस फिश और प्रॉन ही खाता हूँ। हाँ एक बार क्रैब का सूप टेस्ट किया था, अदर देन दीज वी नेवर ट्राइड। तो क्रैब के सूप के बाद बंद कर दिया मेरे ख्याल में फिशिंग, आई नेवर डिड इट, रादर आई वुड से मुझे आती ही नहीं है। यूसुफ भाई क्या बात है भाई, यूसुफ भाई और एक अच्छी चीज़ है ये भी वक्त गुजारने के लिए। रमेश बाबू हैं हमारे साथ, कहते हैं हैप्पी वीकेंड सरवर जी, गुड मॉर्निंग, हैव अ लवली डे, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, भैया तो मॉर्निंग में था मैंने आफ्टरनून कर दी आते आते, और क्या बात है यार ये कहाँ पे हैं आप, हाय हैं हमारे साथ, हाय नाम तो बताए, नाम नहीं बताया भाई ने, और कहीं मेरे ख्याल में इस वक्त दोहा पोर्ट पर हैं ये 794 जिनके नंबर में है लास्ट, अगर बताएंगे तो नाम भी मैं ले दूंगा। कहते हैं सरूर भाई अस्सलाम वालेकुम, कॉल मी आई हैव ओके, कॉल करने के लिए कह रहे हैं भाई, लाइन दोनों पे इस वक्त कॉल आ रही है और मैं डर रहा हूं कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं। कहते हैं ये अच्छा जवाब दिया है यहां पर इन्होंने एक पहली का, खां साहब हैं, खां साहब करीब हैं आप, बट जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिली। ओके इन्होंने भी जवाब देने की कोशिश करी है, मोहम्मद जहीर ने, कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा जहीर भाई ने लिखा क्या है। इमरान है, कहते हैं लगता तो हरी है लेकिन निकलती है लाल, और ये है आंसर, इमरान ने बता दिया है सही जवाब। ओके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सरूर भाई? कल का अदनान वाला सवाल का जवाब ये है कि अदनान की हाइट है इतनी है जो इतने तक जाते हैं एंड उसका है वो, हाँ बिल्कुल दोनों ही सवाल यार बिल्कुल सही है। आरिफ अंसारी हमारे साथ, आरिफ भाई बिल्कुल सही जवाब दिए। चलो भैया बढ़ जाता हूँ आगे से पहले कि मेरी पिटाई हो जाए। हेलो सलाम वालेकुम, अरे ये तो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, मेरे ख्याल में खुद भी होल्ड पे रख दिया है क्या फोन, ओके, आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि आवाज नहीं आ रही यहाँ पे, देखते हैं।

0: कौन है हमारे साथ?
1: कौन है हमारे?
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: आरिफ अंसारी।
0: हाँ, आरिफ भाई, अभी आप ही के पास से गुजरा हूँ मैं, मेरे ख्याल में मैसेज वाले आरिफ अंसारी, जिनका मैसेज पढ़ा अभी मैंने।
2: हाँ,
0: ओके, तो दो सवाल के जवाब तो आपके सही निकल गए, अब आपसे अलग पूछूंगा मैं कुछ। चलिए साहब, तो रेडी हैं आरिफ भाई?
2: मुश्किल है, पूछिए।
0: ओके, पानी पिया जाता है या पहना जाता है?
2: पानी तो पिया जाता है।
0: ओके, आंख देखती है या सोती है?
2: वैसे तो आग का काम देखना है, पर बंद कर ले तो सो भी जाते हैं।
0: वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक आदमी मई में पैदा हुआ लेकिन उसकी बर्थडे अगस्त में आती है, ऐसा कैसे हो रहा है?

0: हिरन की आवाज को क्या कहते हैं? ये जवाब अभी तक कोई नहीं दे पा रहा।
1: हिरन तो मैंने तो कभी सुना नहीं है हिरन की आवाज।
0: अच्छा, उसका एक लफ्ज है वो बोला जाता है। अच्छा, शेर जैसे मालूम है, शेर की आवाज को क्या कहते हैं?
1: वो तो दहाड़ता है ना।
0: ओके, घोड़ा?
1: घोड़ा इसको पास कर दिया जाए।
0: गधा?
1: आप गधे से गधे का आवाज़?
0: नहीं नहीं नहीं यार, अरे यार क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आरिफ भाई। नहीं, इसका भी एक लफ्ज है, इसका एक लफ्ज है। अच्छा, बकरी का तो पता होगा,
1: बकरी तो मैं आती है ना।
0: ओके, आज अभी आपसे सारे कवर करता हूँ। चिड़िया
1: तो चीपी करती है साथ।
0: चीपी?
1: नहीं,
0: चीपी तो खैर नादिया ज्यादा करती हैं, अगर मेरे साथ होती हैं आगे बढ़ जाते हैं। कबूतर?
1: कबूतर तो चिड़िया में आ जाएगा।
0: हाँ ठीक है, मगर उसकी आवाज को हम इस्तेमाल करते हैं अलग से। ओके, सांप?
1: सांप बोलता भी है।
0: बोलता है? कोई करीबी दोस्त याद आ गया लग रहा है। ओके,
1: ऐसे दोस्त तो नहीं रहे हैं। सांप वाले का नाम है, किसी दोस्त ने अभी तक किया नहीं है।
0: भाई वाह, चलिए खैर आपने पहले ही पूरा कर दिया है तीन का दम। अब इंशाल्लाह ताला चलिए, मैं ज्यादा सताना नहीं चाह रहा आरिफ भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड भाई। ये थे आरिफ भाई हमारे साथ, और क्या कहते हैं, ब्रेक पे चला जाए। चलो भाई एक और साहब से जुड़ते हैं उसके बाद। हेलो, सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
2: जी, मेरा नाम
0: है भाई
2: जी, शमशीर है मेरा नाम।
0: शमशीर?
2: जी जी।
0: यार क्या जबरदस्त नाम है यार,
2: लंबा टाइम। जी जी, बहुत लंबे टाइम से वापस आए हैं। फिर हम लोग यानी 7-8 साल पहले सुनते थे रेडियो एफएम।
0: अच्छा,
2: फिरोज भाई ये सब हमारा एक टीम था, हर दिन शाम में सुन के हम लोग कॉल करके।
0: वाह,
2: ऐसा जो भी है वो।
0: तो आप दोहा में मौजूद नहीं थे अभी बीच में, और काफी टाइम बाद वापसी
2: जी, अभी आगे जी 2 महीने बाद आए हैं।
0: अच्छा,
2: चले गए थे
0: 19
2: में।
0: ओके ओके ओके,
2: 26 में आए
0: भाई। वाह, शमशीर साहब,
2: 107 तो
0: अहलन व सहलन। शमशीर या शमशीर?
2: शमशीर यानी वो
0: डबल दोनों ही तरीके से नाम लिया जाता है, और बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात हो रही है, और आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो गए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सही वक्त पे मैंने कनेक्ट भी कर दिया। तो मेरे ख्याल में
2: मुझसे कर रहा था।
0: अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में मुझसे तो पहली बार ही बात हो रही है आपकी।
2: नहीं, अभी एफएम में जब से आया हूँ सुन के अभी पहली बार कॉल लगा रहा हूँ।
0: हाँ, ओ ओके ओके ओके, चलिए
2: कोशिश कर रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया।
0: अहलन व सहलन भाई, मैं आपको वेलकम कहूंगा कतर में भी और FM 107 पे भी। और आप तो हमारी फैमिली से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आगे
2: पहले से जुड़े हैं। पहले इनाम की भी जो ये होती थी उस टाइम में भी हम लोग को एक बार इनाम भी निकला था।
0: अच्छा,
2: 500 रियाल हम लोग जाके लेके भी आए थे उधर से।
0: ओके,
2: 500 रियाल का एक बार इनाम भी निकला था।
0: अच्छा, ये पहले की बात बता रहे हैं आप, काफी है।
2: जी जी, पहले की बात जब हम लोग थे इधर।
0: हो, क्या बात है। तो पहले जब आप रहे थे कतर, कितने साल रहे थे
2: उस टाइम? 10-11 साल था शायद।
0: ओके, माशाल्लाह, तो एक लंबा वक्त गुजारा है भाई आपने तो कतर।
2: कोरोना था, कोरोना में ही हम लोग का जो प्रोडक्ट था पूरा होममेड था, इसलिए वो ज्यादा लंबा ये नाक किए बगैर चले गए, यानी इंतजार नहीं किया।
0: जी, मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह ताला आसानी करे भाई, और आगे का सफर आपका और भी ज्यादा खूबसूरत हो। पिछला वक्त जैसा गुजरा है, अब दोहा और भी ज्यादा बेहतर और खूबसूरत, और दिन पर दिन बेहतरी और खूबसूरती लाता चला जा रहा है अपने अंदर।
2: 107 सुनते रहेंगे तो दिन ब दिन होती रहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या बात है भाई, शमशेर भाई की। तो शमशेर भाई, यहाँ पर हम
2: एनर्जी आ जाती है ना, जो आप जो आवाजें निकालते हैं, जो कष्ट जो लिसनर को आप पूरा पूरा सपोर्ट जो देते हैं,
0: एलन वस एलन सर,
2: अंदर से फुर्ती आ जाती है।
0: कोशिश यही

0: रहती है कि बस आप लोगों को एंटरटेन करते रहें और दुआओं में याद रखिए। चलिए तो खेलेंगे तीन का दम मेरे साथ
1: इंशाल्लाह। वो तैरने की बात भी आप जो बता रहे थे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं जी। क्या कहना चाहते हैं उसके हवाले से?
1: नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वही जो वो बता रहे थे, हम लोग जो अभी जनरेशन में है
0: जी,
1: यानी कि हम लोग पुराने भी देखे हैं, अब जो चल रहा है न्यू जनरेशन, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जनरेशन में यही के वो जो पुराने लिसनर बता के 99.9 सबको तैराकी आती थी।
0: सही,
1: मैं भी अपने आप खुद दोस्तों के साथ जाके सीखा हूँ और मेरे दो छोटे भाई हैं उनको मैं खुद लेके
0: आया हूँ। ओके, क्या बात है,
1: माशाल्लाह
0: क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। चलिए सर, तो बड़ा अच्छा लगा और इंशाल्लाह आगे भी अब हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तो ये बताइए सर कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बर्फ गर्म होती है या ठंडी?
1: ठंडी।
0: कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं?
1: फरवरी।
0: म्यूजिक बच गया, इसका मतलब ये जवाब गलत हो गया चमचेर भाई।
1: 28 दिन का महीना तो फरवरी होता है।
0: हाँ, थोड़ा सा
1: आप... साल में
0: जी थोड़ा सा इस पे
1: एक बार कभी 29 का भी आता है
0: गौर करेंगे तो मेरा सवाल में ही जवाब है,
1: तो फरवरी है,
0: तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है?
1: जरूर इंशाल्लाह जी।
0: और बहुत अच्छा लगा,
1: आवाज के बारे में कुछ बता रहे थे आप,
0: किसके बारे में? आवाज, अच्छा आवाज तैयार करके लाए?
1: नहीं, मैं तो वो हिरन वाला तो नहीं अभी तक पकड़ पाया,
0: हिरन वाला नहीं पकड़ पाया। अच्छा चलिए ठीक है,
1: पकड़ पाया जी।
0: ओके चलिए तो पूछ लेता हूँ, सांप का बता सकते हैं?
1: वो गधे का सबसे मिस हो गया था, वो ढींचो ढींचो कुछ करता है ना ऐसे
0: तो बोलते हैं ढींचो, तो आवाज उसकी हम मैच कर रहे हैं, उसके लिए एक लफ्ज है उसकी आवाज के लिए जो कहा अच्छा, जाता अच्छा, है अच्छा, जी
1: जी। आपको तो नहीं पता है सांप को, यानी उसको क्या बोलते हैं पता नहीं है, यानी हम लोग की लैंग्वेज में भूतकारे देता ऐसे कुछ बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसे बोलते।
0: चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर भाई हमसे जुड़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल भाई, सेम हेयर, और इंशाल्लाह आगे भी बातचीत होती रहेगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो ये थे शमशेर साहब, और माशाल्लाह पहले भी वक्त गुजार के गए 11 साल, और फिर माशाल्लाह से कतर की मोहब्बत इनको खींच लाई है। तो भाई अब एक छोटा सा ब्रेक, चलिए यार निराश नहीं करते हैं और कनेक्ट करते हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
2: सलाम
0: अहलन व सहलन, अबरार भाई हैं क्या हमारे साथ?
2: माशाल्लाह
0: माशाल्लाह,
2: लगता है चमन
0: ब्रश खा रहे हैं आप। नहीं है आपके साथ या है?
2: नहीं, हानिया को जस्ट ड्रॉप किया, वो बोल रही थी मैंने आपसे बहुत बार ट्राई किया। अच्छा, आप दूसरा कॉल पे,
0: अल्लाह ताला खुश रखे भाई। तो रेडी हैं अबरार भाई तीन के दम के लिए?
2: अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ सौ रेडी हूँ।
0: चलिए यही पे आते हैं अभी घूम फिर के। फुटबॉल गोल होती है या चौकोर?
2: चारकोल।
0: क्रिकेट टीम में मैदान के ऊपर कितने खिलाड़ी होते हैं?
2: 11।
0: ओके, तो क्या कहते हैं गधे की आवाज को क्या कहा जाता है?
2: वही तो मैं बोला आपको, डेचू डेचू।
0: नहीं, ये तो हम आवाज निकाल रहे हैं, इसका जो एक वर्ड है, एक जो लफ्ज है वो क्या है?
2: आइडिया नहीं है सरवर भाई, ये छोड़े ना दूसरा। अच्छा कोई इजीली पूछो, एक दिन तो पास हो जाऊं।
0: अच्छा आप चलिए इजी और इजी बिल्कुल, आप एक बॉल को किस तरफ फेंकेंगे कि वो 20 मीटर भी जाकर आपके पास वापस आ जाए?
2: ऊपर।
0: वेरी गुड, सही जवाब। देखिए आसान कर दिया नहीं कर दिया,
2: वही सेम
0: गिफ्ट
2: आसानी तरीके से
0: देते हैं। क्या बात है यार। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।
2: जरूर जरूर
0: सर
2: भाई, हैप्पी वीकेंड,
0: अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज भाई। अब हर हाल एक ब्रेक। हबीबो हलमते हबीबो अनिरुद्ध रविचंद्र और जोनिता गांधी एक दूसरे का साथ निभाते हुए एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। सन एंड साउंड पे फिलहाल सर्वर मिर्जा आपके साथ, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना

करना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।

वेलकम बैक, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम एंड हैप्पी हैप्पी वीकेंड सभी को भाई। और बिल्कुल सन एंड साउंड पे इस वक्त सरवर मिर्जा आपके साथ, जहां पर साउंड इस वक्त आप लोगों की गूंज रही है। और भाई मैंने जरा सा ब्रेक पे मैसेजेस पे नजर डाली तो यहां पर मेरे साथ कोई साहब हैं जो थोड़ा नाराज दिख रहे हैं मुझे। आपका नंबर पाकिस्तान का है और नंबर में आखिर में 9241 आता है, और कोई मैसेज आपने लिखा है जो वो इस तरीके से है, आई हैव सेंड यू वॉइस बिफोर अ टाइम, सेंड मी बैक। तो मैं समझ नहीं पाया ये मैसेज मेरे लिए है ये, क्योंकि ये पुराना मैसेज है। और अभी का आपका मैसेज जो आया वो थोड़ा नाराजगी भरा है। तो और आप पाकिस्तान से हमारे साथ मेरे ख्याल में जुड़े हुए हैं, आपका कोई अगर नंबर कतर का है तो वो भी शेयर कीजिए। और क्योंकि यहाँ पर डिसअपीयर मैसेजेस पे लगा रहता है हमारा जो टाइमर है ना, क्योंकि माशाल्लाह से लाखों लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो ज़रा सा मेमोरी वगैरह का भी फ़ोन का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके पुराने मैसेजेस यहाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहे हैं, अगर आपने कोई बात कही है तो ज़रूर मुझे दोबारा बताएं। और अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगर कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ। ओके, इकराम हसन है हमारे साथ, गुड आफ्टरनून सरवर, प्रोग्राम आउट क्लास सर, तुसी ग्रेट हो। अरे सर इकराम भाई, इकराम हसन साहब, मोहब्बत नवाजिश, और ये तो आपके तो फैल से है। मेरा इनाम भी निकाला लेकिन सेकंड कॉल नहीं आया। 12 महीने 28 दिन हो गए। कौन है हमारे साथ? रईस खान है। रईस भाई जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप कॉल मिस हो गई तो मैं क्या बता सकता हूँ यार, इंशाल्लाह ताला दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। हिरन की आवाज को हिंदी में ये कहते हैं, यार क्या बात है, क्या ढूंढ के निकाला है। और इंग्लिश में ये कहते हैं, गधे की आवाज को भी ये कहते हैं। भाई देखिए, हिरन की आवाज़ में थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, गधे की आवाज़ को तो यही कहते हैं। कौन है हमारे साथ बता दूँ? इमरान भाई। इमरान भाई हिरन तक तो सही है, गधे मतलब गधे तक सही है, हिरन की अभी यार मुबीन भाई कहाँ? यार मुबीन भाई कैसे हो रहा है ऐसा, एक सदी गुजर गई और आप गायब हैं। आपके वॉइस नोट्स मैंने सुन लिए हैं, कहते हैं

0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरवर और नाजिया, नाजिया को अभी भी याद कर रहे हैं, नाजिया जबकि इंडिया में है इस वक्त, और हम मेरे साथ इस प्रोग्राम में मुबीन भाई सफा होनी चाहिए थी, वो भी इस वक्त नहीं है यहाँ पर, सब छुट्टी घूम रहे हैं मुझे काम पे लगा लगा के। तो इंशाल्लाह ताला वापस आने के बाद अब सफा के साथ ये प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। नाजिया जो है वो मॉर्निंग की ड्यूटी निभा रही है, महविश के साथ बता दूं तो आप शायद छुट्टी पे गए हुए थे, जो आपने मैसेजेस शेयर करें उससे तो देख के यही लग रहा है। अल्लाह ताला फैमिली को अच्छा रखे, खुश रखे और आप सबको एक साथ रखे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और कहते हैं सभी को सलाम कहते हैं और हैप्पी वीकेंड कहते हैं। एमबीबी अब मिस नहीं करना है बिल्कुल, और मैंने आपको बहुत मिस किया, थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। चलिए भाई किसी को कनेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कौन है हमारे साथ?
1: जी मैं रईस अहमद बोल रहा हूँ, काफी टाइम के बाद आपसे कनेक्ट किया। मैं पहले रहता था आपसे कनेक्ट, मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं सुन पा रहा था, लेकिन फिर से जब आया है तो मैंने ट्राई भी किया था, मैंने मैसेज भी किया था आपको कि मैं नंबर भूल चुका हूँ जिस नंबर पे मैं कॉल करता था, वॉइस नोट मैंने भेजा भी था व्हाट्सएप पे आपको आई थिंक लास्ट वीक।
0: ओके माई बैड एंड आई एम सॉरी कि हमसे मिस हुआ, क्योंकि प्रोग्राम का

0: आई थॉट
1: जब ड्राइव करते हैं तो कम से कम उस वक्त
0: हम मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए खैर, आपको सिलसिला तो पता ही है, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अब आपकी परेशानियाँ दूर हो गई होंगी इंशाल्लाह ताला।
1: अभी भी आपको याद है माशाल्लाह से, इस बात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपको याद है कि मेरे साथ क्या परेशानी चल रही थी। हाँ लगभग मतलब 50% वेट कर रहा हूँ कि सामने वाला पार्टी जो है समझ जाए चीजों को।
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करने वाले हैं, अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ लाए और आपको हर परेशानी से दूर करे इंशाल्लाह ताला, यही दुआ है रईस भाई। तो आइए तैयार हैं 3 कदम के लिए रईस भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रोज आपका 10 दिन से सुन रहा था और कनेक्ट भी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था।
0: अच्छा ऐसा है, चलिए साहब तो फिर तो मजा आने वाला है। फिर तो पेन से लिखते हैं या कपड़े धोते हैं?
1: पेन से तो लिखते हैं।
0: अच्छा इसमें ये भी कहा जा सकता था कि पेन अगर कपड़ों पे लग जाए तो फिर कपड़े धोने पड़ते हैं। चलिए साहब,
1: यहाँ पे आपने पूछा लिखते हैं या बोलते हैं।
0: मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, मगर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं फंसा भी सकता था, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, शर्ट पहनी जाती है या पी जाती है?
1: क्या बोला सर आपने, शर्ट पहनी जाती है या
0: पी जाती है?
1: पी जाती है
0: जी,
1: शर्ट तो पहनी जाती है ना।
0: शर्ट तो पहनी जाती है, सही बिल्कुल। 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, 3 बुझ गई, कितनी बची?
1: 10 मोमबत्तियां जल रही है, 3 बुझ गई तो 7 बची। सॉरी मोमबत्ती तो 10 ही बचेगी, लेकिन अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि कितनी जल रही है तो 7 जल रही है, अब बची हुई मोमबत्ती तो 10 ही रहेगी।
0: कोशिश बहुत अच्छी करी फिर भी जवाब नहीं मिला रईस भाई। 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, 3 बुझ गई, कितनी बची?
1: 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, 3 बुझ गई।
0: चलिए अब इंशाल्लाह इसका जवाब आपसे मैं संडे में लूंगा रईस भाई, ठीक है, और बताऊंगा जरूर इंशाल्लाह।
1: मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि आप कुछ और पूछ लें जो आपने पिछले हफ्ते या फिर
0: असल में वक्त हुआ जाता है और मुझे इजाजत लेनी है रईस भाई, वरना जरूर पूछ लेता। अब इसीलिए तो यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि अब आप संडे में जरूर तशरीफ लाइएगा तो फिर आपसे लंबी बातचीत भी होगी और गेम भी खेलेंगे दोनों भाई मिलकर, ठीक है। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बत का। माजरत चाहता हूँ जिन लोगों से मेरी बात नहीं हुई, कॉल आप लोगों की अभी भी आ रही है और जो दिख रही है वो 1106 इन द लास्ट। इंशाल्लाह अब हम लोग संडे में बात करेंगे और वहीं आप लोगों के मैसेजेस भी जो छूट गए हैं, माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर संडे में तशरीफ लाइएगा, आप लोगों से बात होगी, मुलाकात होगी, बातचीत करेंगे और इसी तरीके से हंसते हंसते आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल अब से थोड़ी सी देर में आप सुनने वाले हैं स्पोर्ट्स राउंडअप, जहां पर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमीन भाई आपको दुनिया भर के खेल की खबरों से आगाह करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं। तो जरूर हमारे साथ बने रहिए और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। गुस्से पे काबू पाना जरूरी है, मैंने भी बहुत काम किया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम आगे भी कर सकते हैं। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी एंड हैप्पी वीकेंड कतर।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
3: एब्सोल्यूट सिनेमा,
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त हो चला है स्पोर्ट्स राउंड अप शो का। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। स्टूडियो घड़ी पर 1:01 और स्पोर्ट्स राउंड अप यानी पूरे हफ्ते का जितने भी कुछ हुआ है स्पोर्ट्स की दुनिया में उसी का एक निचोड़ है और इसी शो में इसी प्रोग्राम में आप लोगों से शेयर करता हूं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस हो या ओलंपिक्स, जो कुछ भी हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में सब कुछ मिलेगा यहां आपके इस फेवरेट शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंड अप। लेकिन टॉप 5 हाइलाइट्स थोड़ा बनता है और लाजमी है कि वर्ल्ड कप का जो माहौल है, वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो माहौल है उसी के बेस्ड पर ही टॉप 5 हाइलाइट्स जो है मैं आपसे शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। आप लोग जिन्होंने भी अभी रेडियो ट्यून इन किया है ऑन FM 107, ये क्वेश्चन, ये सवाल सुन लीजिएगा कि वर्ल्ड कप फुटबॉल जारी है, आप लोगों को पता है, एंड वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ओल्डेस्ट गोल स्कोरर कौन है? वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ओल्डेस्ट गोल स्कोरर कौन है? परसों एक मैच हुआ था, पोर्चुगल का मैच था एंड पोर्चुगल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से मात दिया और उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस गोल्स की बदौलत अगर मैं बात करूं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकेम दी

the oldest footballer 2026 में मैं सही हूँ, oldest goal scorer मैं सही हूँ, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले एक खिलाड़ी था जिनका मैं नहीं नाम बताऊंगा, नाम ही तो बेसिकली आप लोगों को बताना है, और वही है पूरे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा एज में, सबसे ज़्यादा मतलब उम्र में जो गोल किया था इस खिलाड़ी ने किया था, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी था। एक ही मैं आपको लीड दे सकता हूँ, एक सीक्रेट लीड जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करती है। एंड ये सवाल के जवाब जो है आप मुझे 666-22-107 पर दीजिएगा और आपका नाम ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके साथ कि वर्ल्ड कप का जो जायज़ा लूँ, उससे पहले बता दूँ कि रोनाल्डो ने यू नो फाइनली ही हैज़ टेकन ऑफ, ही हैज़ जस्ट शो टू द वर्ल्ड की वाई ही इज़ क्रिएटेड, ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर्स। फाइनली इन्होंने गोल किया और गोल करके सबको थोड़ा खामोश कर दिया कि बहुत तनकीदे हो रहे थे भाई ये रोनाल्डो क्या ख़त्म हो गया 41 साल की एज में, ये क्या बिल्कुल ख़त्म, लेकिन नहीं ऐसा हुआ नहीं है। एंड रोनाल्डो ने एक रिकॉर्ड भी किया था और ये रिकॉर्ड को मैं आपको बता देता हूँ कि मुसलसल 6 वर्ल्ड कप इवेंट्स में गोल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एन यूनिक रिकॉर्ड, एंड दैट ओनली बिलोंग्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 2 गोल्स करके उन्होंने ये कारनामा हासिल किया। ये परसों वाले मैच की बात है। और पोर्चुगल फाइनली जीत के साथ अब वो यू नो कॉम्पिटिशन के अगले राउंड के लिए जगह बना लिए, 5-0-5-0, यानी उज़्बेकिस्तान मतलब मुझे ये लगा था कि उज़्बेकिस्तान विल शो सम काइंड ऑफ एन फाइट। एक गोल भी हुआ था उज़्बेकिस्तान की जानिब, लेकिन उस गोल को टर्न ऑफ कर दिया गया, यानी उस गोल को एक फाउल के बलबूते पर यू नो उस गोल को नलीफाई कर दिया गया, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया था। ज़बरदस्त गोल था, टॉप ऑफ द बॉक्स पे ज़बरदस्त एक गोल हुआ था, लेकिन फाइनली क्या करें, उज़्बेकिस्तान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दोस्तों बाकी ग्रुप मैचेस कल भी हुए, आज सुबह भी अगर ग्रुप मैचेस पे अगर नज़र डालें तो ब्राज़ील की वापसी, ब्राज़ील की जो वापसी से ज़्यादा नेमर की वापसी हुई है, और नेमर रोते हुए नज़र आए, आई मीन ही बिकेम सो इमोशनल। एंड फाइनली ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को एक तरफा, मैं कहूँगा हाँ एक तरफा मैच है, विनीसियस जूनियर ने 2 गोल्स किए और कुल उनके इस टूर्नामेंट में 3 गोल्स हो चुके हैं। एंड नेमर ने कुछ खाता तो नहीं खोला, लेकिन नेमर की वापसी से ब्राज़ीलियन टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ मिल गया है। एंड ब्राज़ील दे हैव फाइनली क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। एंड इसी के साथ मोरक्को की बात करना लाजमी है। मोरक्को दोस्तों बता दूं कि अगर अफ्रीकी या अरबी टीमों के अगर कोई भी यहां पे लीडर है वो है मोरक्कन टीम, और मोरक्कन टीम अरब दुनिया के जितने भी टीम है उसको लीड करते हुए मोरक्को हैज़ क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। एंड कमाल का परफॉर्मेंस हैती के अगेंस्ट में 4-2 से जीत, एंड इस 4-2 से जीत से ये साबित किया कि मोरक्को वाई दे आर द अनडिस्प्यूटेड टॉप टीम्स इन अफ्रीका एंड द अरब रीजन। दोस्तों काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं अबाउट मोरक्को, मोरक्को की अगर हम थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों को कि फीरा अरब कप चैम्पियन है 2025 में जो पिछले साल हुआ था, अंडर 23 एफकॉन चैम्पियन है, अंडर 23 एफकॉन चैम्पियन 2025, अंडर 17 एफकॉन चैम्पियन इन अफ्रीकन चैम्पियन है अंडर 25। तो अंडर 17 एज ग्रुप, अंडर 20 एज ग्रुप, अंडर 23 एज ग्रुप, पूरे 2025 में उन्होंने सारे टूर्नामेंट्स को अपने जेब में ले लिए। फुटसॉल में भी दे आर द चैम्पियन अफकॉन में, फुटसॉल मीन्स फाइव अ साइड टीम की जो बात होती है, वीमेंस फुटसॉल में भी दे आर द चैम्पियन, और वीमेंस अफकॉन यानी अफ्रीकन कंटिनेंटल चैम्पियनशिप जो है उसमें भी 2024-2025 के चैम्पियन। और इसके साथ साथ एक बात यह है कि अंडर 20 अंडर 20 वर्ल्ड कप चैम्पियन मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन टीम है। अंडर 20 की जो वर्ल्ड चैम्पियन की बात हो रही है ये यूथ वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, नॉट अंडर 17 है। और इसके साथ ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और उसके साथ साथ लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है सीनियर इंटरनेशनल हिस्ट्री में, और लॉन्गेस्ट अनबीटन मतलब उनको हराया नहीं पाया अनबीटन स्ट्रीक है इन सीनियर इंटरनेशनल हिस्ट्री में। सो दोस्तों इसी जितने भी जो फैक्ट्स है इससे साफ साफ साबित होता है कि मोरक्को इज़ देयर टू स्टे। एंड किसी ने कहा भी था, किसी एक्सपर्ट्स ने, कि मोरक्को का चांस है, हो सकता है कि फाइनल तक पहुँच जाए। और ये और बात है कि मोरक्को क्या करता है नहीं करता है हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।
और अगर दूसरे मैचेस पे थोड़ा सा नज़र डालूं तो थोड़ा सा हमें लगता है कि यू नो थिंग्स आर गोइंग ग्रेट फॉर सम ऑफ द जो टॉप टीम्स. स्विट्जरलैंड के बारे में हमने पहले ही कहा था कि स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द टॉप टीम्स और फ्रॉम ग्रुप बी स्विट्जरलैंड हैज़ क्वालिफाइड. कल कनाडा को 2-1 से हरा दिया एंड दे हैव टॉप द ग्रुप. और ग्रुप टू में ग्रुप बी में कल मैच हुआ था हमारा कतर और

बॉस्नियन हर्जोगोविना। बॉस्नियन हर्जोगोविना टीम के अगेंस्ट में कतर की जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई मींस मैच में जो जिस तरह की फाइट बैक करते हुए कतर ने एक गोल कन्वर्ट किया, एक गोल यू नो दे हैव पुल्ड वन गोल, और वो हसन अल हैदूस का फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल था। एक मेमोरेबल मोमेंट था फॉर कतर फुटबॉल टीम। और उस मैच में कतर ने गोल कंसीड करने के बाद जिस तरह से फाइट बैक किया था, और अगर पेड्रो का वो शॉट अगर सेकंड बार पोस्ट पे अगर लग के रिबाउंड नहीं होता तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकता था। एंड हम तो आज भी ये बातें करेंगे कि कल भी ये बातें करेंगे कि अगर पेड्रो ने अगर वो गोल किया होता, 2-2 होता वो मैच, और 2-2 से हो सकता है कि कतर इस मैच में हार नहीं बल्कि जीत के साथ वापसी करती, और हो सकता था कि कतर अगर ये मैच जीत जाती तो हो सकता था कि बेस्ट ऑफ 8 थर्ड प्लेस टीम्स में कतर का नाम शुमार होता और कतर के पास एक चांस, एक मौका होता। ओवरऑल अगर मैं एज अ न्यू ऑफ कतर टीम परफॉर्मेंस इन 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो मुझे इतना ही लगता है कि कतर की जो परफॉर्मेंस रही है 2022 से 2026, देयर इज एन एलिवेशन ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस की यार्ड स्टिक पर देखें तो कतर फुटबॉल टीम हैज ग्रोन टू दैट स्टेचर। आज कतर जिस तरह से फाइट बैक, जिस तरह से टेक्निकलिटीज़ को उन्होंने जो मुजाहरा दिखाया है टीम ने, तो उससे साफ साफ साबित होता है कि आने वाले वक्त में कतर वर्ल्ड कप के लिए मुसलसल तीसरी मरतबा भी क्वालिफाई कर सकती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू द कतर टीम, क्योंकि अगले साल 2027 एशियन कप होने जा रहा है सऊदी अरब में, तो वहाँ पर कतर दो बार के एशियन चैंपियन और मौजूदा एशियन चैंपियन है। कतर टीम विल डेफिनेटली स्टार्ट अफ्रेश, यानी दोबारा जो है एक फ्रेश माइंड के साथ शुरू करेगी ये टीम। तो इसी जो अपडेट्स आप लोगों से मैंने शेयर किया है, ये भी आप लोगों को एक उसमें एक ऐड मज़ीद एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जितने भी मैचेस हो चुके हैं, अभी एक फाइनल स्ट्रेच है, फाइनल स्टेज अब ग्रुप मैचेस के, अब जो ग्रुप मैचेस के बाद राउंड ऑफ 32 यानी 32 टीमों के दरमियान जो मुकाबला, जो नॉकआउट मुकाबला है, वो 28 तारीख से शुरू होने हैं, और पहला मैच जो होगा मोरक्को का होगा अगेंस्ट मेक्सिको। सो वील हैव टू वेट, एंड माफ कीजिएगा, पहला मैच जो होगा कनाडा का मेक्सिको से होगा, और ये राउंड ऑफ 32 का पहला मुकाबला होने जा रहा है 28 जून से। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा डेफिनेटली इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और अपडेट करूंगा। लेकिन एक सवाल जो मैंने पूछा था उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में सबसे ओल्डेस्ट गोल स्कोरर, उनका नाम बताइए। 666-22-107, कीप लिसनिंग टू FM 107, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन।

0: आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
1: ये वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और स्पोर्ट्स राउंड अप में स्पोर्ट्स की बात हो रही है। देखा जाए तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप में जैसे मैंने बताया कि राउंड ऑफ 32 इज अबाउट टू स्टार्ट। 28 जून से यानी इतवार से शुरू होने जा रहा है। नॉकआउट फेज है दोस्तों, यहाँ पे कोई ग्रुप मैचेस नहीं है। हार और जीत में सिर्फ एक गोल का फासला होता है और यहाँ पे जिस टीम की हार होगी उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दे टोटली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, कोई मौका नहीं मिलेगा। एंड इसमें बता दूं कि रेगुलेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ी सी तब्दीली है। मजीद आई मीन अगर मैच गोललेस रहा तो टाई ब्रेकर से पहले एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 15-15 मिनट के जो मैचेस होते हैं, आई मीन फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, वो 30 मिनट के मैचेस और आई मीन मैचेस क्या, आई मीन 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम प्लस अगर उसमें भी अगर 1-1 या गोललेस यानी 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 अगर पूरे रेगुलेशन टाइम यानी 90 मिनट के बाद अगर है तो एक्स्ट्रा टाइम में भी अगर कोई टीम विक्ट्री यानी कोई टीम को जीत नहीं मिलती है तो आपको देन टाई ब्रेकर शॉट्स लेने होंगे। 5-5 शॉट्स वो बड़े खतरनाक होते हैं और हमने कतर वर्ल्ड कप में हमने देखा भी है, बहुत से बड़े बड़े तुर्रम खां जो है हिल गए थे शॉट्स लेने में। स्पेन का मैच याद होगा आप लोगों को मोरक्को के साथ, तो एक यादगार मैच था वो। एनीवे मोरक्को का मैच है 30 जून और अभी तक जो उनके अगेंस्ट में जो टीम है, जो ओपोनेंट टीम है उसके बारे में हमें पता नहीं है। जर्मनी हैज आल्सो मेड इट टू द राउंड ऑफ 32 और उनका मैच है 29 जून को और उनके अगेंस्ट में जो ओपोनेंट है वो भी हमें पता नहीं है बिकॉज अभी कुछ ग्रुप मैचेस अभी भी बाकी हैं। और यूएसए यानी जो मेज़बान टीम यूएसए वो भी जगह बना चुकी है, ब्राज़ील भी एंड मेक्सिको भी, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना, तो ये तमाम टीमें जो हैं ऑलरेडी राउंड ऑफ 32 में जगह बना लिए हैं। अब बात है कि राउंड ऑफ 32 के लिए जो ऑब्वियसली सेकंड टीम जो है ग्रुप के वो भी वो टीमें भी मौजूद होंगे, उसके साथ साथ थर्ड प्लेस जो टीम्स होंगे जो तीसरे पोजीशन में मैच टूर्नामेंट यानी ग्रुप स्टेज जो ख़त्म किया है उसमें भी थोड़ा जायज़ा लिया जाएगा। जैसे कि ग्रुप बी के बारे में अगर मैं बताऊं और ग्रुप ए के बारे में मैं बताऊं तो यहां पे सारे मैचेस हो चुके हैं, ग्रुप सी में भी सारे मैचेस हो चुके हैं। तो ए बी सी ग्रुप में जैसे कि स्विट्जरलैंड ऑलरेडी दे आर इन टू द फाइनल राउंड और 32 आई मीन फाइनल राउंड मतलब राउंड ऑफ 32 में ऑलरेडी जगह बना चुके हैं 7 पॉइंट्स के साथ। कनाडा के पास 4 पॉइंट्स है, बॉस्निया हर्जेगोविना के पास 4 पॉइंट्स हैं। अब ये मैचेस जो हैं ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जो थर्ड प्लेस टीम्स हैं, अब जैसे कि साउथ कोरिया के पास 3 पॉइंट है, साउथ अफ्रीका के पास 4 पॉइंट्स है, मेक्सिको तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो जितने भी थर्ड प्लेस टीम्स हैं ना ये आपके जितने भी यू नो टोटल 12 जो ग्रुप्स हैं उनमें से अब ये 8 टीमों को चुना जाएगा थर्ड प्लेस टीम्स और वहाँ से कुछ टीम्स जो हैं कुछ टीमें जो हैं वो राउंड ऑफ 32 के लिए जगह बनाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए एक फैक्ट्स है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। अभी टॉप गोल स्कोरर के बारे में अगर बात करूं तो लियोनेल मेसी का नाम सबसे ऊपर है, एकदम खास तौर पर देखा जा रहा है कि लियोनेल मेसी 5 गोल्स, अर्लिंग हालैंड नॉर्वे के हैं और ववो 4 गोल्स के साथ, किलियन एम्बापे 4 गोल्स, विनीसियस जूनियर कल उन्होंने 2 गोल्स करके 4 गोल्स अपना जो है एक्स्ट्रा जो है पिछले 2 गोल्स किया था तो उसको और ऐड किया मजीद और 4 गोल्स उनके नाम पर भी है। डेनिस उंडव जो है जर्मनी के उनके पास 3 गोल्स है, इस्माइल साइबरी जो है 3 गोल्स है, जोनाथन डेविड जो है कनाडा के उनके पास 3 गोल्स, जोहान मंजाबी उनके पास 3 गोल्स और मथायास कन्हा जो है उनके पास 3 गोल्स हैं। तो ओवरऑल दीज आर द स्टैट्स और इस स्टैट्स में बहुत सारे चीज़ें जो है कि अब मेसी के पास ये है कि 5 गोल्स है, क्या मेसी इस मरतबा यू नो जो गोल्डन बूट अवार्ड होता है जो सबसे जो टॉप स्कोरर होते हैं इस टूर्नामेंट में तो क्या वो ले जाएंगे या ट्रॉफी दोबारा रिटेन कर लेंगे, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे अपसेट्स होने हैं, मैं मतलब मैं एक

एक्सपीरियंस के बलबूते पे मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस के, ये मैचेस के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे अपसेट्स होंगे। हो सकता है कि हमें ऐसे भी सोच में आए कि ये टीम आगे तक सेमीफाइनल तक कैसे पहुंची, आप तस्वीर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो टीम पहुंचेगी, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मोरक्को को किसी ने भी भाव नहीं दिया था 2022 वर्ल्ड कप में, तो मोरक्को सेमीफाइनल तक पहुंची थी और फाइनली प्ले ऑफ थर्ड मैच के लिए क्रोएशिया ने मोरक्को को हराया था। तो इस बार कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है कि मोरक्को इंशाल्लाह हो सकता है कि फाइनल में जगह बना ले। वहीं इजिप्ट की बात करूं, इजिप्ट इज ऑल्सो राइट देयर और राउंड ऑफ 32 के लिए तैयार हैं। और एशियन टीमों के बारे में बात करूं तो जापान इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट साइड जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में राउंड ऑफ 32 या राउंड ऑफ 16 में भी जगह बना ले। और अगर येलो कार्ड्स की बात करूं और रेड कार्ड्स की बात करूं, पहले बता दूं कि रेड कार्ड्स जो है, टोटल रेड कार्ड्स में इजाफा अगर हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 टोटल रेड कार्ड्स दिखाए गए हैं इस प्रो टूर्नामेंट में। और इसमें मेक्सिको के सीजर मोंटेस, कतर के असीम मदीबो, और मदीबो के ऊपर एक फीफा का स्टेटमेंट आया है कि अगले 5 मैच के लिए असीम मदीबो को सस्पेंड किया जा रहा है। और ये सस्पेंशन है उनका फाउल जो था ऑन कोने, इस्माइल कोने जो कनाडा के खिलाड़ी थे, उनके ऊपर एक फाउल हुआ था जिसके बल जिस फाउल से इस्माइल कोने के जो फिबुला है वो टूट गया था। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कतर की जानिब कतर के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको भेजा गया है शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी को, उन्होंने कल मुलाकात की इस्माइल कोने से, एंड इस्माइल कोने को उन्होंने थोड़ा सा रिकवरी के लिए बेस्ट विशेस भी दिया। देखिए यहाँ पे कतर की बात होती है, कतर द वे दे शो द वर्ल्ड द गुडविल एम्बेसडर, देखिए भूल चुक फुटबॉल के मैदान में कुछ इस तरह का फाउल्स होते हैं जिसको पर्सनली ना लें, ये बेसिकली हो जाता है टैकल करते हुए एक, तो यहाँ पे कतर सी फर्स्ट कंट्री और फर्स्ट ऐसा मुल्क है जिन्होंने इस तरह का एक यू क्रिएट अ जेस्चर, एक जेस्चर शो करते हैं, गुडविल जो शो करना होता है। और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो सीधा पहुंचे वहाँ पे एंड इस्माइल कोने के साथ उन्होंने एक वार्तालाप किया, उन्होंने बातचीत की, और साथ में असीम मदीबो कमाल का कैरेक्टर है। देखिए आपने एक प्लेयर को इंजर्ड किया और वो बंदा जो था सीधा वो पहुंचा हॉस्पिटल में, सीधा जहां पे असीम मदीबो जो है हॉस्पिटल में वो पहुंचे और वहां पे इस्माइल कोने को उन्होंने माफ़ी मांगा कि ये जो है कम्प्लीटली इम्पर्सनल था, यानी ये मैच के दौरान हुआ था तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। दिस सॉर्ट ऑफ जेस्चर्स कतर के खिलाड़ी और कतर से हमें जो देखने को मिलता है, वाकई हमें फ़ख्र महसूस होने पड़ता है। मैडम वी फील वेरी प्राउड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैदान से बाहर भी एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है जहाँ पे यू ऑलवेज ट्राई टू विन एंड वी विन ओवर द पीपल विद जेस्चर्स, विद सम काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, विद काइंड ऑफ जिस तरह से आप दिखाते हैं, जो कतर दिखा रहा है, एंड दैट इज़ क्वाइट अप्रिसिएटिव। सो टोटल ओवरऑल अगर ये रेड कार्ड्स की बात की मैंने, और अगर येलो कार्ड्स की बात करूँ तो अहमद फ़ती कतर को, कतर के जो अहमद फ़ती हैं उनको 2 कार्ड्स रोब मिले हैं, एंड ओवरऑल 1, 2, 3 मतलब गिनती लगा रहा हूँ मैं कितने कार्ड्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो काफ़ी येलो कार्ड्स तो काफ़ी हैं, फाउल्स काफ़ी हो रहे हैं, एंड इस बार के मैचेस में गोल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ा गया है, रिकॉर्ड यह है कि फर्स्ट 100 मैचेस में बहुत सारे गोल्स हुए हैं, और ये 1962 वर्ल्ड कप के मुकाबले में देखा जाए पहली मरतबा 1962 के बाद इतने गोल्स हुए हैं इन अ वर्ल्ड कप मैच। तो दोस्तों आज किस किस का मैच है, आज किन कौन कौन से टीमें मैदान पे उतर रही हैं मैं आपको बता देता हूं। और आज जो मैच है जर्मनी का मैच है, जर्मनी ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड, 4 बार के चैंपियन, 2014 में दे वॉन द टाइटल इन ब्राज़ील, और इक्वाडोर का सामना है। और ये मैच आज रात कतर टाइम दोहा टाइम में रात को 11 बजे है, और उसी टाइम में ही ग्रुप ई के एक दूसरे मैच में कोट डिवोरी यानी आइवोरी कोस्ट का सामना है कुरासाओ का। कुरासाओ आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं, फर्स्ट टाइम दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, और छोटे सी एक जजीरा नुमा एक मुल्क है जिन्होंने कमाल करके दिखाया, स्पेशली उनका जो गोलकीपर है। तो 11 बजे ये मैच भी है, और कल जो मैचेज हैं, कल यानी जुमे के रोज़ जो मैच है, यानी आज लेट आवर्स जो है रात को दो बजे से मुराद यह कि सुबह 2 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, फजर से पहले ही 2 बजे जो मैच है वो ट्यूनिशिया वर्सेस नीदरलैंड्स का मैच है। ये भी मैच इट इज़ इंटरेस्टिंग। और जापान और स्वीडन का मैच जो है दोस्तों, जापान और स्वीडन मैच इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस मेरे हिसाब से, बिकॉज जापान हैज़ अ टारगेट टू फिनिश दिस ग्रुप एज अ टॉपर और या तो सेकेंड, और जापान के पास ये मौका है कि जापान कैन शो

सो दैट एशियन फुटबॉल इज ऑन द राइज. एक और मैच है सुबह 5 बजे जिसमें तुर्की का सामना होगा अमरीका. मेजबान टीम अमरीका ऑलरेडी दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32. और तुर्की के पास एक होगा कि ऑनर, यानी एक कंसोलेशन, अगर जीत यहाँ पे मिल जाए तुर्की टीम को तो दे कैन गो बैक विद सम काइंड ऑफ प्राइड, यानी कुछ फख्र के साथ वापस जाएंगे अपने मुल्क में, कहेंगे कि कम से कम मैंने हम लोगों ने एक जीत जो है दर्ज की है इस वर्ल्ड कप में. याद रखिएगा 24 साल के बाद तुर्की दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप. और वहीं उरुग्वे के जैसे, आई मीन माफ कीजिए, इराक के जैसे, इराक 40 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में है, लेकिन इराक के लिए अभी तक वो जो सक्सेस है वो हमें देखने को नहीं मिला है. होता है 40 साल के बाद यू आर कमिंग टू द वर्ल्ड कप, लॉट ऑफ यू नो यू नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू बी एट दैट सेम लेवल ऑफ यू नो कॉम्पिटिशन जैसे कि वर्ल्ड कप का जो जगह है. ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पैराग्वे ये कल सुबह 5 बजे है. और कल ही रात को 10 बजे के मैच है ग्रुप आई में नॉर्वे वर्सेस फ्रांस. फ्रांस को सभी ने कहा है कि दे आर द बेस्ट टीम, और इस बेस्ट टीम जो है फाइनल जीतने का एक जो फेवरेट है वो फ्रांस के ऊपर सब लोगों ने कहा है, एक प्रेडिक्शन है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज फ्रांस के पास है कि फ्रांस कैन विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप. ये हमें देखना होगा. और नॉर्वे वर्सेस फ्रांस, नॉर्वे का एक जो वीडियो है काफ़ी वायरल होता है, और उस वायरल में वो दिखाते हैं कि वो सेलर के जैसे, जैसे कि उनका एक सिंबोलिज्म है नॉर्वे कंट्री का, वो हर जगह पे वो लोग छाए हुए हैं, मतलब सेलिंग कर रहे हैं, यानी नाव चला रहे हैं. वाइकिंग्स याद होगा, वाइकिंग्स जैसे नाव चला के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे मतलब जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए. तो वाइकिंग्स अपने उनके जो पूर्वज होंगे यानी उनके जो एंसेस्टर्स होंगे उसी तरह एक सिंबोलिज्म है. मैच जीतने के बाद दे आर डूइंग दैट सेम काइंड ऑफ थिंग एंड विच इज़ अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया फैंस. सेनेगल का मैच होगा इराक से, एंड सेनेगल वर्सेस इराक भी मैच कमाल का होगा. अफ्रीकी वर्सेस एशियन फुटबॉल के दरमियान एक अभी उसे घमासान लड़ाई की हम उम्मीद कर सकते हैं रात 10 बजे. सो दोस्तों, ओवरऑल दिस आर द अपडेट्स, एंड आप लोगों के अब जो जवाब है उस पर मैं नज़र डालता हूँ और मैं देखता हूँ किन किन लोगों ने कुछ दिए हैं. बहुत से लोगों ने जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और कुछ कुछ मैसेजेस जो है मुझे लगता है आर रॉन्ग. बहुत से लोगों ने ये कहा है कि रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो बेसिकली रोनाल्डो जस्ट डिड दैट गोल, स्कोर दैट गोल परसों में, परसों ये गोल किया था, तो उसमें ये लोगों को लगा कि ही इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉलर टू स्कोर अ गोल. ऐसा नहीं है, और लोग थोड़ा से धोखे में रह गए. आई मीन रोनाल्डो 41 ईयर, शायद इसी वजह से लोगों ने थोड़ा सा, हमारे जो लिसनर्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए हैं. लेकिन एक जवाब जो है मेरे सामने वो मुझे लग रहा है कि वो सही है, और नाम मैं देख लूँ, आरिफ अंसारी. जी आरिफ अंसारी, आपने सही जवाब दिया. अगर आप सामने होते तो आपसे हाथ मिला लेता कि आपने रॉजर मिला का नाम लिया. रॉजर मिला इज़ द करेक्ट आंसर. और रॉजर मिला 1994 जब ये टूर्नामेंट अमेरिका में यू नो मुनक्किद हुआ था वर्ल्ड कप फुटबॉल, वहाँ पे रॉजर मिला ने उस टाइम सोवियत यूनियन उस टाइम उनके अगेंस्ट में गोल करके, माफ़ कीजिएगा, रशिया के अगेंस्ट में गोल करके दे ही बिकेम द ओल्डेस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप. रॉजर मिला उस वक्त 42 साल के कुछ थे, 42 साल कुछ दिन ऐसे जोड़ लीजिए, तो वहाँ पे ही क्रिएटेड दैट यूनिक रिकॉर्ड जो आज भी अनब्रोकन है. तो दोस्तों, इसी के साथ आज का स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है. अगली मुलाकात जो है जुमेरात को होगी स्पोर्ट्स राउंड अप प्रोग्राम में, लेकिन दो और प्रोग्राम्स में हाजिर होता हूँ, वह है इतवार और मंगल को, जिसका नाम है समर स्पोर्ट्स. सुनते और देखते रहिएगा FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा, कैसे हैं आप सब? FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी फरमीता। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे बजे हैं दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम फॉर,
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: सो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? जनाब तो बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता, और भाई आज तो वीकेंड वीकेंड वीकेंड वाला ये वाइब है। सो हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। और ये सवाल बड़ा ट्रेंड करेगा, वीकेंड का प्लान क्या है? भाई न जाने क्यों, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे लिए ज़िंदगी में सांस लेना इम्पॉर्टेंट है, खाना पीना इम्पॉर्टेंट है, दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, तो वीकेंड में ये सवाल बनता ही है। तो क्या प्लान है, शेयर कर सकते हो ना 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और अभी आपकी ए फॉर अमिता वीकेंड के प्लान में क्या करने वाली है, यहाँ एक बड़ी ही ठंडी जगह में आपको फंसाने वाली है। यस, जहाँ से आपको एस्केप करना पड़ेगा। बीच में बड़े शानदार गाने होंगे जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम एक ऐसी जगह पर आप कैद होने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ ठंड नहीं लगेगी, ऐसा चिलिंग कोल्ड होगा कि आपकी हड्डियां तक कपकपाएंगी। सो बी प्रिपेयर फॉर द चैलेंज जो कि आएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल अगर अभी आप मुझसे जुड़ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, देन 6622107 इज आवर नंबर, उस पर मैसेज करें अपने नाम के साथ। बाकी हिट एंड गानों का सिलसिला जारी रहेगा जनाब, सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखिए.
1: Yes, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. तो जनाब, आज का जो हमारा एस्केप रूम का सफर होगा वो कोई आम सफर नहीं होगा. ठीक है, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ सूरज की किरण भी जम जाती है. हाँ जी, और आज का ये एपिसोड है जिसका नाम है एक आइस किंग का तहखाना. हाँ, तो तसव्वुर कीजिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आप आर्कटिक सर्कल के सबसे गहरे और ठंडे हिस्से में एक रिसर्च एक्सपेडिशन पर हैं. ठीक है, आप एक साइंटिस्ट हैं. ओके, वहाँ आपको मिलती है एक एंशियंट नेचुरल केव, यानी कि एक बहुत ही पुराना बट नेचुरल गुफा जो पूरी तरह से नीले रंग के बर्फ से ढकी हुई है. ओके, अब आपने वो देखा, आपको लगा कि भाई ये तो कुछ नया है जिसके बारे में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है. एंड तभी ज़ोरों से ठंडी हवा ने आपको छुआ. ओए होए होए होए, बिल्कुल आपके अंदर कपकपी सी आ गई. हाँ, आपने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया और जब आपने देखा कि भाई देखो यहाँ पर एक एंशियंट नेचुरल केव है तो कुछ तो डिफरेंट होगा. जैसे ही आप टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए अंदर आपने कदम रखा, एक खौफनाक आवाज आती है. वो जो कुछ बर्फ के हिस्से थे जो एंट्रेंस में थे वो एकदम से टूट के गिर गए. एक 10 फुट की बर्फ की दीवार आपके पीछे गिर चुकी है. ओए होए, रास्ता बंद हो गया, ये बड़ा गलत हो गया. अब क्या हो गया, टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है. -40, -50, -60 degrees. आपकी सांसें हवा में क्रिस्टल्स बन रही हैं जनाब. इट्स वेरी वेरी कोल्ड. ये वॉल्ट, ये तहखाना किसी हथौड़े से नहीं खुलेगा. ये तहखाना सिर्फ खुलेगा जब आप कोल्ड और हार्ड लॉजिक्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो बूट्स के नीचे से ठंड अब आपके जिस्म में उतर रही है. पेरिस्टल के बीचों बीच एक क्रिस्टल ब्लॉक के अंदर आपका पहला क्लू है. ठीक है, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आज आप कहाँ पर कैद हैं. आप आर्कटिक सर्कल के एक बहुत ही गहरे, एक पुराने नेचुरल ठंडी गुफा के अंदर कैद हैं. ठीक है, और आपको वहाँ से निकलना है तो क्लूज सॉल्व करने होंगे. पहला क्लू आपके लिए ये रहा, मैं एक ऐसा पहाड़ हूँ जिसकी कोई रूट्स नहीं. ठीक है, मैं एक ऐसा पहाड़ हूँ जिसकी कोई रूट्स नहीं. मैं किसी घोस्ट की तरह वाइट हूँ और समुंदर पर फ्लोट करता हूँ. मैं बड़े बड़े शिप्स को डुबा सकता हूँ पर मैं बना सिर्फ पानी से हूँ. गैस कीजिए मैं क्या हूँ.

कम ऑन, अब थोड़ा सा सोचिए, आप जिस जगह पर मौजूद हैं ये आंसर वही है, आपके सामने है. जस्ट लेट मी नो कि क्या सही जवाब है. 666-22-107, 666-22-107, इस नंबर पर अपने जवाब दें अपने नाम के साथ. एक बार मैं क्लू नंबर वन फिर से दोहराना चाहूँगी कि मैं एक ऐसा पहाड़ हूँ जिसकी कोई रूट्स नहीं है. मैं किसी घोस्ट की तरह वाइट हूँ और समुंदर पर फ्लोट करता रहता हूँ. मैं बड़े बड़े शिप्स को डुबा सकता हूँ पर मैं बना सिर्फ पानी से हूँ. गेस कीजिए मैं क्या हूँ. हाँ जनाब, तो आप थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, अपने दिमाग को रिफ्रेश कीजिए और जवाब दीजिए 666-22-107 पर. मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो.
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. तो भाई एस्केप रूम में अभी सफ़र कर रहे हैं हम और आज की जो सिचुएशन है बड़ी कमाल की है कि हम एक आर्कटिक सर्कल में फंसे हुए हैं. एक बड़ी नेचुरल ब्यूटीफुल से मतलब पुराने जो गुफा होती है ना बर्फ़ की गुफा उसके अंदर हम चले गए. भाई आज के एपिसोड का नाम एक आइस किंग का तहखाना है और ये गुफा वही तहखाना है. ठीक है हम वहाँ पर गए टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए और एकदम से जो एंट्रेंस था वो बर्फ़ के बड़े बड़े डिग्लों से बंद हो गया. अब हमारे पीछे सिर्फ बर्फ की दीवार है. टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है -40, 50, 60 डिग्रीज और

आइस कुछ ने कहा है, ग्लेशियर्स, आइस आइस करके काफ़ी लोगों ने लिखा है, और कुछ ने कहा है बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ की चट्टान, हिमखंड, हिमखंड, ठीक है, ओके. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ग्लेशियर लिखा है, ग्लेशियर ज़मीन में होता है, ठीक है, और ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ये पानी में तैरता रहता है. सो जिन्होंने भी आइसबर्ग कहा है, यस, आइसबर्ग कहा है, सही है, बर्फ़ की चट्टान, बर्फ़ का पहाड़, आसान शब्दों में इसे बताया जाता है. सो बिल्कुल सही है. तो आप ज़ोरदार अपनी पेट को थपथपाइए क्योंकि आपने क्लू नंबर वन सॉल्व कर लिया है. वेल डन, वेल डन, वेल डन. हमारे बाकी लिसनर्स, आपका भी शुक्रिया क्योंकि आप सबने भी कोशिश करके हमें जवाब देने की, यू नो, ट्राई किया. कुछ ने वेव्स तक लिखा है, तरह तरह के जवाब हमको मिले, लेकिन सही जवाब इस आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़, बर्फ की चट्टान, हिमखंड. ओके, सो यहाँ पर कौन कौन है जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब देने की कोशिश की, तो उनके नाम यहाँ पर है जसविंदर सिंह, यहाँ पर है शेख साहब, और मोहम्मद यूसुफ खान भी हैं. वेरी गुड. और कौन जुड़ते जा रहा है? दीपेंद्र, इन्होंने भी सही जवाब दिया है. भाई देखिए, जवाब देते हैं तो नाम लिखा करें. अनम एंड रूहान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. मिस्टर नदीम ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. और कौन है भाई, आराम से जुड़े हमारे साथ, आरिफ अंसारी, इन्होंने भी सही जवाब दिया है. ओके, आइए ज़रा और भी नाम है जिन्होंने सबसे पहले हमें सही जवाब दिया था, उनके भी नाम ज़रा दोहरा देते हैं. रिजवान है, सबीन है, अनाबिया, मोहम्मद एंड अली. सो यस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपने पहला पड़ाव क्लियर कर लिया है. तो जैसे ही आपने सही जवाब दिया, पेडेस्टल एकदम से ठरकने लगे, एकदम से थरथड़ाने लगे, और उसमें से एक चमकती हुई चीज़ आपके सामने आके गिर गई. अब उस पर लिखा है क्लू नंबर टू. अब इस पर आपको बहुत ध्यान से, यू नो, सोचने की ज़रूरत है. जितने भी लोग बर्फ़ की गुफाओं को देखने गए हैं या ऐसी जगह गए जहाँ पर बहुत ठंड होती है, वो तुरंत इसका जवाब दे पाएंगे, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए. एंड आई एम वेरी सर्टेन कि आप आराम से इसका जवाब दे पाएंगे. सो क्लू नंबर टू इज़, मैं नीचे की तरफ ग्रो करता हूँ पर कभी ऊपर नहीं. ठीक है, मैं नीचे की तरफ ग्रो करता हूँ, कभी ऊपर नहीं करता. मेरी एक शार्प पॉइंट तो है पर दिमाग नहीं है. ठीक है, तो मतलब ये चीज़ ऐसी है कि इसका एक शार्प पॉइंट है पर दिमाग नहीं है. मैं छत से लटकता हुआ एक फ्रोजन आंसू हूँ जो सूरज से पैदा होता है और सूरज से ही फना हो जाता है. बताइए मैं क्या हूँ? इस वक्त आप एक बर्फ की गुफा के अंदर हैं और सीलिंग्स पर अगर देखेंगे तो यही चीज है जो लटक रही है. फिर से सुने, मैं नीचे की तरफ ग्रो करता हूँ पर कभी ऊपर नहीं करता. मेरी एक शार्प पॉइंट है पर दिमाग नहीं है. मैं छत से लटका हुआ एक फ्रोजन आंसू हूँ जो सूरज से पैदा होता है और सूरज से ही फना हो जाता है. और ये सिर्फ ज़्यादातर हमें बर्फीली जगहों पर देखने को मिलती है चीज़. सोचे सोचे सोचे आई एम वेरी सर्टेन इसका जवाब आप ढूंढ सकते हैं. देखिए, हमको इस बर्फीली चट्टान से बाहर निकलना है, हम यहाँ पे जमना नहीं चाहते. सो कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर. 666-22-107 पर 666-22-107 अपने नाम के साथ. और एक छोटे से ब्रेक के बाद आके देखती हूँ कि आप में से कितने लोग इस क्लू को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: वेलकम वंस अगेन, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी एफ अमिता। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02। मेक अ विश कि आप आज इस बर्फीली गुफा से आजाद हो पाए, एस्केप कर पाए।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
2: हाँ जनाब, तो बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 एंड एस्केप रूम की। सिचुएशन बड़ी कमाल की है। आज आप एक आर्कटिक सर्कल की गहराइयों में पहुंचे हुए थे एक रिसर्च एक्सपेडिशन पर, और यहाँ आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं एंड सडनली एक आइस किंग है, ठीक है, उसकी पुरानी गुफा, एक तहखाना, उसके अंदर आप कैद हो गए। ये बड़ी खौफनाक सी चीज़ हो गई आपके साथ। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने गए थे, आप खुद ही गिरते हुए टेम्परेचर का हिस्सा बन गए, और टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है, -40, -50, -60। उफ, कपकपी हमारी हड्डियों तक पहुंच चुकी है, हमारी जान निकल रही है। लेकिन यहाँ से निकलने के सिर्फ तीन तरीके हैं। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल्स को क्रॉस कीजिए, क्लूज को सॉल्व कीजिए, सही जवाब दीजिए और इस बर्फीली गुफा से आप आज़ाद हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। तो क्लू नंबर वन को आप सभी ने सॉल्व किया, जिसका सही जवाब था आइसबर्ग, बर्फ की चट्टान, हिमखंड, बर्फ का पहाड़। And really hats off to you guys. अब क्लू नंबर टू आया। मैं नीचे की तरफ ग्रो करता हूँ पर कभी ऊपर नहीं जाता। मेरी एक शार्प पॉइंट है पर मेरा कोई दिमाग नहीं है। मैं छत से लटका हुआ एक

0: रोज़ नासू हूँ, जो सूरत से पैदा होता है और सूरत से ही फना हो जाता है। और मैंने कहा कि भाई आप जिस बर्फीली गुफा के अंदर हैं उसकी सीलिंग्स पे देखें, ये चीज़ आपको लटकती हुई दिखेगी। आइए देखें ज़रा क्या क्या हमें जवाब मिले हैं। तो किसी ने लिखा है हिमशूल हिंदी में, ठीक है, जिसका मतलब है आइसिकल्स, ओके। किसी ने ग्लेशियर लिखा है, किसी ने मेल्टेड आइस के ड्रॉप्स लिखे हैं, किसी ने झरना लिखा है, किसी ने मॉइस्चर लिखा है, ओके। सो लेट मी टेल यू कि सही जवाब क्या है, इट्स आइसिकल्स, ठीक है, इट्स आइसिकल्स। और इसे अंग्रेजी में और भी आसान शब्दों में आइस स्पाइक्स, आइस नीडल्स, डैंगलिंग और हैंगलिंग आइस कहा जाता है, हैंगिंग आइस कहा जाता है। सो जोरदार तालियां उन सब के लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए और नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़कर ये प्रूव कर दिया कि भाई कुछ भी हो जाए इस बर्फीली गुफा से बाहर निकलना है। आइए देखें जिन्होंने हमें सही जवाब जल्दी जल्दी दिए, उनके नाम है अली, मोहम्मद, सबीन, अनाबिया, रिजवान और कौन है, आरिफ जी हमारे साथ है और कौन है, अवेस, ठीक है, अवेस अहमद ने भी मेल्टेड आइस के ड्रॉप्स जो कहे हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं उसी तरह के। अनम रूहान ने सही जवाब दिया है, यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है। सो यस, इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से। देखिए वक्त लगता है, थोड़ा सा क्लूज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और ये क्लूज़ आपके आसपास के सराउंडिंग से ही हैं। तो एस्केप रूम बड़ा ही सिंपल तरीके से आपके लिए प्लान किया जाता है और क्लूज़ भी बड़े आसान होते हैं। तो दो क्लूज़ आपने सॉल्व कर लिए। अब दीवारों से एक अजीब सी वाइब्रेशन हो रही है, एग्जिट दरवाज़ा ग्लो तो कर रहा है पर अभी भी बर्फ से बंद है, खुलने को तैयार नहीं है भाई। सो ये जो आइस किंग है उसकी फाइनल डिफेंस को तोड़ने के लिए ना आपको ये आखिरी पहेली सॉल्व करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब चुटकियों में आप दे सकते हैं लेकिन ध्यान से सुनकर समझकर। सो क्लू नंबर 3 ये रहा, मेरा कोई वेट नहीं है पर मैं फील होता हूँ, ठीक है, हर कोई मुझे महसूस कर सकता है, मैं इस तहखाने, इस बर्फीले तहखाने में कहीं नहीं हूँ मगर आपके सीने के बीच रहता हूँ, समझ गए, मैं एक जमी हुई नदी को पिघलाकर बहता हुआ रास्ता दे सकता हूँ और एक फ्रोजन दिल को अपनी गर्माहट से पिघला देता हूँ, गैस कीजिए मैं क्या हूँ, सिर्फ यही एक चीज़ है जो इस कहर की ठंड को हरा सकती है। सोचे जरा कौन सी चीज है जो ठंड को हरा सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, कम ऑन गाइस, थिंक अबाउट इट। 666-22-107, 666-22-107 पर मुझे अपने नाम के साथ सही जवाब दें। आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन कि हमारे लिसनर्स ने नॉन स्टॉप मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं और अपने जवाब देने शुरू कर दिए हैं, जवाब आ रहे हैं लेकिन कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोग आसपास पहुंच रहे हैं, नज़दीक, पर एग्जैक्टली सही जवाब नहीं दे पा रहे। तो प्लीज़ थिंक, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि मेरा कोई वेट नहीं है पर मैं फील होता हूँ, महसूस होता हूँ, ठीक है, मैं इस बर्फ़ के तहखाने में या यूँ कहें बर्फ़ की गुफा में कहीं नहीं हूँ मगर आपके सीने के बीचों बीच रहता हूँ, मैं एक जमी हुई नदी को पिघला कर बहता हुआ रास्ता दे सकता हूँ। सोचिए कौन सी चीज़ है जो जमी हुई चीज़ को पिघला सकती है, एक फ्रोजन से दिल को भी अपनी गर्माहट से पिघला देती है। कम ऑन, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आंसर, ठंड में सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। थिंक थिंक एंड थिंक एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ऑलराइट,
1: वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएमएनसीएम, बड़े मियां।
0: And right now, let's enjoy some music. तो आप कहीं ना जाए, बने रहे हैं FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और क्या कहना जनाब, आज माहौल मतलब एकदम ठंडा ठंडा ठंडा होते जा रहा है, क्योंकि एस्केप रूम में आज हम कैद हो चुके हैं एक बर्फीली गुफा के अंदर, ठीक है, जहां पर कंटिन्यूसली टेम्परेचर

गिरते जा रहा है। -60 तक तो बहुत पहले पहुंच गया था, अब न जाने कहां तक पहुंचेगा। हमारी जान निकलती जा रही है और हमको लग रहा है ओफो कैसे कैसे कैसे हम बाहर निकले यहां से। देखिए, आप सबने दो क्लूज सॉल्व किए, दैट वाज रियली नाइस। दो लेवल्स आपने क्लियर किए। पहले क्लू का सही जवाब था आइसबर्ग, दूसरे क्लू का सही जवाब आइसिकल्स। अब तीसरे क्लू में आके गाड़ी थोड़ी सी हमारी फंस गई है, ठीक है। तो ये वक्त है कि मैं तीसरा क्लू आपके लिए रिपीट करूं ताकि आप फिर से सोचें कि सही जवाब क्या हो सकता है और मुझे मैसेज करें 666-22107 पर, 666-22107 पर अपने नाम के साथ। तो यस, थर्ड क्लू इज, मेरा कोई वेट नहीं है पर मैं फील होता हूं। मतलब सोचिए, ऐसी ठंड है और वो कौन सी चीज है जो बिना वजन के महसूस हो सकती है, ठीक है। आगे आपके लिए है कि मैं इस बर्फीली गुफा के अंदर कहीं भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपके सीने में रहता हूँ। मतलब ये हमारे अंदर है वो चीज़, ठीक है। मैं एक जमी हुई नदी को पिघलाकर बहता हुआ रास्ता दे सकता हूँ। समझ में आया कि एक जमी हुई नदी को भी ये चीज़ पिघला सकती है और एक फ्रोजन दिल को, जमे हुए दिल को अपनी गर्माहट से भी पिघला सकती है। तो वो कौन सी चीज़ है? कम ऑन, थिंक अबाउट इट। 666-22107 इज़ आर नंबर, 666-22107। और हमें बहुत सारे जवाब दे रहे मिल रहे हैं। किसी ने मुझे लिखा है लव, किसी ने लिखा है विंड, किसी ने लिखा है गर्म हवा, किसी ने लिखा है गर्म सांसें, किसी ने लिखा है फायर, किसी ने लिखा है जज्बा। भाई देखो, जज्बे की तो ज़रूरत है इस गुफा से बाहर निकलने के लिए। लेकिन सोचिए, क्या आपके जवाब एकदम क्लोज्ड हैं? क्या वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं आप जहाँ से आपको निकलना है? मैं कहूँगी सोचना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसका एक ही वर्ड है, कई सारे मीनिंग्स हैं, वर्ड एक ही है। सोचिए वो कौन सी चीज़ होती है जो ठंड में हमें राहत देती है। अब इससे बड़ी हिंट मैं आपको नहीं दे सकती। आई एम वेरी सर्टेन कि अब आप तेज़ी से अपना दिमाग दौड़ाएंगे और सही जवाब मुझे देंगे। सो 666-22107 इज़ आर नंबर, उस पर आप अपने नाम के साथ सही जवाब दीजिए। और शानदार हिट गानों को एंजॉय कीजिए, ठीक है। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

0: हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ

0: साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी।
3: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। बिल्कुल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं हम अपने एस्केप रूम के, और आज की सिचुएशन की हम एक बर्फीली चट्टान के अंदर फंस चुके हैं। हाँ जी, मतलब एक बड़ी खूबसूरत सी पुराने ज़माने की गुफा थी। हम वहाँ पर कुछ अपने काम के सिलसिले में गए थे, रिसर्च एक्सपेडिशन पे गए थे। आज आर्कटिक सर्कल की गहराइयों में गए थे और वहाँ जाके एक बर्फ़ की गुफा के अंदर कैद हो गए। वहाँ से निकलने के लिए बर्फ़ से रिलेटेड ही हमें क्लूज़ दिए गए और हमें उन्हें ही सॉल्व करके बाहर निकलना है। पहला क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब आइसबर्ग। दूसरा क्लू हमने सॉल्व किया, सही जवाब आइसिकल्स। तीसरा क्लू आपके सामने कि मेरा कोई वेट नहीं है पर मैं फील होता हूँ, यानी महसूस होता हूँ मैं इस गुफा में कहीं नहीं हूँ मगर आपके सीने के बीचों बीच रहता हूँ। मैं एक जमी हुई नदी को पिघला सकता हूँ, रास्ता बना सकता हूँ, एक फ्रोजन दिल को भी अपनी गर्माहट से पिघला सकता हूँ, तो मैं क्या हूँ? काफ़ी सारे हमें जवाब आए हैं। कुछ ने लिखा है हीट, कुछ ने लिखा है वॉर्म्थ, कुछ ने लिखा है फायर, ओके, किसी ने लिखा है आग, किसी ने लिखा है सन, ऑल राइट, किसी ने लिखा है गर्म जोशी, ओके, वेल, हर किसी ने अपने अपने जवाब दिए हैं। हॉटनेस भी हमको लिख कर दिया गया है, बॉडी टेम्परेचर भी लिखा गया है। तो ये सारे जवाब जो आपने दिए हैं, ये जो है ना, ये बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली आप सबके लिए, क्या बात है भाई। देखें, जो बर्फ होती है उसे गर्माहट ही, हीट ही पिघला सकती है। सिंपल सा जवाब था। जिन्होंने भी उससे रिलेटेड जवाब दिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने सही ही जवाब दिए, आपकी इमेजिनेशंस बड़े कमाल के। आइए जरा नाम गिन लेते हैं सबके। आरिफ जी थे, इन्होंने सही जवाब दिया। मोहम्मद यूसुफ खान ने भी इस पहेली को सही तरीके से सुलझाने की कोशिश की। मुक्कू, अच्छा मुक्कू इनकी प्रोफाइल में लिखा है, इन्होंने भी सही जवाब दिया। गुलाम रब्बानी ने भी सही जवाब दिया और खलील ने भी सही जवाब दिया है, ओके, और रमेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ते रहे। दैट वॉज रिजवान, अनाबिया, मोहम्मद एंड अली। वेरी वेरी गुड। लेकिन अब लकी विनर का नाम ऐलान करने का वक्त आ चुका है, और लकी विनर कौन हो सकता है? आज के हमारे लकी विनर हैं मिस्टर आरिफ भाई। जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुबारकबाद, गुड जॉब। आपने तीनों क्लू सॉल्व करके तीनों लेवल्स को सॉल्व किया और इस बर्फीली गुफा से बाहर निकल गए, और जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे भले ही उनके जवाब गलत थे उनका भी शुक्रिया। तो अब ये बताओ कि बर्फ की इस गुफा से बाहर निकल कर जब सांस में सांस आई तो कैसा लगा? I'm very certain कि अब आपको लग रहा होगा चलो thank God बच गए, वरना हमें सनलाइट देखने को भी नहीं मिलती। हाँ भाई, देखो वीकेंड है और ये जो आपने मेहनत की इस एस्केप रूम से बाहर निकलने की, वाकई में काबिले तारीफ है। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, और अब आप और मैं मिलेंगे सीधा संडे को दोपहर 1:30 बजे, जहाँ पर एस्केप रूम की एक नई सिचुएशन, एक नया चैलेंज आपके सामने आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, फिलहाल गर्मी काफ़ी है हमारे कतर में, तो ख्याल रखिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। एंड मीनवाइल आप FM 107 के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आरजे अमिता को भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे ना चलते चलते। और ये गाना इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, सबके लिए इन्जॉय इट। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और वेरी प्रैक्टिकल एपिसोड। भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट पर जो ट्रैफिक, फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन तीनों को एक साथ रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कार पूलिंग ट्रेंड। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करती हूँ। जरा सोचिए, सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल जाने की जल्दी है आपको या आपके साथ वालों को। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सेम रूट पर आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स या नेबर्स भी अलग अलग कार्स में जा रहे होते हैं। साथियों, ट्रैफिक में हर गाड़ी में सिर्फ एक से दो लोग होते हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल भी यूज कर रही होती है और रोड स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है। और यहीं से आइडिया आता है कि अगर ये सफर शेयर हो जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है कि नहीं। देखिए, अब थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी के साथ समझते हैं इस चीज को। देखिए, कार पूलिंग का मतलब होता है एक ही गाड़ी में मल्टीपल लोगों का ट्रैवल करना, जो सेम डायरेक्शन या सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इससे गाड़ियों की टोटल नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और सेम डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होती हैं। अब इसमें, इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपने ट्रैवल शेयर करें। मतलब हर इंसान अलग अलग गाड़ी यूज करने के बजाय एक साथ ट्रैवल प्लान कर सकता है। साथियों, अब बात करते हैं कि कार पूलिंग ट्रेंड फॉलो करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है फ्यूल सेविंग। जब एक गाड़ी में तीन से चार लोग ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल व्हीकल्स के फ्यूल का यूज अवॉइड हो जाता है। दूसरा फायदा है ट्रैफिक रिडक्शन। कम कार्स का मतलब है रोड पर ट्रैफिक जैम और कंजक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगी। तीसरा फायदा है पोल्यूशन कंट्रोल। कम व्हीकल से कार्बन इमिशन रिड्यूस होती हैं और एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट शेयरिंग। देखिए, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट सब लोग मिलकर शेयर कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो भाई सोचिए, चार दोस्त हैं या चार ऑफिस वर्कर्स हैं जो सेम ऑफिस या सेम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर हर कोई अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाए तो भाई क्या होगा, चार गाड़ियां रोड पर आ पहुंचेंगी। लेकिन अगर वही चार लोग एक ही गाड़ी में कार पूलिंग करें तो सिर्फ एक गाड़ी ही यूज होती है। रिजल्ट क्या होता है, फ्यूल भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और पार्किंग की टेंशन भी कम होगी। लेकिन दोहा जैसे सिटी में कार कल्चर बहुत स्ट्रांग है और डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, इसीलिए यहाँ कार पूलिंग ईजिली एडॉप्ट की जा सकती है, स्पेशली ऑफिस रूट्स या स्कूल रन्स और कम्युनिटी ट्रेवल्स के लिए। कई वर्क प्लेसेस ऑलरेडी इनफॉर्मल कार पूलिंग सिस्टम एनकरेज करते हैं। अब आपको वो टिप्स दे देती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। भाई देखिए, ग्रुप प्लान बनाएं, ऑफिस या स्कूल कोलीग्स के साथ सेम टाइमिंग फिक्स करें, फिक्स्ड स्केड्यूल सेट करें। देखिए, कार पूलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब रूटीन कंसिस्टेंट हो। अच्छा भाई, इसी के साथ तीसरा हमारे पास टिप है, फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री करें। पहले से कॉस्ट शेयरिंग क्लियर रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेफ्टी और कम्फर्ट इंश्योर करें, ट्रस्टेड लोगों के साथ ही कार पूलिंग करें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टरनेट ड्राइविंग सिस्टम रखें। हर दिन सेम पर्सन ड्राइव ना करें, रोटेशन सिस्टम अडॉप्ट करें। भाई दुनिया के बहुत सारे अर्बन

0: सिटीज में कार पूलिंग एप्स और सिस्टम्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ये ट्रेंड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन भी बन चुका है। देखिए, एक रिलेटेबल सिचुएशन ये है कि भाई अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगा, लेकिन जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि भाई एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट से कितना बड़ा एनवायरमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट हमें मिल सकता है। जब आप कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड बना लेते हैं। आप सिर्फ इंडिविजुअल ट्रैवलर नहीं रहते बल्कि कोलैबोरेटिव कम्यूटर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपनी जर्नी शेयर करें और कारपूलिंग अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स या नेबर्स में से कम एक पर्सन, एक किसी इंसान को आइडेंटिफाई करें जो आपके रूट पर ट्रैवल करता हो और कार पूलिंग के आइडिया उसके साथ डिस्कस करें। और अगर आप ऑलरेडी कार पूलिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस ट्रेंड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्या पता उनको अच्छा लगे। तो साथियों, हर गाड़ी का एक एक्स्ट्रा पैसेंजर सिर्फ सीट नहीं भरता बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ सफर शेयर नहीं करते बल्कि अपनी जमीन का लोड भी कम ही करते हैं, हल्का ही करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Even Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aaj hum baat karenge raat ki duaon ke bare mein. Din ke aakhri lamhon mein Allah ko yaad karna bahut barkat wala amal hai. Raat ke waqt mein جب انسان دنیا کی مصروفیات سے فری ہوتا ہے تو اس کا دل سکون کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سونے سے پہلے دعا کرنا ہمیں اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے یہ ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے اور نیند کو بھی پرسکون بناتا ہے آج کل ہم موبائل اور سکرینز میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا وقت بھی نکال لیں تو یہ ہماری زندگی میں برکت لے کر آ سکتا ہے آج کا عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے دو منٹ اللہ کا ذکر کریں اور دعا کے ساتھ دن کا اختتام کریں یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف برکت ایف ایم 107 پر میں ہوں آر جے ماوش پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
2: One step to 2030
3: Welcome to our segment called One Step to 2030 मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया
2: One step to 2030
3: आज मैं बात करूंगी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की दोस्तों लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट किसी भी स्ट्रांग इकोनॉमी की बैकबोन होता है इसका मतलब ये है कि रोड्स एयरपोर्ट्स पोर्ट्स रेल सिस्टम्स और सप्लाई चेन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना जब एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो गुड्स और सर्विसेज आसानी से मूव होते हैं और बिजनेसेस ऑपरेशन स्मूथ हो जाती है आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है Efficient logistics system se company apne products jaldi aur kam cost par deliver kar sakti hai. Jab transportation fast aur reliable hota hai, to market access improve hoti hai aur naye business opportunities create hoti hai. Is sector ki importance isliye bhi hai kyunki ye directly economic growth ko support karta hai. Jab products easily move karte hain, to trade badhta hai. इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं लॉजिस्टिक कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कतर जैसी इकोनॉमी में जो ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस हब बन रही है लॉजिस्टिक का रोल और भी इम्पोर्टेंट है पोर्ट्स हों एयरपोर्ट्स हों मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल्स हैं भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एनवायरनमेंट का या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी कतर का नेशनल विजन 2030 जी हाँ कतर का नेशनल विजन 2030 में ये एक स्टेप है जो कतर को ग्लोबल हब बनाता है और बना रहा है फिलहाल दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया कि मैं आपसे इजाजत ले लूँ ठीक है इतना आज के लिए इतना ज्ञान काफी है कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी
2: One step to 2030
4: आप सुन रहे हैं FM 107
2: FM 107
0: दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे फेलिक्स सैंचेस के बारे में। याद होगा ये नाम फेलिक्स सैंचेस, चार साल पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कई मरतबा आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा भी होगा। फेलिक्स सैंचेस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे कामयाब कोचेज में से एक तस्लीम किए जाते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पैदा होने वाले सैंचेस ने अपना कोचिंग करियर एफसी बार्सिलोना की यूथ एकेडमी ला मासिया से शुरू किया। साल 2006 में वो कतर आए और एस्पायर एकेडमी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जहां उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत पर काम किया। बताता चलूं कि इसी यूथ प्रोग्राम में काम करते वक्त उन्होंने आज के सुपरस्टार खिलाड़ी अलमोइज अली, अकरम अफीफ, सुल्तान ब्रेक, तारिक सलमान जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। फेलिक्स सैंचेस ने कतर के अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 23 टीमों को कोच किया और 2014 में कतर को एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप जितवाई। दैट वाज द बेसिकली अ गेम चेंजर फॉर कतरी फुटबॉल। इस कामयाबी ने उन्हें सीनियर नेशनल टीम तक पहुंचाया और 2017 में वो कतर के हेड कोच बन गए। उनकी क्यादत में कतर ने 2019 का एएफसी एशियन कप जीती, जो मुल्क की फुटबॉल तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मानी जाती है। कतर ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार फुटबॉल खेला और एशिया की ताकतवर टीम्स को शिकस्त दी। सैंचेस ने कतर को उनके फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप यानी कतर 2022 में भी गाइड किया। अगरचे टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन कतर को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने और एक मुकाबला करने वाली टीम बनाने में उनका किरदार बुनियादी रहा। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस उन्हें कतर फुटबॉल के जदीद दौर का आर्किटेक्ट करार देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
3: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

क्लास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे सेहतमंद वजन बरकरार रखने के बारे में। बहुत से अफराद वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान और मुश्किल आदत अपनाकर हम और आप सेहतमंद वजन को बरकरार रख सकते हैं। सेहतमंद वजन सिर्फ अच्छी शख्सियत ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। बैलेंस्ड डाइट अपनाइए, क्योंकि सेहतमंद वजन बरकरार रखने के लिए मतवाजन गिजा बहुत जरूरी है। अपनी रोजाना की खुराक में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और प्रोटीन वाली गिजाएं शामिल कीजिए। बहुत ज्यादा चिकनाई, बहुत ज्यादा नमक और जो चीनी वाली अशियाएं उन्हें कम कीजिए। खाने की मकदार पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। छोटी प्लेट इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए। एक्टिव होना बहुत जरूरी है और रोजाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बहुत पसंद है वो आप जरूर कीजिए, और इस तरह जो अपना वजन है वो बरकरार रखने में आपको वो मदद दे सकते हैं। जितना ज्यादा एक्टिव होगा, इतनी ही कैलोरीज जो है वो इस्तेमाल होंगी। पानी वो तो जरूर पीना है। पानी ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है, बल्कि गैर जरूरी भूख को भी कम करने में मदद देता है। अच्छी नींद लीजिए। नाकाफी नींद जिस्म के भूख से जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें मुतासिर करती है, जिससे ज्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेंटल हेल्थ वो बहुत अहम है। इसी तरह से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है, बाज़ औक़ात जज्बाती खाने का भी बायस बनते हैं। तो फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन जो है या इबादत जो है वो आप जरूर कीजिए। और अपने वजन पर नज़र रखिए। हफ्ते में एक बार अपना वजन ज़रूर चेक कीजिए, और अगर बढ़ने लगे तो फौरन अपनी हिसा और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जायज़ा लीजिए। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं कि नाश्ता रोज़ाना ज़रूर कीजिए, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना तरजीह दें, लंबे वक्त तक बैठने से गुरेज कीजिए, रोजाना कुछ वक्त वॉक के लिए जरूर निकालिए। तो लिसनर्स, सेहतमंद वजन बरकरार रखना किसी मुख्तसर मुद्दत की डाइट का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज जिंदगी है। छोटी लेकिन मुस्तकिल मुस्बत आदत आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती है। नेक्स्ट एपिसोड तक सेहतमंद रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल है वो अपना लीजिए।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। और आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हिल्म या बुर्दबारी। जिंदगी में सबसे मुश्किल इम्तिहान है गुस्से और इश्तियाल के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखना। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल ताकत लड़ाई या गुस्से के इजहार में नहीं बल्कि हिल्म और बुर्दबारी में है। यही वो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल क़ैस से फरमाया, तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, अल हिल्म वल अनात, हिल्म और बुर्दबारी। दोस्तों, हिल्म वो वस्फ है जिससे इंसान जालिम को भी माफ कर देता है और रद्द अमल में जल्दबाजी नहीं करता, और अल अनात यानी सोच समझ कर सब्र और सुकून के साथ फैसला करना। इसीलिए हमें चाहिए कि गुस्से में फौरी रद्द अमल देने के बजाय सब्र और खामोशी इख्तियार करें, दूसरों के कसूर पर माफी और दरगुजर का मामला करें। यह अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। इसी तरह हर फैसले में ठहराव और सोच विचार को अपनाएं ताकि पछतावे से बचा जा सके। तो समीन, ये थी आज की सुन्नत हिल्म और बुर्दबारी। आइए हम भी अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। गुस्से पर काबू, माफी का जज्बा और फैसलों में बुर्दबारी, यही वो अखलाक हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और बंदे को इज्जत बख्शते हैं। समीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: हेलो हबीबी, टाइम फॉर टाइम चेक एफएम 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 4:02 इस्तकबाल आप सभी का. क्या है हाल चाल, ये शो द रिक्वेस्ट शो.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यार क्या है कि जब इंटरनेट नया नया आया था ना तो लोगों को पता नहीं था कि करना क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका असल में काम क्या है. फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो इंसान को समझ में आया. तो अपने पास जिनको नहीं पता उनको पता बता देता हूँ. क्या है कि हमारे स्टूडियो में एक नई कुर्सी आ गई है, 1, 2, 3, 4 नई कुर्सी है और ये सिंहासन पे मैं बैठ गया हूँ. लेकिन क्या इस सिंहासन का काम कैसे लेना है मेरे को आइडिया ज़रा भी नहीं है. क्या है कि अपन जब आते हैं ना तो ऐसा चाहता हूँ मैं कि एकदम ऐसा लगे बैठने में कि रिलैक्स बैठा हूँ. लेकिन जब हमें शो करना होता है तो हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो चेयर है, वो ऐसे अलाइनमेंट में होना चाहिए कि शो करते हुए प्रॉब्लम नहीं हो. जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये जो टेबल है ये इतना ऊँचा है, जब हम शो करें तो जो कैसे बताऊँ, कमर का एरिया है ना, वहाँ तक कुर्सी होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि कमर के एरिया और ये जो हमारा कीबोर्ड है यहाँ तक रहे और हमारा हाथ अच्छे से चल पाए. ठीक है, कमर का एरिया, डेस्क बराबर में और फिर सिस्टम हम संभाल पाए, ये इजी है. लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ ये कुर्सी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ. तो आज मैंने ये कुर्सी नीचे कर ली, पहले तो मुझे पता नहीं था किधर से होती है, फिर मैंने कुर्सी नीचे कर ली. अब बाबू क्या है कि नीचे कुर्सी कर ली, अब ये हाई टेक्नोलॉजी है, अब यार ये ऊपर नहीं हो रही है भाई. और तुम मानो नहीं मानो, ये इतनी नीचे कि अब मेरे सीने पे डेस्क है भाई. मैं कैसे इस्तेमाल करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको ऊपर कैसे करूं यार, इतनी हाई टेक्नोलॉजी. ये वैसा ही है यार, जैसे नया नया अपने पास इंटरनेट आ गया लेकिन पता नहीं है इस्तेमाल कैसे करना है. कितना अजीब लग रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ गर्दन बाहर है, डेस्क पे सीने पे एकदम लगी हुई है और कीबोर्ड जो है हाथ ऊपर करके चलाना पड़ रहा है, अजीब हो रहा. और उसके अलावा जिनको नहीं पता है, जो नए लोगों को बता दे, अपने पास नया मोबाइल आ गया है. 2-4 दिन से अपन बोल ही रहे थे कि हमारा पुराना वाला मोबाइल वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, बाहर किसी ने सुन लिया है. वो ये सोच रहा था कि यार ये आदमी कह कह के ना बेइज्जती करा दिया, उनने ला कर रख दिया है. तो दोस्तों इस्तकबाल है आप सभी का द रिक्वेस्ट शो में. और आज जो है जितना भी मैं शो कर रहा हूँ, कुर्सी तो नीचे हो गई है, कोई बात नहीं, सेटअप करेंगे जब तक गाना चलेगा, हो गया तो हो गया, वरना आज कोई बात नहीं, गर्दन के बराबर ये जो टेबल है यहीं से शो कर देंगे, नीचे मुंडी है, कोई बात नहीं, चल जाएगा.
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: अजीब है यार, बताओ कितनी कोशिश कर ली. पहले तो ये था कि जिधर से नीचे करा है ना पिछली वाली, उधर से ऊपर भी हो जाती थी कुर्सी, जैसे ऊपर हो वैसे नीचे हो जाएगी. लेकिन इसमें कुछ अलग सिस्टम है शायद, वो जब मैं घुमा रहा हूँ तो वो पूरा पूरा घूम रहा है, जो भी नीचे का लेवर होता है उसको मैं घुमा रहा हूँ, पूरा घूम रहा है. मेरे को नहीं समझ नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है. खैर कोई बात नहीं है, एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों. और द रिक्वेस्ट शो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये जो शो है यहाँ पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं और हर शो में एक नई थीम होती है. और आज की थीम क्या है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं. आज की थीम तो बड़ी ही लाजवाब है और आज मुझे पूरा यकीन है आपके ऐसे सॉन्ग रिक्वेस्ट होंगे कि

कि आपके रिक्वेस्ट की वजह से बाकी सुनने वालों का दिल जो है वो गदगद हो जाएगा। आज है 25 जून 1974। हाँ, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं करीना नहीं करिश्मा कपूर का बर्थडे। तो करिश्मा कपूर का बर्थडे है आज। आज तो बनता है उनके मूवी के गाने जिसमें वो फिल्माई गई हो, उनके मूवी, या हो सकता है कई ऐसे गाने हो जिनमें वो नहीं है लेकिन उनकी मूवी ज़रूर है तो इसलिए वो हिट मूवी रही है। तो आज का जो थीम है वो थीम है द वन एंड ओनली करिश्मा कपूर के गाने। तो मूवी ट्रैक जो भी आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662217 6662217। आप यहां पर मैसेज करें और बताएं कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं उनके मूवी का। सबसे पहले धीरे से हल्के हाथ से अपन लोग बढ़ते हैं मैसेज की तरफ। सबसे पहले खादिम साहब का मैसेज, सलाम, याद सताए तेरी, याद सताए तेरी, राजा बाबू का गाना कह दिया है। तो अब देखो यही होता भाई, जो पहले बोल देगा अपन उसका गाना प्ले करेंगे। ओए होए, 7 मिनट का गाना है, खींच तान तो करनी पड़ेगी फिर मुझे। ये अब आप पर है भैया, ठीक है, मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है आप पर। मेरे को नहीं पता करिश्मा है नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता ना भरोसा होता है ये आदमी है उस यू नो पसंद करने वाला है उस दौर का, जब करिश्मा और गोविंदा के हिट मूवी सॉन्ग चल रहे थे और हिट मूवी भी दे रहे थे वो लोग, तो भरोसा है इसलिए मैं ये गाना प्ले करूंगा। तो खादिम साहब का सबसे पहले गाना सलाम भी किया, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी वीकेंड। अरे हाँ, हैप्पी वीकेंड भाई, देख रहे हो लाइफ में जो है शो करते करते पता नहीं चल रहा कौन सा दिन कैसा चल रहा है, मंडे है ट्यूसडे कुछ पता नहीं। एक ऑडियो भेजिए, वो ऑडियो कुछ देर में हम सुनते हैं। मेरा भाई सर कुछ ब्रोकन लगा दीजिए। अरे मेरा भाई, ये दिल टूटे आशिक भी हमारा शो सुनते हैं एक हर रोज मैसेज आ रहा है कि भाई कुछ भी सैड, मतलब दिल चीर के बाहर आया है, फजील भाई ऐसा कोई गाना लगा दो कि बिल्डिंग ऊंची देखूं तो मुझे उसमें अपने खत्म होने वाली जिंदगी दिख जाए। नहीं बाबू, कुछ सैड ऐसे कैसे। बाकी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आपका इंतजार था, मेरा इंतजार कर रहे हैं सैड सॉन्ग प्ले करने के लिए, देख रहे हो अरबाज भाई ऐसा नहीं करते। आगे बढ़ेंगे और ये मैसेज है, और वेटिंग फॉर दिस मैसेज, दिस में टेक अ वाइल लर्न मोर। आपका इंटरनेट ऑन नहीं है क्या भाई, या मैसेज करके तुरंत बंद कर दिया था। मेरे सपनों के रानी राजकुमार, मूवी का नाम है राजकुमार क्या, लेट मी चेक। राजकुमार साहब किधर है आप, राजकुमार मूवी है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, राजकुमार का गाना होगा मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों के रानी इसमें थी है, वो अपनी जो आज की थीम है वो थी। सनम मूवी का ट्रैक है आई गेस, या सनम ने गाया ये सनम पुरी। मेरे सपनों की रानी तो बहुत लोगों ने गाया, मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया है। मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये करिश्मा का है या नहीं है, लेकिन ये गाना बहुत ही लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, परदेसी जाना नहीं करिश्मा कपूर के, ये सॉन्ग ज़रूर प्ले कर दे। परदेसी जाना नहीं, यही वही वाला है परदेसी जाना, इतना जबर गाना लोग जो है लेकर रखे हैं अपने दिलों में परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, भाई मेरे को ये नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा कि बाकी जो गाने हैं ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मैं ढूंढ तो रहा हूँ यार, अगर मेरे को मिल गया तो ये वाला प्ले करूंगा, क्योंकि दूसरे वाले बंदे ने भी ये गाना गाया है। कौन है ये भाई, दो लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है, एक तो है रजमजान, हो सकता मैं गलत पढ़ रहा हूँ, माजरत मेरा भाई, रजमजान ही लिखा हुआ है, इन्होंने भी परदेसी कहा है, और फिर एक और भाई हैं गनी ने भी परदेसी कहा है, और मुझे ये गाना मिल गया। ये राजा हिंदुस्तानी मूवी का ट्रैक है जिसमें करिश्मा है, आई नो कुछ मूवीज़ का तो पता है मेरे को, तो ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। लेकिन एक और गाना है ज़मीर का है, विच इज़ संग बाई कुमार सानू, अलका याग्निक एंड सपना, मेरे को चेक करना पड़ेगा, देन आई विल प्ले, लेकिन अभी तो फिलहाल याद सताए तेरी FM 107 पे खादिम भाई की रिक्वेस्ट पे। एंजॉय करें ये गाना, और आप भी आज की थीम करिश्मा कपूर का, क्योंकि बर्थडे है और आज हम करिश्मा कपूर के गाने प्ले कर रहे हैं, उनकी मूवी के गाने प्ले कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर है 6662217।

बजकर 13 मिनट हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस्तकबाल आप सभी का। और ये नई चेयर है, कौन से ब्रांड की मैं पता चल जाता तो मैं आप लोगों से पूछ लेता, कोई बाहर है अगर सुन रहे तो बता दो। मैं गर्दन के लेवल पे आके आज शो कर रहा हूँ कुर्सी किसी तरह। चेयर बोलना है मुझे, चेयर ये जो है मैंने नीचे कर लिया है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, होनी तो चाहिए कमर तक लेकिन जो है मुंडी जो है मेरी ये लेवल पे आ गई है टेबल के। अब मेरे से शो अजीब सा हो रहा है तो मेरे को पता नहीं, बाकी आप लोग संभाल लेना। करिश्मा कपूर का आज है जन्मदिन 25 जून और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके बर्थडे को, इसलिए उनके मूवी के गाने, हिट जो गाने हैं वो आज हम प्ले कर रहे हैं। आप हमसे रिक्वेस्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पे उनके गाने जो है मैं प्ले कर रहा हूँ करिश्मा कपूर के। तो बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी रही हैं, दिल तो पागल है, राजा हिंदुस्तानी, यू नो उसके अलावा बीबी नंबर वन, ये कैसे भूल सकते हैं, हीरो नंबर वन। तो सॉन्ग जो हैं उनके नंबर वन तो रहे ही हैं, मूवी भी नंबर वन रही हैं और इन्होंने क्या लगातार हिट दिया खास तौर पे गोविंदा के साथ। जैसे एक वक्त था जब अक्षय कुमार ने, मतलब ये नई जनरेशन वालों के लिए, अक्षय कुमार ने, कटरीना कैफ ने लगातार हिट पे हिट दी, लेकिन अगर उनसे बड़ा कोई स्टार था तो दोस्तों मैं बता दूं नए जमाने वालों को, वो थे दो स्टार यानी कि दो एक्टर और एक्ट्रेस, गोविंदा और करिश्मा कपूर, लगातार हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर मूवी इतनी भी कोई ज़्यादा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है किसी की, तो एक काम करो करिश्मा को और गोविंदा को ले लो, वो अगर रहेंगे तो तुम्हारी मूवी का पैसा कवर हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो डायरेक्टर यही करने लग गए थे। तो करिश्मा का परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, गोविंदा ने भी बहुत ही लाजवाब अपने काम किए, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हिट रहे, उनकी डांस के लोग दीवाने भी रहे थे। सो एक भाई हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने की फरमाइश करी और वो गाना है सोना कितना सोना है, क्या बात है। नाम नहीं लिखा, अगर आपने नाम लिख देते प्रोफाइल पर भी मैंने आपके चेक किया है, एस के लिखा हुआ है, तो उम्मीद है शायद शोएब खान हो, मतलब ऐसे बहुत से नाम होते हैं, सुंबल, शोएब, शाकिर, है ना। तो जो भी आपका नाम है प्लीज़ आप बताएं, क्योंकि ऐसे आपने नाम भी कहा है सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना, ये वाला गाना अगर मिल जाता मज़ा आ जाए भाई। हीरो नंबर वन 1997 में ये मूवी आई थी, 4 मिनट का ये गाना है और ये लाजवाब गाना है। लेट मी प्ले दिस, लेकिन उससे पहले परदेसी में प्ले करूँगा क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी। वो दो लोग जिनकी रिक्वेस्ट है, गनी भाई हैं इनकी रिक्वेस्ट और फिर है रजमजान भाई की रिक्वेस्ट, इन दोनों के रिक्वेस्ट पे अपन प्ले कर रहे हैं परदेसी एंड देन आफ्टर दिस एसके की रिक्वेस्ट पे सोना कितना है सोना है, जो कि गाया है उदित नारायण और पूर्णिमा ने। हीरो नंबर वन 1997 मूवी का ये ट्रैक, एंजॉय करें FM 107 पे, दिल से देसी।

0: उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में गाना सुना आपने FM 107 में। यार ये तो मेरा भी फेवरेट हो गया।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: अभी भी दिल से देसी 4:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। जल्दी जल्दी बाकी के गाने प्ले कर देते हैं क्योंकि क्या लाजवाब आप लोगों ने रिक्वेस्ट करें। वेल एक गाना है जो भाई ने पूरा लिंक ही उठाकर भेज दिया है, अलका याग्निक का गाया हुआ मेरे सपनों के राजकुमार। एंड इस जब गाने को मैंने देखा सोशल मीडिया पे, इसके 100 मिलियन व्यूज हैं। 100 मिलियन भाई साहब, करोड़ों लोगों ने इसे ऑलरेडी देख लिया है। 1 मिलियन अगर व्यूज आते हैं इसका मतलब 10 लाख लोगों ने देखा है। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, तो 100 मिलियन अब आप ही देख लो भाई साहब, भयानक। लोगों का शौक है भाई ये गाना सुनने का, और तो ये गाना बिल्कुल मैं प्ले करूँगा। ये इनका नाम तो लिखा नहीं, बस इन्होंने जी लिख दिया भाई अपने। ये क्या है नाम, मेरे सपनों के राजकुमार पहले कहा और फिर आपने लिंक, लेकिन अगर आपका नाम होता तो ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई। नाम भी लिख कर भेज दें। उसके अलावा ये एक और मैसेज है किस भाई का, साहिल ने कहा है गाना प्ले करने को। हुस्न सुहार, क्या यार इतना जबरदस्त आप लोगों की शौक है यार आप लोगों का है गाने का, जबरदस्त। हुस्न है सुहाना ये भी बेहतरीन है साहिल के रिक्वेस्ट पे, और मेरे सपनों के राजकुमार जी वाले भाई हो गए। एक और था मेहंदी है रचने वाली कांगे भाई, तेरी तिजोरी का सोना नहीं दिल है हमारा खिलौना नहीं। ये मैंने देखा यार, राजा हिंदुस्तानी का गाना ये मिला नहीं मुझे। बाकी हिशाम भाई का सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। और एक वो वाला कहाँ गया भाई, मुझे मिल नहीं रहा है। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, ये वाला भी, हाँ ये वाला भी तो होगा। थोड़ा सा रुक कर प्ले करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बाकी लोगों की रिक्वेस्ट है। पहले तो हुस्न है सुहाना साहिल, मेरे सपनों के राजकुमार, फिर एक और मैं गाना प्ले करना चाह रहा था, वो कहाँ गया भाई, मेहंदी है रचने वाली भाई, नहीं मिल रहे यार, अभी तो थे इधर ही थे यार। ओके मेरे को दिख जाओ मेरा भाई, आपका नाम जल्दी से बता दूं फिर इजी हो जाएगा ना मेरे लिए। मेरे सपनों की यूपी वाले ठुमकाल मूवी, ये भी मैं प्ले कर दूंगा भाई, थोड़ा सा रुक कर प्ले करूंगा। बाकी 3 लोगों का गाना प्ले है, पहले प्ले हो जाता है फिर मज़ा आता। भाई मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये मैं प्ले कर देता हूँ फिर उसके बाद अपन देखेंगे ठीक है कि इनका नाम कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा भाई, सॉरी भाई माजरत। लेकिन ये गाना मैं अभी कुछ ही देर में प्ले करता हूँ, सबसे पहले ये गाना सुनिए जो 2 back-to-back मैंने यहाँ पर सजा के रखे हुए हैं। सबसे पहले साहिल का गाना, और इसके बाद नाम तो लिखा नहीं है, जी लिखा है प्रोफाइल पे तो मैंने वही लिख दिया भाई, जी बोल दिया मैंने। चलो मेरे सपनों के राजकुमार, इसके बाद FM 107 दिल से दही सी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: की आवाज में मेरे सपनों के राजकुमार, ये गाना आप सुना आपने FM 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: बाकी आने वाले ये दो गाने भी बड़े ही लाजवाब हैं। आज 25 जून बर्थडे है करिश्मा कपूर का, और उनके मूवी के हिट गाने हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और अगला जो गाना है वो है लाजवाब, क्योंकि ये है सोनू निगम का गाया हुआ यूपी वाला ठुमका लगाओ। तो ये गाना सुने FM 107 पे, और किस भाई ने रिक्वेस्ट किया है मैं नाम बता देता हूँ, ये है रुबल हुसैन के रिक्वेस्ट पे यूपी वाला ठुमका। और फिर एक और गाना था, आई हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बन के, ओह माय गॉड, एमडी हुसैन साहब ने रिक्वेस्ट की है आई हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बन के। ओके, ये गाना प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फजील भाई। वालेकुम अस्सलाम। दिल दिया गल्ला सॉन्ग री मेरा भाई, कल से ये गाना जो है सुनने का दिल कर रहा भाई का, लेकिन माजरत मेरा भाई नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि ये जो गाना है दिल दिया गल्ला ये करिश्मा कपूर का नहीं, और आज का थीम है तो थीम पर रहते हुए ही हम गाना प्ले कर सकते हैं। लेकिन किसी दिन अगर ऐसा मौका हुआ तो अगर प्ले नहीं किया तब क्या ना भाई, पक्का तब मैं आपके जो भी कहे हुए लफ्ज हैं सुनूंगा। शेख हेयर, शेख भाई कह रहे थे, शेख भाई थोड़ा सा रुक के हैं, कोई और आप अपने लिस्ट से, अपने प्लेलिस्ट से गाना निकाले जिसमें करिश्मा कपूर हो, वो आप हमें बता दें, आप वो ज़रूर प्ले करेंगे। उसके अलावा सलाम है, वालेकुम अस्सलाम, पहला नशा सॉन्ग, गुड आफ्टरनून सर, नाम तो नहीं बताया लेकिन ये गाना नहीं प्ले हो सकता क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है। ये दो गाने प्ले करते हैं, उसके बाद हम गेम की तरफ बढ़ेंगे। FM 107 पे यूपी वाला ठुमका सोनू निगम की आवाज़ में प्ले करने जा रहा हूँ, और ये

0: रिक्वेस्ट है रुबल हुसैन की तरफ से, और फिर एक और गाना ये है एमडी हुसैन की रिक्वेस्ट पे, विच इज आए हो मेरी जिंदगी। लेकिन इससे पहले
1: यूपी वाला का लगाओ
0: FM 107 फजील के साथ दिल से दिल।

0: उदित नारायण की आवाज में ट्रैक सुना आपने FM 107 पे, और ये गाना कई लोगों का फेवरेट है, खास तौर पे जिनका दिल थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: देखो, याद तो आ ही जाती है, मतलब अपने बच्चों की। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, जब बच्चा आता है ना हाथ में तो यही होता है ना, मतलब लव्स तो यही होता है। नहीं, हल्के हाथ से कवर कर लेता हूँ वहां तक नहीं पहुंचने देता हूँ। एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, 4:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और वक्त आ गया है कि गेम हम खेले पहचान कौन, जहां पर एक गाना मैं प्ले करूंगा और आपको पहचानना होगा कि ये गाना कौन सा है, गाने का नाम क्या है। ये गाना एक्चुअली जो मैं प्ले करूंगा, ये लिरिक्स होंगी और बीच से किसी गाने के बीच से कहीं से भी मैं प्ले कर दूंगा और आपको गेस करना है गाने का नाम। लाइव भी खेल सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप का जो नंबर है वो तो आपको पता ही है, जो कॉलिंग नंबर है वो है 4434377। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और एक गाना आपके लिए प्ले करेंगे और आपको गेस करना होगा। दूसरा तरीका ये है हमारा व्हाट्सअप, ये भी बड़ा मुफीद तरीका है, तुरंत आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 6662107 6622107। और सबसे पहला गाना आज कौन सा है, वेल क्योंकि 25 जून है, करिश्मा कपूर का बर्थडे है, और आज का जो गाना है पहला वो रहा करिश्मा कपूर की मूवी से ही। गाने का नाम बताइए, जो हम प्ले कर रहे हैं वो है ये।

0: बस इतना ही है। अब आपको बताना है, बाकी एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हबीबी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत दिनों के बाद कॉल लगा तो बता, एक्साइटमेंट हो गया हूँ मैं।
0: बहुत
1: ये गाना है कुली नंबर वन का।
0: ओए होए, क्या बात कर रहे हैं, पता है
1: बराबर?
0: गाने का नाम क्या?
1: गोविंदा का गाने का नाम है मैं कुली नंबर वन गाना ही है। पैसा कमाना, मौज मनाना, कुली मैं हूँ, कुली नंबर वन।
0: ओए होए, बिल्कुल सही।
2: कुली नंबर वन मैं, कुली
1: जी
0: बिल्कुल सही पहचाना मेरे भाई ने। नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है मोहम्मद रफीक।
0: रफीक साहब, क्या लाजवाब आपकी पहचान है। तो ये

0: मूवी का शौक रखते थे या गोविंदा और करिश्मा के फैन थे स्पेसिफिकली?
1: नहीं ऐसा, मतलब मूवी देखते रहता हूँ।
0: अच्छा, ओ मूवी देखते रहते हैं,
1: बॉलीवुड मूवी देखते रहता हूँ।
0: बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और कॉल करने के लिए भी बहुत शुक्रिया। लाजवाब बिल्कुल आपने पहले पहचान लिया, और लग रहा है नंबर जो है एकदम मोबाइल पे स्पीड डायल पे था।
1: मैं था, डायलिंग में था।
0: मैं समझ गया, बहुत तेज आई कॉल ना।
1: जी
0: ओके, तो चलिए बाकी गाने भी अभी मैं प्ले करूंगा, तो वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे गेस करके बताइएगा, ठीक है?
1: ओके ठीक है, शुक्रिया, ओके,
0: अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों बिल्कुल सही पहचाना है इन्होंने, अब आपका यू नो फर्ज बन गया है कि बाकी की दो गाने जल्दी से पहचाने। लेकिन व्हाट्सएप पर कौन कौन है जो सही पहचान चुके हैं, नसीम भाई ने लिखा फज्जू मियां कमाल हो गया, पुराने गाने सुना दिया। हाँ यार, क्योंकि आज ऐसा नहीं कि पुराने गाने नहीं सुनाना है, लेकिन दिन होना चाहिए थीम के अकॉर्डिंग। मोहम्मद साहब ने टाइटल सॉन्ग ऑफ कूली नंबर वन, यूसुफ भाई का नाम, बिल्कुल सही। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। पहला फौरन नहीं पूछा ताक, क्या भाई समझ नहीं पाई, सलाम वालेकुम। पहले तो अबू तमीम भाई, पहला फौरन नहीं पूछा ताक, पहला नहीं पहुंचा, पहुंचा ऐसा तो नहीं कह रहे? वो मेरी जो बात थी वो वाली, जो मैं कह रहा था कि आई हो मेरे जिंदगी में, वाली वाली पहुंचने वाली बात तो नहीं कह रहे आप? बाकी एक वॉइस है सूर्य बहादुर की, भाई कुछ देर में हम सुनकर रहे, इस पर रिप्लाई करेंगे। और इट्स असलम खान कुली नंबर वन, मोहम्मद आलम ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया। अब दूसरा जो सॉन्ग आ रहा है उसे पहचानिए, दूसरा सॉन्ग रहा आप लोगों के लिए ये।

0: बस बस बस ये बताओ गुरु, ये वाला कहाँ से लेकर आया हूँ मैं गाना? इस गाने का नाम क्या है? वेल, सबसे जो पहला गाना था सूर्य बहादुर, मैंने उनकी आवाज़ सुन ली, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब बताया। सूर्य बहादुर, बहुत ही उम्दा, वेल प्लेड। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन बात कर रहा है?
1: मेरा नाम रोली है।
0: रोली?
1: रोली, R-O-L-I, रोली।
0: हाँ, ओके, मैं मालूम है, आमतौर पे मर्द की आवाज़ एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन ये फीमेल की वॉइस है, मैं घबरा, है क्या ये, क्या था, तो मैं नाम भी पहली बार में नहीं पहचान पाया। तो रोली, आप फैन हैं पुराने गानों की या फिर करिश्मा या गोविंदा की फैन है?
1: पुराने गानों की।
0: पुराने गानों की फैन है। तो अभी मैंने एक गाना प्ले किया है, इस गाने का नाम क्या है आपको पता है?
1: मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से।
0: ओए होए, बिल्कुल

0: क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना। और आपका भी ऐसा लग रहा था, नंबर जो है स्पीड डायल पे है, एफएम 107 का नंबर।
1: थैंक यू सो मच
0: बहुत सही एकदम जवाब दिया। और बाकी तीसरा गाना भी अभी प्ले करूंगा, वो थोड़ा सा मैंने टफ किया है, बट लेट्स सी, क्योंकि आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं, आसानी से पहचान जाते हैं। तीसरा गाना आप हमारे व्हाट्सएप पर बताइएगा। थैंक यू। ओके रोली, तो दोस्तों इसी के साथ बाकी व्हाट्सएप पर अब बढ़ लेते हैं कि व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। फजील ब्रदर, आई एम आस्किंग रिगार्डिंग फर्स्ट फॉरन कांट रिसीव अंटिल नाउ। मैं अभी भी नहीं। अच्छा, फर्स्ट फॉरन, ये क्या है? एक तो फॉरन वो है जो मतलब पेमेंट वाला फॉरन है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ गैप है आपकी कम्युनिकेशन में। जैसे क्या है ना, मैं अपने घर में अगर पूछता हूँ अरे वो नेल कटर कहाँ है, तो वो कहती हैं कि वो है वहाँ रखा है। अब इसमें ना ऑब्जेक्ट है, ना डिटेलिंग है, ना इन्फॉर्मेशन है, वो है वहाँ रखा है। अब भाई कैसे पहचानूं? मैं उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाता हूँ, कहता हूँ कि वो है वहाँ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी और डिटेलिंग कि मतलब दाएं में रखा है, दूसरे कमरे में, दाएं पे चले जाओ, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो डालो भाई। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, और ऐसे ही इस वाले में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अबू तमीम, आई एम आस्किंग रिगार्डिंग फर्स्ट फॉरन कांट रिसीव अंटिल, क्या है ये? कुछ इन्फॉर्मेशन अगर डाल देते मजा आ जाता है मेरा भाई। बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और तुझको भगा लाया हूँ घर से, बिल्कुल सही है, हिशाम भाई ने भी सही जवाब दिया है। सॉरी याद नहीं आ रहा, यूसुफ भाई को याद नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं यूसुफ भाई? ये उम्मीद आपसे तो नहीं थी, लेकिन ये गाना सिर्फ मुझे लगता है हिशाम और रोली ने ही पहचाना है। तीसरा जो गाना आ रहा है वो रहा ये।

0: किस आदमी को व्हाट्सएप पर तो मैसेज करूंगा ही नहीं। बहुत ही उम्दा मेरा भाई, एक बार फिर से क्योंकि अभी सबसे पहली तो कॉल आपकी थी, एक बार फिर से नाम बता ही दो भाई।
1: मेरा नाम मोहम्मद रफीक है।
0: मोहम्मद रफीक है, ओके रफीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया खेलते हुए।
1: आपको हर एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अभी खतर में हूँ लेकिन मैं एक बात बोलूंगा। मेरे जो फादर थे ना, मेरे फादर थे, क्या फादर है अल्हम्दुलिल्लाह
0: माशाल्लाह
1: आया है, तो मेरे फादर मोहम्मद रफी साहब के ड्राइवर थे।
0: अरे क्या बात कर रहे हैं,
1: कसम से।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, अरे ये तो बहुत ही यूनिक चीज है यार।
1: मोहम्मद रफी साहब की डेट होने के बाद में उन्होंने वो नाम मुझे रखा।
0: अच्छा ओके, अच्छा तो पूरा नाम उनका रफी।
1: मेरे फादर जाके मिलते हैं मुंबई में।
0: ओके, तो मुंबई में थे आपके पापा और सिंगर, बहुत बड़े सिंगर रहे हैं भाई, लेजेंडरी सिंगर रफी साहब।
1: वो जो हाथी मेरे साथी का जो गाना था,
0: हाँ
1: मेरे पापा बताते थे कि मतलब वो जो डायरेक्टर थे, मतलब सबके पास गए थे वो गाने के लिए।
0: हाँ हाँ अच्छा,
1: लेकिन वो गाने का जो दर्द तो आवाज थी वो किसी के में नहीं आया। लास्ट में डायरेक्टर और राजेश खन्ना साहब ने रफी साहब से रिक्वेस्ट किया कि वो गाना आप गाओ।
0: हाँ अच्छा, मतलब लोग रिजेक्ट कर रहे थे, फिर रफी साहब ने गाया उसे।
1: रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टर साहब कुछ आवाज जो चाहिए था वो गाने में, वो गाना था नफरत की दुनिया को छोड़ के, वो आवाज के लिए रफी साहब के पास आए थे।
0: अच्छा क्या बात है, वैसे मालूम है मैं एकदम अभी पूछने ही वाला था कि कोई किस्सा बताइए, क्योंकि आपके फादर ने तो आपको बहुत किस्से बताए होंगे रफी साहब के।
1: बहुत बताए, बहुत बताए।
0: कोई और किस्सा याद है उनका? रफी
1: ऐसा कुछ बताते हैं कि मतलब स्टूडियो में किसी को अलाउ नहीं होता था।
0: हाँ,
1: क्योंकि मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह का नॉइज का प्रॉब्लम होता था, लेकिन मेरे फादर बहुत पुराने थे ना, उनको रिक्वेस्ट करके बिठाते थे वहाँ पे कि ये मेरा आदमी उनको यहाँ बिठाओ।
0: हाँ
1: मतलब अच्छे नेचर के थे रफी साहब।
0: क्या बात है यार, आपके साथ तो किसी दिन है और आपके फादर के साथ किसी दिन तो बैठने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लेजेंडरी की जो जिंदगी होती है, लेजेंडरी सिंगर की या एक्टर की, वो बहुत बड़ी होती है, तो वो किसी पॉडकास्ट में या फिर किसी इंटरव्यू में बता नहीं पाते। जब उनके साथ बैठो या उनके आसपास जो रहे हैं लोग उनके साथ अगर बैठो तो बहुत कुछ बताते हैं। तो मैं चाह भी रहा था कि कुछ किस्सा आप बताते, लेकिन आपने आते ही बता दिया, माशाल्लाह जबरदस्त, ये वाला पता नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपने कॉल किया और आपका नाम आज मैं समझ गया किस पर पड़ा है।
1: शुक्रिया,
0: चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं लोग, और ये देखिए जो मीडियम है FM 107 या रेडियो जो मीडियम है, इतना खूबसूरत है कि ऐसे ऐसे पल जो हैं आ जाते, पता ही नहीं चलता कि यार इतने यूनिकली लोग कनेक्ट हो पाएंगे। वेल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, बाकी हिशाम साहब का मैसेज बिल्कुल सही बताया, ले गई फिर दिल तो पागल है सॉन्ग ले गई, यूसुफ भाई ने बताया, फरहत ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, लगाई लगाई, अरे इतना भी हिंदी नहीं लिखना था कि ले गई को लगाई लगाई हो जाए। आज तक मैंने अंग्रेजी के लफ्ज़ों को देखा था कि ले गई को लगाई लगाई हो गई, लेकिन आपने इतना ज़्यादा हिंदी लिख दिया गाड़ी कि ले गई लगाई हो गई। कोई बात नहीं भरत, मैं आज लेट हो गया, दो सॉन्ग सुन नहीं पाया ऑफिस से, आज लेट हो गया, कोई मेरा बात नहीं मेरा भाई कैसर साहब, अब संडे, आज तो वैसे वीकेंड, अरे आज तो वीकेंड है, ओए होए मैं तो भूल ही गया था, मजे करेंगे। अबू तमीम, ओके, इन्फॉर्मेशन इज पास्ट प्रोग्राम व्हेन वी गिव करेक्ट आर्टिस्ट नेम, सो यू सेड यू विल गिव गिफ्ट ऑफ एलमंड और कैश, नेवर माइंड इट्स अ जोक। अरे यार आप दो बार नहीं आए, मैंने उसी के अगले दिन जो है ना लोगों को दे दिया था वो गिफ्ट, है ना, जो आप जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो गिफ्ट मैंने उनको दे दिया था, और आपको भी मैं आज कोशिश करता हूँ अगर तुरंत के तुरंत हो जाए तो मैं दे ही देता हूँ, और वो गिफ्ट यानी कि वो बादाम था ये।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अरे भाई साहब 5:00 का मिनट, वीकेंड हो गया, वीकेंड आइए वीकेंड, डेढ़ सौ वीकेंड आइए। मैसेज 666-221-07 पे, 666-221-07 पे। ताजी ताजी कहानी भाई, सुबह बनाइए आइए।

लो आप, जिम्मेदारी है भाई हमारी, जिम्मेवारी है पूरी, जिम्मेवारी। एक मैसेज आया है ताजी ताजी कहानी, नियाज भाई बिल्कुल मिलेगी, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल। अचानक से अंग्रेजी में शिफ्ट करना कितना कूल लगता है। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, कैसे हैं मेरा भाई। एक मैसेज आया, ड्यूटी पे हूँ, कहानी सेंड कर देना भाई, हैप्पी वीकेंड। ठीक है भाई जी, पार्सल आ जाएगा, पेमेंट कर देना। तबस्सुम बहन ने मैसेज किया है, वालेकुम अस्सलाम बहन, हैप्पी वीकेंड। अरबाज भाई कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, फिर से भूल गया था रेडियो ऑन करना, बच गया भाई साहब। आज ना, आज नहीं छोड़ता मैं आपको, आज अगर आप गलती से भाग जाते हो और आज का शो नहीं सुनते तो दिक्कत हो जाएगी भाई, थोड़ा ध्यान से। एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, लेट हो गया फजील भाई, फजील भाई 5 बज गए हैं आज सीधा, बिल्कुल नोक पे, इसलिए वो भागती हुई ट्रेन में चढ़ाऊँ भाई आज मैं। वालेकुम अस्सलाम मकसूद भाई। अजहर भाई ने मैसेज किया, वालेकुम अस्सलाम, हैव अ ग्रेट वीकेंड, थैंक यू, सेम टू यू। एक मैसेज आया भाई को, सलाम भाई को, बहुत सारा सलाम, बहुत सारा प्यार, वालेकुम अस्सलाम अशफाक भाई। और फरद भाई कह रहे हैं, कबीर भाई सलाम वालेकुम, खैरियत से भाई, एकदम बढ़िया भाई, हमें क्या हो सकता है भाई, आपको तो पता ही है। सर आपका शो हमारे लिए ऐसा है जैसे कि नहीं, ये मैं बोलने बहुत बड़ी बात कह दी। एक मैसेज है भाई, क्या बार कोड सेंड कर दो, पेमेंट हो जाएगी। सुल्तान भाई, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई ने अलग फ़ॉन्ट में लिखा है, वेट कर रहा था भाई, मिस यू भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई के बाद एक और मैसेज आ, एक सेकंड रुक जाओ। वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई, सब बढ़िया, चलो बढ़िया। एक और मैसेज है हिशाम साहब, वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज, सलाम पार्सल भाई, एक अपना पसंद का गाना सुना भाई, सुनो इस घंटे गाना चलता नहीं भाई, आपको पता ही 6 बजे चलता है सीधा, है ना, तो 6 बजे चलवा लेना गाने। नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। अच्छा आज क्योंकि वीकेंड है, आपको पता ही कि वीकेंड पे क्या सीनारी होता है हमारा, वीकेंड पे ऑब्वियसली कुछ अलग किस्म की कहानी होती है। आज मेरे पास एक कहानी है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, कुछ भी नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट अ सीक्रेट। सीधी सीधी बात बता के ना मामला ख़राब नहीं करूँगा। कुछ कहानी होती है जिन्हें मैं पूरी तरह से बेचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई खरीद लो, ले लो, ले लो, ले लो, लेकिन आज की कहानी मैं बिल्कुल सेल नहीं करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट एकदम फ्रेश ओपन माइंड से कि क्या है, क्या होने वाला है। इट्स अ वीकेंड स्पेशल स्टोरी। इतना जान लीजिए कि जो आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ भाई, बहुत पापड़ फेल की कहानी मिली है, और इसके रिसर्च करने में आई फेल्ट लाइक अ मैड साइंटिस्ट। सो बहुत कुछ है, मगर उससे पहले एक दो मैसेज और। अस्सलाम वालेकुम,

0: क्या कह रहे हैं, और सलाम मेरी तरफ से। ठीक है भाई, वालेकुम अस्सलाम। नींद पूरी कर लो भाई। किसको नींद पूरी कर लो, किसको बोला आपने, मैं समझा नहीं। किसकी नींद, क्या हो गया, ये वक्त पे पीछे चल रहा है क्या? अमन भाई वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहा है भाई कहानी ख़त्म करो, रोज़ा जल्दी घर पहुँचना है। अरे 6:30 बजे पहुँच जाओगे घर पे भाई, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन कोई नहीं भाई। तो अभी कुछ देर में मिलेंगे, क्योंकि 11 मिनट 2 सेकंड के शाम के इतकार हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आपने जाना है ही नहीं कहीं भी, आपको तो पता ही है, बेस्ट जगह पर हो आप यार, कहाँ जाओगे। स्टे ट्यून्ड।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: In Pakistan, my father made sure to bring them home first. भाई बहुत ही ओ हो हो, ये तो अब्बा ने एकदम वो कर रखा था, फोकस है सबसे पहले घर में, हमारे घर पे आएगा कुछ भी लॉन्च होगा तो. So our house was among the first in the village to have them. So we have around 200 to 300 cousins. सही पढ़ाना मैंने, चश्मा साफ करो. 200 to 300 cousins. When we were very young, many of them would come to our house at night. They would gather together and watch TV because our house was one of the few places that had one. We often watched Indian shows like Shaktiman, Hatim. There are some of my favorite childhood memories. Very good, bhai. 300 cousins. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Kabir saab, kaise hain aap?
0: Badhiya bhai, Shubh bhai, aap sunao, kya haal hai bhai ke?
1: मजे आ रहे हैं भाई
0: साहब. मजे आ रहे हैं भाई, गर्मी के मजे ले रहे हो?
1: पूरे.
0: क्या बात है
1: भाई. बिल्कुल भाई, अभी शीशा डाउन करके ड्राइव कर रहा था मैं.
0: कती आग ला रखी है. बता दो फिर, बता दो आपका क्या कलर टीवी की मेमोरी है, कुछ आपकी याद वाद है? पहला कलर टीवी नहीं याद है?
1: पहले ब्लैक एंड व्हाइट, फिर कलर. लेकिन ये सब छोड़ो, तो सबको पता ही है, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको.
0: नहीं नहीं,
1: एक मजे की बात बताता हूँ.
0: क्या मजे की बात?
1: अभी कुछ दिन पहले जो ब्लैक टीवी थे और जिनके जो पीछे कुछ मर्क्यूरी यूज होती थी, आई थिंक वो पीछे ट्यूब सी होती थी ना.
0: बिल्कुल
1: भाई, किसी ने अफवाह फैला दी कि वो इतने की जा रही थी. लोग टीवी खोजने लगे. मेरे पास ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं.
0: कहाँ हो रहा है?
1: पुराने टीवी दिलवा दो.
0: अमा कहाँ हो रहा है यार, क्या कहाँ किधर भाई, किधर की खबर है ये?
1: ये खबर अभी है, तकरीबन 8-10 महीने पहले की है. जब अभी जब मैं वीकेंड गया था ना, सॉरी उस पर वेकेशन पे गया था दिल्ली में अपने, तो मैं अपने गांव की साइड भी होके आया, तो जब मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे, और फिर मैसेजेस भी आए मेरे पास ग्रुप में.
0: अरे यार,
1: कि ऐसा कुछ चल रहा है.
0: अच्छा, ये मुझे नहीं पता भाई, ये नहीं पता. ये कहा, ये तो अब तो गई. मैंने पर ये देखा है, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो पुराने वाले थे, उनकी स्क्रीन निकाल के अंदर लोगों ने पंखे फिट कर दिए. उसको पता नहीं क्या बना दिया अंदर, पंखे फिट कर दिया भाई.
1: एक अलग ही आर्ट थी वो तो.
0: हाँ, वो अभी भी है भाई, अभी भी है हमारे बटला हाउस में, अजीम डेयरी में आज भी ऐसा लगा हुआ है. आज भी मैंने वही बात कर रहा था, मैं तो फिगर आउट किया कि वहां पर अभी भी ऐसा है. पर
1: क्यों नहीं है?
0: आपकी क्या मेमोरी है? लाइक आपको होश था जब आपको पहला कलर टीवी आया था, क्या याद है उस दिन? वो दिन
1: सबसे पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था.
0: हाँ,
1: और उसके बाद मतलब एक बहुत, आपको बताता हूँ मैं, जब उस टाइम के बाद जब क्रिकेट मैच पे लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता था, जब सचिन तेंदुलकर, सहवाग और ये शोएब अख्तर ये सब खेलते थे, तो उस टाइम पर बैटरी का बहुत प्रॉब्लम होता था, इलेक्ट्रिसिटी का.
0: हाँ बिल्कुल.
1: तो हम लोग क्या करते थे कि एक तो एक मतलब बैकअप के लिए बैटरीज होती थी, और एक छोटा सा बिल्कुल जैसे कि मोबाइल है ना, भी जैसे चेक का इस तरह का एक छोटा सा बड़े से एंटीना का टीवी भी हमने बैकअप में लाकर रखा हुआ था.
0: वो याद है, ठीक है.
1: तो जैसे कि अगर हमारे लोगों की बैटरीज डाउन हो गई या सब कुछ डाउन हो, तो वो बहुत कम बैटरीज पे चल जाता था. ब्लैक एंड व्हाइट था क्रिकेट देखने के लिए, और जैसे कि शोज होते थे शक्तिमान और पता नहीं क्या क्या, कौन अब तो याद भी नहीं रहा, शकला का बूम बूम.
0: अरे लेकिन मैं कह रहा हूँ, पहली मेमोरी क्या है, क्या आपको याद है टीवी?
1: पहली मेमोरी यही है मेरे भाई की, मतलब जब आँख खुली तो सबसे पहले इनका एक कार्टून शो हुआ करते थे. वो कुछ उनमें आवाज नहीं होती थी ऐसी, बस वो पेंगुइन टाइप्स का कुछ होता था. मुझे वो याद है कि मेरी पहली मेमोरीज वो थी कि जो हमारे घर में टीवी आया था.
0: मुझे याद है वो कलर टीवी में एक और ऑप्शन था हमारी तरफ, तो था कि उसमें आप जो है वो कार्टून नेटवर्क आता था ना, तो उसको या तो हिंदी में देखो या अंग्रेजी में देखो, दोनों ऑप्शन थे. बड़ा मजा आता था.
1: उसमें कुछ था ही नहीं उसमें तो
0: भाई, हमें तो ऑप्शन
1: उसमें आवाज ही नहीं थी, बस वो
0: साइलेंट वाले. अच्छा ठीक है, पिंगू विंगू देख रहे थे क्या?
1: आता था दूरदर्शन पे मेरे भाई, दूरदर्शन. फिर उसके बाद वो ब्लैक एंड व्हाइट को कलर टीवी करने के लिए एक वो छोटी सी एक डिस्प्ले होती थी कलरफुल, एक शीशा टाइप उसको आगे लगा दिया कि चलो भाई देखो ये कलरफुल बन गया.
0: राइट. नहीं पर शुभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो आपने नई इन्फॉर्मेशन दी है. देखते हैं बाकी लोग क्या कह रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच कॉल करिए आपने.
1: थैंक यू
0: मेरे भाई, अल्लाह हाफिज. और मैं सही बता रहा हूँ, आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा, पर एक ऑप्शन था हमारी दिल्ली में तो होता था. वो ऑप्शन क्या होता था कि कलर टीवी जब आया था तो दो ऑप्शन थे, आप ब्लैक एंड सॉरी इंग्लिश में देखिए या हिंदी में देखिए कार्टून. तो एक कार्टून आता था, इसका नाम था करेज द कावर्डली डॉग. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, करेज द कावर्डली डॉग. वो छोटा सा डॉगी होता था और डरा रहता था, सहमत सा रहता था हमेशा वो. तो अंग्रेजी में तो डायलॉग ठीक है, ठीक ठाक थे, पर उसके डायलॉग हिंदी में पता क्या थे? एक तो फेमस, आपको अभी आप डालेंगे ना जाके, आप अभी देखेंगे तो एक और फेमस था, पत्थर लौटा दो. तो वो अभी भी हिंदी में अवेलेबल है. एंड क्या डबिंग थी भाई उन कार्टूनों की, क्या डबिंग होती थी. एक कॉल और आ रही है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
0: जय मेरा भाई. बस बढ़िया भाई, आप सुनाइए.
2: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह.
0: जी जनाब,
2: आवाज सुन लेते हो जाते हैं भाई.
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई. तो आपको याद है कि पहले दिन जब कलर टीवी घर में आया था कौन लेके आया था, क्या कुछ उस दिन की यादें हैं कुछ?
2: जी जी जी
0: बताइए.
2: बहुत अच्छी तरीके से यादें हैं. हमारे घर में तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो था ही नहीं.
0: अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट था ही नहीं.
2: ब्लैक एंड व्हाइट था ही नहीं तो एक दो घरों में होती थी टीवीयां, तो हम लोग जाते थे वही बैठ के देखते थे.
0: हाँ.
2: तो बाबा सऊदी में रहते थे.
0: अच्छा.
2: बाबा सऊदी में रहते थे तो वहां से वीसीआर लेके आए और कैसेट वैसेट लेके आए, तब ये देखेगा.
0: हाँ.
2: तब जो है कि बाबा बोले नहीं अब तो टीवी तो लाना पड़ेगा. तो फिर वो गए फ्लिप्स की नई टीवी खरीद के लेके आए. तो ये समझ लो पूरा गांव उस टाइम पे जो है कि देखने के लिए आया था कलर.
0: ओए होए, क्या क्या भीड़ लगी होगी यार, क्या भीड़ लगी होगी उस टाइम पे. क्या इनकी क्या कलर टीवी है
2: यार, इसमें तो कलर दिख रहा है यार, इसमें तो लाल व्हाइट दिख रहा है, सब दिख रहा
0: है. और उसके बटन भी ऐसे थे ना दबाने में मजा आ रहे हैं. बोलो भाई साहब, लाल लाइट आ रही है इसमें तो. वो अलग फील था भाई. हाँ, लाल लाइट और हरी लाइट.
2: याद आते
0: हैं अब तो मजा ही नहीं है जिंदगी में. नहीं, आप कहना ज्यादा आसान हो गया ना, मजा तो अभी भी है. कैजुअल हो गया मामला, जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है तो इसलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. पर मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया.
2: टीवी आने की खुशी में हम लोग को रात भर नींद नहीं आई.
0: भाई सेम सेम भाई, वो चाहिए. स्कूल में भी चल रहा है, कब जाके घर जाके देखेंगे, वो वाला सीन चल रहा है.
2: स्कूल जाए अब कितने घंटे हुए, कितने बेल बंद हो गई, अब हाँ. उसके बाद जाएं जल्दी भागना टीवी देखना जाके, क्या खुशी हाँ. होती थी यार.
0: हाँ, वो सही.
2: मजा आता था
0: बहुत बढ़िया.
2: हमें एकदम खुलने से ये लगती थी कि लोगों के यहाँ जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे हमारे मोहल्ले में गाँव में
0: हाँ.
2: तो जाओ देखने के लिए जब भीड़ लग जाती थी तो वो लोग भी क्या करते थे, कुछ देर के लिए टीवी बंद कर देते थे.
0: अच्छा,
2: इतनी जास्ती होती थी.
0: नहीं, मुझे याद है
2: तो
0: दिल्ली में मैं देखता था कि वो संडे को 12 बजे शक्तिमान आता था भाई. सड़कें खाली खाली सड़कें, सबके सब टीवी देख रहे हैं, सबके सब टीवी देख रहे हैं, कुछ नहीं है. बस दोपहर में अगर कोई आ गया फाल से बेचने वाला या आइसक्रीम बेचने वाला, तब जाके लोगों की आंख खुलती थी, वरना सब अपने घरों में. तो ये
2: अपने घरों में सही थी.
0: हाँ, अरे पर बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ हाँ,
2: उस टाइम शक्तिमान का क्रेज भी था, लेकिन बच्चों को सीन भी मिलती थी उससे. सॉरी शक्तिमान.
0: सॉरी शक्तिमान. बिल्कुल
2: जी,
0: थैंक यू सो मच.
2: लास्ट में जब शो खत्म होता था. ओके जवीर भाई, बहुत शुक्रिया.
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई.
2: बताते थे ना एक मोटिवेशन भी वो देते थे बच्चों के लिए.
0: हाँ, क्योंकि बच्चे छतों से शक्तिमान बनने की कोशिश भी कर रहे थे भाई उस टाइम पे. बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था भाई. अभी हम गाने की तरफ पढ़ते. मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह कि आपने कॉल करी.
2: थैंक यू सो मच. शुक्रिया आपकी, वो जंगल वाली कहानी ने तो रुला दिया था.
0: थैंक यू भाई, यही तो मैं इसी यही चाह रहा था मैं. थैंक यू भाई, चलो याद रहे लोग.
2: मैं गाड़ी खड़ी करके पूरी कहानी सुन के तब मैं गाड़ी से निकला हूँ.
0: आज की भी ऐसी रहेगा, आज की भी अच्छी कहानी, आज की भी कहानी अच्छी सुनिएगा.
2: चलो इंशाल्लाह, मैं तो गाड़ी में इंशाल्लाह
0: सुनता हूँ. ओके
2: भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़.
2: ओके अल्लाह हाफिज़.
0: तो एक मैं लास्ट कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद सारे मैसेज पढ़ दूँ, फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कबीर भाई
0: कैसे है मेरा भाई?
3: अल्लाह का एहसान है मेरे भाई की दुआ है.
0: जी भाई जान, बताइए कलर टीवी की क्या मेमोरी आपकी? पहला दिन याद है कि जब घर में आया था?
3: हमारे एक भाई साहब है, उन्होंने बात करना चाह रहे हैं आपसे.
0: अच्छा,
3: इमरान भाई बात करना चाह रहे हैं.
0: इमरान भाई को सलाम. इमरान भाई सलाम वालेकुम.
3: जवाब दो यार.
0: अरे इमरान भाई बोलो यार, शर्मा रहे यार. इमरान भाई खा थोड़ी जाएगा रेडियो पे, बोलो यार. हाँ इमरान भाई जागो.
3: हमारी पुरानी याद ये है कि हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी भाई.
0: अच्छा, फिर
3: उसको बाद में कलर करने के लिए कलर वाला आईना लाए.
0: क्या लेके आए?
3: फिर उसके बाद कलर वाला आईना.
0: कलर वाला आईना मतलब
3: ब्लैक एंड व्हाइट पे कलर वाला आईना लगा हो तो कलर वाली टीवी बजाती थी.
0: अच्छा, फिर
3: फिर उसके बाद आई हमारे पास पहली वीडियो कॉन कलर टीवी।
0: अच्छा हाँ, ये यहाँ पे बात करो, ये अच्छा समझ में आया। तो आप कितने साल के रहे होंगे जब कलर टीवी आया आपके घर पे?
3: पता नहीं,
0: छोटे ही थे मतलब,
3: छोटे से फोर्थ फिफ्थ क्लास में।
0: हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। मुझे लगा कुछ ज्यादा ही आपने जिंदगी में ज्यादा ही कुछ देख लिया है, फिर ठीक है। ओके ठीक है, और कहाँ घूम रहे हैं इमरान भाई को लेके?
3: सुगवा क्यों जा रहे
0: हैं? अच्छा इमरान भाई इतना अच्छा, इमरान भाई बोलते क्यों नहीं है ये बताइए, इमरान भाई क्यों नहीं बोल पा रहे हैं?
3: इमरान भाई जरा शर्मा रहे, फर्स्ट टाइम हूँ मैं।
0: अच्छा फर्स्ट टाइम, इनको आदत डलवाइए अपने, ऐसे थोड़ा घुमाइए अपने साथ इनको थोड़ा, है घुमाइए घुमाइए। अच्छा ओहो वेलकम वेलकम वेलकम, घुमाइए इनको, फिर मैं भी कहानी सुनाता हूँ, इनको सुनते सुनते जाएंगे, हो सकता है कॉन्फिडेंस आ जाए बीच में।
3: ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, कहानी का इंतजार
0: कर। डन डन डन। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। और एक बहन है, उन्होंने बोला कॉल करने वाली थी, नहीं नहीं बहन मैं कॉल करूंगा। कैसी बात कर दी आपने यार, कैसी बात कर दी, वरना हमारी एक और बहन रहेगी। यहाँ पे तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है, नहीं भाई बहन चारा भी ऑन टॉप चलेगा। एक सेकेंड कॉल कर रहा हूँ मैं। खादिम साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे नहीं करूंगा कॉल बताइए, मैं कैसे नहीं करूंगा कॉल,
4: चोरी का टाइम हो रहा है अभी, कहाँ मैं कॉल।
0: नहीं बहन हम दुनिया रोक देंगे, बहन की बात है भाई साहब, बताइए क्या क्या मेमोरी आपकी।
4: मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन पूछने से पहले कोई डिस्क्लेमर था कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप वाले लोगों के लिए।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
4: तो वही पीपल जैसे लोग यू नो गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं, मैं कलर टीवी के साथ पैदा हुई थी, दशा मास्टर।
0: अरे माशाल्लाह क्या बात है, क्या आपको तो पता ही नहीं होगा कलर टीवी ब्लैक एंड व्हाइट का? फिर तो
4: Of course, नहीं पता है, बट आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। व्हेन वी से ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे एक चीज याद आती है दैट मुगले आजम केम इन कलर,
0: ओके,
4: एंड दैट वाज लाइक अ वेरी बिग डील।
0: हां ऑफ कोर्स,
4: जब हम लोग लेकर आए थे, मेरे को तो पता नहीं था मुगले आजम क्या, बिकॉज़ आई वाज लाइक बहुत छोटी थी मैं।
0: हां व्हाट इज दिस सलीम एंड नॉर्कली यार, सो फेंसी।
4: नहीं सॉरी,
0: अच्छा फिर दे
4: जब शुरू हुई थी तब मैंने देखा था, एंड लाइक मैं सो गई थी बीच में, एंड देन जब मैं उठी तो एंडिंग चल रही थी, दीवार के अंदर जा रही थी, तो बीच की स्टोरी मुझे अभी तक नहीं पता क्या हुआ।
0: क्या नारकल लिखा गई, कहाँ गई वो? अरे

0: मुलाजम की बहन बहुत बढ़िया कि मुझे तो याद है 20 में नाजरी थी, फिर मैंने जहाँ खुली तो वो दीवार में थी।
1: ब्लैक एंड व्हाइट जो बोलते ना, मेरे को बस उतना ही याद आता है। शुरू से तो व्हाइट तक मैंने कलर टीवी ही देखा था।
0: अच्छा, तो कभी कभी वीसीआर देखा है आंखों के सामने? हैव यू विटनेस्ड अ थिंग कॉल्ड वीसीआर एवर? नो।
1: वीसीआर वो ना जिसके अंदर वो कैसेट डालते थे।
0: हां, राइट राइट राइट राइट। सो हैव यू सीन इट?
1: वो तो था ना, ऑफ कोर्स। तो वो मेरी फेवरेट मूवी थी ना।
0: अच्छा, तो यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर ओनली, राइट?
1: हाँ, exactly.
0: तभी तो लाड साहब हैं भाई साहब, लाड साहब।
1: हाँ, समझ आया।

0: ख्याल रखिए बहन अपना, और इंशाल्लाह फिर कहानी सुन सके तो सुनिएगा, ठीक है? झंडा ही गाड़ो दो पर। आज अनारकली को बीच का सीन नहीं छोड़ना है, ठीक है? अनारकली कैसे कहाँ गई सब पता लगेगा सब पता लगेगा, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए, मैं सुनाता कर, नो प्रॉब्लम बहन, अल्लाह हाफिज। तो हमारी बहन ने बोला हमने का कॉल तो करनी पड़ेगी, कैसे नहीं करेंगे। फराज भाई लिखते हैं, वी हैव 8 चैनल्स टीवी एंड 250 चैनल वाला भी इनके पास आ रहा है, बड़े लोग हैं, बड़े लोग। एक मैसेज तबस्सुम बहन का, वो लिख रही है चाइनीज नाम था ना आपका, ओके। यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं, यूसुफ भाई कह रहे हैं, कबीर हमारे घर में पहले वो शटर वाला ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो मेरे दादा के पास था, उसके बाद एक स्क्रीन लगाई थी जिसपे 4 कलर होते थे, वो लगाई थी, उस ज़माने में यही कलर टीवी था, बहुत अरसे बाद याद नहीं बट छोटा था तब हमारे घर कलर टीवी आया था, सब इतने खुश थे जैसे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हों। मेरे बड़े भैया बाहर सऊदी अरब में रहते थे और तब वो ख़ास तौर पर कलर टीवी, सबके रिश्तेदार सऊदी अरब में थे, मेरे भी यही था सीन भाई। एक मैसेज है कबीर भाई, 1999 वर्ल्ड कप मेरे वालिद के साथ कलर टीवी लेकर आए थे वालिद साहब, और जैसे ही टीवी ऑन किया शेब अख्तर दौड़ता हुआ आ रहा था, और अभी भी टीवी है बटन नहीं है। आमिर शहीद साहब का मैसेज है, और आमिर भाई के बाद मैसेज है, भाई जो मज़ा ब्लैक एंड वाइट में था वो कलर में नहीं, वो बड़ा वाला बटन चेंज करने का, छोटा वाला वॉल्यूम का स्क्रीन पर आवाज़ दो, ये एंटीना देखा भाई थोड़ा साइड में राइट में करो, वो करने का मज़ा ही कुछ और था ना। मैंने कहा सर आर फैमिली इज़ वेरी लार्ज इन आर विलेज, देर हैव ऑफन बीन राइवलरीज एंड डिस्प्यूट्स। अच्छा आपको तो फिर आप 300 कजन्स कह रहे हैं तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारा पहला कलर टीवी सोनी का था, खाला ने दिया था क्योंकि इसकी पिक्चर ट्यूब वीक हो गई थी, खाला ने दिया था, खाला बहुत अच्छी खालाएँ मिली हैं लोगों को हमारे ही, मतलब एनीवे एक मैसेज है, लेकिन मैंने कराची से एक चोर मार्केट से सेकंड पिक्चर ट्यूब मिल गई थी, वो रिप्लेस करके उसके बाद 10 साल रहा हमारे साथ, और उसका वज़न 25 किलो था। भाई आज के लोग नहीं उठा सकते वाला टीवी, लिख के दे रहा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है कहानी की तरफ बढ़ाऊँ मैं, एंड ऑफकोर्स आज की कहानी जो है मैं है जो है बस मैं कुछ नहीं बताऊँगा, आई विल नॉट सेल इट एंड ओवर सेल इट, जैसे आजकल के इंस्टाग्रामर्स कहते हैं ना हमारे यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनकी तरह ही बोलता हूँ, हिडन जैम है भाई, साफ सीधी बात हिडन जैम है, इसके बाद सुनने को मिलेगा।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, माई वापस आ गया ही। अब जरा मैं किस्सा शुरू कर रहा हूँ, सो तैयार हो जाइए, मैं जरा रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से ऑन कर लूँ, हो गई ना ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, एफएम 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। आज का किस्सा भी एकदम असली है, इट हैज़ टन्स ऑफ एविडेंस, एंड इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है इस कहानी को ओपन माइंडेडली सुनिएगा, क्योंकि कई किस्से ऐसे होते हैं जब तक किसी के साथ होते नहीं उसे यकीन नहीं होता है, एंड सिमिलर टू दिस वन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स दैट आई बीन टेलिंग यू सिंस सो मेनी ईयर्स, वैसा ही कुछ है, पर ये बड़ा अलग किस्म का किस्सा है, ये सुनिएगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इसकी शायद डॉक्यूमेंट्री भी देखी हो, आई एम नॉट श्योर। चलो बढ़ा देते हैं वॉल्यूम। तो जो आज का किस्सा है इसको सुनाने के लिए मैं 20 साल पीछे ले चलता हूं आपको, ठीक है, 20 years back, साल था 2006। अब कुछ डिटेल्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी इस फैमिली के बॉन्डिंग और इनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो एक थी सूजन और उनकी बेटी थी जेमी, ओके, शी वाज अ सिंगल मॉम। सूजन ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई जो उसने बेसिकली बचाई ही घर के लिए थी, वो कमाई से उसने एक घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। ये घर था सदर्न कैलिफोर्निया में, ये जो घर था एक छोटा सा प्यारा सा घर था, क्वाइट नेबर, काफी चुपचाप रहने वाला नेबर।

रही है, एंड मॉडेस्ट घर था ये, और बाकायदा इसको एक नाम भी दिया था, नाम दिया था सुजन ने सेंचुरी इस पूरे घर को। मूव करने के बाद ही, क्योंकि सुजन भी एक शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी, वो भी सिंगल डैड थे, और दोनों की आपस में बातचीत आगे बढ़ी, तो सुजन ने कहा व्हाई नॉट, सो दे गॉट मैरिड। अब सुजन जो थी, वो जिनसे मोहब्बत करती थी, वो भी सुजन के साथ इसी घर में शिफ्ट हो गए। इनका नाम था मैट, और मैट जो थे वो जेमी से बिल्कुल फाइन थे, मतलब सुजन की जो बेटी थी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया था मैट को एज हर फादर, और काफी जेलप हो गए थे। अच्छा, मैट की भी एक बेटी थी जिसका नाम था मरी, तो सुजन और मैट दोनों की बेटियां मरी और जेमी, और ये फैमिली में बॉन्डिंग बहुत जल्दी बन गई। मतलब ऐसा नहीं था कि अरे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये तो मेरी बेटी नहीं है, बेटी बोलते नहीं, ये तो मेरे डैड नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दे गॉट लॉन्ग रियली रियली वेल, सब कुछ इनकी लाइफ में परफेक्ट, घर का नाम सेंचुरी, और अब एक सेट हो गई ये फैमिली, एक घर जो काफी मेहनत की कमाई से लिया हुआ घर है, तो एक अंदर से बहुत खुशी थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग परफेक्टली फाइन फॉर सम टाइम, और फिर कुछ हफ्तों के बाद एक खूबसूरत सा दिन था, गर्मियों का दिन था, मेट जेमी और मरी ये तीनों पूल में खेल रहे थे। मैट जो था वो दोनों लड़कियों का, दोनों बच्चों का ख्याल रख रहा था, और पूल में मस्ती कर रहे थे लोग, घर के सामने ही पूल था। और सुजन जो थी, उन्होंने कहा मैं 2 मिनट में आती हूँ, वो घर के अंदर गई ताकि लंच की तैयारी कर सकें, और इतने पूल में टहलने के बाद, कूदने फांदने के बाद बच्चों को भी भूख लगी होगी, सो शी वेंट इनसाइड। वो अपने घर में दाखिल हुई, किचन की तरफ गई, किचन में गई तो उन्होंने देखा कि किचन काउंटर पे जो पीनट बटर का जार था उसकी लिड हटी हुई थी और वो गिरा हुआ था, मतलब एज इन जैसे रखते हैं वैसे नहीं था, उसे किसी ने गिरा दिया था काउंटर पर ही। और काउंटर पे गिरने के बाद हुआ ये कि पीनट बटर जो है, आप जानते हैं ना कितना थिक होता है, वो ऐसे पानी की तरह नहीं बह सकता, लेकिन इस जार में से वो पीनट बटर बिल्कुल ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने उसे पिघला दिया हो, या किसी ने उसे माइक्रोवेव में रख दिया हो फॉर सम टाइम। अब सुजन सोच रही थी यार टेम्परेचर तो इतना गर्म है नहीं, या मुझे नहीं लग रहा, वो समझ गई दोनों में से किसी बच्चे की ये शैतानी होगी, उसने ये किया होगा। तो सुजन ने सबसे पहले जब ये देखा तो वो मुड़ी और उन्होंने अपनी बेटी को आवाज लगाई, उन्होंने बोला जेमी जेमी गेट इनसाइड कम हियर, और जेमी अपनी माँ की एक आवाज में भागती हुई अंदर गई। बोला व्हाट हैपेंड मॉम, उसने बोला ये बताओ ये क्या किया तुमने, तुमने किया है ना ये। एंड जेमी ने जब देखा ये उसके सामने जब वो पीनट बटर उसके जार में से गिर रहा था फर्श पर, उसने वो हंसने लगी, बोली मॉम मैं क्यों करूंगी ये, आई डोंट नो। तो माँ ने बोला तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, मरी ने किया है ना, तुम दोनों की चाल है ना ये, सच्ची सच्ची बताओ। उसने बोला नो मॉम, वो मेरे साथ ही है बाहर, आप थी तो सही बाहर, आपने नहीं देखा। तो सुजन ने कहा जाओ जाओ फौरन जाओ, उसको वहां से जाने के लिए कहा। फिर उसने मरी को आवाज लगाई, मरी गेट इनसाइड, वो भी भागती हुई आई, उससे पूछा ये तुमने किया है, एंड उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं किया। एंड सुजन उसने लंबी सांस भरी, बोला ओके फाइन गो, उसको भी वहां से जाने के लिए कहा। अब सुजन सोच रही थी अब ये दोनों ही बच्चे ना एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, दोनों मानेंगे नहीं इन दोनों ने किया होगा, बट ठीक है वैसे भी अभी अच्छा दिन है, इसको मैं खराब नहीं करती, सो इट्स ओके। एंड शी मूव्ड ऑन, उसने सारी की सारी सफाई करी, इतना पीनट बटर जो था वो फर्श पे गिरा हुआ था पूरा साफ करने के बाद, और खाना वाना थोड़ा तैयार करने के बाद खाना बाहर लेके आई, और उसके बाद इन सब ने अच्छी खासी दावत वावत छोटी फैमिली पार्टी करी, और फिर बाहर खूब मजे किए पूल में। तकरीबन 5 बजे के करीब जब सूरज अब ढलने लगा था, एंड दे वर गेटिंग इनसाइड, अब जब ये घर के अंदर गए तो जो मंजर इनके सामने था वहां से यूं समझिए कि कहानी शुरू होती है। तो मीनवाइल जब ये सब बाहर थे, इधर उधर बच्चे खेल रहे थे, सुजन मैट बातें कर रहे थे, उसके बाद जब ये घर में दाखिल हुए, इन्होंने देखा कि इनके घर के अंदर सीढ़ियां जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती हैं और वो बिल्कुल सामने से दिख जाती हैं, सो इफ यू एंटर दिस हाउस, जैसे आप एंटर करेंगे आपके

सामने सीढ़ियां होंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे किचन होगा। सामने जो सीढ़ियां हैं उसकी एक एक सीढ़ी पर जितना भी कैन फूड था इनका, वो कैन फूड रखा हुआ था हर एक सीढ़ी पर, एक एक कैन रखा हुआ था। इसके अलावा जो बाकी ऑब्जेक्ट्स थे, कंघा हो गया, पेंसिल हो गई, ये सारे अलग अलग पैटर्न में रखे हुए थे, ट्रायंगल के पैटर्न में, स्टार के पैटर्न में। बाथरूम में हाल ये था कि शैम्पू की बॉटल्स एक के ऊपर एक स्टैक करी हुई थी। एंड माइक्रोवेव का हाल बहुत बुरा था। माइक्रोवेव के अंदर पीनट बटर जार थे, उसके अंदर खाने पीने की उल्टी सी चीज़ें ठूसी हुई थी जो अवन में नहीं होनी चाहिए, और बच्चों के जो स्टफ एनिमल टॉयज थे वो भी माइक्रोवेव के अंदर थे। जितने भी क्लीनिंग मटेरियल्स थे जो साफ सफाई के लिए होते हैं, बर्तन मांजने के लिए या फ्लोर साफ करने के लिए, वो सारे ज़मीन पर लाइंड अप किए गए थे। इसके अलावा शैम्पू और साबुन लगातार आप मतलब जब ये घर के अंदर गए तो दीवारों पर, शीशों पर साबुन और शैम्पू और ये सब जैसे किसी ने रगड़ दिया हो। मैट और सूजन, जस्ट इमेजिन, अब अपने आप को मैट या सूजन समझिए। ये मंजर देख के हाउ वुड यू फील? ये दोनों जब अंदर दाखिल हुए तो उनका सबसे पहले रिएक्शन था कि हमारे घर में, मीनवाइल जब हम बच्चों के साथ थे या बच्चे इधर उधर हुए, तो कोई इंट्रूडर आया, ये बच्चों का काम तो नहीं है, कोई हमारे घर में दाखिल हुआ है। और ये फौरन बाहर भागे और ये प्रॉपर्टी को इधर उधर देखने लगे कि यार कहां कौन, जब कोई भी नजर नहीं आया तो उन्होंने कहा ये हुआ क्या, एंड दे टुक फोटोग्राफ्स। मैट जो था Rather than calling police, क्योंकि इनको लगा यार क्यों मामलों में फंसे, कोई तो दिख नहीं रहा, ये हमारे बच्चों ने किया होगा, उसका दिमाग एकदम से बदला, वो मुड़ा और सूजन की बेटी जेमी की तरफ देखते हुए बोला, जो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, उसने बोला सूजन समझाओ अपनी बेटी को, मैं बता रहा हूं इसी ने किया है ये, तुम मानो या ना मानो। और सूजन को लग रहा था मैट की बेटी ने किया है, और एक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई दोनों के बीच में, एक मेजर फ्रैक्चर इस फैमिली में आ गया था, बिकॉज They could not comprehend, ये हुआ तो हुआ कैसे, बच्चे ही कर रहे हैं और तो कोई है नहीं, इंट्रूडर तो कोई दिख नहीं रहा है, तीसरी कोई वजह हो नहीं सकती है, तो बच्चों ने किया है। और इन लोगों ने इस रैशनल एक्सप्लेनेशन की वजह से पुलिस को कॉल तक नहीं करी। अब घर को क्लीन करना कोई आसान काम तो नहीं था, क्योंकि हर चीज इधर की उधर हो चुकी थी, पूरे घर की सफाई करी, पूरे घर की, एंड जस्ट मूव्ड ऑन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड दिस इज, दीज आर द क्लियर साइंस ऑफ डिनायल। क्या होता है ना, अभी हमारा और आपका ही कहना बड़ा आसान है कि अरे क्या हुआ, तो पुलिस को कॉल कर देते, बट व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन आपका दिमाग एक अलग तरीके से फंक्शन करता है। समटाइम्स आपका लॉजिकल माइंड काम ही नहीं करता है, एंड यू गो इन टू डिनायल, क्या नहीं मैं कितना अजीब लगूंगा पुलिस को बुलाऊंगा इतनी सी बात पे, अरे ये बच्चों ने किया होगा, एंड उसके दिमाग में यही चल रहा था, एंड दे जस्ट कंटिन्यूड विद इट। हफ्ते दर हफ्ते छोटी मोटी चीजें होती रहीं। फिर एक दिन आया तकरीबन 12 दिन के बाद, जेमी और मरी, ये दोनों बच्चियां जेमी के कमरे में थी, और मरी जो है वो डेस्क पे थी, वो हेड डाउन करके अपना काम कर रही थी, कुछ ड्रॉ कर रही थी, और ये जो टेबल थी ये बेड के नेक्स्ट मतलब साइड में ही थी। जेमी के हाथों में कॉफी का कप था, उसने कॉफी का कप जो है डेस्क पे रखा पीछे की तरफ, मतलब नजरों के सामने तो नहीं था मरी के, लेकिन उसी की डेस्क पे था, वहां पे रख के उसने बोला रुकना मैं वॉशरूम से आती हूं, एंड शी वेंट अवे। उसके बाद वॉशरूम से जब वापस आई, उसने देखा मरी की तरफ, मैरी जो है वो हेड डाउन किए हुए थी और काम में लगी हुई थी डेस्क पे, और फिर उसकी अटेंशन उसकी कॉफी के मग पे गई, उसने देखा कि कॉफी का मग लिटरली ऐसा लग रहा है कि उठा के बिस्तर पे फेंका गया है, पूरी की पूरी कॉफी पूरे बिस्तर पे फैली हुई थी, और एक ही इंसान था कमरे में, मैरी। एंड फिर इन दोनों लड़कियों का भी गुस्सा एक दूसरे पे निकलने लगा, ये बच्चियां एक दूसरे से झगड़ने लगी, अभी तक तो उनके मां बाप ही झगड़ रहे थे।
एंड जेमी चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हें टेंशन चाहिए। और फिर मैरी को भी गुस्सा आया, उसने बोला अरे यकीन करो मैंने नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ऐसा, व्हाई वुड आई थ्रो योर कॉफी मग, क्यों करूंगी मैं ऐसा। एंड दोनों लड़कियां बुरी तरह से शोर मचाते हुए लड़ने लगी और बोलती रही जेमी इसको टेंशन चाहिए, कुछ भी करती है, ये करती है, वो करती है। एंड जेमी जो थी पर गुस्से में वहां से निकली और कमरे से निकलने के बाद वो ब्लीच लेकर आई सीधा, और ब्लीच लेकर आई वापस आई, उसने ब्लीच से साफ करने की कोशिश करनी थी तो उसने ब्लीच को रखा डेस्क पे। अभी डेस्क पे नहीं बैठी थी मरी, मरी अब चेयर पे बैठी थी मुंह बनाए हुए बहुत गुस्से में, क्योंकि जेमी ने बोला तुम यहीं रुको अभी बताऊंगी मैं, और वो बैठी रही वहां पे। अब जेमी ने सबसे पहले ब्लीच का जो पूरा उसका बॉटल थी वो रखी, उसके बाद अपना कॉफी का मग जो है वो बेड से उठाया और टेबल की तरफ मुड़ी ब्लीच की बॉटल उठाने के लिए, लेकिन उसने देखा कि ब्लीच की बॉटल का ढक्कन जो है वो निकला हुआ था और वो गिरी हुई थी बॉटल डेस्क से, अब नीचे की तरफ ब्लीच गिर रही थी बुरी तरह से, पूरे फर्श पे और नीचे उसके कपड़े भी थे, सब पे ब्लीच गिर चुकी थी। अब जो हुआ रियली स्केयर्ड जेमी, क्योंकि उसके सामने थी मरी, यानी उसने नहीं किया है और मरी वो भी जेमी को दिख रही थी, उसको पता है कि जेमी ने भी नहीं किया।

बोथ ऑफ देम न्यू कि हम अगर बताने की कोशिश भी करेंगे तो पहले ही दोनों के दोनों समझते हैं कि हमने किया है और अभी हमने ये और सूजन ने जब दोनों पे चिल्लाना शुरू किया तो एक पिक्चर फ्रेम था इन फोटो फ्रेम था बेसिकली जो इसी कमरे में था जहां पे वो चिल्ला रही थी जेमी और मरी पे वो जमीन पे गिरा एंड फिर वो कहने ही जा रही थी कि ये ढंग से और उतने में एक और फोटो फ्रेम गिरा। सूजन जो इतने गुस्से में चिल्लाने के लिए आई थी और बच्चों की बात सुन के उन्हें लग रहा था कि दोनों प्रैंक कर रही हैं, दोनों फोटो फ्रेम जब लगातार सेकंड के बाद गिरे तो उनका चिल्लाना एकदम से बंद हो गया। उनके दिल में कुछ आया, वो शायद कहना चाहती थी कि उन्हें भी कुछ गड़बड़ लग रही है, बट शी कुडंट स्पीक। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि इस घर से अभी मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने दोनों बच्चियों को चिल्लाना बंद करके और प्यार से कहा, तुम दोनों अभी के अभी मेरे साथ चलो, क्योंकि सूजन बहुत डर चुकी थी और वो डर बच्चों को नहीं दिखाना चाहती थी। इस वक्त मैट अपने काम पे गए हुए थे तो सूजन बाहर निकली, गाड़ी में दोनों बच्चियों को बिठाया और वहाँ से इधर उधर घूमती रही। इस गाड़ी में एवरीबॉडी वो साइलेंट फॉर 5 to 6 minutes। उसके बाद दोनों बच्चियाँ, क्योंकि बच्चों का क्यूरियस माइंड होता है, तो बात करने लगी कि मॉम क्या करेंगे अब हम, व्हाट विल वी डू। एंड कोई जवाब नहीं था सूजन के पास। उसने बोला कि हमें वापस जाना पड़ेगा। That's all she said. और बच्चियां दोनों राजी नहीं थी, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि माँ ने एक हिम्मत दे दी थी और माँ की खुद की हिम्मत टूट रही थी। खैर, गाड़ी को मोड़ा और सूजन जो थी वो वापस अभी घर की तरफ आई। गाड़ी उन्होंने पार्क करी और अपनी दोनों बच्चियों को उनका हाथ थामे वो घर के सामने खड़ी थी। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड कि हुआ क्या, क्या अभी भी ये कोई एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे, बट उन्होंने कहा एनीवे इट्स ओके और दोनों बच्चों को लेकर वो घर में दाखिल हुई। पर अब जब वो घर में दाखिल हुई तो अब ना तो मैट था, मैट तो नौकरी पे था, और दोनों बच्चियां उनके साथ में थी। घर का हाल इतना बुरा कि वो बुरी तरह से रोने लगी। जो पड़ोसी तक हैं उन तक को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। ये एक ऐसी चीज थी जो कोई भी इंसान अगर ये सिर्फ फेम के लिए भी करेगा तो अपने साथ तो नहीं कर सकता, जिसके पास पैसे ना हो वो तो और नहीं करेगा। दरअसल जब सूजन अपने दोनों बच्चों के साथ एंटर हुई तो फ्रिज पूरा का पूरा ओपन हुआ था, सारा सामान खाने पीने का जमीन पे पड़ा था फर्श पे, एंड घर फिर से पूरा पलटा हुआ था, इधर से उधर सामान बिखरा हुआ। And she just went on crying. दोनों बच्चियां भी साथ में रो रही थी। इन तीनों को चुप कराने के लिए पड़ोस का एक कपल था, वो भी आया, एंड दे डिड नॉट नो कि हुआ क्या है। सूजन ने उन्हें कहा प्लीज आप जाइए, मैं देख लूंगी। एंड सूजन ने इनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि कौन मानेगा सूजन की, एंड जस्ट वेंट अवे। ओके फाइन। सूजन ने फ्रिज को साफ करना शुरू किया एंड She wanted to talk to Matt कि जब वो घर आएगा तो उसे पूछेगी कि क्या कोई तरीका है यहां से जाने का। लेकिन Matt फिर घर आया। Matt जब घर आया तो सूजन ने बताया कैसे ऐसा हुआ। पर Matt जो था, क्योंकि वो एक skeptical माइंड से सब चीजें सोच रहा था, सुन रहा था, उसने बोला सूजन मजाक बंद करो, हाँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम इन बच्चों के साथ मिलकर जो प्रैंक कर रही हो। अभी बहुत हो गया यार, सामान खराब हो रहा है खाने का, ये कोई मजाक है, कैसे चलाएंगे हम महीना भर। तुम्हें अगर सूजन घर पसंद नहीं है तो बोल दो ना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, स्टॉप इट। और एक ह्यूज लड़ाई शुरू हो गई सूजन और मैट के बीच में। सूजन बोला तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूं, मुझे नहीं पता है कि हम कितना बजट पे चल रहे हैं। Why are you fighting with me? I'm telling you something. समझो मेरी बात को, it's not a prank. लेकिन दोनों के दोनों लड़ते रहे और बच्चे रोते रहे। And even बच्चों ने भी कहना शुरू किया, Dad, you don't get it. समझने की

कोशिश कीजिए. एंड नो, अभी आलम यह था कि घर में कोई भी किसी से बात करने को राजी तक नहीं था. इट वॉज ऑल हेट. सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए गए. थोड़ा बहुत जो खाना था वो बाहर से जैसे जैसे ला के खाया. और फिर जब सोने के लिए गए तो इस वक्त पावर कट हुई. एंड ये वो रात थी जब इन्हें कुछ करना चाहिए था, क्योंकि जब पावर कट हुई तो सारे के सारे जितने भी डोर थे इस घर के, सब के सब बैंग हो रहे थे लगातार. और ऐसा लग रहा था कि लगातार कोई दरवाजे के नॉब को पकड़ के अंदर बाहर उसको खींच रहा है, जोर से धकेल रहा है, और बैंगिंग आवाज़ आ रही थी. और जो लाइट स्विचेस थे कमरों के अंदर के, वो लगातार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो ही जा रहे थे. और ये इतना कॉन्स्टेंट था कि इस वक्त मैट, जो अभी तक कुछ भी नहीं मानने को तैयार था, ही कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि ये कैसे हो रहा है. अब अगर मैं और आप होंगे तो हम अभी भी ये बोलेंगे ना कि अरे पुलिस को कॉल करना. बट अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ये एक डिनाइल है, ये साइकोलॉजिकली एक ऐसा ब्रेकडाउन था इन लोगों के लिए कि एक तो इनके पास पैसे नहीं थे, दे वर नॉट रिच इनफ. ऊपर से नहीं लगा कि अगर ये बात फैली तो लोग हमको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे. पहले ही पड़ोसियों से हमारा इनकाउंटर जो पहला हुआ है वो रोते हुए हुआ है. ये थिंग्स वुड गो समवेयर एल्स. और ये परेशानी नहीं है, ये सिर्फ प्रैंक है, ये मजाक है. और ये समझ के दे वर जस्ट मूविंग ऑन एंड नॉट कॉलिंग एनीबडी एट ऑल, जबकि उनकी पूरी दुनिया इट वॉज टर्न्ड अपसाइड डाउन. सूजन ने कुछ दोस्तों को बताने का फैसला किया. और अगले दिन हुआ ये कि जब सूजन ने अपने एक दोस्त को बताया तो उस दोस्त ने, बेसिकली एक कपल थे, उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस दी. क्योंकि लोग इस बारे में क्या ही बोलेंगे, या तो लोग बोलेंगे कि तुम पागल हो, या तुम्हें कोई ऐसी एडवाइस देंगे जो किसी के समझ में ना आए. एंड सूजन, ऐसा होता ना मरता क्या ना करता, सूजन को उस दोस्त ने कहा कि देखो तुम्हें ना पीस ऑफरिंग करनी चाहिए, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज है उसकी कुर्बानी दे देना एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. सूजन ने कहा ओके फाइन, कोई पीस ऑफरिंग करती हूं. तो सूजन के पास जो है एक बिल्ली की फिगरीन थी, बेसिकली एक छोटा सा पुतला टाइप था बिल्ली का, और उसे बहुत बहुत ज्यादा अजीज था, बहुत ज्यादा पसंद था. तो फौरन घर गई बेचारी के, काम दिमाग तो काम कर नहीं रहा था. उसने सोचा कि मैट के वापस आने से पहले ये हम कर लेते हैं. बच्चियां कंफ्यूज थी घर पे कि सूजन कर क्या रही है. सूजन ने एक टेबल पे कैंडल्स लगाई, बीच में बिल्ली को बिठाया, वो जो उसका जो जो जो फिगरीन था, और फिर वो बस बोती रही कि हमें कुछ नहीं चाहिए एंड वी कैन लिव इन पीस, नो नेगेटिव एनर्जी, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी वो. एक्सेप्ट अस, वी मीन नो हार्म. एंड जब वो ये कर रही थी तो इतने में मैट जल्दी घर आ गया, क्योंकि पिछली रात पावर कट के बाद वो भी बेचारा सो नहीं पाया था, वो भी बेचैन था, वो भी हजारों सवाल खुद से कर रहा था. एंड वो ऑफिस में सिक बोलकर आ गया था. आप जब उसकी नजरों के सामने उसने सूजन को ये करते हुए देखा, ही वॉज नॉट फाइन एट ऑल. और उसने गुस्से में उस फिगरीन को उठाया, उस जो बिल्ली का फिगरीन था उठा के खिड़की के बाहर फेंका. एंड उसका हाथ उठने वाला था सूजन पे, लेकिन वो रुक गया. और बच्चियां भी बोली थी डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, उनकी वजह से वो रुक गया. एंड लड़ाई इनकी होती रही. फिर उन्होंने देखा कि वही बिल्ली वाला जो फिगरीन था वो वापस टेबल पे था. मैट डिड नॉट केयर, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था. उसने उसे उठाया और जमीन में पटक के तोड़ दिया. एक क्रेजी सीक्वेंस ऑफ थिंग्स इन लोगों की लाइफ में हो रहे थे. अब ऐसा हो गया था कि कहीं इन्होंने चिढ़ा तो नहीं दिया है जो भी कुछ है यहां पे. इसने कहा सबके सब अपने कमरे में जाओ, और मैट के ऑर्डर पे सबके सब अपने कमरे में भागे. एंड सब अब अलग अलग थे, और सब के सब परेशान थे, और सब के सब सोच नहीं पा रहे थे कि कब खत्म होगा. देर रात को जेमी जो थी वो किचन में जा रही थी. शी जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम स्नैक्स, क्योंकि कोई भी बात नहीं कर रहा था एक दूसरे से. जेमी जो थी वो नीचे की तरफ गई, किचन की तरफ गई, और उसने देखा जब जैसे ही लाइट जलाई, फ्रिज पर, दीवार पर, ऊपर सीलिंग की तरफ, हर जगह कैट कैट कैट लिखा हुआ था, हर जगह हर जगह. एंड जब उसने देखा शी स्टार्टेड क्राइंग बुरी तरह से. मैट जब भागता हुआ आया, जो अभी भी अपने आप से सवाल कर रहा है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है, वो अभी भी जेमी पर चिल्लाया, जेमी ये क्या है, ये क्या मजाक है. सुजैन ने बोला, मैट अभी भी यू थिंक ये मजाक है,
तुम्हें लगता है एक बच्ची बीच रात को उठ के सीलिंग पे जाके कैट लिखेगी? डू यू रियली थिंक सो? सब तुम्हारी वजह से. एंड दोनों फिर से लड़ने लगे. दिस हाउस वॉज कंप्लीटली गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड नथिंग वॉज मेकिंग सेंस. कुछ दिनों में इस घर के अंदर दीवारों पर एक अजीब से जैसे जंग का रंग होता है ना, जंग जब लोहे को जंग लग जाता है, वो लिक्विड अलग अलग पैटर्न्स में घर पे अलग अलग जगहों पे नजर आ रहा था. वो क्या है, वो क्या लिक्विड है, दे कुड नॉट फिगर आउट. एंड घर को छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियली पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थे ये लोग. बच्चे अब रहना नहीं चाहते थे. दोनों बच्चियों ने बहुत जिद करी कि हमें बस यहाँ से जाना है, हमें बस यहाँ से जाना है, हमें बस यहाँ से जाना है. अपसेट, एंगर, सब कुछ था. मगर फिर दो मेजर इवेंट्स हुए जो इस कहानी के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं और आपके लिए जानना. एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई. दरअसल जेमी जो थी वो अपने दोस्त के घर चली गई थी. जेमी और मरी दोनों बच्चे एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही थी. एंड सूजन और मैट एक काम के लिए बाहर गए थे. ये काम जो था वो ऐसा था कि उन्हें कहीं दूर जाना था. तो उन्होंने मरी से पूछा, मरी वुड यू लाइक टू कम विद अस? मरी ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना. एंड उस बच्ची ने मना तो कर दिया, बाद में उसे पछतावा होने लगा कि मैंने मना क्यों कर दिया. अब वो घर में अकेली थी. चंद घंटों की बात थी लेकिन अकेली थी. अब वो लिविंग रूम में बैठी हुई थी और वो टीवी चला के अपना टाइम पास कर रही थी. टीवी उसने देखा, जब चलाना शुरू किया और चैनल चल रहा था तो टीवी बार बार बंद खुल बंद खुल बंद खुल होने लगा और एकदम से बंद हो गया. उसने रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने रिमोट नीचे गिरता हुआ देखा. शी न्यू समथिंग इज गोइंग टू बी रियली रियली बैड. जो चेयर टीवी के साइड में रखी हुई थी दीवार को फेस करते हुए, क्योंकि उस तरफ टेबल थी, वो चेयर घूमी सीधा जेमी की तरफ. एंड इट वॉज लाइक कि इस डिम लाइट में उस चेयर को मोड़ के कोई जेमी को देख रहा हो. एंड फिर एक साथ जितने भी फ्रेम्स इस घर के थे, जितनी भी प्लेट्स जो डेकोरेशन के लिए दीवार पर लगाई थी, सब की सब एक एक करके धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ अलग अलग जगहों से गिरने लगी. शी स्टार्टेड क्राइंग बुरी तरह. शी वॉज लूजिंग हर माइंड. उसके पास एक डिजिटल कैमरा था जो उसने गले में टांग रखा था और उसने कांपते हुए हाथों से बहुत सारे फोटोज क्लिक करती हुई घर से बाहर भागी. एंड अभी वो बाहर घर के बैठी हुई, इनफैक्ट जो पड़ोसियों का पोर्च था वहां पे बैठ के उनसे पूछ के इजाजत लेके बस बाहर बैठी रही, इंतजार कर रही थी कि कब उसके घर वाले आएंगे. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड स्टेड देयर. उसके बाद मैट और सूजन वहां पे पहुंचे. एंड उन्होंने रोते हुए देखा घर के सामने उसको. लाइक व्हाट हैपेंड जेमी? एंड जेमी ने बस अपना कैमरा थमाया और मैट और सूजन से कुछ नहीं बोली. दे वेंट इनसाइड एंड मैट ने अंदर जो देखा उसे भी यकीन होने लगा. इतनी तबाही एक बच्चे के जहन में तो नहीं आएगी इस रात को. और जो फोटोज थे उन सब में एक लाइट, एक वो फोटोज अवेलेबल हैं बाय द वे इंटरनेट पे, उनमें एक अजीब सी ऑर्ब ऑफ लाइट है हर फोटो में, है कॉन्स्टेंट है. एंड बड़े ही वेर्ड फोटोज हैं वो. एक रात जो अगली जिसने इन्हें मजबूर कर दिया इस घर को छोड़ने पे, वो रात महज चार दिन बाद आई. अभी जेमी और साथ में मरी एक ही कमरे में सो रही थी, दोनों बच्चियां. देर रात को दरवाजे पे अजीब सा नॉक होना शुरू हुआ. पहले इन्हें लगा कि मैट होगा या सुजन होगा. यस मॉम करती हुई दोनों ने आवाज़ लगाई लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई. देन दे स्टार्टेड फिल्मिंग. इसकी भी वीडियो है. उन्होंने अपने वीडियो कैम को ऑन किया और नोट करने लगी. कोई भी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन दरवाजे पर लगातार ठक ठक ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं. वो वहाँ से भागी और दरवाजे के नॉब को पकड़ लिया अंदर की तरफ. फिर भी वो दरवाज़ा रुका नहीं, थोड़ी देर में एकदम बंद हो गया. उसके बाद डर के मारे बैठ गई और समझ नहीं पा रही थी जेमी कि हुआ क्या है.
इसने दरवाजे को बाहर की तरफ बड़ी हिम्मत से ओपन करने की कोशिश करी और जब ओपन करके देखा तो जमीन पर कई सारे बर्तन चाकू पड़े हुए थे, बर्तन थे, जितने भी टूल्स होते हैं वो पड़े हुए थे और दरवाजे के पीछे अच्छा खासा गड्ढा था, मतलब किसी ने लकड़ी को पूरी तरह से कुरेद कुरेद कर जैसे उसमें छेद करने की कोशिश की हो। नेक्स्ट डोर एक बाथरूम था जिसमें नॉब नहीं होती, इसे आप सिर्फ भेड़ देते ना, वैसा वाला दरवाजा था ये। ऐसे नोटिस किया कि इसकी लाइट्स जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, बिल्कुल नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड दोनों की दोनों बच्चों ने फिर नोटिस जो किया, दे वर रियली रियली स्केयर्ड। जो का लाइट्स काम नहीं कर रही थी, जब बाथरूम को खोला शी सॉ फायर, कोने में आग लगी हुई थी जो टिश्यू पेपर होता है उस पर आग लगी जब देखी इन दोनों ने, देन दे वर डन। और फिर ये दोनों की दोनों वहां से भागी बुरी तरह से, हॉलवे को क्रॉस करके तो माँ बाप को चिल्लाते हुए, एंड दे वेंट आउट। लिविंग रूम की हालत खराब हो चुकी थी, सारे टिश्यू पेपर्स और जितने भी पेपर्स थे वो बिछे हुए थे अलग अलग जगहों पर, जैसे कोई इस घर को लिटरली आग लगाना चाहता हो। बट दिस वॉज द टाइम जब अब और रिस्क नहीं ले सकते थे दोनों। सूजन और मैट ने डिसाइड किया कि वो बैंक करप्ट हो जाएंगे लेकिन वो इस घर में नहीं रह सकते। उन्होंने इस घर को जितना सामान वो बांध सकते थे इस रात को उन्होंने बांधा और वहां से वो चलते बने। ये घर कभी नहीं बिका, कभी नहीं बिका। सूजन बैंकक्रप्ट हुई। एंड नॉट जस्ट दैट, सूजन के आसपास इस घर पे जितने भी नेबर्स थे उनके राइट हैंड साइड पे, उनके पीछे और अराउंड, ऑल अराउंड 5 नेबर्स ने अपने घरों को खाली किया। कोई भी वहां पे रहना नहीं चाहता था। अब उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, बट सब ने अपने घरों को खाली किया इस रात के बाद ही। ऑल ऑफ देम लेफ्ट, बर्बाद जरूर हो चुके थे मगर बोथ ऑफ देम वर हैप्पी। वहां पे क्यों ऐसा हो रहा था, व्हाई वाज इट सो वियर्ड, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग रिटन, नो डॉक्यूमेंटेशन। मोरेनो वैली पोल्टरगाइस्ट के नाम से ये किस्सा है, इसकी डॉक्यूमेंट्री भी है इफ यू वांट टू वॉच इट, द मोरेनो वैली पोल्टरगाइस्ट, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। 666-22107 नंबर है, 666-22107, मुझे जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई साहब गाने मैंने सुना दी है, अब आपके ऊपर है। हैप्पी वीकेंड एंड प्लीज प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो जॉनरा है इसमें ज्यादा मेहनत लगती है। 666-22-107 इज द नंबर और आपके मैसेज के इंतजार में मैं दोहा वाला कबीर। मीनवाइल एक गाने गा लेते हैं, बस एक गाना प्लीज। हार्डी साधु।

0: हाँ जी, तो 18:18 घड़ी में बोलिए अस्सलाम वालेकुम। और आते के साथ ही कॉल भी उठा ही लेते हैं जब आ गए तो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
0: हाँ जी, क्या हाल है?
1: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह।
0: हाँ बोलो भैया मोहम्मद भाई, क्या कहना चाह रहे हो?
1: नहीं, मैंने वैसे कॉल किया था, आज मैंने कहा चलो कॉल कर ही लेता हूँ, बाहर भी आया हुआ हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घूमो घूमो फिरो, यही उम्र है बच्चे घूमने की। शाबाश, क्या करने वाले हो आज, फिर क्या प्लान है
1: आज? हम अभी तो क्या कहते हैं कि हमने काम भी करना है, अभी तो बहुत सारा काम है लग गया। हमने अभी ये पर ये जो है कमर्शियल एवेन्यू, मुझे वहाँ भी जाना है अभी, बहुत सारा आज।
0: अरे तो तुमने कौन सी ईंटे उठानी है, तुमने कौन सी ईंटे उठानी है, बात तो ऐसे करो तुम मोहम्मद, देखो तो सही, तुम्हें तो बैठे रहना, घूमते रहो यार, क्या दिक्कत है, आराम से ऐश करो, क्या बोलते हो?
1: हाँ बस बस मुझे कोई काम नहीं करना, बस माँ बाप पे सारा काम है, ठीक है, अब उनका खुद डिसाइड है, मैंने डिसाइड नहीं करना कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, उनके ऊपर सारा यानी डिसाइडिंग उनके ऊपर ही है, तो मैं बस
0: ढूंढो ढूंढो इंटरनेट पे ढूंढो, किस जगह अब्बा जाओ, अब्बा मैं यहीं जाना है, मैं तो यहीं जाऊंगा। नहीं भाई, ख्याल रखो मोहम्मद अपना, थैंक यू सो मच। अभी हम कहानी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए तुमसे मैं थोड़ी देर बात कर रहा हूँ, ठीक है?
1: मैंने
0: सुनने
1: के लिए बाहर आया ना, वरना कल सब सो गए थे, बाहर आओ ना, शोर भी है, शोर शराब है, तो आई वुडंट अंडरस्टैंडिंग, वरना इफ यू आर फ्री देन आप स्टोरी भी भेज
0: देना। डन डन डन, ओके डन, ठीक है, ओके चलो टेक केयर। तो मोहम्मद जो है वो तो बाहर घूम रहा है लड़का हमारा, अब बाहर एस कर रहा है, कह रहा बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अरे आजकल बच्चे बताइए, एक हम थे, कोई ले जा ही नहीं रहा था, क्योंकि ले जाने लायक थोड़ी हो तुम, ये बोल देते थे। एक सेकंड रुको। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: पार्टी पार्टी बढ़िया एकदम, आप सुनाएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाएं क्या हो रहा?
0: बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब शांत एकदम, टनाटन टकाटक, आप सुनाएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये क्या नाम है इसका,
0: किसका?
2: पहले तो स्टोरी पे आते हैं, फिर आपसे एक और बात करना
0: है, शेयर करनी है। प्लीज प्लीज प्लीज,
2: ठीक है, गुजरा हुआ एक वाक्य आपसे शेयर करना है।
0: प्लीज प्लीज बताइए
2: भाई। स्टोरी का मजा तो आया बहुत, और ये है कि डर भी लग रहा था, मैं एक जगह ऑर्डर देने गया हूँ बुकेयर में।
0: अच्छा।
2: मैं साथ साथ आपकी स्टोरी सुन रहा था।
0: अच्छा, ओके।
2: और इत्तेफाक ऐसा हुआ, जिस वक्त वो दरवाजा खड़का ना, मेरे सामने झाड़ियाँ नजर आ रही थी भाई।
0: अरे भाई साहब, माहौल माहौल बन गया भाई, माहौल सेट हो लिया फिर तो
2: भाई, पूरा पूरा भाई।
0: चलो ये अच्छा,
2: यकीन करो एक बार मैंने आगे पीछे देखा, मतलब इधर तो नहीं गई,
0: इधर को गई तो सलाम अलैकुम, कैसे हो, क्या लोगे ऑर्डर? तो अब बताइए दूसरी बात क्या कर रहे हो?
2: ये है कि मैंने गाड़ी के शीशे नीचे किए हुए थे, हाफ विंडो की हुई थी, तो पीछे से ना बैक जो सीट है उस पे लगी हुई है वो शीट सी, वो हवा की साथ जैसा कर हिलती थी ना, और साथ में आपकी आवाज, तो काम बराबर हो रहा था, एक बार बार बार
0: ये आपने अलग अपना ही सिनेमा बना रखा है, अपना ही थिएटर बना रखा है भाई। क्या बात है, शीशा क्यों? अच्छा
2: ये पूरी सही थी,
0: चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है, बट आपको अच्छे लगी ना कहानी, बस ये मैटर करता है।
2: मजा आया कहानी का, और इससे रिलेटेड आपको एक पुराना किस्सा भी सुना देता हूँ, और आपकी जो टेलीविजन वाली बात थी
0: जी,
2: वो ही मेरे जहन में घूम रही थी उस वक्त की। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि टेलीविजन तो ये है कि मेरी होस्ट संभालते हुए हमारे पास रंगीन टीवी था, और लेकिन है बहुत पुराना था, पैनासोनिक का, और अभी भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है,
0: ये सबने संभाल के रखा हुआ यार, हमने फेंक दिया लगता
2: है। हाँ, 2015-16 तक तो वो यूज करते रहे हम लोग,
0: हैं 2015 तक यूज किया?
2: हाँ,
0: क्या बात,
2: क्योंकि हमारे घर में केबल वगैरह का सीन नहीं था, पाकिस्तान में केबल चलती है तो केबल वगैरह का सीन कोई नहीं था।
0: अच्छा,
2: हम लोग एंटीने वाले थे, और स्पेशली मैच में जो लगता था मैच, मेरे वाले साहब भी और मैं भी खुद भी मैच देखने को बहुत बड़े शौकीन है हम लोग,
0: अच्छा,
2: तो घंटों ऊपर खड़े हो गए ना, पहले एंटीना ठीक करना पड़ता था, ऊपर से आवाज लगाते, हाँ ठीक हुआ,
0: घर में एक सदस्य को यही अपॉइंट किया गया था कि यही छत पे जाएगा, यही छत पे जाके चेक करेगा।
2: असल सीन ये था कि भाई मुझे अच्छे से याद है, मैं था बहुत छोटा, वो आपकी वाली कहानी की बाकी और उसको चीजें इतनी याद नहीं है, लेकिन ये सीन मुझे याद है अच्छे से कि क्या नाम है, हमारे घर पे लगा था टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन लगा था, तो वो उस वक्त नया नया लेकर आया था, वाली साहब को किसी ने गिफ्ट दिया था कि न्यू वर्जन है, आप अपने उधर लगा ले, हमारे उधर चलता है पीटीसीएल जैसा लैंडलाइन कॉल है ना वो। अच्छा लगा दिया, अब रात का एक टाइम मकसद था हमारा उधर इलाके की लाइट जाने का, लोड शेडिंग का,
0: वो हमारे साढ़े छह बजे के दरमियान, हमारे यहाँ 6:30 बजे जाती थी। अच्छा हाँ, फिर
2: हमारा था 9 से 10 बजे के दरमियान, उस दौरान हम लोग क्या करते थे, सब उठ के छत पे चले जाते थे, और वालिद साहब जो थे हमारा अपना कारोबार था, तो वालिद साहब रात 10 बजे के बाद घर पे आते थे। अच्छा हुआ क्या कि जिस वक्त वो नया नया लगा, फर्स्ट सेकंड डे था, किसी की कॉल आई, जिस वक्त लाइट चली गई, अब वो नीचे मोबाइल बज रहा, रिंग बज रही है, पूरे घर में आवाज घूम रही है, और हम सब सहमे में बैठे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि लाइट है नहीं और इधर रिंग बज रही।
0: तो फिर क्या किया आप लोगों ने, कॉल उठा लेते,
2: उठा वो घंटा जो हाई उठाना, नीचे आता कौन, हम लोग छत पे बैठे हुए थे सारे।
0: अच्छा।
2: सबकी जान निकली हुई, सब कलमे पढ़ रहे, कोई दरअसल कुर्सी पढ़ रहा है, तो मम्मा ने बोला कि देख लो क्या पता कोई थोड़ी बहुत करंट आ रही हो किसी तार में से, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी करंट,
0: और क्या भाई वोल्टेज का मामला भी हो सकता है, तो फिर कोई गया नहीं नीचे, क्या पता सीन मिस्ट्री है सॉल्व।
2: नहीं भाई,
0: अरे
2: भाई वो लाइट आई, इत्तफाकन वाली साहब आए, वाली साहब के पास गेट की चाबी थी, वो जैसे आए तो जना सब ने इकट्ठे एक आवाज में बोला कि अब मुझे ये हुआ था।
0: फिर अब्बा ने किसी को पीटा?
2: अब्बू मेरे हंस पड़े।
0: क्यों?
2: अब बोलते हो वो जना बगैर उसके चलता है, उसके अंदर सेल लगे हुए, ठीक है, और उस सेल के ऊपर कनेक्टेड है, और जो है उसकी लैंडलाइन लगी होती तो किसी की कॉल आ रही है, पता नहीं किस गरीब ने कॉल की है, अब उसको दोबारा देख के कॉल करनी पड़ेगी।
0: ये वाला प्रैंक हो गया ना, ये वाला प्रैंक हो गया ना, सड़कों प्रैंक करते हैं, कहते हैं वो देखिए कैमरे की तरफ देख के जरा हाई बोल दीजिए। चलो बढ़िया है, ठीक है, चलो मैं बहुत और मैसेजेस मैं उनको भी ले लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, जजाकअल्लाह। भाई का मैसेज, नाइस स्टोरी सुनने में मजा आ गया, आज तक गोस्ट नहीं देखा पर स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है, पर कोई स्टोरी सुन के कुछ रात जरूर डर लगता है, ये इसी बात की वजह से। एक मैसेज है, भाई तबीयत की बैंड बजी हुई है, गर्मी ने सर घुमा रखा है, थोड़ा लेट निकला हूँ, स्टोरी भेज देना शेख इरफान साहब, ख्याल रखिए मेरी जान। फरद भाई ने मैसेज किया है, कबीर भाई तो बाहर आते नहीं, दूसरों को एडवाइस देता हूँ, ये तो है। एक मैसेज है हमारे अफजल उस्मानी भाई का, जो मोमो खा रहे हैं अभी चढ़ा के, बिल्कुल भाई कहाँ के हैं मोमो, बहुत बड़े लग रहे हैं। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्लास 6th की बात है, बहराइच में था नानी के यहाँ, सारे कजन्स लेट नाइट गेड़ी मारने निकल गए, समर वेकेशन थी, अराउंड 6 बाइक्स, और वहाँ जो कज़न थे वो हमें जेल रोड पे ले गए थे, एक बंदा साइकिल से था, उसने हम क्या उसे हमने डरा दिया, आगे डेड एंड था, वापस हुए तो उस बंदे ने वापस हमें डराया, उसकी आंखें पतली थी, पलटी थी, अच्छा पतली कह रहा हूँ, उसकी आंखें पलटी थी, जबान चिन पे टच कर रही थी और पैर उल्टे थे, हैं

कलमा पढ़ना शुरू किया और वो भी भूल गया। बाद में पता चला शमशान घाट था वो, कुत्ते भी पीछे लग गए। घर आके हम सब चुपचाप, पूरे घर परेशान था, क्या हो गया। हम सब ने काफ़ी देर कुछ नहीं बोला। वैसे बहराइच में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हैं। हाँ ओके ओके। इनके बाद मैसेज, नाइस स्टोरी कबीर सर, डर लग गया, चलो इसी बात के पैसे हैं भाई। यूसुफ भाई लिख रहे हैं, कबीर सस्पेंस थ्रिलर एंड समहाउ हॉरर स्टोरी, बट एंडिंग समझ नहीं आई। एंडिंग क्यों नहीं समझ में? ये सब नहीं, कोई देखो मैं क्लियर कर दूं, ये रियल लाइफ स्टोरीज में कैसे क्या हुआ वो हॉलीवुड की पिक्चर एंड कर सकते हैं, बॉलीवुड की पिक्चर एंड कर सकते हैं। वो लोग बेचारे भाग गए घर से भाई, उन्होंने वापस पलट के उस घर की तरफ नहीं देखा कि ऐसा हो क्यों रहा था। समटाइम्स रिसर्चर्स डोंट गो टू प्लेसेस जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया। क्या घर में कोई पैरानॉर्मल बात ही होगी? आई डोंट थिंक सो, कुछ और बात थी। और हाँ, हमेशा की तरह ये कहूँगा, नरेशन वॉज आउटस्टैंडिंग एज ऑलवेज, स्पेशली हॉरर एंड सस्पेंस स्टोरीज में। तो वाओ माशाल्लाह, इतना सस्पेंस आपने क्रिएट किया कि मेरा ध्यान एक सेकंड भी आपकी आवाज से नहीं हट रहा था। इट वॉज रियली रियली गुड, जबरदस्त भाई। चार दिल भेज रहा हूँ, कबूल फरमाइएगा। और इनके बाद मैसेज किया है दीपक भाई ने, दीपक भाई थैंक यू। और लिखते हैं तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, जानी क्या हाल है आपके? बढ़िया। वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं, नरेटेड एंड डायरेक्टेड, इज देयर एनी मूवी इन हॉलीवुड ऑन दिस स्टोरी? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। ये है द मैरिनो, मैं लिख के दे दूंगा यार, रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में लिख के देता हूँ आपको। इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है, आपको मिल जाएगी, द मैरिनो पोल्टरगाइस्ट करके है। फलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन एक भाई ने लिखा है, भाई रीज़न भी होना चाहिए क्यों हो रहा था, भाई किसी को नहीं पता। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मुझे पता हॉरर में सबको वो चाहिए क्लाइमैक्स, कहाँ से पैदा करूँ क्लाइमैक्स भाई। कह रही हैं तब उस मैंने ये क्या सुन लिया, मैंने बहुत डर लग रहा, आपके पॉजेस और भी खतरनाक होते हैं कबीर भाई, बट वेरी नाइस नरेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू मेक टू एंटरटेन अस, थैंक यू सो मच मैन। अमन भाई कह रहे हैं, लाइट्स ऑफ थी, दे ट्राई टू स्विच ऑन द बैटरी, दे वाज मेकिंग सम, एक सेकंड, सेम इंसिडेंट हैपेंड विद माय ब्रदर, दे शिफ्टेड टू अ होम गिवन बाय द कंपनी एंड द सेम थिंग हैपेंड एक्सेप्ट सोप एंड यूटेंसिल्स ऑन द फ्लोर, लाइट्स ऑफ थी, दे ट्राई टू स्विच ऑन द बैटरी, दे वर मेकिंग नॉइस एंड समवन वाज स्टॉपिंग देम टू ओपन द

0: फोटो के नाम से वो नहीं, क्या एक सेकंड, क्या भाई एक ऐप बताई थी फोटो के नाम से नहीं मिल रही क्या? मुझे यार देखना पड़ेगा भाई, मुझे याद नहीं मेरी जान। स्टोरी का पार्ट टू कब आएगा? अरे फिक्शन स्टोरी थोड़ी सुना रहा हूं मैं, पार्ट टू आएगा सैम भाई। ये सारी स्टोरीज आर रियल लाइफ इंसिडेंट्स। असल जिंदगी में क्लाइमैक्स जरूरी नहीं है, कहानी चलती रहती है। क्लाइमैक्स यही था कि बेचारे घर से निकल गए, और क्या चाहिए, क्यों खून पी रहे हो, उनका पार्ट टू चाहिए बताओ। निकल गए, हंसी खुशी जी रहे हैं, बैंक करप्सी हो गई बेचारों, लुट गए पूरी तरह से। क्या हुआ उस घर में वो भी नहीं पता, बट दैट्स हाउ इट हैपेंड। बाकी अभी अजान का वक्त है तो इंशाल्लाह कॉल्स थोड़ी बाद में ही लूँगा, बट 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। मीनवाइल आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं जिनको क्लाइमैक्स चाहिए, मैं उनको बता दूँ कि इस कहानी का वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, शीर्षक द मोरेनो, MORENO वैली, इतना लिख देना, मोरेनो वैली इतना लिखोगे पूरा का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। मो वाला सीन हुआ, सेम लास्ट में समझ नहीं आया, मूवी वाला सीन हुआ है इसमें, क्या नहीं समझ में आया। जस्ट जॉइंड योर फेमस इन द मॉर्निंग शो, रिवीलिंग मैडम और न्यू फोन। अरे सबके सब ये चेयर और उसकी बात कर रहे हैं नए फोन की, मिलते हैं भाई कुछ देर में।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

0: से तोला जाता है जबकि लोहे को टनों के हिसाब से तोला जाता है। मगर कुरान हकीम की सूरह जलजाल में बताया गया है कि क़यामत के दिन नेकियों को जर्रात के हिसाब से तोला जाएगा ताकि अहले ईमान को एक जर्रे के बराबर नेकी का भी अजर अता किया जा सके। सूरह जलजाल में इरशाद है जिसका तर्जुमा है, तो जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसे पालेगा और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी उसे पालेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी नेकी को हकीर न समझें और ना किसी गुनाह को छोटा जाने। अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने और बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: देसी।
1: गाने को स्पर मिलेंगे ड्राइव सेफली एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। डॉलर साइन कृष्णा वजूता जापानी।

0: शाबाशी तो देगा। यूसुफ भाई ने मैसेज किया, यूसुफ भाई कह रहे हैं नहीं कबीर में एंडिंग का मतलब ये है कि वो लोग जो जाने वाले इन्वेस्ट नहीं, यूसुफ भाई को इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रूफ है वो उनके पास, जो फोटोग्राफ्स हैं एंड ऑफ कोर्स जो तबीयत खराब हुई उनकी वो, और जो बैंकक्रप्ट हुए वो। एक भाई ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, स्टोरी अच्छी थी, इन्हें यहाँ की भाई कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, तो जहाँ की आप कह रहे हैं वहाँ की कहानी मैं नहीं सुना सकता हूँ, नॉट ऑन द एजेंडा इमरान भाई। अरबाज भाई ने मैसेज किया है, समथिंग हैपन फाइव, अच्छा ये भी नहीं पढ़ सकता मैं, अच्छा पढ़ सकता हूँ, समथिंग हैपन टू मी 5-7 years ago, वन नाइट आई वॉज गोइंग टू कारी साहब शॉप्स, माई फ्रेंड वॉज देयर एंड ही वॉज वेयरिंग अ वाइट इरहम, इट वॉज वेरी डार्क एंड वन आई सॉ हिम ही रैप्ड द इरहम अराउंड हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड मेकिंग जेस्चर्स टू I got so scared, I ran away from there. और सर कहानी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, आप हर कहानी अच्छी होती है, रात 7 से दोबारा सुनेंगे फिर इंशाल्लाह सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल अमन भाई क्या कह रहे हैं, सो मैनी गोज स्टैंडिंग अराउंड हर सीम लाइक द पीपल लिव्ड देयर बिफोर एंड ऑल ऑफ देम स्लेप्ट वन बाय वन देन दे लेफ्ट द सेम, अच्छा ओ ओ ओके, उन्होंने भी कहानी बताई है भाई। एक मैसेज है, माजिद भाई ने समझ में क्या लिखा, एक मैसेज है, भाई मैंने कल मैसेज किया था यूसुफ भाई के लिए, यूसुफ भाई आपकी स्टोरी नहीं सुने, ये तो यूसुफ भाई का मसला है। श्याम साहब वालेकुम अस्सलाम एंड एक और मैसेज, भाई बहुत हार्ड बाइक, थैंक यू सो मच राशिद भाई, क्या बहुत सारा प्यार क्या। ओके सो ट्रैफिक कल बता सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर, एंड वासी भाई लिखते हैं हाला हाला हबीबे हैप्पी वीकेंड भाई, परफेक्ट वीकेंड स्टोरी बॉस ब्लॉकबस्टर, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सारा प्यार। संडे की स्टोरी अभी से तैयार है, मेरा तो मन था भाई टाइम होता ना मैं आज ही सुना देता, बहुत बढ़िया कहानी है संडे की, ओह कर रही एकदम, मांगा चलो ठीक है आज ही वाली कहानी सुना देते हैं। एंड इस पर जो लोग बोल रहे थे मुझसे कि क्या नाम है इसका, तो मैं ज़रा बता देता हूँ जिन्हें इसके बारे में जानना है या पढ़ना चाहते हैं बाद में जाके, दिस इज मोरेनो वैली, मोरेनो मैं लिख के देता हूँ MORE, एक सेकेंड ये फोन नोरिन क्यों टाइप कर रहा है, मोरेनो वैली पोल्टरगाइस्ट, ये मैं लिख के भी दे देता हूँ जिन्हें चाहिए, वैसे उनको चाहिए था ये हमारे तौकीर अहमद भट्ट साहब, तो ये है आप इसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी कहानी, हर जगह मौजूद है इसके बारे में, इफ़ यू वांट टू रीड एनीथिंग ऑनलाइन यू विल गेट एवरीथिंग ऑनलाइन, तो सब कुछ है बाक है। एक मैसेज है, ओल्ड एयरपोर्ट रोड टू मच ट्रैफिक, आज तो बनता है भाई अरबाज भाई, आज तो ट्रैफिक होगा ही होगा, आज तो ट्रैफिक होगा ही होगा। और ये मैसेज किया है एक और अरबाज भाई ने, नहीं दोनों एक ही नंबर है क्या, दोनों एक ही अरबाज भाई हैं। एक और कॉल आ रही है, जरा उठाई लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई बढ़िया, आप सुनाइए कमाल भाई क्या हाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, बस कहानी 6 बजे से सुना भाई, 13-14 मिनट को सुना हूँ कहानी।
0: अच्छा अच्छा चलो वो भी ठीक है।
1: जहाँ से वो जो चिल्लाता है कि जो है खाना क्यों खराब कर रहे हो क्या बच्चों के लिए, मतलब जो है ना फ्रेंक मत करने के लिए, वहाँ से सुना था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो सुनते वक्त मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कबीर भाई ना कुछ कमजोर दिल वाले अपने घर में घबरा घबरा के घूमते रहे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल डिसैनिटाइज हो चुका हूँ, इतनी ज्यादा सुना चुका हूँ, इतनी ज्यादा देख चुका हूँ ना कि अब हो गया है बिल्कुल, अब फर्क ही नहीं पड़ता।
1: नहीं, नहीं, वो तो मेरा भी हो गया भाई, देखिए मेरे गांव में मेरा जो घर है ना, उस घर के एक रूम में अभी भी बोलते हैं, मैं तो सुना नहीं कभी क्योंकि मैं तो उसमें सोता भी था, मेरे को डर नहीं लगती थी, तो लोग बोलते थे कि उसमें बच्चे के रोने की आवाज आती है।
0: अच्छा ओके,
1: तो मुझे अभी तक कोई चीज का उसका डर नहीं था, क्योंकि हम लोग ना जब से मैं मतलब बॉम्बे पकड़ा और बड़ी गाड़ी चलाने लगा ना, तो कभी रात में 2 बजे कभी 3 बजे कभी किधर कभी किधर, कभी शमशान के पास ही जो है गाड़ी खराब हो गई तो वहीं सो गए, तो उतना मेरे को कोई टेंशन हुआ नहीं। लेकिन बोलते हैं कि उस घर के अंदर जो है रूम एक है कोठरी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बच्चे के रोने की आवाज आती, तो मुझे डर तो नहीं लगता है, लेकिन अभी एक भाई बोल रहे थे ना डिलीवरी करने गया डर गया, वही बोल रहा हूँ कहीं कमजोर दिल वाले ऐसा ना हो कि घबरा घबरा अपने घर में घूमना शुरू कर दे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, सबको आदत पड़ चुकी है अभी सुन सुन के, सबको आदत पड़ जाएगी। यही होगा। और हैप्पी वीकेंड कमाल भाई, और बताइए क्या क्या देख रहे हैं आजकल, आप कुछ चल रहा है कुछ मूवी सीरीज कुछ चल रही है कुछ देख रहे हैं?
1: नहीं अभी तो इट वॉज क्या इनसाइट वाला देखने जा रहा था।
0: अच्छा
1: ड्यूटी लग गई थी।
0: अच्छा ठीक है देखते हैं,
1: वो माइंड ट्रांसफर जो होता है।
0: हाँ ओके ओके, हाँ ओके, आइलैंड जो है वो आइलैंड जो आई है उसके बाद आइलैंड ऐसी कुछ है ना वो सीरीज का नाम।
1: हाँ इट वॉज इनसाइड मैन या इनसाइड,
0: बताइएगा मुझे कौन से दिख रहे हैं आप, क्योंकि ये डिस्कशन में भी करने वाला था थोड़ी देर में। पर ठीक है, डन हो गया, ठीक है कमाल भाई। पर मैं भेजता हूँ कहानी, सुन लीजिएगा पूरी एक बारी, तो थोड़ा और भी
1: ठीक है अभी। हाँ, एक दिन इससे पहले की भी कहानी एक बाकी है, मतलब जो है आई है मेरे पास, सुना नहीं हूँ।
0: अच्छा,
1: अब कल का दिन है ना सुनने के लिए मेरे
0: दन,
1: पास
0: दन, दन,
1: दो दिन रहता है ना, फ्राइडे सैटरडे
0: आराम से आराम सुन के बताएगा इंशाल्लाह।
1: ठीक है कबीर भाई,
0: ठीक है, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: तो कमाल भाई ने भी बता दिया, बाकी मैसेज मेरे पास आ ही रहे हैं। एक भाई कह रहे हैं कि टू मच ट्रैफिक ऑन ओल्ड एयरपोर्ट रोड, इन्होंने भी कहा है भाई सबके सब वहीं जा रहे हैं, उस तरफ भी ट्रैफिक लगा हुआ बढ़िया वाला, ख्याल रखिए उस तरफ से निकल रहे हैं आप तो प्लीज़ बी श्योर दैट यू आर ओके एंड प्लीज़ ड्राइव सेफली। थोड़ा है ढंग से चलानी है गाड़ी, 666-221-07 ये नंबर है। और कोई अगर आप कोई सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं दीज डेज, सो हमें भी ज़रा

0: बता दें, बड़े हो जाते हैं ना, शेयर कर देते हैं आप, हो सकता है यू वॉचिंग समथिंग जो बहुत ही मज़ेदार है, हमसे मिस हो गया हो भाई, तो बता दिया करें 666-22-107 पर, क्योंकि आज रात को मारेंगे लोग गेड़ियां, तो हमने कहा ये चला दो।
1: हो रात दी गेड़ी गल रिस्क दी, टांग छिड़ी आ तेरे इश्क दी।
2: दलजीत रात दी गेड़ी

संताली हो गए वैसे तो। क्या हाल है? बढ़िया। एक बहुत प्यारा मैसेज है ये मुझे किटी ने किया, वो लिखते हैं कबीर ऑसम नरेशन, दिस साउंडेड लाइक अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी, यू आर पार्ट ऑफ द नैरेटिव वेयर यू सेड द चेयर टर्न टुवर्ड्स द गर्ल लाइक समवन वाज वाचिंग हर, दैट गेव मी द चिल्स, दैट वाज जेन्युइनली टेरिफाइंग, इट्स सो हार्ड टू डिलीवर दिस जॉनर ऑफ स्टोरी एंड यू डिड इट सो एफर्टलेसली टू मेक द लिसनर एक्चुअली फील इट, सुपर वन फॉर द वीकेंड कबीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ये डिलीवर करना सच में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली जब वीकेंड होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए म्यूजिक।

वीकेंड, वीकेंड मुबारक हो, वीकेंड मुबारक हो भाई सबको, वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड। कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, और हमारी बहन नासरा का कहना है, क्या कह रही है वो, अमेजिंग स्टोरी, वाओ, थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है भाई, वकरा में ट्रैफिक के लिए मैसेज किया उन्होंने, मोहम्मद कलीम भाई, वकरा में ट्रैफिक, हाय ओके मान लेता हूँ आप कह रहे हैं तो। एक मैसेज है सर, एक पर्सनल सवाल चाहिए,

0: अच्छी सी रोमांटिक मूवी मतलब हॉलीवुड की।
1: अरबाज भाई रोमांटिक मूवी हॉलीवुड की, वो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये गलत सवाल है। गुड क्वेश्चन बट यू आर अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भाई मैं रोमांटिक मूवीज देखता ही नहीं हूँ भाई, बिल्कुल नहीं। अच्छा वकरा में ट्रैफिक नहीं है, वही मैं सोचूं। हाँ तो ये रोमांटिक मूवी नहीं, पता अरबाज भाई रोमांटिक मूवी देखे हुए ही जमाना हो गया, वो अगर कोई ज़बरदस्ती बिठा के दिखाए तो बात दूसरी है, वो भी नहीं हो पाता अभी तो। एक सर्वर भाई हैं हमारे, वो रोमांटिक पिक्चरें बहुत देखते हैं और वो बिठा बिठा के दिखाते हैं, तो उनसे पूछिएगा इंशाल्लाह वो बताएंगे। नौशाद साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज कर रहे हैं कबीर भाई, उन्होंने फिर एक सोशल मीडिया का नाम लिया जहाँ पर नौकरी ढूंढते हैं, जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, सर घूम गया है क्या करूं समझ नहीं आ रहा, मैं अलग से बात करता हूं आपसे इस बारे में। बाकी एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं संडे वाली भी कहानी अभी सुना दो। हाँ सब अभी सुना दूं, सोने की मुर्गी जो है उसे अंडे मत देने देना, ठीक है, सोने की मुर्गी उसका सीधा हलाल कर दो। नहीं नहीं, वो जो संडे को, संडे को आएगी, वैसे भी घड़ी में टाइम देखिए, मेरे आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया। एक और मैसेज आया मेरे पास, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद एहसन उबैद कुरैशी भाई, अब आपसे सीधा मुलाकात होगी इंशाल्लाह संडे को शाम 5 बजे मिलेंगे, बीच में 2 दिन है, प्लीज़ इन्जॉय योर सेल्फ, काम को घर पर मत देना, ऐश करना बिल्कुल, कोई मेरी दुआ है दिल से, कोई टेंशन ना हो आपको, बढ़िया जाए आपका वीकेंड। मैं तो भाई सीधा यहाँ से गेमिंग करने के लिए जा रहा हूँ, बट फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और वेरी प्रैक्टिकल एपिसोड। भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट पर जो ट्रैफिक, फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन तीनों को एक साथ रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कार पूलिंग ट्रेंड। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करती हूँ। जरा सोचिए, सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल जाने की जल्दी है आपको या आपके साथ वालों को। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सेम रूट पर आपके कुलीग्स, फ्रेंड्स या नेबर्स भी अलग अलग कार्स में जा रहे होते हैं। साथियों, ट्रैफिक में हर गाड़ी में सिर्फ एक से दो लोग होते हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल भी यूज कर रही होती है और रोड स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है। और यहीं से आइडिया आता है कि अगर ये सफर शेयर हो जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है कि नहीं। देखिए, अब थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी के साथ समझते हैं इस चीज को। देखिए, कार पूलिंग का मतलब होता है एक ही गाड़ी में मल्टीपल लोगों का ट्रैवल करना जो सेम डायरेक्शन या सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इससे गाड़ियों की टोटल नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और सेम डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होती हैं। अब इसमें इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपने ट्रैवल शेयर करें। मतलब हर इंसान अलग अलग गाड़ी यूज करने के बजाय एक साथ ट्रैवल प्लान कर सकता है। साथियों, बात करते हैं कि कार पूलिंग ट्रेंड फॉलो करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है फ्यूल सेविंग। जब एक गाड़ी में तीन से चार लोग ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल व्हीकल्स के फ्यूल का यूज अवॉइड हो जाता है। दूसरा फायदा है ट्रैफिक रिडक्शन। कम कार्स का मतलब है रोड पर ट्रैफिक जैम और कंजक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगी। तीसरा फायदा है पोल्यूशन कंट्रोल। कम व्हीकल से कार्बन इमिशन रिड्यूस होती है और एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट शेयरिंग। देखिए, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट सब लोग मिलकर शेयर कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो भाई सोचिए, चार दोस्त हैं या चार ऑफिस वर्कर्स हैं जो सेम ऑफिस या सेम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर हर कोई अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाए तो भाई क्या होगा, चार गाड़ियां रोड पर आ पहुंचेंगी। लेकिन अगर वही चार लोग एक ही गाड़ी में कार पूलिंग करें तो सिर्फ एक गाड़ी ही यूज होती है। रिजल्ट क्या होता है, फ्यूल भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और पार्किंग की टेंशन भी कम होगी। लेकिन दोहा जैसी सिटी में कार कल्चर बहुत स्ट्रांग है और डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली मैनेजेबल हैं, इसीलिए यहाँ कार पूलिंग इजिली एडॉप्ट की जा सकती है, स्पेशली ऑफिस रूट्स या स्कूल रन्स और कम्युनिटी ट्रेवल्स के लिए। कई वर्क प्लेसेस ऑलरेडी इनफॉर्मल कार पूलिंग सिस्टम एनकरेज करते हैं। अब आपको वो टिप्स दे देती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। भाई देखिए, ग्रुप प्लान बनाएं, ऑफिस या स्कूल कोलीग्स के साथ सेम टाइमिंग फिक्स करें, फिक्स्ड स्केड्यूल सेट करें। देखिए, कारपूलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब रूटीन कंसिस्टेंट हो। अच्छा भाई, इसी के साथ तीसरा हमारे पास टिप है, फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री करें। पहले से कॉस्ट शेयरिंग क्लियर रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेफ्टी और कम्फर्ट इंश्योर करें, ट्रस्टेड लोगों के साथ ही कारपूलिंग करें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टरनेट ड्राइविंग सिस्टम रखें, हर दिन सेम पर्सन ड्राइव ना करें, रोटेशन सिस्टम अडॉप्ट करें। भाई दुनिया के बहुत सारे अर्बन सिटीज में कार पूलिंग एप्स और सिस्टम्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ये ट्रेंड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन भी बन चुका है। देखिए, एक रिलेटेबल सिचुएशन ये है कि भाई अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगा, लेकिन जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना तो रियलाइज होता है कि भाई एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट से कितना बड़ा एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट हमें मिल सकता है। जब आप कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड बना लेते हैं। आप सिर्फ इंडिविजुअल ट्रैवलर नहीं रहते बल्कि कोलैबोरेटिव कम्यूटर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपनी जर्नी शेयर करें और कारपूलिंग अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स या नेबर्स में से कम एक पर्सन, एक किसी इंसान को आइडेंटिफाई करें जो आपके रूट पर ट्रैवल करता हो और कारपूलिंग के आइडिया उसके साथ डिस्कस करें। और अगर आप ऑलरेडी कारपूलिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस ट्रेंड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्या पता उनको अच्छा लगे। तो साथियों, हर गाड़ी का एक एक्स्ट्रा पैसेंजर सिर्फ सीट नहीं भरता बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जब हम कारपूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ सफर शेयर नहीं करते बल्कि अपनी जमीन का लोड भी कम ही करते हैं, हल्का ही करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
0: FM 107 पर हर गाना हिट,
2: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
3: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत ना सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइंस का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम

0: कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: FM 107
2: दिल से देसी
3: One step to 2030
2: Welcome to our segment called One step to 2030 मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया
3: Step to 2030.
2: आज मैं बात करूंगी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की. दोस्तों, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बैकबोन होता है. इसका मतलब ये है कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल सिस्टम्स और सप्लाई चेन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना. जब एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो गुड्स और सर्विसेज आसानी से मूव होते हैं और बिजनेसेस ऑपरेशन स्मूथ हो जाती है. आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जल्दी और कम कॉस्ट पर डिलीवर कर सकती है. जब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और रिलायबल होता है तो मार्केट एक्सेस इम्प्रूव होती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है. जब प्रोडक्ट्स इजली मूव करते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. लॉजिस्टिक कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कतर जैसी इकोनॉमी में जो ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस हब बन रही है, लॉजिस्टिक का रोल और भी इम्पोर्टेंट है. पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी इनके एग्जांपल्स हैं भाई. ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एनवायरनमेंट का या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है. तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है. जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी. और कतर का नेशनल विजन 2030, जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 में ये एक स्टेप है जो कतर को ग्लोबल हब बनाता है और बना रहा है. फिलहाल दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया कि मैं आपसे इजाजत ले लूँ. ठीक है, इतना आज के लिए, इतना ज्ञान काफी है. कल आऊंगी तो एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
3: One step to 2030.
0: Qatar's most heard radio station, FM 107.
3: FM 107.
0: Dil Se Desi.

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेते हैं लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं और आज हम जिस सुन्नत पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो है हिल्म या बुर्दबारी जिंदगी में सबसे मुश्किल इम्तिहान है गुस्से और इश्तियाल के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखना इस्लाम हमें सिखाता है कि असल ताकत लड़ाई या गुस्से के इजहार में नहीं बल्कि हिल्म और बुर्दबारी में है यही वो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल कैस से फरमाया तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है अल हिल्म वल अनात हिल्म और बुर्दबारी दोस्तों हिल्म वो वस्फ है जिसे इंसान जालिम को भी माफ कर देता है और रद्द अमल में जल्दबाजी नहीं करता और अल अनात यानी सोच समझ कर सब्र और सुकून के साथ फैसला करना इसीलिए हमें चाहिए कि गुस्से में फौरी रद्द अमल देने के बजाय सब्र और खामोशी इख्तियार करें दूसरों के कसूर पर माफी और दरगुजर का मामला करें यह अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है इसी तरह हर फैसले में ठहराव और सोच विचार को अपनाएं ताकि पछतावे से बचा जा सके तो समीन ये थी आज की सुन्नत हिल्म और बुर्दबारी आइए हम भी अपनी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं उससे पर काबू माफी का जज्बा और फैसलों में बुर्दबारी यही वो अखलाक हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और बंदे को इज्जत बख्शते हैं समीन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मअस्सलामा
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी

0: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे रात की दुआओं के बारे में। दिन के आखिरी लम्हों में अल्लाह को याद करना बहुत बरकत वाला अमल है। रात के वक्त में जब इंसान दुनिया की मसरूफियात से फ्री होता है तो उसका दिल सुकून के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। सोने से पहले दुआ करना हमें अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। ये एक रूहानी सुकून का जरिया है और नींद को भी पुरसुकून बनाता है। आजकल हम मोबाइल और स्क्रीन्स में इतना खो जाते हैं कि सोने से पहले अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वक्त भी निकाल लें तो ये हमारी जिंदगी में बरकत लेकर आ सकता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करें और दुआ के साथ दिन का इख्तिताम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
3: Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे फेलिक्स सैंचेस के बारे में। याद होगा ये नाम फेलिक्स सैंचेस, 4 साल पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कई मरतबा आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा भी होगा। फेलिक्स सैंचेस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे कामयाब कोचेज में से एक तस्लीम किए जाते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पैदा होने वाले सैंचेस ने अपना कोचिंग करियर एफसी बार्सिलोना की यूथ अकेडमी ला मासिया से शुरू किया। साल 2006 में वो कतर आए और एस्पायर अकेडमी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जहां उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत पर काम किया। बताता चलूं कि इसी यूथ प्रोग्राम में काम करते वक्त उन्होंने आज के सुपरस्टार खिलाड़ी अलमोइज अली, अकरम अफीफ, सुल्तान ब्रेक, तारिक सलमान जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। फेलिक्स सैंचेस ने कतर के अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 23 टीमों को कोच किया और 2014 में कतर को AFC अंडर 19 चैंपियनशिप जितवाई। दैट वाज द बेसिकली अ गेम चेंजर फॉर कतरी फुटबॉल। इस कामयाबी ने उन्हें सीनियर नेशनल टीम तक पहुंचाया और 2017 में वो कतर के हेड कोच बन गए। उनकी क्यादत में कतर ने 2019 का AFC एशियन कप जीती, जो मुल्क की फुटबॉल तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मानी जाती है। कतर ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार फुटबॉल खेला और एशिया की ताकतवर टीम्स को शिकस्त दी। सैंचेस ने कतर को उनके फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप यानी कतर 2022 में भी गाइड किया। अगरचे टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन कतर को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने और एक मुकाबला करने वाली टीम बनाने में उनका किरदार बुनियादी रहा। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस उन्हें कतर फुटबॉल के जदीद दौर का आर्किटेक्ट करार देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे सेहतमंद वजन बरकरार रखने के बारे में। बहुत से अफराद वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान और मुश्किल आदत अपनाकर हम और आप सेहतमंद वजन को बरकरार रख सकते हैं। सेहतमंद वजन सिर्फ अच्छी शख्सियत ही नहीं, बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। बैलेंस डाइट अपनाइए, क्योंकि सेहतमंद वजन बरकरार रखने के लिए मतवाजन गिजा बहुत जरूरी है। अपनी रोजाना की खुराक में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और प्रोटीन वाली गिजाएं शामिल कीजिए। बहुत ज्यादा चिकनाई, बहुत ज्यादा नमक और जो चीनी वाली अशियाएं उन्हें कम कीजिए। खाने की मकदार पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना वजन बढ़ने का सबब बन सकता है। छोटी प्लेट इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए। एक्टिव होना बहुत जरूरी है और रोजाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बहुत पसंद है वो आप जरूर कीजिए, और इस तरह जो अपना वजन है वो बरकरार रखने में आपको वो मदद दे सकते हैं। जिस्म जितना ज्यादा एक्टिव होगा, इतनी ही कैलोरीज जो है वो इस्तेमाल होंगी। पानी वो तो जरूर पीना है। पानी ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है, बल्कि गैर जरूरी भूख को भी कम करने में मदद देता है। अच्छी नींद लीजिए। ना काफी नींद जिस्म के भूख से जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें मुतासिर करती है, जिससे ज्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेंटल हेल्थ वो बहुत अहम है। इसी तरह से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है, बाज़ोकात जज्बाती खाने का भी बायस बनते हैं। तो फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन जो है या इबादत जो है वो आप जरूर कीजिए, और अपने वजन पर नजर रखिए। हफ्ते में एक बार अपना वजन जरूर चेक कीजिए, और अगर बढ़ने लगे तो फौरन अपनी गिजा और जो एक्टिविटीज हैं उनका जायजा लीजिए। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं कि नाश्ता रोजाना जरूर कीजिए, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना तरजीह दें, लंबे वक्त तक बैठने से गुरेज कीजिए, रोजाना कुछ वक्त वॉक के लिए जरूर निकालिए। तो लिसनर्स, सेहतमंद वजन बरकरार रखना किसी मुख्तसर मुद्दत की डाइट का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज जिंदगी है। छोटी लेकिन मुस्तकिल मुस्बत आदत आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक सेहतमंद रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल है वो अपना लीजिए।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें

0: 8888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट

0: क्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं जो सदियों से इंसान के जहन में सवालात पैदा करता रहा है, एक ऐसा मौजू जिसका ताल्लुक हमारे ईमान, हमारी जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे मुस्तकबिल से है। ये मौजू है तकदीर। तकदीर क्या है? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानता है तो फिर हमारे आमाल की जिम्मेदारी किस पर है? अगर कोई गुनाह करता है तो क्या वो मजबूर है? अगर कोई हिदायत पाता है तो क्या उसमें उसका अपना कोई किरदार नहीं? ये वो सवालात हैं जो सिर्फ आज के नौजवानों के जहन में नहीं आते, बल्कि तारीख के मुख्तलिफ अदवार में भी लोगों ने यही सवालात उठाए हैं। सबने कराम, आज हम इस मौजू को कुरान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर अल्लाह ताला पहले से जानता है कि फला शख्स गुनाह करेगा और आखिर का जहन्नम में जाएगा तो फिर उसे पैदा क्यों किया गया? बज़ाहिर ये सवाल बहुत मुश्किल महसूस होता है, लेकिन अगर हम इसको

हमारे फैसले, हमारी कोशिशें और हमारे आमाल हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए क़यामत के दिन हिसाब भी होगा। अगर इंसान मजबूर होता तो हिसाब बेमाना हो जाता, जजा व सजा बेमाना हो जाती, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर बेमाना हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला आदिल है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता, वो किसी को मजबूर करके गुनाह भी नहीं करवाता और फिर सजा नहीं देता, बल्कि वो रास्ता दिखाता है, समझाता है, मौके देता है, मोहलत देता है, फिर इंसान खुद अपना इंतखाब करता है। सामने कराम, अब उस सवाल को दोबारा दोहराते हैं। अगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, तो फिर जो शख्स हिदायत से महरूम रह गया उसका कसूर क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान सच्चाई चाहता हो लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत न देना चाहता हो? ऐसा तो कभी भी मुमकिन नहीं। कुरान करीम में इसका जवाब नहायत वाज़ह अंदाज में दिया गया है। अल्लाह ताला सूरह रात में फरमाता है, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। सामने कराम, आयत दरअसल तकदीर और इख्तियार के मसले की बुनियादी कुंजी है। प्रोग्राम तफहीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम इसी आयत के माने को वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। कुरान कहता है कि तुम अपने अंदर तब्दीली लाओ, तुम अपना रुख बदल लो, तुम अपने इरादे को बदल दो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा। और कीजिए, अगर एक तालिबे इल्म पूरा साल किताब न खोले, इम्तहान के दिन नाकाम हो जाए और फिर कहे कि मेरी किस्मत ही ख़राब थी, अरे मैं तो मजबूर ही था। वो कहते हैं ना बाज़ लोग, कह रहे हम बुरे अमाल कर रहे, हम तो मजबूर हैं। तो आप ही कहिए, क्या ये बात दुरुस्त होगी? अगर एक मरीज दवा न ले, इलाज न करे, परहेज न करे और फिर बीमारी बढ़ जाए, तो क्या वो सिर्फ तकदीर को इल्ज़ाम दे सकता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने असबाब भी पैदा किए हैं और नताइज भी। हिदायत भी उसी उसूल के तहत है। जो शख्स सच्चाई तलाश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता है, और जो शख्स खुद आंखें बंद कर लेता है, उसे कोई ज़बरदस्ती रोशनी नहीं दिखा सकता। सामने कराम, इस बात को एक और आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें किसी ने आपको सोलर पैनल दिया और कहा कि उसे सूरज की तरफ रखो, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन आपने उस पैनल को कमरे के अंदर बिस्तर के नीचे रख दिया। चंद मिनट बाद आप शिकायत करने लगे कि बैटरी तो चार्ज ही नहीं हुई। अब कसूर किसका है? सूरज का, उस शख्स का जिसने आपको सोलर पैनल दिया था, या आपके अपने फैसले का? जाहिर है मसला आपके इस्तेमाल का है। समझ कर हम, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया, अंबिया भेजे, अकल अता की, फितरत दी, दिल दिया, ज़मीर दिया, खैर और शर की पहचान दी। अब अगर इंसान इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ ले और फिर कहे कि मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, तो ये बात दुरुस्त नहीं। कुरान कहता है, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम जरूर उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। सामने कराम, सूरह राज की आयत का एक हिस्सा हमने इससे पहले भी जिक्र किया था। उसी आयत के आगाज में अल्लाह ताला एक और अजीम हकीकत बयान फरमाता है, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله, इंसान के आगे और पीछे अल्लाह ताला के मुकर्रर करदे फरिश्ते मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए साहबाने किराम, हम तो खुद को तन्हा समझते हैं ना, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी हमारी आंखों के सामने गुजर रही है, यूं ही तन्हा हम अकेले हैं। लेकिन कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत का एक ऐसा निज़ाम कायम कर रखा है जिसका हमें एहसास भी नहीं। कितनी बार इंसान हादसे से बच जाता है, कितनी बार कोई मुसीबत टल जाती है, कितनी बार एक ख़तरा करीब आकर वापस चला जाता है, ये सब अल्लाह ताला की हिफाजत के मज़ाहिर हैं। लेकिन साथ ही ये बात भी याद रखिए
کہ جب انسان مسلسل نافرمانی، ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار

0: कहते थे, जब तुम अपनी ज़िंदगी में कोई बिगाड़ देखो तो अपने आमाल का मुहासबा करो, शायद कोई नियमत ऐसी है जिसका शुक्र अदा नहीं किया गया, शायद कोई गुनाह ऐसा है जिस पर तौबा नहीं की गई, शायद कोई हक ऐसा है जो अदा नहीं किया गया। और यही कुरान का पैगाम है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, पहले अपने अंदर तब्दीली लाओ। सामने किराम, आज दुनिया में हर शख्स तब्दीली चाहता है, कोई अपनी माशी हालत बदलना चाहता है, कोई अपने घर के हालात बदलना चाहता है, कोई अपने मुआशरे को बदलना चाहता है, लेकिन कुरान हमें एक बुनियादी उसूल देता है, बैरूनी तब्दीली अंदरूनी तब्दीली से शुरू होती है। दिल बदलेगा तो ज़िंदगी बदलेगी, नीयत बदलेगी तो रास्ता बदलेगा, सोच बदलेगी तो तकदीर के दरवाज़े खुलेंगे। इसीलिए कुरान ने इस्लाह नफ्स को हर इस्लाह की बुनियाद करार दिया है। सामने किराम, इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, यानी जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब या गिरफ्त का फैसला कर ले तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। सामने किराम, क्या महसूस होता है इस आयत को सुनकर? क्या अल्लाह सिर्फ हमें खौफ दिला रहे हैं? बंदा मोमिन यहाँ खौफ के साथ साथ उम्मीद को भी महसूस करता है। खौफ तो इस बात का कि हम अल्लाह की नाफरमानी में डटे न रहें, और उम्मीद इस बात की कि जब तक दरवाज़ा तौबा खुला है, जब तक हम रुजू कर सकते हैं, जब तक इख्तियारात हमारे अपने हाथ में हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, तब तक अल्लाह की रहमत भी हमारे लिए खुली हुई है, हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं है। अल्लाह ताला किसी बंदे को हिदायत से महरूम करना नहीं चाहता। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को बार बार अपनी तरफ बुलाता है। कुरान इसी दावत का नाम है। शर्त सिर्फ एक है, बंदा खुद भी सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाए, वो खुद भी रोशनी को कबूल करने के लिए तैयार हो, वो खुद भी दिल का दरवाज़ा खोले, फिर अल्लाह की रहमत उसे ऐसी राहों पर ले जाती है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हमें अपने दिलों की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, हमें हिदायत की तलब नसीब फरमाए, और कुरान के नूर से हमारी ज़िंदगियों को रोशन फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सभी कराम, प्रोग्राम के इस मरहले में चलें एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में। इस हलके में हमारी गुफ्तगू हो रही है तकदीर के हवाले से, और तकदीर और इंसानी इख्तियारात के मसले में बहुत ही एक उम्दा और मरकजी आयत कुरान करीम की सूरत अर-रअद में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। गोया अल्लाह ताला बंदे के इरादे, उसके स्टेप्स को देखना चाहता है। बंदा अगर सच्चाई चाहता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। बंदा अगर हिदायत की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसके लिए रहमत के बेशुमार दरवाजे खोल देता है। लेकिन अगर कोई शख्स खुद ही हक से मुंह मोड़ ले, दीन का मजाक उड़ाए, कुरान से दूर भागे और फिर कहे कि मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, तो ये इंसाफ की बात नहीं। सामने किराम, तकदीर जैसे कि हम सब जानते हैं, सूरतुल बुरूज में ये बताया गया है, फी लौह महफूज, लौह महफूज में सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इस सिलसिले में एक और सवाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो ये कि अगर सब कुछ पहले से लोहे महफूज में लिखा जा चुका है तो फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा? अगर किसी शख्स की उम्र, रिज़्क और ज़िंदगी के हालात पहले से तय हैं तो फिर हम अल्लाह से दुआ क्यों करें? यहाँ एक इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक बुनियादी नुक्ता समझने

0: जेनजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ. रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे फेलिक्स सैंचेस के बारे में। याद होगा ये नाम फेलिक्स सैंचेस, 4 साल पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कई मरतबा आप लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा भी होगा। फेलिक्स सैंचेस कतर फुटबॉल की तारीख के सबसे कामयाब कोचेज में से एक तस्लीम किए जाते हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पैदा होने वाले सैंचेस ने अपना कोचिंग करियर एफसी बार्सिलोना की यूथ अकेडमी ला मासिया से शुरू किया। साल 2006 में वो कतर आए और एस्पायर अकेडमी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, जहां उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत पर काम किया। बताता चलूं कि इसी यूथ प्रोग्राम में काम करते वक्त उन्होंने आज के सुपरस्टार खिलाड़ी अलमोइज अली, अकरम अफीफ, सुल्तान ब्रेक, तारिक सलमान जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। फेलिक्स सैंचेस ने कतर के अंडर 19, अंडर 20 और अंडर 23 टीमों को कोच किया और 2014 में कतर को AFC अंडर 19 चैंपियनशिप जितवाई। दैट वाज द बेसिकली अ गेम चेंजर फॉर कतरी फुटबॉल। इस कामयाबी ने उन्हें सीनियर नेशनल टीम तक पहुंचाया और 2017 में वो कतर के हेड कोच बन गए। उनकी क्यादत में कतर ने 2019 का AFC एशियन कप जीती, जो मुल्क की फुटबॉल तारीख की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक मानी जाती है। कतर ने टूर्नामेंट के दौरान शानदार फुटबॉल खेला और एशिया की ताकतवर टीम्स को शिकस्त दी। सैंचेस ने कतर को उनके फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप यानी कतर 2022 में भी गाइड किया। अगरचे टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन कतर को वर्ल्ड कप तक पहुंचाने और एक मुकाबला करने वाली टीम बनाने में उनका किरदार बुनियादी रहा। कई फुटबॉल एक्सपर्ट्स और फैंस उन्हें कतर फुटबॉल के जदीद दौर का आर्किटेक्ट करार देते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: 7. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों. 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है. और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है. मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं. आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है. FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए. आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
3: द रिक्वेस्ट शो
2: हर शाम 4 to 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
5: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक.
6: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला. आज हम बात करेंगे सेहतमंद वजन बरकरार रखने के बारे में. बहुत से अफराद वजन कम तो कर लेते हैं लेकिन उसे बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज होता है. मगर अच्छी बात यह है कि चंद आसान और मुश्किल आदत अपनाकर हम और आप सेहतमंद वजन को बरकरार रख सकते हैं. सेहतमंद वजन सिर्फ अच्छी शख्सियत ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कई दीगर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है. बैलेंस डाइट अपनाइए क्योंकि सेहतमंद वजन बरकरार रखने के लिए मतवाजन गिजा बहुत जरूरी है. अपनी रोजाना की खुराक में फल, सब्जियां, दालें, अनाज, दूध और प्रोटीन वाली गिजाएं शामिल कीजिए. बहुत ज़्यादा चिकनाई, बहुत ज़्यादा नमक और जो चीनी वाली अशियाएँ उन्हें कम कीजिए. खाने की मकदार पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाना वजन बढ़ने का सबब बन सकता है. छोटी प्लेट इस्तेमाल कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए. एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना कम से कम 30 मिनट आप वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको बहुत पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए और इस तरह जो अपना वजन है वो बरकरार रखने में आपको वो मदद दे

0: सकते हैं। जिस्म जितना ज्यादा एक्टिव होगा इतनी ही कैलोरीज जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। पानी वो तो जरूर पीना है। पानी ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखता है बल्कि गैर जरूरी भूख को भी कम करने में मदद देता है। अच्छी नींद लीजिए। ना काफ़ी नींद जिस्म के भूख से जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें मुतासिर करती है, जिससे ज़्यादा खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। मेंटल हेल्थ वो बहुत अहम है। इसी तरह से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है बाज़ औक़ात जज्बाती खाने का भी बायस बनते हैं। तो फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन जो है या इबादत जो है वो आप ज़रूर कीजिए और अपने वज़न पर नज़र रखिए। हफ्ते में एक बार अपना वज़न ज़रूर चेक कीजिए और अगर बढ़ने लगे तो फौरन अपनी हिसा और जो एक्टिविटीज़ हैं उनका जायज़ा लीजिए। बहुत ही आसान सी टिप्स हैं कि नाश्ता रोज़ाना ज़रूर कीजिए, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, घर का बना हुआ खाना तरजीह दें, लंबे वक्त तक बैठने से गुरेज कीजिए, रोज़ाना कुछ वक्त वॉक के लिए ज़रूर निकालिए। तो लिसनर्स, सेहतमंद वजन बरकरार रखना किसी मुख्तसर मुद्दत की डाइट का नतीजा नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक तर्ज जिंदगी है। छोटी लेकिन मुस्तकिल मुस्बत आदत आपको लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकती हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक सेहतमंद रहिए, बैलेंस डाइट लीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल है वो अपना लीजिए।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और इंटरेस्टिंग और वेरी प्रैक्टिकल एपिसोड। भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट पर जो ट्रैफिक, फ्यूल कॉस्ट और पोल्यूशन तीनों को एक साथ रिड्यूस कर सकती है, यानी कि कार पूलिंग ट्रेंड। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करती हूँ। जरा सोचिए, सुबह का टाइम है, ऑफिस या स्कूल जाने की जल्दी है आपको या आपके साथ वालों को। आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सेम रूट पर आपके कोलीग्स, फ्रेंड्स या नेबर्स भी अलग अलग कार्स में जा रहे होते हैं। साथियों, ट्रैफिक में हर गाड़ी में सिर्फ एक से दो लोग होते हैं, लेकिन हर गाड़ी अपना फ्यूल भी यूज कर रही होती है और रोड स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही होती है। और यहीं से आइडिया आता है कि अगर ये सफर शेयर हो जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है कि नहीं। देखिए, अब थोड़ा सा रिलेटेबिलिटी के साथ समझते हैं इस चीज को। देखिए, कार पूलिंग का मतलब होता है एक ही गाड़ी में मल्टीपल लोगों का ट्रैवल करना, जो सेम डायरेक्शन या सेम डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इससे गाड़ियों की टोटल नंबर जो होता है वो कम हो जाता है और सेम डिस्टेंस कवर होता है, लेकिन रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होती हैं। अब इसमें, इस सिचुएशन में इको स्विच क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपने ट्रैवल शेयर करें। मतलब हर इंसान अलग अलग गाड़ी यूज करने के बजाय एक साथ ट्रैवल प्लान कर सकता है। साथियों, अब बात करते हैं कि कार पूलिंग ट्रेंड फॉलो करने से क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहला फायदा है फ्यूल सेविंग। जब एक गाड़ी में तीन से चार लोग ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल व्हीकल्स के फ्यूल का यूज अवॉइड हो जाता है। दूसरा फायदा है ट्रैफिक रिडक्शन। कम कार्स का मतलब है रोड पर ट्रैफिक जैम और कंजक्शन नहीं होगा, ट्रैफिक स्मूथ होगी। तीसरा फायदा है पोल्यूशन कंट्रोल। कम व्हीकल से कार्बन इमिशन रिड्यूस होती है और एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्ट शेयरिंग। देखिए, फ्यूल और पार्किंग कॉस्ट सब लोग

0: मिलकर शेयर कर सकते हैं, इससे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो भाई सोचिए, चार दोस्त हैं या चार ऑफिस वर्कर्स हैं जो सेम ऑफिस या सेम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अगर हर कोई अपनी अलग अलग गाड़ी ले जाए तो भाई क्या होगा, चार गाड़ियां रोड पर आ पहुंचेंगी। लेकिन अगर वही चार लोग एक ही गाड़ी में कार पूलिंग करें तो सिर्फ एक गाड़ी ही यूज होती है। रिजल्ट क्या होता है, फ्यूल भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी और पार्किंग की टेंशन भी कम होगी। लेकिन दोहा जैसी सिटी में कार कल्चर बहुत स्ट्रांग है और डिस्टेंसेस कंपैरेटिवली मैनेजेबल है, इसीलिए यहाँ कार पूलिंग ईजिली अडॉप्ट की जा सकती है, स्पेशली ऑफिस रूट्स या स्कूल रन्स और कम्युनिटी ट्रेवल्स के लिए। कई वर्क प्लेसेस ऑलरेडी इनफॉर्मल कार पूलिंग सिस्टम एनकरेज करते हैं। अब आपको वो टिप्स दे देती हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। भाई देखिए, ग्रुप प्लान बनाएं, ऑफिस या स्कूल कोलीग्स के साथ सेम टाइमिंग फिक्स करें, फिक्स्ड स्केड्यूल सेट करें। देखिए कार पूलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब रूटीन कंसिस्टेंट हो। अच्छा भाई, इसी के साथ तीसरा हमारे पास टिप है, फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूशन अग्री करें, पहले से कॉस्ट शेयरिंग क्लियर रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करें, ट्रस्टेड लोगों के साथ ही कार पूलिंग करें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्टरनेट ड्राइविंग सिस्टम रखें, हर दिन सेम पर्सन ड्राइव ना करें, रोटेशन सिस्टम अडॉप्ट करें। भाई दुनिया के बहुत सारे अर्बन सिटीज में कार पूलिंग एप्स और सिस्टम्स ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ये ट्रेंड सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन भी बन चुका है। देखिए एक रिलेटेबल सिचुएशन ये है कि भाई अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं अकेले ही ट्रैवल करूंगा, लेकिन जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना तो रियलाइज होता है कि भाई एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट से कितना बड़ा एनवायरमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट हमें मिल सकता है। जब आप कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड बना लेते हैं, आप सिर्फ इंडिविजुअल ट्रैवलर नहीं रहते बल्कि कोलैबोरेटिव कम्यूटर बन जाते हैं। तो भाई हमारा इको स्विच बड़ा सिंपल है, जब पॉसिबल हो अपनी जर्नी शेयर करें और कारपूलिंग अडॉप्ट करें। तो भाई आज का चैलेंज ये है कि आज अपने फ्रेंड्स, कुलीग्स या नेबर्स में से कम एक पर्सन, एक किसी इंसान को आइडेंटिफाई करें जो आपके रूट पर ट्रैवल करता हो और कार पूलिंग के आइडिया उसके साथ डिस्कस करें। और अगर आप ऑलरेडी कार पूलिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी इस ट्रेंड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, क्या पता उनको अच्छा लगे। तो साथियों, हर गाड़ी का एक एक्स्ट्रा पैसेंजर सिर्फ सीट नहीं भरता बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। जब हम कार पूलिंग अडॉप्ट करते हैं ना तो हम सिर्फ सफर शेयर नहीं करते बल्कि अपनी जमीन का लोड भी कम ही करते हैं, हल्का ही करते हैं। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे रात की दुआओं के बारे में। दिन के आखिरी लम्हों में अल्लाह को याद करना बहुत बरकत वाला अमल है। रात के वक्त में जब इंसान दुनिया की मसरूफियात से फ्री होता है तो उसका दिल सुकून के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। सोने से पहले दुआ करना हमें अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। ये एक रूहानी सुकून का जरिया है और नींद को भी पुरसुकून बनाता है। आजकल हम मोबाइल और स्क्रीन में इतना खो जाते हैं कि सोने से पहले अल्लाह को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वक्त भी निकाल लें तो ये हमारी जिंदगी में बरकत लेकर आ सकता है। आज का अमल ये है कि सोने से पहले 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करें और दुआ के साथ दिन का इख्तिताम करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बरकत FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
3: It's Kaz on the beat.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
1: One step to 2030.
0: आज मैं बात करूंगी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट की. दोस्तों, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बैकबोन होता है. इसका मतलब ये है कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल सिस्टम्स और सप्लाई चेन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना. जब एक कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो गुड्स और सर्विसेज आसानी से मूव होते हैं और बिजनेसेस ऑपरेशन स्मूथ हो जाती है. आज के ग्लोबल वर्ल्ड में ट्रेड और बिजनेस कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जल्दी और कम कॉस्ट पर डिलीवर कर सकती है. जब ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और रिलायबल होता है तो मार्केट एक्सेस इंप्रूव होती है और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है. जब प्रोडक्ट्स ईजली मूव करते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. लॉजिस्टिक कंपनीज और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जॉब्स भी क्रिएट करते हैं और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कतर जैसी इकोनॉमी में जो ग्लोबल ट्रेड और बिजनेस हब बन रही है, लॉजिस्टिक का रोल और भी इम्पोर्टेंट है. पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, मेट्रो सिस्टम ऑलरेडी इनके एग्जाम्पल्स हैं भाई. ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एनवायरनमेंट का या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है. तो कहने का मतलब ये है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन है. जब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिजनेस एक्सपैंड करेगा और इकोनॉमी फास्ट ग्रो करेगी. और कतर का नेशनल विजन 2030, जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 में ये एक स्टेप है जो कतर को ग्लोबल हब बनाता है और बना रहा है. फिलहाल दोस्तों, अब मेरा वक्त हो गया कि मैं आपसे इजाजत ले लूँ. ठीक है, इतना आज के लिए, इतना ज्ञान काफी है.

0: होगी तो एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी. One step to 2030.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हवाला कबीर एफएम 107 पे, और अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। आपको बताना कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं अब कितने स्मार्ट हो चुके हैं। देखिए, फिशिंग एक जमाने में हुआ करती थी, फिशिंग आज भी है, मगर इसकी जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी बदल चुकी है। आज जिन्हें नहीं पता, आम भाषा में समझाऊं तो फिशिंग का मतलब पहले होता था कि अटैचमेंट भेज दी, उसमें मैसेजेस या फिर इमेजेस भेज दी, किसी ने डाउनलोड किया और उसका जो सारा का की

0: रिकॉर्ड है सारे कीबोर्ड का, वो सारा का सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है. देन दे रिसीव अ नोटपैड और उन्हें पता होता है कि आपने क्या पंच इन किया. एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू क्रैक योर पासवर्ड. ऐसे ही आपके पासवर्ड का पता लगता था. अब मामला थोड़ा सा अलग हो चुका है. अलग कैसे हुआ? अलग ऐसे कि आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं. फर्ज कीजिए आपको कोई ऐप चाहिए, कोई एडिटिंग ऐप चाहिए और आपको मिल नहीं रही है. होता है ना कि एल्गोरिथम आपको वही चीजें दिखाता है जो आपको चाहिए होती है. अगर आप आज बिस्तर बेड ढूंढ रहे हैं तो आपको फिर मैट्रेसेस बेड फर्नीचर दिखाना शुरू कर देगा कोई भी सोशल मीडिया क्यों ना हो. ऐसे ही आपकी जरूरत के हिसाब से कई सारी ऐप्स आपको दिखाई जाएंगी और ये ऐप्स आधे से ज्यादा नकली निकलने वाली हैं. तो इसलिए बी वेरी केयरफुल. ये स्कैमिंग जो है ये ऐप्स के जरिए फिशिंग करके होती है. इसमें फंसना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है. फंसाना उनके लिए और फंसना आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें पता नहीं लगता. आप ऐप यूज करते हैं, आपको पसंद नहीं आते, बोलते हैं अरे ये तो खराब है और आप हटा देते हैं. पर जब तक आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स, एटलीस्ट योर ईमेल इज देयर, आप उसमें डिटेल्स पंच इन कर चुके होते हैं. एंड दैट्स हाउ दे कीप एन आई ऑन यू. ये बड़ा ही साइलेंट हैकिंग सिस्टम है जिसका काफी फायदा उठा रहे हैं फ्रॉडस्टर्स. तो यू हैव टू कीप एन आई. अगर आपको लगता है कि ये ऐप के बारे में कभी सुना तो नहीं है, डोंट यूज इट. सेकेंड थॉट होना ही नहीं चाहिए. अब अगर आप फंस गए, मान लीजिए आपने ऐप यूज कर ली, इट इज स्टिल इन योर फोन एंड आप डिलीट नहीं कर रहे, आलस है, बाद में कर देंगे या कोई भी वजह है, अब फंसने के बाद क्या करना है? ध्यान से सुनिए. सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है. ये सुनने के बाद अगर कोई ऐसी ऐप आपको याद में आ रही है, घबराइए नहीं. इम्पल्सिव डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेने कि कोई आपको अचानक से मैसेज करके बोल रहा है अब तो मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, इतने दो उतने दो. डरना बिल्कुल भी नहीं है. आराम से अगर फंस जाते हैं तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. जैसे मैंने कहा ये साइलेंट हैकिंग है, साइलेंटली आप इससे बाहर आ जाएंगे. फौरन ऐप को डिलीट करें और फंसने के बाद अगर आपको लगता है कोई चारा नहीं है और आपको कोई थर्ड पर्सन मैसेज कर रहा है तो आप सीधा पुलिस में रिपोर्ट करें. साइबर पुलिस आपकी ज़रूर ज़रूर मदद करेगी. एंड इससे इसके बाद और इससे पहले इनफैक्ट आप अपने फ़ोन को अगर हो सके तो फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए. पूरी तरह से आपके फ़ोन को रीसेट करना काफ़ी ज़रूरी है. नॉट जस्ट योर फोन्स बट योर डिवाइसेज, योर लैपटॉप्स, उनको रीसेट आप कर देंगे. एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फाइन. इस तरह से अगर आप फंस जाते हैं सिचुएशन में तो ऐसे आप आराम से पतली गली से निकल जाएंगे. इसके बाद कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि जो ऐप आप डाउनलोड करने जा रहे हैं वो असली है या नहीं? आप ध्यान से सुनिएगा. कई मरतब आपको नजर आते होंगे कुछ गेम्स जो आपको दिखाए जाते हैं, डाउनलोड इट नाउ, इस गेम में ये है वो है और बहुत खतरनाक बढ़िया से ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं आपको. कुछ ऐप्स आपसे कहते हैं कि ये ऐप ये कर सकती है, वो कर सकती है, इसका कंपटीशन आ चुका है और हम इंपल्सिव डिसीजन लेके उसे डाउनलोड करने लग जाते हैं. यही आपको नहीं करना. जैसे इंपल्सिवली अभी मैं स्टटर किया ना, ऐसे नहीं करना. ध्यान से, स्लोली. इनका नाम आपको बता देगा कि असली है या नकली है. नाम को कॉपी करें, सर्च में जाएं और उसके बाद ढूंढें क्या ये ऐप एग्जिस्ट करती है, क्या इसके यूनिवर्सल यूजर्स हैं, क्या कुछ रिव्यू लिखे हुए हैं. और अगर आपको लगता है कि रिव्यू तो सारे के सारे अच्छे हैं, समथिंग इज फिशी, तो फिर आपको चाहिए एक टैकी दोस्त जो टैक सेवी हो, उससे पूछिए, वो आपको बता देगा. और रिव्यूज अलग अलग जगहों पे पढ़ें, सिर्फ एक जगह पे भरोसा ना करें. डॉक्टर्स में भी कहते हैं ना मेडिकल फील्ड में सेकंड ओपिनियन, सो टेक दैट सेकंड ओपिनियन और आपको पता लग जाएगा कि ये रिव्यूज नकली हैं या असली हैं. एंड एंड ऑफ द डे इट्स एक्सट्रीमली इजी. कोई भी ऐसी ऐप जो आपने कभी सुनी नहीं है, डोंट यूज इट. हम आपको टेक शो में भी बताते हैं, हम आपको बताते भी रहते हैं. आपके कोई टेक सेवी दोस्त है उनसे मदद लें. देयर आर मेनी पीपल अराउंड यू जो आपको बता देंगे भाई ये ऐप किसी काम की नहीं है, मत यूज करो. तो प्लीज बड़े बड़े वादे करने वाली ऐप्स से तो बहुत ही दूरी बना के रखिए. कुछ ऐप्स आपसे मांगेंगी कि फला रियाल दे दीजिए, 5 रियाल में पूरे मंथली सब्सक्रिप्शन, 10 रियाल में पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल एंड दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ अ स्कैम. प्लीज बी वेरी केयरफुल. ये उन लोगों को बताएं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है. यू नीड टू हेल्प देम. ये तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे मेरी कोशिश है आपको ये सब बताना. जिन तक ये बात पहुंचे औरों तक जरूर पहुंचाएं. एंड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड बी सेफ. स्कैम अलर्ट.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
0: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे असीम मादिबो की। असीम मादिबो कतर नेशनल टीम के मिडफील्ड इंजन के तौर पर मशहूर हैं। खाना में पैदा होने वाले असीम ने कतर में फुटबॉल तरबियत हासिल किया और बाद में नेशनल टीम का अहम हिस्सा बने। उनकी सबसे बड़ी खूबी है मिडफील्ड में बैलेंस कायम रखना और ऑपोजिशन के अटैक्स को रोकना। असीम डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पर टीम को स्टेबिलिटी देते हैं और बॉल रिकवरी में महारत रखते हैं। 2019 एफसी एशियन कप की फतह और फीफा वर्ल्ड कप कैंपेंस में उन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई। उनकी वर्क रेट और टैक्टिकल अवेयरनेस कोचेस के लिए हमेशा काबिल तारीफ रही है। असीम मादिबो मॉडर्न फुटबॉल के उन मिडफील्डर्स की मिसाल हैं जो टीम के लिए खामोशी से बहुत बड़ा काम करता है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम के ज़हनी सेहत, नींद और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर जो असरात हैं उनके बारे में। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन

0: उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर मनफी असर डाल सकता है। मुसलसल नोटिफिकेशंस, वीडियोस और सोशल मीडिया अपडेट्स बाज़ अफराद में ज़हनी दबाव, बेचैनी और तवज्जो की कमी का बायस बन सकती हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों में स्क्रीन पर ज़्यादा वक्त गुजारने से हकीकी समाजी जो रवाबत हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे तन्हाई और जज्बाती मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक और अहम मसला नींद की खराबी है। सोने से पहले मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल हमारे ब्रेन को मुतहरक रखता है। स्क्रीन से खारिज होने वाली नीली रोशनी जिस्म के कुदरती नींद के निज़ाम को मुतासिर कर सकती है, जिसकी वजह से नींद आने में दुश्वारी होती है। मगर अच्छी खबर यह है कि चंद आसान आदत अपनाकर हम इन असरात को कम कर सकते हैं। सोने से कम अज कम एक घंटा पहले मोबाइल और कोई भी जो स्क्रीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल महदूद कर दीजिए। घर में आप स्क्रीन फ्री टाइम मुकर्रर कर लीजिए, मसलन खाने के दौरान या ख़ानदान के साथ अगर आप बैठे हैं तो उस वक्त। रोज़ाना कुछ वक्त किताब पढ़ने, एक्सरसाइज करने, वॉक करने या फिर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुफ्तगू में गुजारिए। वालदैन बच्चों के लिए स्क्रीन के इस्तेमाल के वाज़े उसूल जो हैं वो बनाएं, खुद भी उस पर अमल करके मिसाल कायम करें। तो लिसनर्स, मकसद स्क्रीन को मुकम्मल तौर पर छोड़ना नहीं है बल्कि उसका मतवाजन और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है। जब हम स्क्रीन और हकीकी ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम करते हैं तो हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। सेहतमंद रहिए, मुतहरक रहिए और स्क्रीन के इस्तेमाल में एतदाल इख्तियार कीजिए।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum saathiyon, aap sun rahe hain FM 107 Qatar aur main hoon aapki host Safa. Lekar aayi hoon Eco Switch ka ek aur interesting aur thoughtful episode. Yahan hum baat karte hain un choices ki jo sirf किसी को खुश नहीं करती बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी पॉजिटिव इंपैक्ट रखती हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इको फ्रेंडली गिफ्ट्स के बारे में। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी दोस्त की बर्थडे है या कोई स्पेशल ओकेजन है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, दोस्त की बर्थडे तो हर जगह ही आ जाती है। तो भाई आप मार्केट या ऑनलाइन गिफ्ट की शॉपिंग पे गए और आपने एक गिफ्ट ढूंढ लिया, ठीक है? फिर आप एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स या रैपिंग पेपर या रिबन और फैंसी पैकेजिंग देखकर गिफ्ट फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है? गिफ्ट दे दिया जाता है, सब खुश हो जाते हैं, पिक्चर भी बना ली जाती है, सेल्फीज भी ले ली जाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो हैवी रैपिंग पेपर, प्लास्टिक पैकेजिंग और रिबन्स सब कहाँ जाता है? फ्यूफ, कचरे के डब्बे में भाई। और यहाँ से स्टार्ट होती है एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी। देखिए थोड़ा सा रिलेटेबल बात को इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनली गिफ्टिंग कल्चर में अक्सर पैकेजिंग पर बहुत फोकस किया जाता है, चीज दिखने में अच्छी लगती है ना, लेकिन इस पैकेजिंग का एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज होता है जो सिर्फ मोमेंट्री ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है। ये चीज एनवायरमेंट पर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करती है साथियों, स्पेशली जब लार्ज स्केल पर गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं ना, कोई फेस्टिवल आता है या एक्स वाई जेड कोई ऐसी चीज होती है तो एक दूसरे को कैसे हम लोग नॉर्मली गिफ्ट देते हैं उसमें ओकेजंस पर, तो ये बहुत बड़ा जो हमारा एक स्केल होता है गिफ्ट एक्सचेंज का, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब इसमें इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? देखिए आइडिया बड़ा सिंपल है, ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल, रीयूजेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब सिर्फ पैकेजिंग देखकर ना फिसल जाए बल्कि गिफ्ट की वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी को भी तो मद्देनजर रखें ना। चलिए हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है आखिरकार। देखिए इको फ्रेंडली गिफ्ट्स वो होते हैं जो या तो रीयूजेबल होते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं या लॉन्ग टर्म यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, रीयूजेबल बॉटल्स हो गई, होममेड आइटम्स हो गए, डिजिटल गिफ्ट्स हो गए या एक्सपीरियंसेस, ठीक है? अब बात करते हैं कि इको फ्रेंडली गिफ्ट्स देने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा तो ये कि वेस्ट रिडक्शन होती है, इससे कम पैकेजिंग होती है और रीयूजेबल आइटम्स का मतलब है कम गार्बेज और कम एनवायरमेंटल लोड। दूसरा फायदा क्या है भाई? मीनिंगफुल गिफ्टिंग होती है। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अक्सर ज्यादा थॉटफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं। तीसरा फायदा है अवेयरनेस स्प्रेड होना। जब आप सस्टेनेबल गिफ्ट्स देते हैं ना किसी को, तो आप इनडायरेक्टली दूसरों को भी इको हैबिट्स इंस्पायर करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लटर कम होता है। रीयूजेबल और यूजफुल गिफ्ट्स घर में अननेसेसरी आइटम्स एक्यूमुलेट नहीं होने देते। अच्छा इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल पता है क्या है? जरा सोचिए आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, एक ब्यूटीफुल सा इंडोर प्लांट। अगर किसी ने मुझे देना है तो दे दें, मुझे प्लांट्स वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे अभी फिलहाल और भी ज्यादा प्लांट्स की जरूरत है, मुझे तो जितने मिले उतने कम है। तो भाई आप फॉर एग्जाम्पल किसी को एक ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट देते हैं गिफ्ट में, वो सिर्फ एक डेकोरेशन आइटम नहीं होता बल्कि वो इंसान के रूम को फ्रेश और लाइवली बना देता है। या फिर आप रीयूजेबल कॉफी मग गिफ्ट कर देते हैं जो डेली यूज होता है, अगर उनको कॉफी या चाय का शौक होगा तो वो तो डेली यूज करेंगे। कंपेयर करें एक फैंसी डेकोरेटिव आइटम से जो सिर्फ शेल्फ पर रख दिया जाता है, उसके मुकाबले तो बेहतर ही होगा ना। देखिए दोहा जैसे मॉडर्न सिटी में गिफ्टिंग कल्चर बहुत एक्टिव है, बर्थडे इवेंट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, फेस्टिवल्स, सब कुछ रेगुलरली होता है, इसलिए यहाँ इको फ्रेंडली गिफ्टिंग एडॉप्ट करना एक प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल चॉइस बन सकती है। अच्छा अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना जो आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि रीयूजेबल आइटम्स चूज करें, जैसे वाटर बॉटल्स, बैग्स, मग्स या कंटेनर्स। दूसरी चीज हो सकती है प्लांट गिफ्ट करें, इंडोर प्लांट्स एक लिविंग और लॉन्ग लास्टिंग गिफ्ट ऑप्शन होते हैं। अच्छा तीसरी चीज हो सकती है क्या चीज? एक्सपीरियंस गिफ्ट्स कंसिडर करें, मतलब जैसे वर्कशॉप टिकट्स हो गए, क्लास या डिजिटल सब्सक्रिप्शन हो गई। मिनिमल पैकेजिंग यूज करें ना, सिंपल रैपिंग या रीयूजेबल क्लॉथ रैप ट्राई करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैंडमेड गिफ्ट सपोर्ट करें। लोकल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल होते हैं, तो वो आप गिफ्ट करके देखें। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लिया जाए ना, तो दुनिया भर में गिफ्टिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, स्पेशली पैकेजिंग वेस्ट की वजह से। इसलिए सस्टेनेबल गिफ्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड बन रहा है, जहां फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी और इम्पैक्ट पर होता है। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि गिफ्ट जितना फैंसी होगा उतना अच्छा लगेगा, लेकिन असल में लोग गिफ्ट की वैल्यू और मीनिंग को ज्यादा याद रखते हैं, ना कि सिर्फ उसकी पैकेजिंग को। अच्छा, अगर बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में बात की जाए, तो जब आप इको फ्रेंडली गिफ्ट्स अडॉप्ट करते हैं, तो आप अपनी गिफ्टिंग अप्रोच को ज्यादा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल बना लेते हैं। आप सिर्फ गिफ्ट देने वाले नहीं रहते बल्कि माइंडफुल गिवर बन जाते हैं। तो भाई, आज का इको स्विच सिंपल है, इको फ्रेंडली और मीनिंगफुल गिफ्ट्स चूज करें। आज का चैलेंज ये है कि अगर आप नेक्स्ट किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, तो इको फ्रेंडली ऑप्शन चूज करें, चाहे वो प्लांट हो, रियूजेबल आइटम हो, या कोई एक्सपीरियंस गिफ्ट हो। और अगर आप रिसीव करते हैं कोई गिफ्ट, तो भी इको फ्रेंडली गिफ्टिंग को अप्रिशिएट करें। साथियों, गिफ्ट का मकसद सिर्फ खुशी देना नहीं होता बल्कि कनेक्शन बनाना भी होता है। जब हम इको फ्रेंडली गिफ्ट चूज करते हैं, तो हम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि अपनी जमीन को, अपनी इस कायनात को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो भाई, इसी नोट के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इंपैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी RJ माविश खान। आज हम बात करेंगे सलाम करने की अहमियत के बारे में। सलाम करना इस्लाम की एक खूबसूरत सुन्नत है जो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाती है। जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम असल में एक दूसरे के लिए अमन और रहमत की दुआ कर रहे होते हैं। आज की तेज जिंदगी में लोग अक्सर एक दूसरे से मिले बिना गुजर जाते हैं बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सलाम से रिश्तों में रहमत पैदा होती है और दिल एक दूसरे के करीब होते हैं। जब हम किसी को सलाम करते हैं और वो जवाब देता है तो एक रूहानी कनेक्शन पैदा होता है जो सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होता। ये छोटा सा अमल ना सिर्फ सवाब का जरिया है बल्कि सोसाइटी को पॉजिटिव भी बनाता है। आज का अमल ये है कि चाहे जितने भी लोग मिले उन सबको सलाम की आदत डालें, चाहे वो छोटे हों या बड़े, जान पहचान हो या नहीं। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ RJ मावश। कल फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: और आज मैं बात करने वाली हूँ जिस टॉपिक पे, वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड बिजनेस कंप्लायंस। देखिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस है क्या? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस किसी भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एनवायरनमेंट की फाउंडेशन होते हैं। कतर का जो विजन है 2030, उनका फोकस है कि बिजनेसेस प्रॉपर रेगुलेशंस फॉलो करें और फाइनेंशियल सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हों। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्लियर रखें ऑडिट्स, रिपोर्ट्स और टैक्स कंप्लायंस के जरिए। इससे क्या होगा? इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट सबको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। कंप्लायंस की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि रेगुलेशंस फॉलो ना करने से लीगल इश्यूज और पेनल्टीज हो सकती हैं। वहीं प्रॉपर ऑडिटिंग और एडवाइजरी सर्विसेज बिजनेसेस को सही डायरेक्शन में चलने में हेल्प करती हैं। देखिए, कतर में प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स इस फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये कंपनीज जो है वो बिजनेसेस को गाइड करती हैं, वो लॉज फॉलो करवाती हैं और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे मजबूत बनाना है, फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखनी है, इस हवाले से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रांसपेरेंट और कंप्लायंट सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का बेसिक पिलर होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और यही तो कतर का विजन भी है 2030, जो इसी स्टेबिलिटी और रिलायबल इकोसिस्टम को क्रिएट करने का एम रखता है। और शायद इसी एम को अचीव करते हुए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस कंप्लायंस की अहमियत और ज्यादा बढ़ चुकी है। चलिए, जैसे मैं आपसे कहती जा रही हूँ, आने वाले दिनों में हम इन डेप्थ भी इन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, आपको धीरे धीरे मैं इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा वाकिफ कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं बस यहीं पर रुकूंगी, जिससे कि आप जितना मैंने कहा उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें। वापस आऊंगी तो एक और नई टर्मिनोलॉजी पर डेफिनेटली हमारी बात होगी। लेकिन तब तक के लिए करना क्या है, बस खुश रहना है, सुनते रहना है एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
3: One step to 2030.
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: दोस्तों रिक्रिएट

हमने मूसा को निशानियां अता की थीं, जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके हां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर एक सहर ज़दा आदमी है। मूसा ने उसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफरोज निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ख्याल ये है कि ऐ फिरौन, तू जरूर एक शामत ज़दा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा गर्क कर दिया, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो। फिर जब आखिरत के वादे का वक्त आन पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे बशारत दे दो और जो न माने उसे मुतनब्बिह कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो